0: வந்தே மாதரம்.
1: வந்தே மாதரம்.

सुप्रभात। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026। प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा मीडियम वेव और FM पर एक साथ आरंभ हो रही है।

0: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशीमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, PPE किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। IPL क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैप महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। प्रातःकाल की इस स्वर्णिम बेला पर आइए उस सर्वशक्तिमान को नमन करें जो हम निराकार साकार तू है जग के मारुति नंदन। हे बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार।
2: देवता मंत्र के अधीन होते हैं, मंत्राधीना देवता। वेद माता गायत्री मंत्र से विघ्न है, धीमा है और प्रचोदयात शब्द लेकर अनेक देवी देवताओं के गायत्री मंत्रों की रचना हुई।

राम नाम को ईश्वर का सर्वोच्च नाम माना गया है। इसे जपने से मन को शांति और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। तुलसीदास जी ने कहा है, राम से बड़ा राम का नाम। राम नाम केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति है। इसे जपने से जीवन में सुख, शांति और आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है।

मदीने के वाली, मदीने बुला लो, ये पैगाम ले जा सबा जाते जाते। पैगाम लाना मेरी हाजिरी का, बराए करम मेहरवा आते आते।

सत्संग संत हृदय में स्थान और सच्ची श्रद्धा का उदय जब हमारे अंतर्मन में होगा तो बिना बुलाए वाहेगुरु हमारे निकट आएंगे।

निकटवासी हैं प्रभु अविनाशी करतार, दया से तेरी हो सभी भवसागर से पार। आज की वंदना में कलाकार थी रानी रूपलता, हरप्रीत कौर और साथी। इसी के साथ

0: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: जैसी भी मौजूदा वक्त की संस्कृति है, वो किसी एक कौम या मुल्क की बनाई हुई या बपौती नहीं है। ये तो मिलीजुली संस्कृति है जिसमें सब देशों ने अपना अपना हिस्सा शामिल किया है और उसके बाद अपनी खास जरूरतों के मुताबिक उसे अपना लिया। और अगर दुनिया को देने के लिए हिंदुस्तान के पास कोई पैगाम है, और मैं उम्मीद करता हूं कि उसके पास है, तो उसे दूसरी कौमों के पैगामों से भी बहुत कुछ हासिल करना और सीखना है। मैं किसी भी शक्लो सूरत में फिरका परस्ती का भी हामी नहीं हूं। मैं इस बात की दाद नहीं दे सकता कि किसी जात या धर्म के नाम पर ही सियासी और माली हक निर्भर करने चाहिए। हिंसा का ज्यादातर उल्टा असर होता है और उसकी वजह से गिरावट भी आती है, और खास तौर पर हमारे मुल्क में उसकी वजह से फूट भी पैदा हो जाती है। हमारी इच्छा है कि दुनिया की उस पुरानी व्यवस्था को बदल डालें जिससे लड़ाइयां पैदा होती हैं और लाखों करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है। गरीबी और बेरोजगारी दूर करके अनगिनत लोगों की ताकत जो अभी फिजूल और बेकार जा रही है, इंसानी तरक्की और भलाई करने में लगाएं। मतलब ये कि जहां अब बर्बादी होती है वहां निर्माण के काम होने लगे। मैं इस महान देश में खूब घूमा हूं और मैंने हिंदुस्तान की जनता के दिलों में उस तड़पन को फिर से महसूस किया है जो वो अपनी आंखों की भाषा से इशारा करती है। हमारे सामने बहुत से मसले हैं जिनका हमें सामना करना है और जिन्हें हमें हल करना है। अकेला राजनीतिज्ञ उनको हल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास उस नजरिए और मजमून की जानकारी का अभाव हो सकता है, और न ही अकेला साइंटिस्ट उन्हें हल कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसा करने का हक नहीं होगा या फिर ऐसा नजरिया नहीं होगा जो हर चीज पर और हर तरफ निगाह रख सकता है। ये मसले तो उन दोनों के निश्चित सामाजिक उद्देश्यों के सहयोग से ही हल हो सकते हैं और होंगे। हमें अपनी जगह पर मजबूती से डटे रहना चाहिए, और आजकल के संकट में हमें जोश से या दलबंदी के भाव से या सबकी भलाई की बजाय अस्थाई लाभ उठा लेने की कोशिश से इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमने राजनीतिक क्षेत्र में नेकी के बहुत ऊंचे दर्जे पर काम किया है, और सार्वजनिक कामों में भी हमें सच्चाई के साथ ही काम करना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अहिंसा हमारे लिए सिर्फ शब्द मात्र नहीं है, बल्कि एक सोच समझकर अपनाई गई नीति है जिस पर चलकर हमें अच्छे नतीजे ही मिले हैं। ये सच है कि बहुत से लोग जो सत्य और अहिंसा की रट लगाते हैं, दोनों में से किसी पर भी यकीन नहीं रखते, और वे इन शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ अपने स्वार्थों को पूरा करने की खातिर ही करते हैं, लेकिन फिर भी हम भरसक सत्य और अहिंसा की राह पर ही चलेंगे। उस राजनीति के खेल से क्या फायदा कि हम अपने उसूल ही खो बैठें और अपनी ईमानदारी पर धब्बा लगा दें।
0: ये था आज का चिंतन। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 6:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। आज के इस कार्यक्रम में डेंगू और चिकनगुनिया, इस विषय पर डॉक्टर आसिफ अली से की गई भेंट वार्ता हम आपको सुनवा रहे हैं। आपसे भेंट कर रहे हैं डॉक्टर विनय वर्मा।
1: आज हम बात करेंगे डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में। ये क्या है, किस प्रकार का रोग है, कैसे फैलता है, कैसे बचाव और उपचार कर सकते हैं, इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए

0: हमारे साथ हैं डॉक्टर आसिफ अली जी, जो कि होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से इस बीमारी से हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है।
1: शुक्रिया सर।
0: डेंगू का नाम सुनते ही काफ़ी घबराहट होती है कि ये कैसी बीमारी है, कैसा बुखार है, कहीं जानलेवा तो नहीं है, और लोग सतर्क हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। बीमारी वैसे तो किसी भी प्रकार की हो, कैसी भी हो, सतर्क होना चाहिए। डेंगू बुखार दूसरे बुखार से किस प्रकार से भिन्न है, कैसे अलग है?
1: देखिए सर, बुखार का मतलब तो होता है गर्म करना।
0: जी,
1: शरीर, कोई सा भी बुखार आए, शरीर उसमें गर्म ही होता है। तो अमूमन ये देखा गया है कि जैसे ही बुखार आता है तो सबसे पहले तो बुखार किस तरह का है, वायरल है
0: जी,
1: बैक्टीरियल है या मौसमी बुखार है। तो इसमें सर जो डेंगू बुखार है, एक्चुअल में ये डेंगू जैसे ही शरीर में प्रवेश करता है, यानी एक वायरल बीमारी है, और ये एक मच्छर के द्वारा फैलता है। फीमेल एडीज मॉस्किटोज हैं
0: जी,
1: ये दिन में ही बाइट करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और जैसे ही ये किसी को काट लेते हैं तो इनका जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो जाता है शरीर में। और जैसे ही ये सर शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो तेज बुखार आएगा मरीज को, बहुत तेज सर्दी के साथ
0: जी,
1: और बुखार आने के बाद मरीज बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाएगी।
0: अच्छा,
1: उसको एक्सट्रीम कमजोरी हो जाएगी और मरीज ये कहेगा कि जैसे डेंगू की बात कर रहा हूँ सर मैं, मरीज कहेगा कि जैसे शरीर से पूरी जान निकाल ली गई है।
0: बिल्कुल,
1: होता क्या है सर इसमें, कि इसमें जो हमारी प्लेटलेट्स काउंट हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, और जिसकी वजह से चूंकि प्लेटलेट हैं बॉडी की, बॉडी को इम्यूनाइज करती हैं, बॉडी के अंदर
0: रक्षा करती हैं।
1: जी बिल्कुल, उसी की वजह से बॉडी के अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ रहती है, तो वो उसकी काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाने की वजह से शरीर एकदम कमज़ोर हो जाता है।
0: अच्छा, दूसरे बुखार में ऐसा नहीं होता है?
1: हाँ, दूसरे बुखार में जैसे मौसमी बुखार है या कोई बैक्टीरियल बुखार है उसमें उसकी अपनी स्टेजेस होती हैं, लेकिन इसमें अचानक से इतनी कमजोरी आ जाना ये एक इस तरफ
0: बड़ा लक्षण है,
1: निर्देश करता है कि शायद ये डेंगू होगा।
0: जी जी,
1: इसमें कुछ और लक्षण भी हैं सर, कि जैसे बुखार कमजोरी के साथ साथ शरीर पे हल्के हल्के दाने से आते हैं निकल के
0: जी,
1: हालांकि ये थोड़ा सा बाद में आता है लेकिन दाने आ जाते हैं। कभी कभी ये इतना सीवियर हो जाता है कि ये अंदर ब्लीडिंग तक हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाती है और शरीर बहुत ज्यादा जो है कमजोर हो जाता है।
0: और मैं समझता हूँ इसीलिए लोग ज्यादा घबराते हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: और ये कितना घातक है
1: सर? घातक अगर इसका सही तरीके से इसका जो है मैनेजमेंट कर लिया जाए
0: समय से,
1: क्योंकि वैसे तो इसकी कोई दवा नहीं है अभी
0: जी
1: तक।
0: जी,
1: अंग्रेजी में कोई दवा नहीं है
0: बिल्कुल,
1: लेकिन इसका मैनेजमेंट है। इसमें मैनेजमेंट ये है सर कि जैसे अगर पेशेंट बहुत वीक हो रहा है, खाने में असमर्थ है, तो उसको हम जो है आईवी वगैरह, आईवी के थ्रू, मतलब हम उसको सेलाइन वगैरह देके उसको जो डिहाइड्रेट बॉडी अगर हो रही है उसको हम लिक्विड पर रखेंगे, लिक्विड डाइट देंगे, तो इस तरह से हम थोड़ा सा ऐसे कुछ
0: बॉडी को स्ट्रांग करेंगे
1: जी। और ये चीजें हैं कुछ जो कि हम इसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं।
0: अच्छा
1: जी,
0: बात आती है कि वास्तव में ये घातक है। बहुत सारे जो हमारे मरीज हैं या जिनको ये समस्या हो जाती है डेंगू बुखार की या डेंगू की, वो कुछ समय तक तो इंतजार करते हैं कि
1: जी बिल्कुल
0: सामान्य बुखार हो सकता है और एक दो दिन बाद ठीक हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल,
0: या कुछ साधारण सी दवाएं लेकर के वो चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, लेकिन इसकी वजह से कभी कभी देरी हो जाती है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो पेशेंट के लिए या लोगों के लिए क्या सलाह है कि यदि वो डेंगू बुखार के शिकार हुए हैं तो कितनी शीघ्रता से इसका इलाज शुरू करना चाहिए?
1: देखिए सर, जैसे ही पेशेंट को लगे कि उसको बुखार है और बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई है तो तुरंत वो कुछ जांचें हैं, जैसे RJ2DS RNA, जो डबल स्टैंडर्ड RNA, एक एलिसा टेस्ट होता है, स्पेसिफिक टेस्ट है, और वैसे तो एक टेस्ट होता है प्लेटलेट काउंट, उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है इसके जो है लक्षण है, वायरल है
0: जी।
1: तो तुरंत जो है वो मरीज को इस तरह के चेकअप करा के और तुरंत जो है इसका उपचार लेना चाहिए, देरी होने से दिक्कत आ सकती है।
0: बुखार को हम समझ सकें, कैसे जांच के द्वारा हम पता कर लें, और फिर शुरुआती दौर में ही किसी भी चिकित्सक से इसका इलाज कराएं, और बचाव के उपाय यदि हम अपनाते हैं तो इस समस्या तक हम पहुंचने से बचेंगे और कोई प्रकार की किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। डॉक्टर आसिफ अली जी, आप हमारे कार्यक्रम आए और इससे संबंधित बेहतर जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।
2: डेंगू और चिकनगुनिया। अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर डॉक्टर आसिफ अली से की गई भेंट वार्ता। आपसे भेंट कर रहे थे डॉक्टर विनय प्रकाश वर्मा। इसी के साथ स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। आज रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम खेल दर्पण। इसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:45 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग लोक रंग। लोकगीतों का कार्यक्रम होगा 7:00। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार होंगी सपना दीक्षित। 7:31 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे 102.9 मॉर्निंग हिट्स। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 8:45 पर गौरव भारत देश के। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:25 पर। 9:30 पर हमारे केंद्र से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जाएगा जिसमें आज आप समात फरमाएंगे शेरी नशिस्त। इसमें शिरकत करेंगे जनाब एम मशकूल साजिद, जनाब फरमान हुसैन फरमान और जनाब हकीम अब्दुल माजिद। समय वक्त याद रखिएगा 9:30 पर उर्दू प्रोग्राम के तहत। 9:50 पर उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज राग रामकली में हम आपको सुनवाएंगे श्यामलाल से उनका शहनाई वादन। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे आपके अनुरोध पर 10:05 पर। 11:00 हम आपको सुनवाएंगे धरोहर के अंतर्गत धारावाहिक जिंदगी के आईने में मन भावन। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 11:30 पर। गीत आपके नाम फरमाइशी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:10 पर। 1:15 पर बहनों का कार्यक्रम होगा परिवार जगत। इसमें आज जीवन में अनुशासन इस विषय पर चर्चा प्रसारित की जाएगी। साथ ही रेडियो की तरंग परिवार के संग आकाशवाणी के 90 सालों के सफर पर यह विशेष कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा। साथ ही आंगनबाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको दी जाएगी और हेल्थ टिप्स भी होंगे। 2:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरा दौर। शाम 5:15 पर युवा दोस्तों का दैनिक कार्यक्रम होगा युववाणी। 6:20 पर किसान साथी सुन सकेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। इसमें आज चर्चा के अलावा धान की उन्नत प्रजातियां इस विषय पर डॉक्टर अमरजीत सिंह राठी से की गई भेंट वार्ता हम आपको सुनवाएंगे। आपसे भेंट करेंगे जसमेंद्र सिंह। 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम कानून और हम। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। आज हम आपको सुनवा रहे हैं इसकी 309वीं भाग संख्या
3: एपिसोड नंबर 309 309।

अंगद की बात सुन रावण को क्रोध हो आता है। सामने खड़ा बंदर बाली पुत्र है ये जानकर रावण सकुचाया, किंतु उसे कुलनाशक कहकर उसकी भर्त्सना करते हुए बोला, तू तो अपने कुलरूपी बांस के लिए अग्नि रूप पैदा हुआ है, अपने को एक तपस्वी का दूध बताते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? तेरा पिता कहाँ है और कैसा है वो? अंगद उत्तर देते हैं, कुछ दिनों बाद तुम स्वयं उनके पास जाकर उनका कुशलक्षेम पूछ लेना। सच है मैं कुल नाशक हूं और तुम कुल रक्षक हो, ऐसी बात तो अंधे और बधिर भी नहीं करते। तुम तो 10 शीश और 20 आंखों वाले हो। अंगद के वचन सुनकर रावण का क्रोध उबल पड़ता है, किंतु उसे अपने नीतिवान और धर्म पालक होने का भ्रम भी है, अतः अपने क्रोध पर काबू पाने का बड़प्पन दिखाता है। अंगद व्यंग्य करते हैं, तुम्हारी धर्मशीलता के बारे में मैंने भी सुना है। तुम्हारी धर्मशीलता का उदाहरण है कि तुमने पराई स्त्री का हरण कर लिया है। अपनी बहन के नाक कान कटे देख धर्म का विचार करके ही तो तुमने क्षमा कर दिया था। बड़े भाग हैं मेरे जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का 309वां भाग संख्या। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार थे भूपेंद्र सिंह, श्रीकांत पारगांवकर और संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः ह्यः राष्ट्रपति भवने आयोजिते नागरिक अलंकरण समारोहे 66 प्रमुखाग्रगण्य विभूतिभ्यः पद्म पुरस्कारान् प्रादात्। एतेषु द्वाभ्यां विभूतिभ्यां पद्म विभूषणम्, षड्भ्यः पद्म भूषणम्, सहैव 58 विभूतिभ्यः पद्मश्रीः प्रदत्ताः। कलाक्षेत्रे विशिष्ट योगदानार्थं सुप्रसिद्धः चलच्चित्र अभिनेता धर्मेन्द्र सिंह देओल महोदयः मृत्योपरान्तं पद्म विभूषण सम्मानेन अलंकृतः। अभिनेतुः भार्या हेमा मालिनी एतं पुरस्कारं स्वीकृतवती। प्रख्यातः भारतीय सारंगी वादकः डॉ. एन. राजम् अपि पद्म विभूषण सम्मानेन सुपूजितः। अस्मिन् अलंकरण समारोहे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मंत्री अमित शाहः, गजेन्द्र सिंह शेखावतः, एच.डी. कुमारस्वामी च उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य आरभ्य सिक्किम राज्यस्य त्रिदिवसात्मिकां यात्रां विधास्यति। सिक्किम प्रवासकाले सा विविधेषु कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति, अनेकानि स्थानानि च द्रक्ष्यति। राष्ट्रपति महोदया सायंकाले गंगटोक नगरे स्थिते नाइमनॉल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी इति संस्थां प्रति गमिष्यति। सिक्किम सर्वकारेण तस्याः स्वागताय विपुलाः प्रबन्धाः विहिताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अथ युगांडा देशेषु इबोला संक्रमणम् अंतर्राष्ट्रीय चिंतायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालत्वेन घोषितम्। एतदनन्तरं नगर विमानन महादेशालयेन विमान विपणीनां कृते एका मानक संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अत्रावधेयास्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्य रूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीडा, शिरोवेदना, कंठदाहः, वमनमित्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमान कर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्सा विभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् एकविंशतिदिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्टचिकित्सालयेभ्यः चिकित्सासाहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य यावत् मध्यप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, विदर्भक्षेत्रेषु उष्णस्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय सञ्चेतना प्रसारिता। विभागेन आगामी द्वित्री दिनेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्ण तरंगस्य पूर्व सूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड राज्येषु अपि भवितुं संभाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेहि देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्याम् आयुष मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः, प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे स्वास्थ्य संवर्धन संबद्धेषु प्रयासेषु च तथा च पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
0: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 7 बजे हैं, आइए अब आपको सुनवाते हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं सपना दीक्षित।
2: मेरा छोड़ दे

लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग इस समय आप आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से सुन रहे हैं। कलाकार हैं सपना दीक्षित।

0: सपना दीक्षित के गाए इसी लोकगीत के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: प्लास्टिक चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
3: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
2: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
3: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, ना क्षय होता है तुम्हारा और ना अपघटन।
4: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, 7:18 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।
5: दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
6: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
5: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
6: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
5: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
6: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
5: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
7: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों सहित देश भर के 66 लोगों को दिए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि प्रदेश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित 6 अन्य लोगों को मिला पद्मश्री पुरस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारागार विभाग और कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की। जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने का दिया निर्देश। जून माह से विकास खंडों में प्रस्तावित साप्ताहिक चौपाल के साथ किसान मेले लगाने पर दिया जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार, स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। और ग्राम पंचायतों के प्रशासक की भूमिका निभाएंगे निवर्तमान ग्राम प्रधान। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2000

0: 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वहीं वायलिन वादक और उत्तर प्रदेश से जुड़ी एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के 6 अन्य लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
1: उत्तर प्रदेश से 7 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें कला के क्षेत्र में डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, डॉक्टर केवल कृष्ण ककराल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्याम सुंदर को चिकित्सा, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि को पुरातत्व विज्ञान और प्रवीण कुमार को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पद्म पुरस्कार पाने वाली विभूतियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में कारागार विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक और सुधारात्मक गतिविधियों के माध्यम से कारागारों को नई पहचान दी जाए। उन्होंने ओपन जेल की परिकल्पना को उपयोगी बताते हुए विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। श्री योगी ने 75 वर्ष से अधिक आयु के कैदियों, असाध्य रोगों से ग्रस्त बंदियों, बच्चों के साथ जेल में रह रही महिला बंदियों तथा जमानत राशि जमा न कर पाने वाले कैदियों की सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेलों की सुरक्षा व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कल ही कृषि विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि खरीफ 2026 की सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं और किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और तकनीकी सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते मौसम और जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए दलहन, तिलहन और श्री अन्न की खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही सूखा संभावित क्षेत्रों के लिए अग्रिम कार्य योजना तैयार कर ली जाए और आवश्यकता पड़ने पर किसानों को वैकल्पिक फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाए। श्री योगी ने जून माह से सभी विकास खंडों में प्रस्तावित साप्ताहिक चौपालों के साथ किसान मेले के भी आयोजन के निर्देश दिए ताकि किसानों को योजनाओं, आधुनिक तकनीकों और प्रगतिशील खेती की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर कल चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय परीक्षा जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पी एस नरसिम्हा और आलोक आराध्य की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल आगरा पहुंचकर ताजमहल देखा। उनके साथ उनकी पत्नी और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। आगरा पहुंचने पर अमेरिकी विदेश मंत्री का स्वागत जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने किया। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने करीब 40 मिनट तक ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल भ्रमण के दौरान उन्होंने पत्नी के साथ डायना बेंच पर फोटो सेशन कराया। साथ ही गाइड से ताजमहल के इतिहास, निर्माण और पक्षीकारी के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने स्मारक की खूबसूरती की जमकर प्रशंसा की। श्री रूबियो ने विजिटर बुक पर इस इमारत की खूबसूरती देखने का अवसर दिए जाने पर आभार जताया। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: प्रदेश सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को नई ग्राम

0: पंचायतों के गठन तक अथवा अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार सभी जिलाधिकारियों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रशासकों को केवल सामान्य और नियमित कार्य करने की अनुमति होगी, उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। इस बीच प्रदेश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी आपात स्थिति में या विशेष परिस्थितियों में कोई नीतिगत निर्णय लेना आवश्यक हो तो प्रस्ताव पर जिलाधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी। केंद्र सरकार ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। सरकार के प्रयासों से देश में उर्वरक का भंडार भी बना हुआ है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर कल नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है।
0: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आज वहां विशेष अनुष्ठान होंगे। एक रिपोर्ट।
2: पिछले वर्ष गंगा दशहरा के मौके पर शेषावतार व परकोटे में बने 6 मंदिरों की स्थापना हुई थी जिसकी पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस मौके पर राम मंदिर यज्ञशाला में विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा। साथ ही भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र पहनाए जाएंगे और 56 भोग लगाए जाएंगे। इस अवसर पर वाल्मीकि रामायण का पारायण भी होगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: कल पूरे प्रदेश में दिनभर की तेज धूप, भीषण गर्मी और लू के बीच रात में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। प्रदेश के गोरखपुर और अयोध्या सहित कई अन्य जिलों में बीती रात तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत दे दी। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज भी लू चलने की आशंका बनी हुई है। प्रचंड गर्मी और हीट स्ट्रोक के मामलों को देखते हुए अलग अलग जिलों में स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों सहित देशभर के 66 लोगों को दिए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि प्रदेश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित 6 अन्य लोगों को मिला पद्मश्री पुरस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारागार विभाग और कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की। जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने का दिया निर्देश। जून माह से विकास खंडों में प्रस्तावित साप्ताहिक चौपाल के साथ किसान मेले लगाने पर दिया जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार। स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। और ग्राम पंचायतों के प्रशासक की भूमिका निभाएंगे निवर्तमान ग्राम प्रधान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

प्रातःकाल की बेला में हर एक नया दिन उम्मीदों का दीप जलाता है। सभी सुनने वालों को सुनील सक्सेना का नमस्कार। प्रातःकाल की बेला अपने आप में प्रकृति का सबसे सुंदर उपहार होती है। जब इस धरती पर सूरज की हल्की लालिमा फैलती है, पक्षियों की मधुर आवाज इस वातावरण को संगीत से भर देती है। मंद मंद बहती हवा मन को नई ऊर्जा से सराबोर कर देती है। तब मानो ऐसा लगता है कि मानो पूरी सृष्टि, पूरी कायनात एक नए जीवन का स्वागत कर रही हो। सुबह का समय केवल दिन की शुरुआत नहीं बल्कि अच्छी सोच, शांति और आनंद का संदेश भी देती है। श्रोताओं, आज जब सुबह हम स्टूडियो आ रहे थे तो बसों में कुछ लोग गंगा मैया के जयकारों के साथ गंगा स्नान के लिए निकल रहे थे। वैसे तो गंगा दशहरे का पर्व कल भी मनाया गया, लेकिन श्रद्धालु आज भी इसको मना रहे हैं। सुबह सवेरे गंगा तट पर पहुंचकर श्रद्धालु जब हर रात स्नान करते हैं तब वातावरण भक्ति और आध्यात्मिकता से भर उठता है। उगते सूरज की किरणें जब गंगा की लहरों पर पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं प्रकृति स्वर्णिम आभा में नहा गई हो। सुबह की ताजगी और गंगा की पवित्रता मिलकर जीवन में नई चेतना, उमंग और सकारात्मक सोच का समावेश कर देती है। गंगा में उठती हुई लहरें मन को सराबोर कर देती हैं और यह एहसास दिलाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं।

की आत्मा यदि किसी धारा में प्रवाहित होती दिखाई देती है तो वो है माँ गंगा। और भारत की आवाज यदि किसी माध्यम से घर घर तक पहुंची है तो वो है आपकी अपनी आकाशवाणी। एक ओर गंगा मैया करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और सभ्यता की जीवन रेखा है, तो दूसरी ओर आकाशवाणी ने 9 दशकों से जनमानस की भावनाओं, विचारों और संस्कारों को अपनी मधुर आवाज में परोकर पूरे देश तक पहुंचाया है। आकाशवाणी ने देश के कोने कोने तक अपनी आवाज पहुंचाकर श्रोताओं के जीवन में एक विशेष स्थान बनाया है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय आकाशवाणी अपने भी बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

0: आकाशवाणी और श्रोताओं का संबंध अत्यंत ही विश्वासपूर्ण रहा है। श्रोताओं ने भी आकाशवाणी को भरपूर प्रेम दिया। वो पत्र लिखकर या फिर ईमेल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते हैं, फरमाइशी गीतों की मांग करते हैं और कार्यक्रमों की सराहना भी करते हैं। एक समय ऐसा था जब रेडियो के सामने पूरा परिवार एक साथ बैठकर कार्यक्रम सुना करता था। ये केवल सुनने का माध्यम नहीं बल्कि श्रोताओं और समाज को जोड़ने वाला एक सूत्र था। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इसी क्रम में हमारे बीच में आज आकाशवाणी के एक बहुत पुराने श्रोता हैं। आइए सुनते हैं उनके कुछ विचार।
1: आवाज की दुनिया के

श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, आज 26 मई है। आज के दिन इतिहास में बहुत सी घटनाएं घटित हुईं। कौन सी हैं वो प्रमुख घटनाएं, आइए आपको बताते हैं। ब्रिटेन में पेट्रोल खरीदने पर लगी सीमा को वर्ष 1950 में खत्म कर दिया गया। इससे पहले हर व्यक्ति को पेट्रोल खरीदने के लिए राशन कार्ड दिया जाता था। विज्ञान जगत में 2006 में एक शोध के मुताबिक एड्स का विषाणु कैमरून में पाए जाने वाले चिंपैंजियों से फैला था। भारत और जर्मनी के बीच वर्ष 2007 में रक्षा समझौता संपन्न करना आज ही के दिन संपन्न हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाज व खाद्य तेलों की स्टॉक सीमा तय करने के संबंध में अधिसूचना आज ही के दिन यानी कि 26 मई 2008 में जारी की थी। 26 मई 1969 को अमरीकी अंतरिक्षयान अपोलो 10 के अंतरिक्ष यात्री 8 दिनों के सकल चंद्र परीक्षण के बाद सुरक्षित पृथ्वी पर लौटे थे। वर्ष 1679 में ब्रिटेन की संसद ने बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम पारित किया, जो मनुष्य की निजी स्वतंत्रता का पहला मानवाधिकार कानून माना जाता है। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बात करते हैं उन प्रमुख हस्तियों की जिनका आज जन्मदिन है। वर्ष 1983 में भारत के दिग्गज पहलवान और ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1906 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पहले निदेशक बेंजामिन पिंडीपाल का जन्म 26 मई 1906 को हुआ था। वर्ष 1945 में भारतीय राजनीतिक बिलासराव देशमुख का जन्म 26 मई को हुआ, जिन्होंने महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में दो बार कार्य किया। बात करें उन महानुभावों की जो आज के दिन दुनिया को अलविदा कह गए। केपीएस गिल का निधन वर्ष 2017 में आज ही के दिन हुआ। वो पंजाब के दो बार पुलिस महानिदेशक रहे थे। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार, गीतकार, समीक्षक और राजनीतिक श्रीकांत वर्मा का निधन भी आज ही के दिन यानी कि 26 मई 1986 में हुआ था। श्रोताओं, ये थी इतिहास से जुड़ी हुई कुछ जानकारी और अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक।

0: दी ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दिखा हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग
2: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है
4: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
2: आई नो ना
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
6: श्रोताओं जैसा कि आप जानते हैं इस समय गर्मी अपने नौतपा केवल गर्मी का नाम नहीं बल्कि प्रकृति के उस रूप का परिचय है जिसमें सूर्य अपनी प्रचंडता के साथ धरती को तपाता है। ज्येष्ठ मास के आने वाले ये नौ दिन मानो आग बरसाते हैं। तेज धूप, गर्म हवाएं, तपती दोपहरी हर किसी को छांव और ठंडक की तलाश में लगा देती हैं। लेकिन प्रकृति का ये कठोर रूप भी अपने भीतर एक गहरा संदेश छिपाए रहता है। कहा जाता है कि नौतपा जितना अच्छा तपेगा वर्षा उतनी ही अच्छी होगी। खेतों को मिट्टी पेड़ पौधे और वातावरण इस तपन को सहकर आने वाली बारिश के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। लेकिन हमारी आपसे गुजारिश ये है कि इस समय गर्मी ज़्यादा पड़ रही है दोपहर के समय अगर ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें और घर से अगर निकलते भी हैं तो पानी पी करके मौसमी फलों का सेवन करके अवश्य जाएं क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे स्वस्थ रहेंगे अच्छे तरीके से संपन्न हो सकेंगी।

0: गर्मी बहुत पड़ रही है साहब, अपना भी ध्यान रखिए और परिवार के सदस्यों का भी ध्यान रखिए, नहीं तो खामखा का खर्चा आपका बढ़ सकता है। आज सुबह सवेरे कार्यक्रम में हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं, 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
3: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
6: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
3: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
3: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
8: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
9: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
3: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है, हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है, जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61 करोड़ 75 लाख अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
10: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए, प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की, तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्तो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
3: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़

0: Ayushetti, Kidambi Srikanth and Ichis Pranoy are also set to feature in the tournament. In women's singles, PV Sindhu will begin her campaign against Indonesia's Putri Kusuma Vardhani, while Unnati Huda will face Japanese shuttler Tomoka Miyazaki, and Malvika Bansol will be up against Chinese Taipei's Lin Xiangti. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
1: Thank you, Anuja. Hindustan Times and all the dailies have covered the Quad ministers' meet in the national capital amid trade and energy concerns, aiming to keep the Indo-Pacific free, open and secure. The price rise of fuel again grabs the headlines in all the dailies today. Oil shock, petrol crosses 102 rupee is a top front page headline in the Pioneer. Defending the Prime Minister's austerity push, Finance Minister is quoted by the Statesman saying, Indian economy is resilient, but West Asia crisis exerting pressure on Forex. The Hindu writes about a two-judge bench issuing notice to the Union Ministry of Education, NTA and others on pleas to replace on or fundamentally restructure the exam body and make it answerable to Parliament. The editorial in the Tribune talks about renewable energy generation growing by leaps and bounds and accounting for about a quarter of electricity production. Under the headline, Time to Stop Slipping on Oil, the paper says how renewable energy can make India resilient to oil price shocks. The Indian Express states, live-in rules, polygamy ban as Assam introduces uniform civil code bill. With Trump administration's new policy, 7 lakh green card seekers left US in state of anxiety, writes Economic Times. City swelters, warmest May night in 14 years, says the Times of India. And finally, the Tribune cites Chhattisgarh government turns former Naxal-hit areas into tourist hubs, with tribal culture helping the communities develop a sense of ownership while generating income. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a three-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद, पहले इस वक्त की खास खास खबरें। क्वाड मुल्कों के उजराए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में होने वाली है। सदरे जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के तीन दिन के दौरे पर रहेंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी की वजह से इसके रुक जाने के बाद से वहां फंसे हुए 300 से ज्यादा सयाहों को बचा लिया गया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल ने आलमी सेहत तंजीम की जानिब से इबोला वबा को सेहत इमरजेंसी करार दिए जाने के बाद एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। गोवा के मारगांव में ख्वातीन की सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीव को 11 गोल से करारी शिकस्त दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड मुल्कों के उजराए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेंगे। इसमें ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा पेनी ओंग, जापान के वजीर खारजा तोशीमित्सु मोतेगी और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो शिरकत करेंगे। ये उजरा मुख्तलिफ तरजीही शोबों में क्वाड इश्तराक को आगे ले जाने पर तबादले ख्याल करेंगे, मौजूदा क्वाड इकदामात की पेशरफ्त का जायजा लेंगे और भारत बहरुल काहिल खित्ते के हालात व वाकयात, नीज बाहमी दिलचस्पी के दीगर बैनर

0: मगरबी एशिया का बहरान भी जारी है। भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर मुश्तमिल क्वाड ग्रुप भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमनो सलामती और इस्तेहकाम पर तवज्जो मरकूज करते हुए एक कलीदी ग्रुप के तौर पर उभरा है। भारत क्वाड के मौजूदा सदरनशीं होने के नाते इसकी मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। क्वाड के मुल्क आलमी सतह पर फलाह बहबूद के लिए एक ताकत के तौर पर काम करने और खुले, आजाद और जामे भारत बहरुल काहिल खित्ते की हिमायत के तई अहद के साथ यकजा हो रहे हैं। क्वाड ने एक मुसबत और अमली एजेंडा इख्तियार किया है जिसमें सेहत की यकीनी फराहमी, आबो हवा की तब्दीली, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों, नीज बहरी निजाम को मुस्तहकम बनाने जैसे मौजूदा मामलात और चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज की गई है। दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी और कई मुकामात का दौरा करेंगी। सिक्किम सरकार ने उनका इस्तकबाल करने के लिए वसी इंतजाम किए हैं। सदर जमहूरिया शाम को गंगटोक में तिब्बती उलूम के नामग्याल इदारे में जाएंगी। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू कल नाथुला पास का दौरा करेंगी, जहां वो तैनात सिपाहियों के साथ गुफ्तगू करेंगी। कल ही वो गंगटोक में सिक्किम यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद तकरीब में शिरकत करेंगी। इस मौके पर तकरीबन 14,000 डिग्रियां पेश की जाएंगी। अपने दौरे के आखिरी दिन मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में एक तकरीब में सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के पुलिस परचम से सरफराज करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मुल्क के सरहदी इलाकों का दौरा करेंगे और सिक्योरिटी से मुतालिक मीटिंगें करेंगे। जनाब अमित शाह कल राजस्थान में बीकानेर पहुंचे। वजीर दाखिला आज सुबह बीएसएफ की सांचू सरहदी चौकी पर जाएंगे, जहां वो तैनात सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकारों से गुफ्तगू करेंगे और उनके लिए बहबूद की स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे। दोपहर को जनाब अमित शाह बीकानेर में सरहदी खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर में मशहूर सियाहती मुकाम गुलमर्ग में बड़ी तकनीकी खराबी की वजह से गोंडोला रोपवे के रुक जाने के बाद से केबिन में फंसे हुए सभी सयाहों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। हुकाम ने बताया है कि केबल कार के 65 केबिन्स के अंदर 300 से ज्यादा सयाह फंसकर रह गए थे, जिनमें कुछ जमीन से तकरीबन 500 फीट की बुलंदी पर केबिन में मौजूद थे, जिससे ख्वातीन और बच्चों समेत सयाहों में बेचैनी फैल गई। फौरन ही इमरजेंसी इकदाम किए गए। SDRF, NDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज की चनार कोर और मुकामी इंतजामिया की टीमों ने मिलकर बचाव और इमदादी कार्रवाई अंजाम दी, जो 7 घंटे तक चली। सभी मुसाफिरों को बहिफाजत उतार लिया गया और किसी को कोई चोट नहीं आई। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने तकनीकी खराबी की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात का ऐलान किया है और कहा है कि किसी तरह की कोताही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में डोरीमल इलाके के घने जंगलात में छुपे हुए मुश्तबह इंतहा पसंदों का पता लगाने के लिए तलाश की कार्रवाई आज चौथे दिन भी जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तसर फायरिंग के बाद दहशतगर्दों के एक ठिकाने का पता लगाया है। हफ्ते के रोज वहां दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान तसादुम शुरू हुआ था। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने कांगो और युगेंडा में इबोला बीमारी फैलने को आलमी सेहत तंजीम की जानिब से बैन अलाक्वामी तशवीश की सेहत आम्मा से मुतालिक इमरजेंसी करार दिए जाने के तनाजुर में एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। DGCA ने कहा है कि युगेंडा और कांगो के लिए परवाजें चलाने वाली फिजाई कंपनियों को मुसाफिरों के उतरने से पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लाजमी तौर पर दाखिल करने और उन्हें वसूल करने को यकीनी बनाना होगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: DGCA ने फजाई कंपनियों के लिए ये लाजमी बना दिया है कि वो परवाजों के दौरान सेहत से मुतालिक मखसूस ऐलान नशर करें ताकि मुमकिन एबोला केसों की जल्द निशानदेही हो सके और इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। मुसाफिरों से कहा गया है कि वो बुखार, कमजोरी, दर्द होने, सर में दर्द, गले में खराश और कह होने या खून बहने जैसी अलामतों के बारे में हवाई जहाज के अमले के अहलकारों के साथ साथ इमिग्रेशन या तिब्बी हुक्काम को पहुंचने पर इसकी इत्तला बिला ताखीर दें। DGCA ने कहा है कि

0: अगर भारत पहुंचने के 21 दिन के अंदर इस तरह की अलामतें जाहिर होती हैं तो मुसाफिरों को मखसूस अस्पतालों से तिब्बी इमदाद हासिल करनी चाहिए और हवाई अड्डे के सेहत हुक्काम को मुत्तला करना चाहिए। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत 83 रुपये 9 पैसे फी किलोग्राम हो गई है, जिसका इतलाक आज सुबह 6 बजे से हो गया है। पंजाब में म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। रियासत में 8 म्यूनिसिपल कारपोरेशनों, 75 म्यूनिसिपल काउंसिलों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: पंजाब के साल 2027 के असेंबली इंतखाबात से पहले इन म्यूनिसिपल इंतखाबात को एक अहम सियासी इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। रियासत में हुक्मरां आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम बड़ी सियासी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। रियासती इंतखाबी कमीशन के मुताबिक रियासत भर के कुल 1896 वार्ड से 7555 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। सख्त पुलिस इंतजाम के तहत वोट डाले जा रहे हैं। यहां 32,000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। वोटरों की शिरकत बढ़ाने के लिए पंजाब हुकूमत ने एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। वोटों की गिनती 29 मई बरोज जुमा की जाएगी। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है। कई मुकामात पर दर्जे हरारत 43 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के दरमियान चल रहा है। बुंदेलखंड खित्ता सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। वहां करीब करीब हर जिले में पारा 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। जुनूब मगरबी मानसून के आज केरलम पहुंचने का इम्कान है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरलम पहुंचता है। मौसमियात महकमे ने केरलम के 14 में से 4 जिलों में कहीं कहीं शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। भारत समेत दुनिया भर के लाखों आजमीन आज सऊदी अरब में फरीज हज अदा कर रहे हैं। कल मनासी के हज के आगाज के मौके पर आजमीन हज मीना में जमा हुए और फजर की नमाज अदा करने के बाद आज वो तलबिया का विर्द करते हुए मैदान अराफात जा रहे हैं, जहां हज का रुकन आजम अदा किया जाएगा। ये आजमीन वहां तौबा इस्तगफार में दिन गुजारेंगे। आजमीन हज मस्जिद निमरा में खुतबे हज सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा रवाना होने से पहले जोहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे। हुज्जाज इकराम कल सुबह मिना वापस आ जाएंगे, जहां वो शैतान को कंकरियां मारेंगे और जानवरों की कुर्बानी पेश करेंगे। अमरीकी फौज ने ईरान के साथ जंगबंदी के तनाजुर में आबनाए हुरमुज के नजदीक ईरान के मिजाइल लॉन्च करने के ठिकानों और कश्तियों को निशाना बनाते हुए अपने दिफा में हमले किए हैं। अमरीका की सेंट्रल कमान के तर्जुमान तिमोथी हॉकिंस ने कहा कि इन हमलों में ईरान की उन कश्तियों को निशाना बनाया गया जिनके जरिए वहां बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिशें की जा रही थीं। उसने ये भी कहा कि अमरीकी फोर्सेज जंगबंदी के दौरान अपने फौजियों का दिफा करते हुए जब्तो तहमुल से काम लेती रही हैं। इस हमले के चंद घंटे कबल अमरीका ने ईरान के साथ जंगबंदी मुजाकरात में पेशरफ्त होने की बात कही थी। ईरान के सदर मसूद पेजिश्कियान ने मुल्क में इंटरनेट खिदमात बहाल करने का हुक्म दिया है। ईरानी हुक्काम ने 87 से ज्यादा दिन के लिए मुल्क में इंटरनेट खिदमात पर तकरीबन मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी थी। गोवा के मारगांव में खवातीन की सैफ चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीप को 11 गोल से करारी शिकस्त दी। मालदीप की टीम कोई भी गोल नहीं कर सकी। अविका सिंह ने 4 गोल किए, जबकि प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल किए। भारत अब इतवार को अपने अगले मैच में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश का सामना करेगा। भारत खवातीन की सैफ चैंपियनशिप 5 मरतबा जीत चुका है। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मैच में जीतने वाली टीम सीधे आईपीएल के फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 खेलने का मौका मिलेगा। कल शाम 7:30 बजे मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में इलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसमें हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम क्वालिफायर 2 में पहुंच जाएगी। भारत के सरकर्दा खिलाड़ी लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में भारत की क्यादत करेंगे। दीगर भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी, किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय भी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
0: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता किए। अदाकार धर्मेंद्र को बाद अज मर्ग पद्म विभूषण से नवाजा गया। इस खबर को कई अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, मनासी के हज का बाकायदा आगाज, रुकन आजम वकूफ अरफा आज। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो आगरा पहुंचे और अपनी अहलिया के साथ ताजमहल का दीदार किया। इसी अखबार की एक और अहम सुर्खी है, वजीर खारजा डॉक्टर एजे शंकर ने अफ्रीका डे पर मुबारकबाद पेश की, शराकतदारी को मजबूत बनाने के अजम का इजहार किया। इसके अलावा आज के अखबारात की अहम बैन अलाक्वामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं, ईरान से मुआहदा न हुआ तो जंग दोबारा शुरू होगी, सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, रूस का कीव पर फिर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, 4 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी।
1: खास खास खबरें एक बार फिर, क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में होने वाली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी की वजह से इसके रुक जाने के बाद से वहां फंसे हुए 300 से ज्यादा सयाहों को बचा लिया गया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने आलमी सेहत तंजीम की जानिब से इबोला वबा को सेहत इमरजेंसी करार दिए जाने के बाद एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज एवं एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 8:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स।

कार्यक्रम का पहला गीत मनाली चतुर्वेदी और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम है एक्टिंग का भूत।

कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह, अमित त्रिवेदी और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम है आजाद।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। इस समय आप आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत सचिन जिगर, जोनिता गांधी और शाश्वत सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है आंख मिचोली।

आपने अभी विशाल मिश्रा और साथियों को सुना। फिल्म थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज़ में। फिल्म का नाम है बैड बॉय।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
2: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हाथरस और रायबरेली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश कुमार सिंघल का।
3: जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण कार्य की शुरुआत से हाथरस में हो गई है। इस अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी आवास से किया गया, जहां पर्यवेक्षक और प्रांगणकों ने जिलाधिकारी अतुल बस के आवास का सूचीकरण करते हुए मकान संख्या अंकित की। प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले में मकान सूचीकरण जनगणना कार्य के लिए 3607 प्रांगणक और 472 पर्यवेक्षक तैनात किए गए। यह अभियान 22 मई से 20 जून तक चलाया जाएगा, जिसके तहत जिले के सभी मकानों और परिवारों का विवरण दर्ज किया जाएगा। जिले में पुलिस लाइन ऑडिटोरियल में जिले की प्रभारी मंत्री और महिला कल्याण बाल विकास सेवा ये पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित हुए। इस मौके पर BLS इंटरनेशनल स्कूल की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया और BLS इंटरनेशनल स्कूल की छात्राओं ने नारी सशक्तिकरण पर आधारित नाटक कृष्ण लीला पर आधारित मनमोहक नृत्य व छात्र छात्राओं ने नारी शक्ति पर आधारित नुक्कड़ नाटक पर प्रस्तुति दी। प्रभारी मंत्री ने नवनियुक्त 225 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर बधाई और शुभकामनाओं के साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विकास भवन सभागार में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग श्याम बिहारी गुप्ता की अध्यक्षता एवं सदस्य उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग रमाकांत उपाध्याय की उपस्थिति में गौ संरक्षण एवं अनुश्रवण समिति की बैठक अधिकारियों पदाधिकारियों के साथ करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि गौवंश संरक्षण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। जनपद में सिंचाई व्यवस्थाओं को सुदृढ़ सुचारू एवं प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से सिंचाई विभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त खंडों के कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में करते हुए जिलाधिकारी अतुल बस ने संबंधित अधिकारियों को कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में नहरों नालों एवं नदियों की वर्तमान स्थिति, उनकी सफाई मरम्मत, जल प्रवाह अधिष्ठान में कार्यरत कर्मियों की स्थिति तथा नगर क्षेत्रों में नहरों नदियों में गिरने वाले दूषित जल की समस्या पर गहनता से विचार करने के साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समस्त आवश्यक कार्यों व टेंडर प्रक्रियाओं को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार से समस्या का सामना न करना पड़े। जनपद में औद्योगिक विकास को गति देने एवं उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक करते हुए जिलाधिकारी अतुल बस ने उद्यमियों की समस्या का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता पर समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करने को कहा। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योग बंधु समिति केवल औपचारिक मंच नहीं बल्कि उद्यमियों और प्रशासन के बीच प्रभावी संवाद एवं समाधान का सशक्त माध्यम है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल बस ने EVM BVPAT वेयर हाउस के मासिक निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लिया। EVM BVPAT वेयर हाउस के मासिक निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारियों ने CCTV कैमरे, सशस्त्र बलों की तैनाती, अग्निशमन उपकरणों आदि व्यवस्थाओं को निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जल निगम ग्रामीण के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में मुख्य विकास अधिकारी PN दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि ग्रामीण पेयजल योजना का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। उन्होंने नामित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति, पूर्ण या अपूर्ण कार्यों को अनारंभ, परियोजना की बिंदुवार समीक्षा की। विश्व हिंदू परिषद जनपद हाथरस द्वारा तालाब चौराहे स्थित कार्यक्रम स्थल पर 101 पानी की टंकियों का लोकार्पण, कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी अतुल बस, पुलिस अधीक्षक चंद्रजीव नाथ सिन्हा, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने कहा, भीषण गर्मी के दृष्टिगत पशु पंछियों एवं गौवंशों के लिए पेयजल की व्यवस्था करना एक पूर्ण एवं मानवीय कार्य है। जल संरक्षण एवं जीव जंतुओं की सेवा के उद्देश्य स्थापित की जा रही पानी की टंकियां नान समाज में सेवा संवेदनशीलता ये माननीय मूल्यों को का संदेश देंगी।
2: हाथरस जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है पंकज सिंह का।
4: जिलाधिकारी सरनीत कौर बोगा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में सुचारू एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा आंधी तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुई विद्युत लाइनों को रिस्टोर कर विद्युत आपूर्ति बहाल किए जाने की प्रगति की तहसीलवार समीक्षा प्रस्तुत की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन क्षेत्रों में आंधी तूफान के कारण विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं वहां मरम्मत कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए विद्युत विभाग पूरी तरह तत्परता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील महाराजगंज में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनसामान्य की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान किया जाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके क्रम में तहसील व थानों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसमें स्थानीय नागरिक उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी जनता की इन शिकायतों का निस्तारण त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में यदि कोई समस्या है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए। मंत्री खाद्य एवं रसद विभाग तथा नागरिक आपूर्ति उत्तर प्रदेश डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने बीते 24 मई को एनटीपीसी उजाहर में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा तथा नागरिक आपूर्ति विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री जी ने जनपद में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, राशन कार्ड सत्यापन, पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र लाभार्थियों को शासन की योजनाओं का लाभ पारदर्शिता एवं सुगमता के साथ उपलब्ध कराया जाए। मंत्री जी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि गरीब एवं जरूरतमंद लोगों तक खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो तथा किसी भी स्तर पर अनियमितता एवं शिकायत की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। जनपद में बढ़ रहे तापमान एवं भीषण गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी सरनीत कौर बोगा द्वारा जनहित में हीट वेव लू से बचाव हेतु एडवाइजरी जारी की गई। जिलाधिकारी ने आम जन से सतर्कता बरतने तथा आवश्यक सावधानियां अपनाने की अपील की है। जिलाधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार लगातार कई दिनों तक सामान्य से अधिक तापमान रहने पर हीट वेव की स्थिति उत्पन्न होती है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत गंभीर एवं खतरनाक साबित हो सकती है। विशेष रूप से वृद्धजन, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं तथा हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा एवं अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खुले में कार्य करने वाले श्रमिकों एवं कामगारों को सिर एवं शरीर को गीले कपड़े से ढककर रखने तथा समय समय पर छायादार स्थान पर विश्राम करने के निर्देश दिए गए हैं। एडवाइजरी में दोपहर 12 से 3 तक अनावश्यक रूप से धूप में बाहर निकलने से बचने की विशेष अपील की गई है। जिलाधिकारी सरनीत कौर बोकर ने बताया कि भारत जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण में जनपद रायबरेली में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य विधिवत रूप से प्रारंभ कर दिया गया है। इस अभियान के तहत नियुक्त प्रगणक एवं सुपरवाइजर घर घर जाकर मकानों का सर्वेक्षण करते हुए सूचीकरण और गणना का कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने इस कार्य को गंभीरता एवं 100% सफलता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी मकान गणना से वंचित न रह जाए। जिला प्रशासन के अनुसार जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से जनसंख्या, आवासीय स्थिति, संसाधनों एवं सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े संकलित किए जाते हैं। इन आंकड़ों का उपयोग भविष्य की योजनाओं, सरकारी नीतियों तथा जनहितकारी कार्यक्रमों के निर्माण में किया जाता है। ऐसे में मकान सूचीकरण एवं गणना कार्य की सटीकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनपद में नियुक्त प्रगणक और सुपरवाइजरों ने आज से अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में पहुंचकर मकानों का सत्यापन, सूचीकरण एवं गणना का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस दौरान टीम द्वारा प्रत्येक मकान की स्थिति, उपयोग, संरचना सहित निर्धारित प्रारूप के अनुसार आवश्यक विवरण संकलित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सर्वेक्षण के दौरान कोई भी मकान छूटने न पाए, प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित एवं समयबद्ध तरीके से संपन्न हो। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि
5: जनगणना 2027 है, उसका द्वितीय चरण हुआ है, जिसमें जो हमारे एन्यूमरेटर हैं वो डोर टू डोर जाकर हाउस की लिस्टिंग करेंगे। हाउस की लिस्टिंग यानी घर पर नंबर डालेंगे और उनको ब्लॉक के रूप में संगठित करेंगे, जिससे कि जब वो फिर से घर में जाए तो वो प्रति घर जा पाए और कोई भी घर छूटने ना पाए। सभी से अनुरोध है कि इनके साथ सहयोग करें और जो इनके द्वारा दिए गए नंबर वगैरह हैं उसको मिटाएं ना, उसको मिटाना एक अपराध भी है।
4: जिलाधिकारी सरनीत कौर रोका ने बीते 21 मई को विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति का जायजा लेने हेतु निर्माणाधीन मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय बेला भेला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, निर्धारित मानकों एवं समयबद्ध प्रगति की जानकारी संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों से प्राप्त की।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जिले की हलचल। इसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे थे। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 9:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरव भारत देश के। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं वैज्ञानिक सीवी रमन की गौरव गाथा।
1: जब प्रकाश एक पारदर्शी सामग्री से होकर गुजरता है तो कुछ प्रकाश अपनी दिशा और ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इस घटना को रमन प्रभाव यानी कि रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसकी खोज भारत के एक महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने की थी। सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था, जिन्होंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। उनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। वे एक उत्कृष्ट छात्र थे और उनकी शिक्षा में विशेष रुचि थी। रमन ने अपने करियर की शुरुआत सरकारी कॉलेज में भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में की थी। बाद में उन्होंने कोलकाता के भारतीय विज्ञान संस्थान में काम किया। उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रमन प्रभाव की खोज विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। इस प्रभाव के कारण कई आधुनिक वैज्ञानिक और औद्योगिक उपकरण विकसित किए गए। उनके अनुसंधान ने न केवल भौतिकी बल्कि रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी खोजों ने प्रकाशिकी और परमाणु भौतिकी के क्षेत्र में नए मार्ग खोले। रमन की पूरी शिक्षा दीक्षा भारत में ही हुई। स्वयं 200 रुपये का स्पेक्ट्रम मापी अभिकल्पित कर केवल लगन, परिश्रम और एकनिष्ठ अनुसंधान के बल पर इतनी महत्वपूर्ण खोज कर सके। 60 से ज्यादा विभिन्न द्रव्यों पर प्रयोग दोहराने के बाद यह सुनिश्चित हो गया कि सभी द्रव्य रमन स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं। यह एक अद्भुत प्रभाव है। इसकी खोज के एक दशक बाद ही 2000 रासायनिक यौगिकों की आंतरिक संरचना निश्चित की गई थी। रमन प्रभाव के अनुसार प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब परिवर्तन होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से निकलता है। यह माध्यम ठोस, द्रव्य और गैसीय कुछ भी हो सकता है। यह घटना तब घटती है जब माध्यम के अणु प्रकाश ऊर्जा के कणों को प्रकीर्णित कर देते हैं। यह उसी तरह होता है जैसे कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर गोटियों को छितरा देता है। फोटोन की ऊर्जा या प्रकाश की प्रकृति में होने वाले अति सूक्ष्म परिवर्तनों से माध्यम की आंतरिक अणु संरचना का पता लगाया जा सकता है। सीवी रमन ने भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके अनुसंधान और खोजों के कारण भारतीय विज्ञान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। रमन का निधन 21 नवंबर 1970 को हुआ, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य और उनकी खोजें आज भी वैज्ञानिक समुदाय के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। उनकी उपलब्धियों और योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।
0: अभी आप सुन रहे थे वैज्ञानिक सीवी रमन की गौरव गाथा। इसी के साथ गौरव भारत देश के ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 यानी 90 जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।
4: गूंजती है हर दिल में एक धुन पुरानी सी, कल की यादें।
5: आपके बेहद पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम के साथ आपका मेजबान फरीदुल्ला खान आकाशवाणी रामपुर के मरकज से हाजिर है। सलाम मोहब्बत कबूल कीजिए, आप सबका तह दिल से खैर मकदम करते हैं। सामिन बज्म, ये हमारे लिए खुशनसीबी है, आज हम बात कर रहे हैं रेडियो की बेमिसाल 90 साल। आज हमारे लिए एक और खुशनसीबी की बात यह है कि हमारे स्टूडियो में रामपुर की मौजिज शख्सियत और रामपुर के पूरे रोहिलखंड और पूरा उत्तर प्रदेश में एक जानी मानी शख्सियत के मालिक। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम आपको आपका तारुफ कराना चाहेंगे। आज हमारे साथ आकाशवाणी रामपुर के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जहीर अली सिद्दीकी साहब। डॉक्टर जहीर अली सिद्दीकी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में समीम कल्ब से खैर मकदम है।
6: शुक्रिया। मैं ये अर्ज करूं अपनी बात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए
5: जी,
6: कि हमारे वहाँ रियासत में जो नवाबीन रहे हैं
5: जी जी,
6: उन नवाबीन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने जब कभी भी कोई प्रोग्राम किया या कोई नई ईजाद उन्होंने की या कोई चीज़ यहाँ कायम की
5: जी,
6: तो उन्होंने अपनी उस डिग्निटी और उस नवाबी शान को भी कायम रखा और उसमें असर उनका और पैसा और वक्त जो कुछ भी सर्फ हुआ उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और बहुत बेदरेक काम किया। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरी यह खुशकिस्मती है कि मैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर के खानवादे से हूँ
5: जी, बिल्कुल
6: मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नवासों में हूँ। यह दूसरी मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे जो उस्ताद मोहतरम थे डॉक्टर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद, जो बेताज बादशाह थे मुशायरों के
5: जी, बिल्कुल
6: ये बहुत बड़ी बात है जी, मैं उनके शागिर्दों में और ये खुशकिस्मती है कि ऐसे शागिर्दों में कि मैं उनके फैमिली मेंबर की हैसियत से उन्हीं के घर

0: ये आप हमें सौंप कर जाएंगे। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया, और उन्होंने जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस
1: जी
0: में मोहम्मद अली गए तो उन्होंने कहा, मैं यहाँ पर भीख मांगने नहीं आया हूँ,
1: क्या बात है।
0: मेरे सामने दो चीज़ें हैं, या तो मौत और या आज़ादी का परवाना।
1: आजादी का परवाना।
0: मैं उसी वक्त अपने मुल्क को वापस जाऊंगा जब मेरे हाथ में आज़ादी का परवाना होगा।
1: क्या जज्बा था।
0: ये यही हुआ कि मौलाना मोहम्मद अली जब वहाँ से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उन्हें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आज़ादी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने मौत को सीने से लगा लिया।
1: क्या
0: ये
1: बात
0: बहुत बड़ी शान की बात है।
1: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि ऐसे मुजाहिद आज़ादी यहाँ पर पैदा हुए और उनकी परवरिश हुई बी अम्मा जो थीं, उनकी वालदा मोहतरमा, उनके हाथों से और उनके ही तेरे सरपरस्ती उन्होंने परवरिश पाई और ऐसा जज्बा पाया कि वो देखें आपके वो आज़ादी का परवाना मांगते थे या फिर मौत को गले लगाना,
0: हाँ,
1: लेकिन मौत को ही गले लगाया और शहीद हुए वहां पर। आपकी परवरिश रामपुर में हुई और रामपुर में आपने बहुत अच्छा दौर, बहुत अच्छा वक्त देखा है।
0: नवाबीन के मैंने
1: निकल चुका था।
0: खास बाग में मुझे जाने का शर्फ मिला,
1: अच्छा
0: और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे बेगम साहब, नवाब रजा अली खान साहब की जो बेगम साहिबा थी,
1: जी जी जी
0: उनसे गुफ्तगू करने का मौका मिला।
1: जी जी
0: ये बहुत बड़ी बात
1: बड़ी
0: है
1: बात है
0: कि नजियाबाद खत्म हो चुका था,
1: जी।
0: लखनऊ आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था,
1: जी
0: और रियासतें भी मर्ज हो रही
1: जी
0: थी।
1: बिल्कुल
0: तो अब रामपुर में सिर्फ राजमाता ही हमारी गोया
1: नवाबों
0: नवाब
1: में बची
0: जहाँ
1: थी
0: जहाँ
1: जो
0: वो
1: संभाले हुए थी रामपुर
0: जहाँ
1: को।
0: जहाँ
1: जी
0: उनसे
1: उनसे गुफ्तगू
0: रौनक
1: आपकी रहती थी है।
0: रौनक थी, और
1: जी
0: उनके पास बैठकर मैंने उनसे गुफ्तगू की है।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो रही बात आपकी और आपके जो सिलसिला चल रहा है खानवादे का। आपने जिक्र किया मोहम्मद अली जौहर का, मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली का, बी अम्मा का, और इसी तरह से आपने जिक्र किया नवाबों में मोहतरमा राजमाता साहिबा का। अब बात चलती है रामपुर की। और देखें डॉक्टर साहब के एक जो हम बात कर रहे हैं बेमिसाल 90 साल, यानी रेडियो के 90 साल, तो वो होने जा रहे हैं हमारे हमारे लिए बहुत खुशनसीबी है कि हम मतलब जो जनरेशन हमारी वाली जनरेशन है उसने वो देखा, वो वक्त भी देखा, और हमने 80 का दौर और 90 का दौर भी देखा कि मतलब क्या रेडियो की चाहत थी और क्या रेडियो का एक क्रेज था और बहुत शौक से लोग सुना करते थे। तो डॉक्टर साहब, जब आपकी यानी जब आप होश में होंगे उस टाइम, जब समझदार हुए होंगे आप माशाल्लाह बचपन से हट के, तो उस वक्त का दौर आप थोड़ा सा रेडियो के बारे में बताइए हमारे सामीन को कि रेडियो का क्या क्रेज था, क्या शौक से सुना करते थे लोग।
0: रेडियो का यह था क्रेज कि सुबह को उठने के बाद
1: जी
0: माफ़ फरमाना, नमाज के बाद तिलावत तो याद रहे या नहीं रहे, लेकिन रेडियो को लगा दिया करते थे लोग।
1: जी
0: मुझे कहना नहीं
1: जी
0: चाहिए
1: जी जी
0: ये
1: बिल्कुल
0: लफ्ज़,
1: जी जी जी बिल्कुल
0: मैं माजरा
1: जी
0: चाहूँगा,
1: जी कोई बात नहीं,
0: लेकिन असल मसला यही है
1: यही है
0: कि रेडियो लगा दिया करते थे और रेडियो को सुनते रहते थे। लोग अपना अपना काम भी करते थे, ख्वातीन घर में काम भी कर रही हैं,
1: जी जी
0: और पूरी आवाज़ से रेडियो था जो था वो बजता रहता था,
1: जी
0: और रेडियो को सुनाया जाया करता था, लोग काम भी करते रहते थे।
1: जी
0: दूसरी बात ये मैं अर्ज़ करूं कि ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मेरी मुख्तलिफ किताबों पर
1: जी
0: लोग, मैं माफ़ फरमाना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं
1: जी
0: किसी
1: जी
0: को,
1: बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं, वो
0: मैं
1: एडवर्टाइजमेंट की
0: असल
1: बात नहीं, ये आप
0: असल
1: अपनी शौक की
0: आ,
1: चीजें बता रहे
0: असल
1: हैं।
0: असल बात बता रहा हूँ
1: जी
0: वो ये है कि जो मौजूदा दौर है, इस मौजूदा दौर को बाज़ लोग अफवाहों पर यकीन करके मालूम नहीं किस किस तरह के प्रोपेगेंडे करते हैं,
1: जी जी बिल्कुल
0: लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ, मुझे इस दौर में उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी से मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से बाकायदा एक स्कॉलरशिप मिलता है,
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात।
0: बल्कि
1: ये तो खुशनसीबी की
0: हकी
1: बात है,
0: हाँ जी हाँ, कि मुझे
1: ये सरकार आपको वजीफे के तौर पे,
0: वजीफे के तौर पर मुझे दे रही
1: और
0: है।
1: जो राइटर होते हैं, जो स्कॉलर होते हैं।

0: उनके लिए ये चीज है कि उनको नवाजा जाता है, आपको
1: जी
0: एजाज से नवाजा जा रहा है।
1: जी 15 किताबें मेरी कम से कम आ चुकी हैं
0: क्या
1: जो
0: बात है।
1: मुख्तलिफ मौजूआत पर हैं। दूसरी बात यह है कि उन किताबों में उन बातों का भी मैंने जिक्र किया है
0: जी
1: कि जो मैंने कभी रेडियो पर सुनकर अपनी गिरा में बांध ली थी।
0: क्या बात है।
1: देखिए, रेडियो पर ऐसी मालूमाती तकरीरें आती थी
0: जी
1: और तकरीरें आती हैं आज भी
0: जी जी बिल्कुल
1: कि जिसे हम अगर सुने और अपनी गिरा में बांधे तो हमारी मालूमात कहीं से कहीं पहुंच जाती हैं।
0: बिल्कुल यही बात,
1: यह है
0: यही बात है। कुछ चीजें हमने आपसे सीखी हैं जब आपसे बातचीत हुआ करती थी। अब तो आप थोड़े से कमजोर लग रहे हैं, लेकिन उस दौर में जब आपके पास हम जाया करते थे और स्टूडेंट लाइफ थी, उस टाइम पे भी आपसे रूबरू होते थे और आपसे कुछ सीखते थे हम, तो हमने बहुत कुछ आपसे सीखा है। और आप जिक्र किया करते थे रेडियो, देखें आप कैसा है महकमा है, कि रेडियो में जो चीज़ होती है वो सच्ची और पक्की होती है।
1: बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आंखों देखा हाल
0: जी
1: बिल्कुल बयान करते हैं रेडियो वाले।
0: जी बिल्कुल
1: और जब वो बाहर भी अगर निकलते हैं तो चारों तरफ ये देखते हुए कि कहाँ क्या हो रहा है
0: जी
1: और बिल्कुल सही शहर की सब पोजीशन क्या है।
0: जी बिल्कुल
1: बाज़ हज़रात ने यहाँ पर एक ज़माना ऐसा गुज़रा एक इनकलाबी का
0: जी
1: कि तैयारी ये कर दी थी कि शायद यहाँ पर कर्फ्यू लग जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
0: नहीं हुआ।
1: रेडियो वालों ने ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया। उन्होंने जो असल बात थी वो बताई और ये बताया कि यहाँ पर क्या क्या पोजीशन है और सब
0: हाँ,
1: लोग
0: माहौल
1: सुकून
0: जो
1: से
0: है
1: नॉर्मल
0: और यहाँ
1: है,
0: नॉर्मल है और खुशगवार है, कोई
1: खुशगवार
0: ऐसी वारदात नहीं घटी है
1: नहीं है।
0: जिससे एक माहौल खराब हो।
1: हाँ
0: तो ये बहुत अच्छी बात है ये तो, कि जो चीज़ है वो क्लियर होना चाहिए, जो साफ सुथरी बात है वही
1: जी
0: होनी चाहिए। डॉक्टर
1: जी
0: साहब,
1: जी
0: डॉक्टर साहब ये बताइए मुझे आप, जब शायद हमें भी अपने बचपन में देखा है और सुना भी है कि रेडियो पर फरमाइश आया करती थी और उसमें जैसे खत आता था, जो चिट्ठियां होती थी, पत्र होते थे, वो डाक के जरिए इसमें यहाँ पे फरमाइश भेजी जाया करती थी। यानी कि जैसे मेरा नाम आ रहा है तो हम उस नाम को सुनने के लिए, फैमिली के नाम सुनने के लिए रेडियो बीच में रखा होता था और आसपास सारे लोग घर के बैठे हुआ करते थे और वो नाम आया करता था कि ये गाना सुनना चाहते हैं। यानी कोई भी XYZ, मान लिया आपका नाम ही लिया जा रहा है, तो वो नाम मतलब खुशनसीबी की बात समझी जाती थी कि आज हमारा नाम रेडियो पर आया,
1: हमारा नाम रेडियो पर आया और हमारी फैमिली के लोगों का भी
0: फैमिली
1: नाम,
0: का
1: हमारे
0: नाम
1: पास
0: आया।
1: नाम आया
0: जी
1: और बाकायदा जो खतूत भेजे जाते थे उन खतूत के हिस्से पढ़कर सुनाए
0: सुनाए
1: जाते
0: जाते थे
1: थे
0: बिल्कुल।
1: रेडियो पर।
0: जी जी
1: और उन हिस्सों में वो नाम भी होते थे
0: जी
1: जो घर वालों के होते
0: जी
1: थे,
0: जी
1: तो ये बहुत बड़ी बात है।
0: डॉक्टर साहब, ये 90 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो हम जिक्र करेंगे उस दौर का भी जब जैसे किले के आसपास या बाजारों में, जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में होंगे, स्टूडेंट लाइफ आपकी पूरी हुई थी, कॉलेज में भी आए होंगे, उस दौर में भी आपने देखा होगा कि होटलों पे रेडियो रखे होते थे और आसपास लोग उसको बैठकर सुना करते थे। तो कोई किस्सा मुझे ऐसा बताइए।
1: साहब मैं एक किस्सा बताऊं जिसे अब तहसील कहा जाता है,
0: जी
1: इन्फॉर्मेशन ऑफिस वहीं पर था
0: क्या बात है,
1: उस
0: मतलब
1: समय।
0: वहां पर क्रीम बैठा करती थी।
1: या इन्फॉर्मेशन ऑफिस वहीं था
0: जी
1: और इन्फॉर्मेशन ऑफिस के अलावा भी वहां पर एक गैलरी थी। उस गैलरी के अंदर लोग बैठा करते थे, गुफ्तगू करते थे, उस चबूतरे के ऊपर गुफ्तगू करते थे
0: जी
1: और फिर बाकायदा उसे लिखा करते थे और लिखने के बाद फिर खत की शक्ल में रेडियो स्टेशन को भेजा करते थे और उसमें तफसील लिखते थे कि ये हमने फला जगह बैठकर लिखा है।
0: यानी जो शहर की मौजी शख्सियात होती थी वो वहां पर मौजूद होती थी
1: मौजूद होती थी
0: पूरे शहर रामपुर की।
1: शहर राम।
0: और वो दौर क्या दौर होगा, आप रामपुर का इतना डेवलपमेंट नहीं था रामपुर में उस वक्त जब आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जिक्र किया रेडियो का, और रेडियो का आपने जिक्र किया कि सारी चीजें जो होती थी वहां पर, जो बातचीत हो रही है, सारी मालूमाती, तो उसको खत की शक्ल में
1: खत की
0: आकाशवाणी
1: शक्ल
0: को भेजा जाता था
1: जा
0: रेडियो
1: जा
0: को।
1: जा खत की शक्ल में जा करते थे और नाम उसमें सुना करते थे कि
0: क्या
1: हम
0: बात।
1: लोगों के नाम आ रहे हैं और हमारी फैमिली के नाम आ रहे हैं। पिछले दिनों में यहाँ पर एक महफिल में

0: मुराद रामपुरी साहब से मुलाकात
1: मुलाकात हुई आपकी?
0: क्या हुई, मैंने बैठ के गुफ्तगू की उनसे, तो
1: अच्छा,
0: मैंने उनसे कहा कि फिल्में हमने बहुत सारी देखी, लेकिन मैं ये अर्ज करूं कि कोई ऐसा आर्टिस्ट करीब से मैंने नहीं देखा जो बाकायदा फिल्मों में अदालत की डिग्निटी और उसके मेयार को कायम रख सके।
1: जी
0: वो आपकी जात है कि आप अदालत में हमेशा बहैसियत जज
1: जी जी
0: बैठते हैं और हमेशा ये कहते हैं मुकदमे को मुकदमा नहीं कहा, आपने मुकदमा कहा।
1: क्या बात है, आपने बहुत मतलब बारीकी से उस चीज को देखा और उसको आपने जिक्र
0: या
1: किया रजा मुराद साहब से। उनके वालिद की
0: हाँ
1: बात कर रहे हैं हम,
0: या रजा मुराद साहब की, रजा
1: उनके
0: मुराद साहब का,
1: रजा
0: जहाँ
1: मुराद साहब के वालिद
0: वालिद
1: वो
0: साहब
1: जज
0: की,
1: का रोल अदा करते थे,
0: या
1: और
0: जज
1: उन पे
0: का,
1: वो जज का रोल बहुत ही खूबसूरत लगा करता था। वो जज का
0: या
1: रोल ऐसा
0: या
1: लगता था कि असलियत में शायद जज हैं ये।
0: वाकई ऐसा ही था।
1: जी
0: उन्होंने मुझसे खुद यह कहा कि भाई ऐसा है कि मुझे कहीं कहीं तलफ़ुज़ सही कराना पड़ता है दूसरे लोगों का, इसलिए कि बेहतरीन किस्म के वो उर्दू नवाज भी थे
1: जी
0: और उर्दू जानने वाले भी थे। अच्छा,
1: जी बिल्कुल
0: जहाँ तक आपने मुराद रामपुरी का नाम लिया,
1: जी।
0: तो रजा साहब के सिलसिले में मैं अर्ज करूँ कि उनकी जिंदगी का पहला स्टेज ड्रामा रामपुर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन घेर नज्जू
1: घेर
0: खां
1: नज्जू
0: में हुआ।
1: डॉक्टर साहब, ये तो रही बात, बात कर रहे हैं हम रेडियो की। डॉक्टर साहब, आपने रेडियो पर कुछ फीचर भी लिखे?
0: जी हाँ,
1: जी
0: ड्रामों में मैंने बाकायदा बोला भी हूँ
1: अच्छा
0: और ड्रामे लिखे भी हैं,
1: अच्छा
0: और ड्रामे में आवाज भी आपने दी है
1: जी जी बिल्कुल।
0: कई कई किरदार के ऐसे से।
1: तो हमारे लिए डॉक्टर जहीर अली साहब, यानी कि खुशनसीबी की बात यह है कि आपने रामपुर में वो दौर देखा जब ये स्टेशन कायम हुआ।
0: जी हाँ, मैंने वो दौर देखा जब वो पनवड़िया में
1: जी
0: सबसे पहली बार जब वहाँ पर कायम हुआ, तो अशफाक आलम खां इंजीनियर,
1: अच्छा, यानी उस
0: उन्होंने
1: दौर में जो पनवड़िया में, यहाँ रामपुर में स्टेशन जो कायम हुआ पनवड़िया, तो
0: पनवड़िया में हुआ
1: उसमें
0: पर
1: वहां पर इंजीनियर थे वो जिनका जिक्र कर रहे हैं
0: नहीं,
1: हम।
0: वो इंजीनियर की हैसियत से उन्होंने वहां पर कायम किया।
1: कायम किया था।
0: उन्हें वो तो शायद उस वक्त बनारस में या किसी और जगह थे, तो
1: अच्छा,
0: उन्हें बुलाया गया
1: बुलाया
0: था
1: गया था।
0: नवाब साहब ने अपने असर रसूख से
1: जी।
0: और अपने ताल्लुक से उन्हें बुलवाया था, और बुलवाने के बाद यहाँ पर यह कहा था कि भाई अब आप इसे देखें और इस पर अब काम करें।
1: वो स्टेशन कायम कराया,
0: वो स्टेशन कायम
1: यानी
0: कराया।
1: रामपुर वालों को ये खुशनसीबी हासिल थी कि वो रेडियो जो थे वो सुना करते थे और कायम हुआ। आसपास के जिले थे, यानी मुरादाबाद और बरेली भी बड़े जिले थे, लेकिन रामपुर में स्टेट था, नवाबी थी यहाँ पर, तो इसलिए नवाब साहब ने वो स्टेशन यहाँ कायम कराया और आसपास के जो जिले थे वो सब कवर किया करते थे,
0: या
1: सुनते थे लोग रेडियो।
0: मुरादाबाद के लोग तो बहुत, मैंने खुद देखा कि वहाँ एक जगह है पाटा नाला, तो
1: अच्छा
0: नाले के पास लोग खड़े होकर बाकायदा रेडियो को यहाँ के सुना करते थे। मैंने
1: जी,
0: अपनी आंखों
1: बिल्कुल
0: से देखा
1: डॉक्टर
0: मैंने।
1: साहब, आपने दौर देखा और यहाँ पे जो अनाउंसर रहे, यानी पिछले दौर की बात कर रहा हूँ, जो मशहूर हुआ करते थे, मोहम्मद अली मौज साहब थे, अंजलि
0: हाँ,
1: वाजपेयी जी थी, और भी बहुत सारे थे, तो थोड़ा सा हमें ये बताइए कि आपने वो दौर देखा तो सुना होगा उनको, लोग रहे हैं यहाँ पर, अनाउंसर रहे हैं, फिर उसके बाद वो अफसरान भी रहे।
0: देखिए अंजलि वाजपेयी जी तो बहुत अच्छा अनाउंसमेंट करती थी,
1: जी
0: और मौज साहब जो थे वो तो खुद बताए खुद शायर भी थे।
1: जी बिल्कुल
0: उनका एक बड़ा मशहूर शेर था
1: जी
0: जो उन्होंने किसी ड्रामे में खुद कहा था
1: जी
0: कि जिल्ले सुभानी आज भी ताली बजा के देखते हैं,
1: जिल्ले सुभानी, आज भी
0: आज
1: ताली
0: भी
1: बजा के
0: ताली बजा
1: देखते
0: के
1: हैं।
0: देखते
1: जी
0: हैं, कि वो ये समझते हैं कि मैं आज भी बादशाह हूँ। ये उनका शेर जो है ये जरबुल मिसाल है
1: जी
0: जो मुझे आज तक याद है।
1: मैंने सुनी है बचपन में कि उनकी आवाज में ऐसा था कि लोग

0: खींचे चले आते थे जैसे,
1: बिल्कुल खींचे चले आते।
0: अगर वो कहीं महफिल में हैं तो भीड़ लग जाया करती थी। मैंने देखा है कि रेडियो का कोई भी बंदा एक्स वाई जेड कोई भी हो, मैंने बचपन में, मुझे याद है कि किसी जगह अगर महफिल में कोई आ गया है, रेडियो स्टेशन पे है भाई, रेडियो पे है, तो उनके आसपास भीड़ लग जाया करती थी जैसे कोई बहुत बड़ी हस्ती आ गई।
1: ऐसा ही था कि उनकी आवाज को सुनकर लोग खींचे चले आते थे।
0: जी, बहुत अच्छा रहा हमारे साथ में, अच्छी गुफ्तगू रही आपकी। आप यूं ही हमारे सामने को अपनी दुआओं में याद रखें, और कुछ पैगाम देना चाहेंगे कि 90 साल हुए हैं, बेमिसाल 90 साल, उसके बारे में हमारे सामीन को कोई पैगाम दीजिए।
1: पैगाम यह है कि रेडियो को लाजमी सुना करें, इसमें तरह तरह के प्रोग्राम आते हैं, उससे मालूमात में इजाफा होता है और बोलने का तरीका भी आता है कि किस बात को अदा हम किस अंदाज से करें। बहुत बड़ी बात है।
0: शुक्रिया, बेमिसाल 90 साल, इस उन्वान के तहत आज हमने मुलाकात की डॉक्टर जहीर अली सिद्दीकी साहब से। अब अपने मेज़बान फरीदुल्ला खान को आकाशवाणी रामपुर के मरकज़ से दीजिए इजाज़त।
2: उर्दू कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम में आज लीजिए सुनिए पूजा द्विवेदी के गाए कुछ अवधी लोकगीत। सबसे पहले
3: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, 9:50 हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं राग रामकली में श्यामलाल का उनका शहनाई वादन।

अभी आप सुन रहे थे श्यामलाल से राग रामकली में उनका शहनाई वादन। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्स एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

कार्यक्रम का पहला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम, अकरम सैफी और आबाद खान। जामरून अर्धापुर से दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन जोशी, संजय जोशी, आशीष जोशी, पृथ्वीराज जोशी, कुमारी साध्वी जोशी, साथ में इनके गणेश। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। लेबा खेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से नारायण भाऊ खड़से, ललिता खड़से, परी खड़से, गणेश कार्तिक भाऊ खड़से, स्वाति चौधरी और प्रयाग चौधरी। इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अक्रम नूरजहाँ, डब्लू अक्रम नूरजहाँ, वली अक्रम नूरजहाँ, उल्लाह अक्रम नूरजहाँ। राज नांद गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिवा तिवारी, साथ में इनके परिवार के सभी सदस्य। बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मुड़त, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मुड़त और इनके बहुत सारे साथी। राजद्वारा रोड मीठा कुंवर रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, अर्पित रस्तोगी, अभय, रिया और आरुष। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता और जीतू। परिमहल कासगंज से आबाद खान, नवील खान, आरफा खान, इल्मा खान, असलम सैफी। मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान और इनके बहुत सारे साथी। श्री रोकडेश्वर नगर पांगरा से तहसील बातमा, जिला हिंगोली महाराष्ट्र से टेलर रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिंकू इंगोले, रमाबाई, सुरेंद्र इंगोले, मयूरी सुरभि, मंजुषा, गौतम इंगोले। यहीं से ही नामदेव राव शिंदे पाटिल, मास्टर विलास शिंदे पाटिल, सुनील जबड़े। अशोक नगर बसमत हिंगोली महाराष्ट्र से

दीपाली राजू ठोके, पार्वती सखाराम, रोहित, सोनू, मोनू और इनके बहुत सारे साथी झुमरी तलैया से छकली इंगोले, देव इंगोले, छोटू दादा इंगोले, पेंटर रामचंद्र इंगोले, महेंद्र चौरसिया और इनके परिवार के सभी सदस्य, सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, कोल सिटी वर्का काना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी, जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौसर, इशिता साहनी, प्रियंका मोदी, सोनम वली और मोहम्मद अफजाल मलिक, मोहल्ला हलवाई और शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। आप सभी ने सुनना चाहा है उदित नारायण और साधना सरगम को, फिल्म का नाम है जान तेरे नाम। आप सभी की फरमाइश आप सभी के रेडियो सेट पर।

कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, सिंधौली मीरगंज से जीशान वारसी और इमरान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शेब खान, नावेद खान और इनके बहुत सारे साथी, मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, फिरोजा मुस्कान और इनके परिवार के सभी सदस्य, बेरड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर, तनु करमरकर, रिंगी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे और गायत्री धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रेयांश ठाकुर, जिला मुरादाबाद संभल रोड बस्तौर से अतर सिंह सैनी, मुन्नी, पवित्रा सैनी, अजय आचल, आकांक्षा, आकाश सैनी, विक्की सैनी, दक्ष, छवि, रुद्र, साथ में इनके बहुत सारे साथी, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, अलीका डब्बाली से बसंत सिंह चन, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी,

आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा, यहीं से ही निवान शर्मा और इनके बहुत सारे साथी, गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, रुमा खान, बॉबी खान, शमा खान, मिक्की खान, बुशरा खान और आसिम खान, जिला अस्पताल के पास रामपुर से गज्जन खान, शमा परवीन, शमशद अली अजम, गुलफशा, शहनाज बाबू अंसारी, रजिया गफ्फार, हबीब अहमद इदरीसी और इनके बहुत सारे साथी, पंजोसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी, अफजलपुर पट्टी सदर जिला रामपुर से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमन लाल मिस्त्री, रूमा, मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, कविता और आशु गौतम। आप सभी ने सुनना चाहा है उदित नारायण को, फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

कार्यक्रम का अंतिम गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर। गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी।

शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, कुमारी देविका चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे, वरुण जरूर कालका से महेंद्र, विजया और मिलिंद, संघ मित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 प्रोफाली यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर, वंदना धुले, अर्पिता, समस्त सिंगर परिवार, अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, काव्या और इनके बहुत सारे साथी, मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा, बोराला धारण तहसील मालेगांव जिला महाराष्ट्र से सुनीता बाई घायल, सानिका घायल और गजानन घायल, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदीप मीका, बलविंदर विरक, जीतेक विरक और मीका विरक, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा, सालिया शुएब खान, साइमा खान, पोत्रा से मुस्तफ़ा खान, आफिया खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई, गांधी पार्क अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और इनके बहुत सारे साथी, डोंगरगांव जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर मनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साविर राही और मेहराज जहां, मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, सुनील पोहरकार, साहिल पोहरकार, अंश पोहरकार और कुमारी सुजाता पोहरकार, जिला गांव तहसील नांदुरा से बसंतराव भोजने, सुनंदा भोजने, राजू भोजने और सोनू, यहीं से ही सोपान, विजया, अमोल वाणी और शिखा। आप सभी ने सुनना चाहा है अनुराधा पुडवाल और कुमार सानू को, फिल्म का नाम है जान की कसम। आप सभी की फरमाइश आप सभी के रेडियो सेट पर।

इसी गीत के साथ ही आज का आपके अनुरोध पर कार्यक्रम समाप्त करने की सुनील सक्सेना को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया। योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
3: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
3: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
3: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
2: बिल्कुल,
3: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
2: अजीत जी आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
3: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
2: जी श्रोताओं, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा

0: फूलों के विषय में पढ़ी थी यार, वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
1: जी बिल्कुल सही, और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
1: जी
0: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
1: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
0: और वो ये है कि इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
1: जी
0: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
1: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
0: जी
1: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
0: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
1: जी
0: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
1: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसके पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
0: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
1: जी
0: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
1: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
0: जी
1: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
0: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
1: जी
0: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
1: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं।
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
1: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
0: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू, सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: Children, have you ever visited a zoo?
3: A zoo?
2: Yes, a zoo.
3: Oh, yes.
2: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger. Lion.
2: Yes.
3: Monkey. Birds of different kind.
2: Very nice.
3: Camel. Giraffe. And so on.
2: Oh, wow. So, here is a child like you who wants to go to a zoo. Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी।
3: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
5: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
6: वीर जोरावर की
7: जय।
6: वीर जोरावर की
7: जय।
8: जय जेरापुर, जय भारत।
4: राजा जोरावर सिंह। हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
9: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
4: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
9: अंग्रेजी हुकूमत ने हम

0: भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
1: महाराज, महाराज हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमाने का कोई मौका ही ना मिले।
2: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
1: जी।
2: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
1: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
2: बिल्कुल,
1: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
2: जी मंत्री जी।
1: जी महाराज।
3: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
4: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
5: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह,
3: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
2: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
3: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
2: देखिए निजाम साहब।
3: जी फरमाइए।
2: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
3: जी।
2: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
3: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
2: जी।
3: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
6: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
3: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
0: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
6: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
7: बिल्कुल।
6: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साये की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
7: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
6: लेकिन जरा होशियारी से।
7: जो हुकुम सरकार।

0: John Ahmed! What how? Tum charo taraf se gir chuke ho.
1: Ye kya hai?
0: You are under arrest.
1: Ek sote hue nihatthe insaan ko aadhi raat mein aise kaayron ki tarah giraftar karte ho? Sharm nahi aati tumhe? Himmat hai to humse lad kar dikhao. Aao samne.
0: Bout ho gayi tumhari bahaduri. Fauzia!
2: Huzoor!
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी
3: हाँ। छोड़ो मुझे।
0: हाथ
3: मत लगाओ मुझे। मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे। हटो यहाँ से।
0: शाबाश, शाबाश, सारल जंग। मैं खुश हूँ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
4: हुजूर।
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
0: जाओ, चलो इसको।
3: छोड़ो मुझे, छोड़ो हाथ हटाओ, छोड़ो मुझे।
5: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
6: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
7: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
1: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
7: देखो देखो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
1: ये नामुमकिन है।
7: Why?
1: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे।
7: yeah.
1: अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
7: तो तुम नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
1: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
7: एक्चुअली यू आर अ फूल।
5: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
6: काला पानी की सजा?
5: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
6: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
5: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
1: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।

0: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग, मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरोहर के अंतर्गत धारावाहिक जिंदगी के आईने में। आज आप सुनेंगे इसका एपिसोड 12।
4: जिंदगी के आईने में सभी श्रोताओं को असीम सक्सेना का नमस्कार। जिंदगी सांसों की सरगम पर एहसासों की रवानी, कुछ पाने कुछ खोने की कहानी। समय इंसान को बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ हाथों से फिसल भी जाता है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब हम कुछ पल ठहरते हैं। जिंदगी के आईने में बीते हुए लम्हों को निहारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में लबों पर कभी मुस्कुराहट थिरकती है तो कभी आंखों की कोर से आंसू भी झांकते हैं।

0: जिंदगी के आईने में। श्रोताओं, इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ वो शख्सियत है जिसने आकाशवाणी रामपुर को ऊंचाइयां दी हैं, जो आकाशवाणी रामपुर के टॉप ग्रेट गजल गायक हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत प्यार करने वाले शख्स हैं। हमारे साथ आज हैं जमील अहमद साहब। एक जाना माना नाम, रेडियो के जरिए, टीवी के जरिए, फिल्मों के जरिए वो आप तक पहुंचे हैं और आज हम उनकी जिंदगी के बारे में उन्हीं से कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे किस ढंग से उन्होंने अपने जिंदगी का सफर तय किया है। जमील अहमद साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत छोटेपन से आप आकाशवाणी रामपुर से जुड़े रहे हैं। आकाशवाणी रामपुर को आपने अपनी जिंदगी में क्या स्थान दिया है?
1: बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे आकाशवाणी रामपुर स्टूडियो में बुला के ये बातें मेरी जिंदगी के बारे में दरियाफ्त की। बड़ा अच्छा है। कोशिश करूंगा कि सच्चाई के साथ आपको मैं बताऊं कि मैंने कैसे जिंदगी गुजारी और रेडियो से, आकाशवाणी से मुझे क्या मिला। बड़ी मुश्किलात के साथ मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है। कुदरती निज़ाम है ये कि किसी चीज़ से हटना चाहो तो भी आदमी हटता नहीं, उसके जो नसीब में होता है वो होता है। मेरी पढ़ाई रुकी, मेरी बहुत छोटी उम्र थी, 5वें 6वें क्लास तक पढ़ा। उसके बाद हमारे घर में म्यूज़िक का सिलसिला था, सब बड़े प्रेम के साथ इस काम को करते चले आ रहे थे, बाप दादा। फादर ने हमारे, वालिद ने हमारे चाहा कि हमारे बाद हमारा नाम अगर रहेगा तो। तीन हम भाई हैं, उनमें से एक मुझे उन्होंने चुना और किसी को इस काम के लिए, मकसद म्यूजिक से ताल्लुक रिश्ता किसी का नहीं है। मैंने लगभग 5 या 6 साल की उम्र से सारेगामा से स्टार्ट किया।
0: तो अपने फादर से ही आपने?
1: जी, मेरे फादर तबला और ढोलक के बहुत बड़े उस्ताद थे
0: जी,
1: इसमें कोई शुबा नहीं। नवाब रजा अली खां के यहाँ पे स्टेट में मुलाजिम भी थे, दादा भी थे, चचा भी थे, भाई भी थे मेरे, काफ़ी लोग मेरे 8-10 लोग मेरे ख़ानदान के वहाँ थे। म्यूज़िक में अरबाब निशात कहा जाता है वहाँ पे। तो खैर, तो जब मैंने शुरू किया तो उस लगभग 5-6 साल की उम्र होगी। फिर मैंने, मुझे फ़ारसी की चीज़ें और ये वो, तो उर्दू, फारसी, हिंदी, कुछ ऐसा लाइन पढ़ी के कुछ कव्वाली का रंग भी आया, कुछ गीत का भी आया, कुछ भजन का भी आया, वगैरह वगैरह। तो मकसद ये कि मेरे उस्ताद, फिर जब मेरी कोई 8-10 साल की उम्र होगी तो उस्ताद वजीर खान साहब का मेरे वालिद ने शागिरत कराया मुझे, और शागिरत कराने के बाद वो रामपुर में एक ऐसे उस्ताद थे कि उनसे बड़ा उस्ताद मेरी नज़र में रामपुर में नहीं था। अब कोई भी अगर इस बात को सुनेगा तो वो यही कहेगा कि जमील ये बात सही कह रहा था कि उस्ताद छोटे वजीर खान साहब के मुकाबले का कोई भी उस्ताद रामपुर में पैदा नहीं हुआ। टप्पे के बहुत अच्छे गायक थे, ख्याल के बहुत अच्छे ठुमरी दादरा, सारिंगी ऐसी बजाते थे कि आदमी रोने लगता था, तबला ऐसा बजाते थे कि उस्ताद थरकुआ खान साहब ने ये कहा कि वजीर हुसैन, ये गट्टे अगर मुझे मिलते तो मैं दुनिया का अकेला आदमी होता, क्या खूबसूरत बोल काटता है, क्या वगैरह वगैरह। तो हमने उनको तबला भी सुना, सारिंगी भी सुनी, गाना भी सुना, और सीखते सीखते मर गए। उन्होंने ना कुछ पैसा, कुछ नहीं कमाया। वाकई ऐसे प्रेमी लोग थे कि म्यूजिक से इतना प्रेम कि पैसे को करीब ही नहीं आने दिया। ये अच्छा, उनकी अजीब और गरीब दिमाग से भी वो ऐसे थे कि यहाँ से घर से निकलते थे शाम को, तो घर से जब शाम को निकलते थे तो वो अपने दो एक बैठ के थी वहाँ पे, डॉक्टर शोर थे और वगैरह वगैरह, तो उनके यहाँ बैठे। अब वहाँ से वापस हो रहे हैं रात को 12-1 बजे। रात के 12-1 बजे जब वो वापस होते तो मेरी कुंडी खटखटाई जाती थी, भाभी बच्चा सो गया, जमील सो गया, जग रहा है। तो कहा कि उस्ताद वो तो सो गया, तो उनका मैं खाना खाऊंगा। तो मेरी वालदा, एक छोटा सा घर था हमारे पास किराए का, उसमें वो पर्दा डाल दिया करती थी और चूल्हे पर उसी वक्त उनके लिए 2 रोटी बना के उन्हें खिलाया करती थी। फिर वो मुझे उठाया करते थे डांट के, प्यार करके, या गरज है कि किसी भी सूरत में मुझे रात को उठाया जाता था। और मेरे सर जो था वो हारमोनियम पे कभी लग गया तो कभी तबले पे लग गया। इतनी नींद होती थी, 12-1 बजे कोई उस्ताद का कोई टाइम है ट्यूशन का या सिखाने का। बड़ी अजीब व गरीब जिंदगी। अच्छा, हालात मेरे बड़े अजीब व गरीब रहे, बड़ी मुश्किल से मैं आगे बढ़ सका, क्योंकि यहाँ रामपुर क्या कुछ म्यूजिक का तो मुझे मालूम होता कि इसमें कंपटीशन ज्यादा है। लोग अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे आगे बढ़ाते नहीं, बल्कि जलेसी और वो जो पैदा हो जाती है ना जलन, उससे वो चाहते हैं कि ये आदमी आगे ना बढ़े। तो वो भी मेरे साथ बहुत रहा। مگر یہ کہ پھر مجھے ایک بریک ملا جو اس وقت ہوگی میری کوئی 12 سال کی عمر. تو میجر منظور خان صاحب تھے اور یہاں کے بہت بڑے استادوں میں تھے, ان سے اچھا ہارمونیم گنپت رائے جی کے بعد سید ایک تھے مجلے میاں, اور وہ ان کا ہارمونیم میکر بھی تھے جی. ان کے ہارمونیم سرکاری بنتے تھے اور وہ دونوں باپ بیٹے ہارمونیم بجاتے تھے, کیا خوبصورت ہارمونیم بجاتے تھے. انہوں نے کہا کہ نواب صاحب سے کہ جب ایک لڑکا ہے حضور, اگر سرکار آپ اجازت دیں تو ہم سنوائیں. تو انہوں نے کہا تو ایک دن فیٹ گاڑی ہمارے دروازے پہ, تو میں اس وقت سسرال میں, جو اب میری سسرال ہے اس میں کرائے پہ رہتے تھے ہم لوگ, تو مجھے 103.4 بخار تھا اور ٹونسل میرے گلے آئے ہوئے تھے, لیکن میرے حالات اس قابل نہیں تھے کہ جو کوئی. میں نے کہا کہ میں چلوں گا. باپ نے کہا میرے کہ ابن علی میاں منجو صاحب دونوں باپ بیٹے کہ اس کو تو بہت تیز بخار ہے لہذا. تو میں نے کہا کون آیا ہے
0: جی؟
1: تو کہا کہ نواب صاحب کے یہاں سے گاڑی آئی. میں نے کہا میں چلوں گا. تو اسیم صاحب آپ یقین کریں کہ میں نے اتنی ہمت کری 12 سال کی عمر میں, اور اتنی سی پتلی سی شیروانی, لگ بھگ چھٹانک بھر کا تھا میں, تو وہ پہن کے اور ٹوپی ووپی لگا کے اور دربار میں.
0: کچھ یادیں ہیں دھندلی سے اس دور کی جب آپ نواب صاحب کے دربار میں پرفارم کرنے گئے ہوں اور وہاں سے آپ کو شاباشی ملی ہو؟
1: میں وہی سنانے جا رہا تھا کہ جب میں پہنچا تو وہ بیگم صاحب اور نواب صاحب اور ابن علی میاں صاحب اور میجر منظور خان صاحب وغیرہ وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے مجھے سلام کا طریقہ بتایا باپ نے کہ جاؤ تو ایسے کر کے سلام کرنا. تو 3 سلام میں نے کیے اور جا کے ایسے بیٹھ گیا. لہذا وہ کہنے لگے اچھا بلاؤ کیا گاتا ہے یہ. مجھے ایک حضرت نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک منقبت اور ایک دو غزلیں یاد ہوں گی, اور کلاسیکل کی جو تعلیم تھی اور جو بھی کچھ تھا بس اتنا ہی مٹیریل تھا میرے پاس, کچھ زیادہ. تو میں نے ان کے سامنے ایک منقبت پڑھی تھی.
2: زہیز و جلال بوت رابے

0: तो ये मैं पढ़ रहा था तो म्यूजिक के साथ पढ़ा जा रहा था, तो उन्होंने मेरे वालिद के हाथ में से, उस जमाने में ये ढोल ये नहीं थी बल्कि इतनी इतनी चौड़े उसके मुहार कहलाते थे, तो वो बजाया करते थे, तो वालिद के हाथ से वो गोद से वो ढोलक लेके खुद बजाई उन्होंने,
1: क्या बात
0: नवाब रजा
1: है,
0: अली खान। और वो ऐसी उनकी थाप जाती थी कि मैं जो एक हैरत है कि खरताल में सुना था मैंने कि खरताल बहुत अच्छी बजाते हैं, लेकिन साहब जो ढोलक तबला क्या बजाया उन्होंने। तो एक ढोलक मेरे हमारी वाली फाड़ी, फिर उसके बाद उन्होंने अपने म्यूजिक रूम में से अपनी ढोलक मंगवाई, वो भी इतनी बड़ी थी जो आज आज मेरी गोद में भी नहीं आएगी, तो वो बजाई और कहने लगे ठीक है बेगम साहब मैं इसको सही कर लूँगा, ये लड़का है। तो फिर फरमाइश हुई कि कोई गज़ल भी सुनाएं, तो फिर मैंने गालिब की गज़ल याद थी मुझे, मैं पेश करता हूँ।

0: एक ये गज़ल जो सुनी तो बेगम साहब भी बहुत खुश हुई
1: जी
0: कि सरकार इस बच्चे को रख लीजिए। तो मैं स्टेट तो ख़त्म हो गई थी लेकिन फिर भी दरबार कहलाया जाता था, उसमें मैंने अक्सर बेशतर जाया करता था। तो मेरी पहली फीस जो वहाँ से बनी तो वो लगभग 51 रुपये,
1: क्या बात है।
0: ये सन 62-64 का वक्त होगा।
1: तो इस तरह से शुरुआत हुई, नवाब साहब का भी आशीर्वाद मिला आपको, घर की परंपरा और विरासत को आपने बहुत करीने से संजोया और ये कारवां आगे बढ़ता चला गया। अच्छा, जब और आगे बढ़े आप, तब किस किस की शागिर्दी आपको मिली और किन किन ऊंचाइयों तक आप पहुंचे, किसका क्या रोल रहा आपकी?
0: देखिए, ऐसा है कि ये जो आपका रेडियो माध्यम जो है,
1: जी
0: और ये टीवी तो नहीं था उस वक्त,
1: जी
0: सन 71 में मैंने पहला प्रोग्राम किया था जो कि टेलीकास्ट होता था अमृतसर से।
1: अच्छा।
0: तो पहला प्रोग्राम मेरा दिल्ली से हुआ था टीवी पे। तो टीवी की तो बात छोड़ दीजिए इस वक्त, मैं आपको आकाशवाणी से बताता हूँ कि यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट जज थे, उन्होंने मैंने फार्म भरने की कोशिश की कि आकाशवाणी से मैं भी प्रोग्राम करूँ। मेरे भाई करते थे और सब लोग करते थे, तो मुझे भी शौक था कि मैं भी जाऊँगा, मेरा भी आवाज़ कहीं से सुनवाई। तो वो मैं जो गया तो उन्होंने कहा, साहब आपकी उम्र कम है लिहाजा
1: अच्छा
0: बच्चों के लिए नहीं है। खैर, वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज रहमानी साहब थे, खुदा करे रहमत करे, और बाबूनंद कुमार साहब, उन्होंने वहाँ पे लखनऊ में बात करी और मेरा फार्म भरवा दिया वगैरह वगैरह। तो पहली बार जब मैंने इसको रेडियो पे ऑडिशन दिया है तो उस वक्त तानपुरा दिया जाता था, अब तो बहुत सहूलत है। तो तानपुरे पे मैंने दो गज़लें, उस ज़माने में आकाशवाणी लखनऊ में, तो वहाँ से मैंने बी हाई ग्रेड से पहली बार में ही पास किया था।
1: आकाशवाणी लखनऊ
0: जी
1: से।
0: जी
1: जी
0: मैंने कव्वाली का भी किया था,
1: अच्छा।
0: तो कव्वाली का ज़्यादा मेरा वो चल नहीं पाया तो मैंने उसको रिज़ाइन कर दिया। तो फिर दूसरी बात ही, उसमें बी ग्रेड मिला था मुझे। अच्छा, पहले सी ग्रेड से स्टार्ट होता था, शायद आपको याद आए, सी बी करके था, बी हाई बाद में बहुत बड़ा कहलाता था उस ज़माने में।
1: आकाशवाणी रामपुर को हमेशा ये फख्र रहेगा कि आप आकाशवाणी रामपुर के पहले टॉप ग्रेड गजल सिंगर हैं,
0: जी
1: और आपका हमसे जुड़ा होना ये हमारे लिए एक गौरव की बात है। आपको ये ग्रेड जब मिला तो उस पल कैसा महसूस हुआ?
0: कोई पुश करे उसका एहसान माने, कोई आगे बढ़ाए तो उसका शुक्रिया अदा करे, कोई सलूक करे तो उसको, हमारे यहाँ ये वफादारी में आता है, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो मुझे एक क्लास के बाद, फिर 5 साल के बाद फिर मैंने एक वो किया तो टॉप हुआ, तो उसमें बड़ा अच्छा लगा। उस ज़माने में मोहम्मद अली मौज दिल्ली में ही थे, बड़े मेहरबान, और उन्होंने भी हमारे साथ बड़ी मेहरबानियाँ की हैं। बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने हमारे साथ, जिन्होंने हमारे साथ मेहरबानियाँ करी हैं, हम उनके मरने के बाद भी दुआ बख्शिश की भी करते हैं और उनके ताल्लुक आज भी हम घर से रखते हैं।
1: जमील साहब, आज गज़लों की दुनिया में आपका एक अपना नाम है, बहुत सारे शायरों को आपने आवाज़ दी है, आपका पसंदीदा शायर कौन सा है जिसकी गज़लें आप गाना खुद बेहद पसंद करते हैं?
0: देखिए, अगर रामपुर से ताल्लुक मुतालिक बात हो तो मैं रामपुर से बात करूं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की अगर बात हो तो फिर उनमें जो असातेज़ा, जो हमारे शुरा इकराम गुजर गए हैं, उनमें भाई नंबर गायकी में तो नंबर गालिब का ही आता, मिर्ज़ा गालिब का, या फिर जिगर का आता है, इनके यहाँ तगज़ल का। और मीर तकी मीर तो बादशाह है, वो तो
1: जी जी
0: किंग ऑफ गज़ल, गज़ल के तो बादशाह हैं वो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इनके यहाँ मुतरन्निम, और मकसद ये कि संगीत सी मालूम होता था, जैसे कि इन्होंने गाने वालों से मालूम करके गज़लें लिखी हैं। इनकी बहरे, इनके मीटर बड़े अच्छे, और रामपुर के लोगों ने भी बड़ी अच्छी, जलील नुमानी साहब, महशर-ए-नाइती साहब, और साहब हमारे रईस रामपुरी, और इस वक्त तो जवाब ही नहीं है जनाब अजहर-ए-नाइती का, वो उनकी गज़ल, इन लोगों की गज़लें भी रामपुर में, ख्याल रामपुर की, उनकी यहाँ पे जुबैर साहब थे तो उनके ज़माने में अच्छे लोगों को चार चार पाँच पाँच गज़लें सबकी ब्रॉडकास्ट कराई, और बहुत अच्छा रहा, रेले हुआ। तो असातेज़ा के कलाम का तो कोई जवाब ही नहीं है।
1: रामपुर से मुंबई का सफ़र भी आपने तय किया और
0: मैं
1: फिल्मों से भी आप जुड़े
0: नहीं, मैंने मुंबई का सफ़र नहीं किया, ये
1: हैं।
0: ताज्जुब करेंगे आप। और मैं फिल्म तक पहुंचा कैसे
1: जी
0: पहुंचा? ऐसा है कि मेरा एक कंसर्ट था, एक चेन बना करती थी, तो आसाम में तीन चार स्टेशन थे मेरे, रामपुर से बुक हुआ था, तो मैं वहां जो गया तो सिन्हा साहब एक हमारे पैक्स हुआ करते थे, उनके यहाँ श्याम बेनिगल साहब
1: अच्छा।
0: और वनराज भाटिया आकाशवाणी पहुंचे, और उनका भाई किसी एक आर्टिस्ट से मिलवाइए, और हम तो उन्होंने सबकी रिकॉर्डिंग सुनवाई, उसमें एक रिकॉर्डिंग मेरी भी थी। उन्होंने, सिन्हा साहब ने कहा, भाई ये रामपुर का लड़का है और इसको सुनिए आप। बस उन्होंने कहा यही आवाज़ चाहिए। तो श्याम बेनिगल साहब और वनराज भाटिया जो थे वो
1: म्यूजिक डायरेक्टर,
0: उन्होंने पसंद किया और करने के बाद फौरी गाड़ी आई और गाड़ी में मुझे लेके क्लार्क अवध होटल जो है उसमें बंद कर दिया गया। और उन्होंने जैसे आप मुझे मेरा इंटरव्यू क्या कहूँ वो आप कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने मेरा शुरू कर दिया। कहने लगे आप सुनाइए, हम ऐसा ऐसा सिचुएशन है, ये कहानी है। तो हमने उनको नात सुनाई और मनकबत सुनाई वगैरह वगैरह सब कुछ सुनाया। तो उन्होंने हज़रत अमीर खुसरो के रंग पे कहने लगे ये हर कौम पसंद करेगी ये शब्द, बड़े काबिल लोग हैं। श्याम बेनिगल का तो खैर कोई जवाब ही नहीं हिंदुस्तान। तो वो ये हज़रत अमीर खुसरो का रंग मैंने किया। तो वो रिकॉर्डिंग तो देखिए कि बहुत उम्दा इंसान, उन्होंने रिकॉर्डिंग हमारी इसकी वहाँ की आकाशवाणी लखनऊ के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग हुई है। फिल्म के अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे आकाशवाणी की रिकॉर्डिंग है।
1: क्या बात,
0: यानी परेशान हो गए वो कि इसमें इको कितना दिया जाए, बेस कितना दिया जाए। मैंने फिर जाके उसको डब जो किया तो वो वहां बॉम्बे में फिल्म सेंटर में जाके किया। और वहां के लोगों ने, मैं ये भी बात बता दूं आपको, आपकी बात को देर होती है जवाब देने में, मैं उन्होंने कहा कि भाई आप ये बताइए कि आप रामपुर में क्यों पढ़े हुए। मैंने कहा साहब रामपुर में पढ़ा क्या हूँ, मैं ठीक हूँ। तो अभी मैं उस वक्त फिल्म की अहमियत नहीं जानता था। तो मुझे उन्होंने कहा 15 दिन के बाद एक फिल्म हम और देते हैं आपको। लेकिन मेरी वालदैन बहुत कमज़ोर थे, वालदा की हालत बहुत नाजुक थी, वालिद की भी, तो इसलिए मैं खिदमत के लिए आ गया और मैं बॉम्बे मैंने फिर पसंद नहीं किया। मैं आपको वो दोहे सुनाता हूँ शुरुआत।
1: जी जी
0: खुश

0: रंग
1: क्या
0: है,
1: बात
0: ये
1: है
0: यहां से स्टार्ट होता
1: जी
0: है।
1: जी
0: तो ये दोहे मैंने कंपोज किए थे, और ये रंग जो है ये ट्रेडिशनल। और दूसरी
1: जी
0: बात
1: जी
0: ये कि एक जमाने से ये हजरत अमीर खुसरो के ही नाम से मंसूब है,
1: जी
0: और उनकी कंपोजिशनों का तो कोई जवाब ही नहीं है,
1: बेशक
0: कोई भी ले लीजिए।
1: जमील साहब, हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर आपने अपनी परफॉर्मेंस ना दी हो या आपके नाम की एक शाम ना हुई हो।
0: जी,
1: हिंदुस्तान के बाहर भी कहीं जाने का मौका मिला है?
0: मैं अभी ICCR की तरफ से लगभग सऊदीया गया, जिसमें मैंने, मेरे 8 लोग गए थे, उसमें उमरा गवर्नमेंट ने अपने पैसे से
1: अच्छा
0: कराया,
1: अच्छा
0: और मैंने जद्दे में, रियाज में, अबू धाबी में, और दुबई और शारजा, वो काफ़ी जगहें थी, 10 प्रोग्राम थे मेरे। इससे पहले भी मैं गया बाहर। तो सवाल यह है कि मुझे मिले फिर भी हिंदुस्तानी, मुझे मिले फिर भी हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी और बांग्लादेश के, वही समझ पाते हैं। अरब के लोग भी नहीं समझ पाते। अरबी में मुझे गाने ज़्यादा नहीं आते,
1: जी
0: दो एक गाने मैं अरबी में ही पढ़ता हूँ। अरबी फारसी को हमारी कोई ऐसी बात नहीं। तो सवाल ये पैदा होता, हमें फ़क्र इस बात का है कि सुनने वाले समझदार और हर चीज़ को समझने वाले, हिंदुस्तान के दिमाग का कोई जवाब नहीं है। मुझे तो हिंदुस्तान के बाहर ये मालूम होता कि कुछ नाम करने या किसी वजह से गए हैं, वैसे हमें तो
1: हर शाम
0: हिंदुस्तान।
1: यूँ तो यादगार रही होगी, लेकिन जमील साहब की अपनी यादों में कौन सी ऐसी कंसर्ट है, कौन सी ऐसी नाइट है, कौन सी ऐसी शाम है जो आपके लिए बेहद यादगार है और आज भी वो शाम आप भुलाए नहीं भूलते?
0: देखिए, ऐसा है कि कुदरत का निज़ाम ऐसा है मेरे साथ कि असीम साहब, आज तक मुझे कोई परफॉर्मेंस मेरी कोई कहीं फेल नहीं हुई। ये मेरी समझ में नहीं आई बात, ये ऊपर वाले की देन है। मैं किसी शाम की तारीफ करूं, मैं टटोलूंगा तो सभी शामें मुझे अच्छी लगेंगी। आप यकीन करें, मैं ट्रेड फेयर में जाता हूं,
1: जी
0: और क्या क्या नाम है, बड़े बड़े एग्जीबिशन और ये और वो कॉन्फ्रेंसें भी की मैंने। और ये देखिए, कमाल ये है कि जिस पे उस्ताद लोग स्टेज पर है, वहाँ मैंने रामपुर के अंदर बिस्मिल्ला खान साहब, विलायत खान साहब, अमजद अली खान साहब, परवीन सुल्ताना जी, थिरकवा खान साहब, अल्लाह रखे खान साहब, मैं किस किस के नाम ले, रविशंकर जी, ये सब गुदई महाराज, गुदई महाराज के लड़के तो बेचारे मेरे साथ बनारस में कई बार बजाए, इन इन स्टेजों पे मेरा प्रोग्राम हो रहा है, ये मुझे फ़ख्र है। और उस्ताद अमजद अली खान ने मुझे ले जाके VK श्रीवास्तव के यहाँ, कहने लगे, वो सुनाइए अगर याद हो, कि दिल से उठता है जहाँ से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है, तो हजरत वो उस्ताद मेहंदी हसन की ये गज़ल, क्या गज़ल गायक था वो, एक ही पूरी दुनिया में अकेला आदमी था वो। या बेगम अख्तर का नाम ले लें आप, बाकी मेरी समझ में नहीं आया।
1: आज जो संगीत की स्थिति है, ख़ास तौर पर जो नए सिंगर हैं, पहले तो क्लासिकल म्यूज़िक बेहद ज़रूरी माना जाता था, आजकल जो स्थिति आई है संगीत में, अब कोई गुरु की किसी को ज़रूरत नहीं है, सुन सुनकर लोग गायक बन गए, संगीतकार बन गए, तो इस ट्रेंड के बारे में आपका क्या कहना है?
0: मैं अभी एक बच्चे से बात कर रहा था, मेरे यहाँ अभी एक बच्चा शागिर्द है मेरा, वो मैं उस्ताद के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं, क्योंकि ये एक सिलसिला चल रहा है शागिर्दी उस्तादी का, अब तो गंडा भी नहीं बनवाते ना, वो दक्षिणा चढ़ाएं ना कुछ, बस वो एक ट्यूशन जैसे
1: जी
0: के
1: जी
0: पढ़ाने, वो तो ऐसा कुछ सिस्टम हो गया है म्यूजिक का। उससे मैंने ये मालूम किया कि भाई कितनी शैलियाँ, कितने वो हैंगे जो गायकी से मुतालिक चीज़ें हैं, आपको क्या पता है। तो उसने कुछ चीज़ें बताई, तो मैंने कहा बेटे ऐसा है कि पहले तो अपना उच्चारण सही करो, समझे आप, तलफ्फुज़ जिसका सही नहीं, ना वो हिंदी सही पढ़ सकता है, ना उर्दू पढ़ सकता है, ना अरबी पढ़ सकता है, ना फारसी, कोई ज़बान नहीं पढ़ सकता वो। अब देखिए ना, आज के लोग फूल को फूल कहने लगे हैं, ये ज़रूरी है गाने वाले के लिए। लता क्या नहीं है, फिर को उन्होंने फिर कर दिया है। अब ये बताइए कि मैं इन बातों को जब मैं समझाता हूँ, तो अब यहाँ पे कुछ होते हैं, किसी ने अजहर कह दिया, किसी ने जमील कह दिया, किसी ने, तो जब तक तलफ्फुज़ नहीं होगा गज़ल गायकी में। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब आप ये चाहते हैं कि आज का क्या सिलसिला चल रहा है, गज़ल गायकी हो या क्लासिकल हो, ये सब चीज़ें अपनी जगह अपने अपने मकाम पे महदूद हैं, कायम हैं, इनको कोई मिटा तो सकता नहीं। कितनी कोशिश हो रही है वेस्टर्न और उसकी,
1: जी
0: लेकिन मैंने अभी कंपटीशन जो सारेगामा के या वो सुने, तो उसमें कोई गा वो ही रहे हैं सेमी क्लासिकल,
1: जी
0: कंपटीशन उन्हीं का हो रहा है। मधुबन में राधे का नाच है, तो वो भी तो साहब वो राधे के, तो ये मकसद, ये इस टाइप के जितने क्लासिकल फिल्मी गाने हैं, कंपटीशन वही जीत के आते हैं, ये क्या है? अरे भाई हम तो जब जाने कि वेस्टर्न म्यूजिक के कंपटीशन में और उसको मिला के उसको उसका कोई बच्चा निकालिए।
1: जमील साहब बहुत सारे पुरस्कार आपने जीते, बहुत सारे सम्मान आपने हासिल किए और सबसे बड़ा सम्मान इंसान को उसके घर से मिलता है। अपने घर परिवार के बारे में कुछ बताइए।
0: सब बस ये है कि वालदा नहीं है, वालिद नहीं है, कोई नहीं है, बीवी हैं और तीन मेरे माशाल्लाह बच्चे हैं और बीवी की वजह से ये सिलसिला मेरा कायम है। एक अजीब बात है, उनको न गाना आता है न बजाना आता है, लेकिन जब मैं गाता हूँ या कोई भी गाता होता है तो उसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल देती हैं वो।
1: अच्छा,
0: तो उसको जब मैं कंपोजिशन बना के

0: रामपुर रेडियो आता हूँ
1: तो पहले वहां सुना
0: तो
1: क्या था?
0: पहले वहाँ वो मेरे मैं कमरे में गाता होता हूँ तो वो वहाँ से कहती हैं ये गलत है,
1: अच्छा।
0: मुझे ताज्जुब होता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। अच्छा दूसरी बात और है, क्लासिकल का कोई सॉन्ग बजता हो ताल, चाहे 12 मात्रे का हो चाहे 16 का हो या कोई भी मात्र, उस पर उनका पैर जो चलता है वो लय, पता नहीं ये मैंने समझा कि ये कुदरती निजाम है, कमाल है साहब। सुर ताल अल्लाह ताला वहां से भेज देता है और जो नहीं भी जानता उसका पैर चलता होता है और उसका हाथ चलता होता है।
1: संगीत में माना जाता है कि रियाज बेहद ज़रूरी है, और जो अच्छा कलाकार है हर रोज़ रियाज करता है। आप भी रियाज के लिए किस तरह से वक्त निकालते हैं अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से?
0: देखिए मेरा रियाज तो ये था कि मैंने आपसे बताया कि रात को मेरे उस्ताद आया करते थे, तो रात को 12-1 बजे 2 बजे तक मेरा ये सिलसिला चलता था, फिर सुबह उठ के रियाज करता था, फिर मैं बीमार इतना रहने लगा, मेरा पेट खराब हुआ तो फिर मुझे कसरत कराई गई गाने की वजह से, तो मैं अखाड़े जाने लगा, डंड लगा और बैठ के लगाने लगा, तो फिर अम्मा हमारी रियाज के बाद 5 बादाम घोंट के दिया करती थी वगैरह वगैरह, तो इससे इसकी वजह से बड़ा मकसद रियाज में हमें सहूलत मिलती थी और गले को ताकत मिलती थी। हमारे 2.5-3 घंटे तो शुरू में हम करते थे, फिर तो हमें तादाद ही नहीं पता कितने कितने घंटे हमने रियाज की।
1: अब दिन कितने बजे शुरू होता है?
0: अब तो हमारा यह है कि गोली खा के सोते हैं और गोली का जब नशा ख़त्म होता है तो फिर हम उठते हैं, तो फिर कुछ परहेज की चीज़ें, अभी भी हम बादाम मुनक्के का सेवन ज़रूर रखते हैं क्योंकि अगर सीने में दम नहीं है तो गा नहीं सकेगा। और रियाज तो यूं हो जाता है कि किसी को सिखा रहे हैं तो रियाज कर लिया, कोई आ गया तो कोई गा रहा तो उसके गाने को पकड़ लिया, अब रियाज वैसे नहीं होता जैसे हम घंटों किया करते थे।
1: जमील साहब, बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी हुई होंगी और बहुत सारी तमन्नाएं अभी पूरी होनी बाकी भी होंगी।
0: मेरी तमन्ना, मैंने बड़ा अच्छा वो उसको तज्जिया किया है,
1: जी
0: और तज्जिया मकसद ही मैंने ये तय किया है कि मुझे जो इनाम इकराम इज्जत शोहरत मिलना थी मैं इससे बहुत मुतमईन हूँ। मैं अब ये नहीं चाहता कि आसमान की तरफ जाऊँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि खिदमत करते करते आप लोगों की, रेडियो की, टीवी की, अपनी गवर्नमेंट की, करते करते मैं इस दुनिया से गुजर जाऊँ, कोई शोहरत की अब तमन्ना नहीं।
1: हमारी ये दुआ है कि आप लंबे समय तक हमारे साथ रहें, आपके संगीत के रंग आकाशवाणी रामपुर के जरिए और संगीत संध्याओं के जरिए श्रोताओं तक पहुंचते रहें। हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं तो साहब, मैं अच्छा हुआ आपने मुझसे पूछा, मैं समझा कि आप बात खत्म कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि पहले गाने वाले को बजाना चाहता है या सीखना चाहता है गाना या बजाना कुछ भी, तो उसको पहले लालच खत्म करना पड़ेगा। ये जो मैंने आज तक आकाशवाणी के साथ तो कोई गलती शायद नहीं की, वजह मैंने एक तो बात ये सोची कि फ्री फंड में मुझे चेक भी मिलता है और मेरी पूरी दुनिया आवाज सुनती है, कितनी बड़ी शोहरत है मेरी कि यहाँ के अलावा मुझे जानते हैं लोग, और इसमें अगर कोई फ्री मुझे बुलाए तो मैं रिकॉर्डिंग के लिए आ जाता हूँ और आ सकता हूँ,
1: जी
0: और मैं यही कहता हूँ कि लोग जो इसको कमर्शियल समझ के आते हैं ये गलती है, और गाने वाले को लालच पहले हटाना चाहिए और अपनी कला को आगे बढ़ाना चाहिए। पहली बात, गाने वाले के लिए तलफ्फुज़ की बहुत ज़रूरत है, अदब की बहुत ज़रूरत है, इबादत की बहुत ज़रूरत है। इबादत नहीं करेगा तो गाना बजाना या कोई भी कला नहीं आएगी, और अगर गलत राह पे जाता है तो उस वो कला से बहुत दूर हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि प्यार बढ़ाएं, मोहब्बत बांटें और खिदमत हर एक की करने की कोशिश करें, और अल्लाह या भगवान को भूलें ना। ये कला ऐसी है कि ये बड़ी जल्दी अल्लाह से मिलवा देती।
1: जमील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए इतना
0: मैं तो
1: वक्त
0: आपका
1: निकाला।
0: शुक्रगुजार हूं कि आपने इस स्टूडियो में मुझे बुला के और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने मुझसे की, कि खैर बहुत बहुत इनायत आपकी, शुक्रिया, और आकाशवाणी परिवार का भी मैं शुक्रगुजार हूं।
2: श्रोताओं, ये थी जिंदगी के आईने में कार्यक्रम की आज की कड़ी। अगले अंक में फिर हमारे साथ होगी एक और शख्सियत। तब तक के लिए असीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरोहर के अंतर्गत धारावाहिक जिंदगी के आईने में। आज आपने सुना इसका एपिसोड 12। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित कार्यक्रम मन भावन।

सभी सुनने वालों को शाजिया परवीन का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की ये पहली शब्दावली हमें लिख भेजी है अनु बड़जातिया ने। इन्होंने लिखा है, निसर्ग का एक नियम है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। संत कबीर जी का वचन है, प्रेम की गली अति संकरी, जहां में दो न समाए। एक जगह में दूसरा जब कभी भी समा जाए तो पहले का वहां से 9, 2, 11 हो जाना पड़ता ही है। जैसे प्रकाश का आगमन होते ही अंधेरा भाग जाता है, नष्ट होता है, और बरसात के आने से धूल और गंदगी गायब होती है। हवा की लहर आ जाने से गर्मी छूमंतर हो जाती है, और कड़ाके की ठंड में सूरज की किरणें पड़ते ही ठंड रफूचक्कर हो जाती है। इसी नियम से मन में अच्छे विचार के आ जाने से बुरे ख्यालात भी नष्ट हो जाते हैं, बदी पर नेकी की विजय होके रहेगी। इसलिए हमें सदा के लिए सकारात्मक सोच रखनी है, नकारात्मक बातों की गंदगी मन में कभी जमा ना हो सके, मन की शुद्धता हो। इन्होंने शब्दावली एक माँ पर लिखी है जो कि बहुत ही प्यारी है। ये लिखते हैं, सबको गर्म खाना खिलाते हुए अक्सर माँ के हिस्से आती रहीं बची हुई रोटियाँ। अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, ये कहकर उसने भूख भर खाने की तमीज सिखाई। थाली में जूठन छोड़ने से पृथ्वी को दुख होता है, भूखे पेट सोने से चिड़िया भर मांस कम हो जाता है देह से। उसमें अबोध मन में डाली यह बात कि अपने शरीर का ध्यान रखना कर्तव्य है। उससे दूर रहते हुए भी अलग अलग शहरों के हॉस्टलों में भूख और रोटियों ने मुझे जोड़े रखा। उससे सबसे ज़्यादा कुछ अच्छा खाकर उसकी याद कम आई, लेकिन भूखे रहकर उसकी याद बहुत आई। बीमार होने पर उसकी याद बहुत बहुत आई। त्योहारों पर उसके बनाए पकवानों की सुगंध आँखों से बह गई। समय के चाक ने रोटियां बनाना भी सिखा दिया, बस ये पता ही नहीं चला कि कब रोटियों का बासीपन माँ की थाली से उतरकर मेरी थाली में चला आया।

अगली शब्दावली हमें लिख भेजी है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी जी ने। इन्होंने लिखा है, ये जिंदगी कितनी अजीब है ए दोस्त, तुमको अलविदा भी तक न कह सका, तुम्हारे साथ रहने का शौक था, तुम्हारे शहर में भी न रह सका। जिंदगी एक ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। जिंदगी के बहुत से रूप हैं मगर जिसको समझना बहुत मुश्किल है। हर इंसान ने जिंदगी को अलग अलग नाम दिए हैं। जिंदगी को किसी ने पहेली कहा, जिंदगी को किसी ने लतीफ़ा, जिंदगी को किसी ने जंग कहा, जिंदगी को किसी ने सुहाना सफ़र कहा।

तनहा ज़िंदगी, क्या ये समझ पाना बहुत मुश्किल है? ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, फिर भी इंसान सारी मुश्किलों को नज़रअंदाज करता चला जाता है, इस उम्मीद के साथ कि मुश्किलें उठाने के बाद शायद उसे कुछ आराम मिले, मगर ऐसा नहीं होता है। एक मुसीबत दूर होती है, दूसरी आने को तैयार होती है। हिम्मत वाला व्यक्ति वही होता है जो मुसीबतों की परवाह ना करे और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जीता रहे। यही जीवन है, यही ज़िंदगी का दस्तूर है।

गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान ये लिखते हैं, माँ तेरे बेकरा एहसान भुलाऊं कैसे, खुद को एहसान फरामोश बनाऊं कैसे, तूने बचपन में बड़े नाज से पाला मुझको, धूप के वक्त नहीं घर से निकाला मुझको, लाल कहती तो कभी प्यार से लाला मुझको, फूल की तरह हर वक्त संभाला मुझको, मैं तेरे पाऊं ना फिर आज दबाऊं कैसे, खुद को एहसान फरामोश बनाऊं कैसे, सिर्फ इतना ही नहीं दूध पिलाया तूने, लेकर आगोश में झूला भी झुलाया तूने, अपने हाथों से निवाला भी खिलाया तूने, नाम ईश्वर अल्लाह का लेना भी सिखाया तूने, जो सबक तूने पढ़ाया वो भुलाऊं कैसे, खुद को एहसान फरामोश बनाऊं कैसे।

कार्यक्रम की अगली शब्दावली हमें लिख भेजी है राजद्वारा कोठी अफसर आला रामपुर से रूमा खान, बॉबी खान, सुभान, मदीहा, गुलफशा, जीनत अमान, शबनम अब्बासी और शमा परवीन ने। ये लिखते हैं, शिक्षा ऐसा मोती है जिसकी चमक मांद नहीं पड़ती। शिक्षा ऐसी नेमत है जो हर इंसान को नसीब नहीं होती। शिक्षा ऐसी खुशबू है जो इंसान के जहन को हमेशा मुअत्तर रखती है। शिक्षा ऐसी रोशनी है जो भटके हुए इंसान को सही रास्ता दिखाती है। शिक्षा ऐसी रूह है जो हर इंसान को नई जिंदगी अता करती है। शिक्षा ऐसी तलवार है जिसकी धार तलवार से भी ज़्यादा तेज है। शिक्षा की शमा कभी नहीं बुझती। शिक्षा ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। शिक्षा वो दौलत है जो पत्थर दिल इंसान को भी मोम बना देती है।

कार्यक्रम की ये अगली शब्दावली हमें लिख भेजी है ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी रईस दूल्हा अंसारी। ये लिखते हैं, अपनों का दुख दर्द क्या है, इंसान को ज़्यादा तकलीफ़ गैर नहीं देते बल्कि अपने ही देते हैं, क्योंकि अपने लोगों को हमारी कमज़ोरियों का पता होता है। वो लफ्ज़ों से वार करते हैं और ऐसे ज़ख्म देते हैं जो जिस्म पर नहीं बल्कि दिल पर लगते हैं। अपनाइयत का दिखावा करके वो ऐसे घाव देते हैं जो वक्त के साथ भी नहीं भरते। खामोशी में भी दिल बहुत कुछ कहता है मगर कह नहीं पाता है।

0: इसके साथ ही आज का मन भावन अब संपन्न हुआ। शाजिया परवीन को दीजिए इजाजत, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे मन भावन, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12 बजे हैं, अब दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्धि और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों को का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने बताया कि इस साल मिजोरम पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भीषण लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुछ आवश्यक सूचना। सूचित किया जाता है कि श्री राजपाल पुत्र बनवारी लाल निवासी ग्राम महाराणा थाना नखासा जनपद संभल ने सूचित किया है कि उनकी पत्नी रेशमा, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, जो कि दिनांक 16 अप्रैल 2026 को दिन में घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं और अब तक उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। गुमशुदा का हुलिया रंग गेहुआ, कद 5 फीट 1 इंच, कपड़े लाल कुर्ती पहनी है और पैरों में चप्पल पहने हैं। बाएं हाथ की बांह पर जले का निशान है। इनके विषय में किसी को भी सूचना मिलने पर कृपया बताए जा रहे नंबरों पर सूचित करने का कष्ट करें। श्री राजपाल पुत्र बनवारी लाल निवासी ग्राम महाराणा थाना नखासा जनपद संभल, मोबाइल नंबर 9639963990। नंबर एक बार फिर 9639963990। जांचकर्ता उपनिरीक्षक श्री अरुण कुमार थाना नखासा जनपद संभल, मोबाइल नंबर 9012176188। नंबर एक बार फिर 9012176188। प्रभारी निरीक्षक थाना नखासा जनपद संभल, मोबाइल नंबर 9454404053। नंबर एक बार फिर 9454404053। क्षेत्राधिकारी असमौली जनपद संभल, मोबाइल नंबर 9453805413। नंबर एक बार फिर 9453805413। सूचना समाप्त हुई।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों की निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

0: की इस चिंगारी से दिल मोम हुआ है पत्थर का, अजमेर की जामा मस्जिद में खुद अक्स है जैनी मंदिर का।
1: जी हाँ, कसरत में वहदत की शानदार मिसाल।
0: मुख्तलिफ रंगो नस्ल और अलग अलग खुशबुओं के खूबसूरत फूलों का हसीन गुलदस्ता।
1: हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान,
0: दुनिया का एक वाहिद मुल्क,
1: गंगा जमनी तहजीब की एक अनूठी मिसाल।
0: आइए रखें इस इत्तेहाद को कायम,
1: अपने मुल्क को बनाएं अमनो सुकून का गहवारा।
0: हम एक थे,
1: हम एक हैं,
0: हम एक रहेंगे,
1: कायम करेंगे अमन,
0: देंगे सबक दुनिया को
1: प्यार का।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 12:10 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम।

सभी सुनने वालों को शाजिया परवीन का नमस्कार। कार्यक्रम की ये पहली फरमाइश हमें लिख भेजी है गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती ऊषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबीहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय, जिला मुरादाबाद बस्तौर से अतर सिंह सैनी, मुन्नी, पवित्रा, अजय, आंचल, विक्की, आकांक्षा, आकाश सैनी, दक्ष, छवि, आराध्या सैनी, मझोली से हीरावती देवी और सभी सैनी परिवार, मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, सुनील पोहरकार, साहिल पोहरकार, अंश पोहरकार, सुजाता पोहरकार, बीट शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल, रामनिवास अग्रवाल, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर पोस्ट लपरी ग्राम मुंडेला से कुमारी चंदा, कुमारी चांदनी, आकाश कुमार, कन्हैया लाल, रीता देवी, अफजलपुर पट्टी तहसील सदर जिला रामपुर से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलाल मिस्त्री, रूमा, मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, कविता, आशु गौतम, गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, रूमा खान, बॉबी खान, शमा खान, मिक्की खान, बुशरा खान, आसिम खान, जिला अस्पताल के पास से गजन खान, शमा परवीन, शमशाद अली अजम, गुलफ शाह, शहनाज बाबू अंसारी, रजिया गफ्फार और हबीब अहमद इदरीसी, परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, आफरीन खान, जमीर खान, सेक्स्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, रामनगर रोड शांतिनगर इंदौर से कुमारी देविका चौधरी, कविता, संजय वाणी, मनीष वाणी, ब्रोनो खर्चे, मालेगांव से दत्ता घायल, सुनीता बाई घायल, सानिका घायल और गजानन घायल। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म अकेले हम अकेले तुमसे ये गीत।

सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, चेतक बिरक और मीका बिरक। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी कव्य और भाई सुच्चा पाठक। जामरूनता अर्धापुर से दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन जोशी, संजय जोशी, आशीष जोशी, पृथ्वीराज जोशी, साध्वी जोशी, परभणिहून और गणेश हरगांवकर। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, साइमा खान, मुश्तबा खान, आफिया खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साईं गायकवाड़। नलेश्वर नगर नरवेल से पी एस नहावकर और विशाल नहावकर। बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, अंचल चंचल ढोमने, अर्जुन गमनेकर और धीरज सव्वाशेरे। डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा। करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप गगलानी। पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी। डोंगरगांव ज़िला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। श्री रोगडेश्वर नगर पांगरा शिंदे तहसील बसमत ज़िला हिंगोली महाराष्ट्र से टेलर रामचंद्र धोंडीबा इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिकू इंगोले, रमाबाई सुरेंद्र इंगोले, मयूरी सुरभि, मंजुषा गौतम इंगोले, नामदेव राव शिंदे पाटिल, मास्टर विलास शिंदे पाटिल, सुनील जबडे। अशोकनगर वसमत ज़िला हिंगोली महाराष्ट्र से दीपाली राजू ठोके, पार्वती सखाराम ठोके, रोहित सोनू मोनू ठोके। जीजा माता नगर हिंगोली महाराष्ट्र से लक्ष्मी उत्तम कांबले। तामसा रोड तहसील हदगांव से श्याम राव पटघणे और बेबी बिट्टू पटघणे। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म तमन्ना से ये गीत।

अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, दिव्यांश और बंशीलाल श्रीवास्तव। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हिना कौसर, मोहम्मद वकील, राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश गवाड़कर, श्वेता सुमित गवाड़कर, ध्वनि गवाड़कर उर्फ परी। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता गवाड़कर और टुक टुक। बोरखेड़ा विप्रमल जिला उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूड़त। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी और सायमा नदीम। सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार। पंडित नगला बाईपास कोहिनूर तिराहा के पास से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुन निशा, असलम हुसैन, डॉक्टर महमूद हसन। बीबीपुर से मकसूद हुसैन, नाजिम अली। कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी। ग्राम हरनगला मंदिर के पास सवार से नब्बन खां, इब्बन खां, नाजिम खान, सलमान, शाहरुख खान और आरिश खान। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रैयांश ठाकुर। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। चंदन नगर सातारा से सतीश वाघमारे, अतीश वाघमारे, स्वाति वाघमारे, वर्षा वाघमारे, श्रमण वाघमारे, श्रमेण वाघमारे। वारणा शाहपुर कोल्हापुर से विजय चेहवाण, तेजस्विनी चेहवाण, अंकिता चेहवाण, अनिकेत चेहवाण और माया चेहवाणा। ये सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म नाम से ये गीत।

शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी। जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौसर, डॉक्टर इशिता साहनी, डॉक्टर प्रियंका मोदी, डॉक्टर सोनम और अफजाल मलिक। पुराना तालाब डुमराव से

खातून अंसारी और मोहम्मद समी अंसारी, इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, छटिया पोखरा डुमराव से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर, जरूर वरूड महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाड़ोदे, मेघड़ से वसीम अकरम नूरजहां, राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, निवान शर्मा, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले, वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से जय राम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म हाथी मेरे साथी से ये गीत।

भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, ओम कुमार। गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान और अनु खान। गुवाहाटी असम से हरेन पांड्या, नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या। वाड़ी खामगांव से अनंता वाणे, रामेश्वर वाणे, शुभम साक्षी खुशी और समस्त वाड़े परिवार। जिला अमरोहा नई बस्ती पतेई खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन, सरथना मेरठ से आदि जैन, अंश जैन और भव्य जैन। ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंह नगर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी।

मुंबई से अनु बढ़ जाती है। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी, आराध्या साहू। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म दिल है कि मानता नहीं से ये गीत।

0: मीठे कुएं रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, फिरासत, अर्पित रस्तोगी, अभय, रिया, आरुष, आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से ये गीत।
1: आंसू पी के भी जो मुस्कुराए

इसके साथ ही आज का गीत आपके नाम अब संपन्न हुआ। हमें रहेगा आपकी फरमाइश का इंतज़ार। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है गीत आपके नाम airrampur@gmail.com। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है गीत आपके नाम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन संख्या 244901। अब शाजिया परवीन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: रामपुर केंद्र है। 1 बजे हैं, अब दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा, फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: Economic resilience should be promoted.
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जलडमरू मध्य में स्वतंत्र

0: क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी गुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया। गुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: अब से थोड़ी देर यानी 1:15 पर सुनिए कार्यक्रम परिवार जगत। इसमें आप सुनेंगे चर्चा, विषय जीवन में अनुशासन। परिचर्चा का विषय रहेगा रेडियो की तरंग परिवार के संग, आकाशवाणी के 90 सालों का सफर। आज दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे 70 के दशक के कुछ फिल्मी नगमे, कार्यक्रम सुनहरा दौर में।
1: ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: देखा, हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा।

0: नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
1: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
2: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
0: आई नो ना।
2: RBI कहता है,
3: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
4: फिल्मी गीतों का कम्बेट कार्यक्रम आज शाम आप सुनेंगे, आज शाम 5 बजे। युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे, आज चर्चा इमारतें बोलती हैं, घुमक्कड़ी और आज की बातचीत। समय याद रखिए, आज शाम 5:15 पर। आज शाम 6:10 पर सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कृषि जगत में आज आप सुनेंगे बीज चयन और शोधन पर चर्चा। भेंट वार्ता होगी डॉक्टर अमरजीत सिंह राठी और जसमेंद्र सिंह की। विषय रहेगा धान की उन्नत प्रजातियां, लोकगीत और कृषि संकेत के अंतर्गत औषधीय फसलों से अधिक आय और मौसम की जानकारी। समय याद रखिए, आज शाम 6:20 पर।

कानून और हम ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज शाम 7 बजे। सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे जगजीत सिंह की गाई कुछ गजलें। समय रहेगा आज शाम 7:31 पर। अनुरोध गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल आप सुनेंगे आज रात 8 बजे। कवि गोष्ठी आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। कलाकार हैं डॉक्टर दुर्गा तिवारी, दीक्षा यादव, दिया आर्या और जनक पाल सिंह। और गीतांजलि आप सुनेंगे आज रात 10:30 पर। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:10 हुए हैं। अब सुनिए इलाकाई खबरें आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। सत्र जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल प्रेसिडेंट हाउस में मुनक़िद नागरिक अलंकरण जलसे में साल 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म अवार्ड से नवाजा। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सरफराज किया गया। जाने माने फिल्म अदाकार धर्मेंद्र सिंह देओल को फन के शोबे में उनके ताउन के लिए बाद अजमर्क पद्म विभूषण से सरफराज किया गया। फिल्म अदाकार की अहिल्या और लोकसभा रुक्न हेमा मालिनी ने यह अवार्ड हासिल किया। वायलिन जाने वाले डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सरफराज किया गया। पद्म विभूषण गैर मामूली और खसूसी खिदमत के लिए, पद्म भूषण खसूसी खिदमत के लिए और पद्मश्री किसी भी शोबे में खसूसी खिदमत के लिए दिया जाता है। साल 2026 के लिए सदर जमहूरिया ने 131 पद्म अवार्डों को मंजूरी दी है। बकिया पद्म अवार्ड फातेहीन को बाद में मुनक़िद होने वाले जलसे के दूसरे मरहले में अवार्ड से नवाजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज नगर निगम लखनऊ की 342 अवामी बहबू

0: बुनियादी प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। 413 करोड़ रुपए के लागत वाले इन प्रोजेक्टों की शुरुआत स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ से मुतालिक पुस्तिमक्का का इजरा भी किया। प्रोग्राम में वजीर आला ने अपने खिताब में कहा कि लखनऊ नगर निगम को सफाई रैंकिंग में मुल्क में तीसरा मकाम मिलना एक बड़ी हुसूलियाबी है। उन्होंने कहा कि हमें अब लखनऊ को अव्वल नंबर पर लाना है। वजीर आला ने कहा कि नगर निगम के साथ आवाम की जिम्मेदारी है कि वो लखनऊ को साफ और खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा करें। वजीर आला ने कहा,
1: मैं आभारी हूँ उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का, जिन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 17 नगर निगम में चुनाव हुए थे और 17 की 17 नगर निगम की सीट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाली थी। सभी 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का अपना पूरा बोर्ड बना और उसी का परिणाम है कि नगर निगम ने इन 3 वर्ष में कुछ प्रतिमान भी स्थापित किए।
0: हुकूमत मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की हमवार फराहमी यकीनी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मगरबी एशिया तनाज़ों पर कल नई दिल्ली में मुनक़िद बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने ये बात कही
2: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: वजीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम रियासतों को खत लिखकर 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 के री एग्जाम को महफूज, हमवार और कामयाबी के साथ मुनक्किद करने की अपील

0: से ज्यादा 6 महीने की मुद्दत के लिए आउटगोइंग गांव प्रधानों को गांव पंचायतों का इंतजामिया मुकर्रर किया है। रियासत के गांव पंचायतों के प्रधानों की मुद्दतकार आज खत्म हो रही है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के अहकाम के मुताबिक सभी जिला मजिस्ट्रेटों को गांव पंचायतों में आउटगोइंग प्रधानों को इंतजामिया के तौर पर नामजद करने का हक दिया गया है। ये सभी कल से इंतजामिया के तौर पर कामकाज संभालेंगे। इन सभी को सिर्फ मामूल के मुताबिक और रोजाना के कामों को करने की इजाजत होगी और उन्हें कोई भी हिकमत अमली का फैसला करने की इजाजत नहीं होगी। हुकूमत ने यह भी वाजे किया है कि अगर किसी भी हालत में कोई हिकमत अमली का फैसला जरूरी हो तो जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद ही यह फैसला किया जा सकता है। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के लाखों लोग आज सऊदी अरब में हज करेंगे। 5 रोजा हज के पहले दिन कल आजमीन हज मिना के टेंट सिटी में जमा हुए। आजमीन हज आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पेश आए एक शदीद सड़क हादसे में औरास थाना हलके के किलोमीटर 262 पर दिल्ली से गोरखपुर जा रही मुसाफिरों से भरी एक डबल डेकर बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। इस हादसे में 5 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए जबकि एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही मकामी इंतजामिया ने फौरन मौके पर पहुंचकर राहत और रसानी का काम शुरू कर दिया। दरियास्ता उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पेश आए सड़क हादसे में जानो माल के हुए नुकसान पर रंज का इजहार किया है। साथ ही मरने वालों के लवाहिकीन के तई सब्र की दुआ की है। दरियासना गुजिश्ता शब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पेश आए एक हादसे में कैची धाम जा रहे 4 अकीदतमंद जा बहक हो गए और 3 जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार खड़े ट्रेलर से टकरा गई। और कल पूरी रियासत में दिन भर की तेज धूप, शदीद गर्मी और लू के दरमियान रात में अचानक मौसम का मिजाज तब्दील हो गया। रियासत के गोरखपुर और अयोध्या समेत कई दीगर जिला में गुज़िश्ता शब तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को फिलहाल शदीद गर्मी से कुछ राहत दी। अयोध्या और जौनपुर में भी आज सुबह तेज हवाओं और बारिश से मौसम तब्दील होने की खबर है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम परिवार जगत।

0: परिवार जगत कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है और स्वीकार करें सुनीता सिंह का प्यारा सा नमस्कार
1: और साथ ही आयशा अनवर का भी प्यारा सा नमस्कार और आदाब। आज हम बात करेंगे जीवन में अनुशासन कितना जरूरी है इस विषय पर। श्रोताओं, जीवन में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे व्यक्तित्व का आधार बनता है।
0: बिल्कुल सही कहा आयशा, अनुशासन से ही हमारा जीवन क्रमबद्ध रूप से और सही से और योजनाबद्ध तरीके से चलता है। और जब हम समय के पाबंद होते हैं, नियमों का पालन करते हैं और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हैं, तो हम जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करते हैं और सफलता हासिल करते हैं।
1: सुनीता जी, अनुशासन के बिना जीवन में अराजकता फैल जाती है जिससे सभी को प्रभावित होते हैं और हमारा जो लक्ष्य है वो अधूरा सा रह जाता है। अगर पढ़ाई में भी अनुशासन हो तो विद्यार्थी अच्छी तैयारी कर पाते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: और साथ ही समाज में ऐसे व्यक्ति ही सम्मानित होते हैं क्योंकि वे नियमों का पालन करते हैं और दूसरों के लिए आदर्श बनते हैं। अनुशासित रहने से हम केवल अपने जीवन को सफल बनाते हैं बल्कि अपने परिवार और समाज का भी मान बढ़ाते हैं।
1: इसलिए हमें सदैव अनुशासन के मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। अगर श्रोताओं, प्रकृति का अनुशासन भंग हो जाए तो शायद ये सृष्टि ही खत्म हो जाए क्योंकि मौसम परिवर्तन एक अनुशासन ही तो है।
0: बिल्कुल सही कहा आयशा, और आजकल देखा जाए तो अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। और जैसे कि आपने मौसम का बताया, मौसम हमारा जो है समय के अनुसार होता है, सर्दी गर्मी बरसात, ये चीज़ें अगर समय के अनुरूप चलती हैं, अगर इसके विपरीत चलें तो देखिए
1: सब
0: कितना
1: कुछ
0: बुरा हाल
1: बिगड़
0: होगा।
1: जाता है।
0: बिल्कुल, तो इसी तरीके से जो है अनुशासित व्यक्ति जो है सफलता हासिल करता है और हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी हासिल करता है।
1: सुनीता मैम, विद्यार्थियों में भी, अध्यापकों में भी।

0: और यहाँ तक कि समाज के व्यापारी वर्ग, उद्योगपति, राजनेताओं में भी अनुशासन की परिभाषाएं आजकल बदलती जा रही हैं। उनके व्यवहार में उड़ंगता, अनाचार, अशांति के अलावा कुछ नजर नहीं आता है।
1: और आज हर व्यक्ति चारित्रिक रूप से भी अनुशासनहीन होता जा रहा है, लेकिन आज के समय में सभी को अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो देश की सीमा पर तैनात हो, सैनिक हो या शिक्षा संस्थानों में कार्यरत हो या शिक्षक हो, सभी को अनुशासित रहना बहुत ही ज़रूरी है।
0: साथ ही विद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्र, जो कि हमारी युवा पीढ़ी हैं, सभी छात्र छात्राओं को कार्यालयों में तैनात कोई भी कर्मचारी और राजनेता या देश की बागडोर संभालने वाला राजनेता, मंत्री अनुशासन की राह पर चलकर ही देश का नाम उज्जवल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और अनुशासन वह सीढ़ी है जिस पर चलकर व्यक्ति सफलता और लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर सकता है। इसलिए अपने जीवन में अनुशासन को सबसे पहले लाइए और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आयशा भाई, ये तो रही हमारी चर्चा। और अब देखिए, इतनी तेज गर्मी है, धूप है और जेठ की भरी दोपहर है। आप शायद आई होंगी तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही।
0: बहुत गर्मी लग रही है मुझे तो
1: एक प्यारा सा गीत सुन लें।
0: बिल्कुल।

0: सुनीता जी, रेडियो जो है वो मनोरंजन के साथ साथ और भी उसके साथ जो माध्यम है वो हमारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिससे हम सभी को मनोरंजन के साथ साथ अनुशासन, शिक्षा और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी पेश किए जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आयशा, और आपने हमें बिल्कुल और बहुत ही जल्दी याद दिला दिया कि आज की जो हमारी चर्चा है ना, उसका भी विषय यही है, रेडियो की तरंग परिवार के संग। और इस परिचर्चा में हमारे साथ शामिल हैं डॉक्टर हिमांशु शेखर रथ और नीना टंडन।
0: तो क्यों ना अपने श्रोताओं को ये परिचर्चा सुनवाई जाए।
1: बिल्कुल श्रोताओं, रेडियो की तरंग परिवार के संग इस विषय पर परिचर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु शेखर रथ और नीना टंडन, और हम मना रहे हैं आकाशवाणी के 90 स्वर्णिम सालों का जश्न। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है और मैं हूँ सुनीता सिंह। तो हम बात करेंगे रेडियो की तरंग परिवार के संग विषय पर।
2: सुनीता जी, मुझे आपके बात पर एक दो लाइनें याद आ रही हैं जिन्हें मैं सुनाना चाहूंगी
1: जी।
2: कि हवाओं के रुख पर जो संगीत घोल दे, बंद कमरों में जो पूरी कायनात खोल दे, नसीबों से मिला है हमें तरंगों का सफर, जो बिना देखे भी दिलों के राज बोल दे, तो आज हम आकाशवाणी यानी जो हमारा प्यारा प्रसारक है अपने 90 वर्षों का ऐतिहासिक सफर पूरा कर चुका है। तो मुझे याद आती है वो सिग्नेचर जादुई ट्यून, जब वो गूंजती थी तो वो एक ध्वनि आवाज नहीं होती थी मैम, बल्कि वो परिवार को इकट्ठा करने का एक अलार्म होती थी जिसमें पूरा परिवार एकत्रित होकर बैठ जाता था।
1: बिल्कुल सही कहा, और उस समय रेडियो का इतना क्रेज था कि बस रेडियो के मतलब चारों ओर बैठ जाते थे, कोई भी न्यूज कोई भी प्रोग्राम आ रहा है तो बड़ी शिद्दत के साथ उसको सुनते थे, और बहुत ही तो जो पुराना इतिहास है हिमांशु जी, हम रेडियो का जो से उसके बारे में पूछना चाहेंगे, रेडियो की क्या परिभाषा है आप विस्तार से बताएं इस बारे में।
3: विद्युत चुंबकीय तरंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उपयोग करके ध्वनि हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरा स्थान के तक भेजती है और प्राप्त करती है। रेडियो की इतिहास ये है कि 1887 में हेनरिक हटरज रेडियो तरंग की खोज की, 1896 में इटाली की गुगली एमलो मार्कोनी ने पहला व्यावहारिक वायरलेस टेलीग्राफ सिस्टम विकसित किया एवं पेटेंट कराया। 1906 में कनाडाई वैज्ञानिक रेगिना लॉर्ड फेसेंडन पहला रेडियो प्रसारण किया। भारत में 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब के साथ रेडियो की शुरुआत हुई। 1927 में रेडियो सरकारी नियंत्रण को आया। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो बना। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम दिया गया। 1957 में विविध भारती शुरू हुई। 1977 में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो या FM रेडियो चेन्नई में शुरू हुआ। 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन स्वायत्तता देने के लिए प्रसार भारती बना।
1: अब नीना जी, हम आपकी खातिब हैं कि रेडियो का परिवार के साथ क्या तालमेल है और कैसे काम करता है एक परिवार के बीच में रेडियो।
2: रेडियो ने परिवार के बीच में एक पुल का काम किया है
1: जी।
2: देखिए ना कि जब रेडियो शुरू होता था उस समय से लेकर बच्चे, बूढ़े, युवा सभी उसके पास आकर बैठ जाते थे, और ऐसा नहीं था कि वो उसको बदल बदल कर प्रोग्राम सुन रहे हैं, जो एक प्रोग्राम चालू हो गया उसको सभी लोग सुनते थे
1: जी।
2: जैसे बच्चों ने अगर अपनी नैतिक कहानियां सुनी तो बच्चों ने नैतिक कहानियों के माध्यम से धैर्य रखना सीखा, ये सीखा कि मुसीबत के समय में किस तरह निकला जा सकता है, मुसीबत से बचा जा सकता है। अगर उन्होंने बाल गीत सुने तो बाल गीत के माध्यम से उन्होंने गुनगुनाना सीखा और इस गुनगुनाट को उन्होंने एक मंच प्रदान कर दिया। जैसे स्कूलों में उन्हें ले लिया जाने लगा सभी प्रोग्रामों में और बच्चों को एक मंच मिला, उनकी भाषा का विकास हुआ, उन्हें शुद्ध बोलना आया, उनके सुनने की क्षमता बढ़ी, क्योंकि रेडियो सुनने में तो देखिए धैर्य की आवश्यकता होती है सुनीता जी।
1: बिल्कुल,
2: और ऐसा नहीं होता कि आपने चैनल बदला और दूसरा सुनने लगे
1: जी।
2: तो बच्चों के अंदर धैर्य आया, उनकी भाषा शुद्ध हुई, और जब उन्होंने विज्ञान के विषय में सुना तब उन्हें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि मछली पानी में क्यों रहती है, मछली जमीन पर क्यों नहीं तैरती। उनका ज्ञान बढ़ा, उन्होंने इसको पढ़ा, और जब उन्होंने इतिहास के बारे में पढ़ा तो आज हम लोग रामपुर में बैठे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी उन्हें रामपुर के इतिहास के बारे में जिज्ञासा हुई और रामपुर का इतिहास उन्होंने खंगाल डाला। और आप ये देखिए इसमें रेडियो में कितने ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आते हैं जो लोगों के ज्ञान में वृद्धि करते हैं और लोग उनसे सीखते हैं। ये तो बात मैंने बच्चों की करी
1: जी।
2: अब देखिए युवाओं के लिए क्या हुआ, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मिले। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी युवाओं ने घर बैठे ही कर ली, उन्हें कहीं किसी ट्यूशन में नहीं जाना पड़ा, उन्हें कहीं और जाना नहीं पड़ा, उन्हें गाइडेंस मिल गई, देश विदेश की खबरें मिल गई, बैठे ही बैठे अपने ही देश में बैठे बैठे वो विदेश भी घूम आए, करंट अफेयर्स की जानकारी मिली जिनने उन्हें अपडेट रखा, कहीं वो पीछे नहीं रहे किसी से भी। महिलाओं के लिए अगर बात करती हूँ मैं तो महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की बारे में उन्हें जानकारी मिली, शिशुओं की नन्हे शिशुओं की देखभाल कैसे करी जाए उन्हें ये सुनने को मिला। महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, क्योंकि आपको पता है महिलाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में आज जहाँ फैसिलिटीज कम है तो वहाँ देखिए उनको कितना कुछ रेडियो के माध्यम से ही सीखने को मिला
1: जी।
2: संतुलित आहार के बारे में जानकारी मिली, कितने लोग नहीं जानते होंगे कि आज के समय में जैसा कि हमारा प्रदूषण और चल रहा है, पर्यावरण हमारा सही नहीं चल रहा, तो किस तरह से संतुलित आहार लिया जाए, डॉक्टर की सलाह भी मिली, घरेलू उद्योग धंधों के बारे में जानकारी मिली और यहाँ तक कि महिलाएं किस तरह आत्मनिर्भर बने इसके विषय में उन्हें जानकारी मिली। इसके अलावा अगर सुनीता जी मैं बताऊं तो कई बार मेरी तो, अगर आप यकीन मानिए, मेरी तो लिखने की स्पीड जो बढ़ी वो इस रेडियो के माध्यम से ही बढ़ी
1: जी।
2: जब मैं रेडियो में प्रोग्राम सुनती थी तो मैं बिल्कुल सीरियल वाइज लिखने के लिए कोशिश करती थी, क्यों, क्योंकि मैं चाहती थी मेरी स्पीड लिखने की बढ़े, मुझे सुडौल और अच्छा लिखना आए
1: बिल्कुल।
2: तो इससे तो मेरे भी ज्ञान में वृद्धि हुई, ये समय भी मैं नहीं भूल सकती
1: जी।
2: अब आज देखिए कितनी सरकारी कल्याणकारी योजनाएं बनती हैं तो क्या सभी हम पढ़ पाते हैं, नहीं, रेडियो के माध्यम से हम सुनते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं और उस पर अमल करते हैं और इतना ही नहीं दूसरों को ही बताते हैं। जैसे कोई हमारे पास बैठा हुआ चर्चा कर रहा है तो हम उसे ही बताते हैं, अरे ये सरकार ने देखो कल्याणकारी योजना चलाई है, तुम इसको सुनो, इसको देखो। अधिकार और कानून के बारे में पता चला, महिलाओं के क्या क्या अधिकार होते हैं इसके बारे में पता चला
1: बिल्कुल।
2: जबकि बहुत सी बहनें जो मेरी ग्रामीण बहनें हैं, गांव में रहती हैं, जो साक्षर नहीं हैं, वो अपने अधिकारों के बारे में इतना नहीं जानती, लेकिन रेडियो ने उन्हें इसका भी ज्ञान भरपूर कराया
1: बिल्कुल।
2: अब बात करती हूँ मैं बुजुर्गों की
1: जी।
2: तो बुजुर्गों के लिए भी हमारा रेडियो पीछे नहीं रहा, रेडियो ने सुबह के समय में देखिए भजन कीर्तन चालू किए, धार्मिक चर्चाएं की, इससे सुनकर बुजुर्गों को मानसिक शांति मिली
1: बिल्कुल।
2: बुजुर्ग बड़े खुश हुए, हमारी दादी भजन लगाकर बैठ जाती थी और हमारे दादाजी समाचार सुनते थे और उस समाचार से वो हमें बताते थे कि देखो देश में ऐसे हो रहा है, और यहाँ तक कि जो मौसम की चर्चा आती है, मौसम के बारे में जानकारी, ये भी सब पहले पता चल जाती थी, तो वो दादी से कहते थे आज पापड़ मत बनाना, आज अचार धूप में मत रखना, आज बारिश होने वाली है
1: जी।
2: तो ये सब देखिए हर तरफ से रेडियो ने लाभ ही लाभ पहुंचाया है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी क्षेत्र में हो
1: बिल्कुल। तो ऐसे जो रेडियो के माध्यम से बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलते हैं। बुजुर्गों के लिए जैसे कि डॉक्टर से भेंटवार्ता होती है, जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं तो बुजुर्ग हमारे उससे फायदा उठा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसे रेडियो पे प्रोग्राम चलते हैं जिससे जो परिवार में सभी सदस्य जो होते हैं वो उसका फायदा उठा सकते हैं। अच्छा हिमांशु सर, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि विश्व स्तर पर कितने प्रतिशत लोग जो हैं रेडियो की पहुंच है?
3: 95% लोगों के पास रेडियो की पहुंच
1: जी है। जी जी, जैसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो था, जो उसका इतिहास क्या रहा है, रेडियो था तो उसके माध्यम से सारी जानकारी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो से ही पहुंच पाती थी, तो उसका जो प्रतिशत है वो ज्यादा रहा है। और अब तो जैसे नेटवर्क के माध्यम से या फिर फोन है, एफएम है, ये सारी चीजें अब तो मोबाइल ऐप के माध्यम से हम हर कोई, हर एक बंदा है वो सुन सकता है। और भारत में कितने प्रतिशत तक रेडियो की पहुंच है और कितनी भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाता है रेडियो में?
3: भारत में
2: जी
3: 99% लोग पास रेडियो की पहुंच है और ये 23 भाषा और 179 बोली में प्रचारित होती है।
1: कौन कौन सी 23 भाषाएं?
3: 23 भाषा भारत की 23
1: भाषा जी जी जी, मतलब सभी क्षेत्रों की सारी जो भाषाएं हैं,
2: तमिल हुई, तेलुगु हुई, कन्नड़, मलयालम,
1: जी जी जी जी,
2: पंजाबी,
1: जैसे मान लीजिए दूसरे प्रदेश में है तो वहाँ का रेडियो उन अपनी भाषा में प्रसारण करता है,
2: सभी अपने अपने क्षेत्र की भाषा में उसको सुनते हैं।
1: जी
2: जी,
1: आकाशवाणी की एक थीम है, एक अपनी अलग पहचान होती है, वो थीम क्या है? आप
3: सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय,
1: जी तो इसका अर्थ क्या होगा?
3: सभी के हित के लिए और सभी का सुख सुविधा के लिए,
1: यानी कि जो हमारा पूरा परिवार है वो सब उसी पे केंद्रित है। ये थीम हमारी सब बता देती विस्तार से कि ये मतलब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय,
2: मतलब
1: सभी के हित में,
2: जी जी जी, सबको एक मंत्र दे दिया
1: जी।
2: और ये क्या हुआ कि एक घर को एक परिवार बना दिया
1: जी,
2: जिस घर में चाचा ताऊ दादा दादी इत्यादि रहते हैं, तो वो घर को एक उनने परिवार बना दिया, सबको एक सूत्र में जोड़ दिया, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के मंत्र ने।
1: बिल्कुल,
2: आप देखिए ना, जब एक दौर था जब घर में टीवी इत्यादि नहीं होते थे, तब क्या होता था कि घर के आंगन में रखा हुआ लकड़ी का एक बॉक्स, जिसे हम रेडियो या ट्रांजिस्टर भी कह सकते हैं, तो वो रखा जाता था और वो सब परिवार का सबसे समझदार और सबसे बुजुर्ग सदस्य माना जाता था।

0: उस समय सुनीता जी यकीन मानिए बच्चे थे, और बच्चे थे तो हम तो बाल जगत के दीवाने थे, हम बाल जगत प्रोग्राम के लिए जिद करते थे, मचलते थे कि हमें बाल जगत सुनना है।
1: जी
0: तो रेडियो ने कभी किसी भी को अकेला नहीं छोड़ा, चाहे वो बच्चा युवा और वृद्ध समझ लीजिए, किसी को
1: जी
0: भी उसने अकेला नहीं छोड़ा। उसने बिखरे परिवारजनों को एक साथ बिठाकर सुनना सिखाया और कहा कि आप एक दूसरे से अलग नहीं हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
1: जी यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो हमारा रेडियो है वो मनोरंजन तो देता है,
0: जी
1: गीत संगीत तो
0: जी
1: देता ही है, लेकिन
0: ये
1: बहुत सारी जो
0: ज्ञान की
1: ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं वो भी आम जनों तक पहुंचाता है खेल के माध्यम से। और जैसे आपने क्रिकेट की बात करी, कमेंट्री के माध्यम से
0: जी
1: पहले
0: जी
1: इतने
0: जी
1: उत्साह से सुनते
0: जी
1: थे,
0: जी
1: और
0: मुझे याद है वो भी समय, सुनीता जी
1: जी
0: आपकी बात में बीच में काट रही हूँ, मुझे वो भी
1: जी
0: समय याद है
1: जी
0: कि जब भारत में क्रिकेट मैच होता था तब रेडियो सिर्फ एक घर का नहीं पूरे मोहल्ले का साझा परिवार बन जाता था,
1: जी
0: और अगर बिजली चली गई तो ट्रांजिस्टर को कान में सटाकर एक हाथ में रेडियो और दूसरे हाथ में चाय, और
1: जी
0: पूरा कुनवा एक साथ बैठता था। और जब जसदेव सिंह जी की या सुशील दोषी की जादुई आवाज आती थी कि गेंदबाज अंपायर को पार करते हुए एक खूबसूरत शॉट,
1: जी
0: तो मान लीजिए ऐसा लगता था कि हम अपनी आंखों से शॉट को देख रहे हैं,
1: जी
0: यानी घर बैठे ही बैठे हम स्टेडियम पहुंच जाते
1: पहुंच
0: थे।
1: जाते थे।
0: और जैसे ही चौका छक्का लगता था तो यकीन मानिए एक घर से नहीं हर घर से आवाज आती थी तालियों की,
1: जी
0: और ये ताली बताती थी कि देखो हम सब दिलों से जुड़े हुए हैं, हम सब एक आत्मा हैं,
1: सही
0: रेडियो ने हमें एक सुर में पिरो दिया है।
1: जी, तो यानी कि हमारा पूरा रेडियो जो है पूरे परिवार को समेट कर रखता है।
0: जी
1: हिमांशु जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि रेडियो में संस्कार, शिक्षा और जागरूकता कैसे लोगों तक पहुंचती है रेडियो के माध्यम से?
2: संस्कार जो हमारा पर्वाणी, जो हमारा लोक संगीत,
1: जी
2: जो हमारा आंचलिक भाषा
1: जी
2: साहित्य,
1: जी
2: ये सब लोगों के पास रेडियो के माध्यम से
1: जी
2: पहुंचते हैं।
1: और जैसे बहुत सारे पर्व होते हैं हमारे धर्म, हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, बहुत सभी धर्मों में, तो उनका लाइव प्रसारण जाता है या विशेष कार्यक्रम जाता है जिन जो वहाँ की संस्कृति और संस्कार को हम तक, आम जनों तक पहुंचाता है रेडियो के माध्यम से। और उसी तरह से शिक्षा,
2: शिक्षा रेडियो से बहुत कुछ प्राप्त होता है,
1: जी
2: जैसे आंगनवाड़ी बच्चों के लिए शिशु संसार, गल्प सरिता, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए स्कूल, बच्चों के लिए उमंग
1: जी
2: रेडियो स्कूल, बाल जगत, इसमें कहानियाँ, नाटक, कविता, पर्यावरण संबंध में शिक्षा दी जाती है। प्राप्त
1: जी
2: वयस्कों के लिए ज्ञान वाणी इग्नू से प्रचारित होता है, एनसीईआरटी द्वारा भी उमंग का प्रचारण होता है, संकल्प, युववाणी, ये सब माध्यम, कविता, संगीत शिक्षा, ये सब विभिन्न शिक्षाओं को आकाशवाणी के माध्यम से दी जाती है।
1: जी
0: और सुनीता जी मैं ये कहना चाहूंगी
1: जी
0: कि आज जब हम रेडियो की तरंग परिवार के संग की बात कर रहे हैं
1: जी
0: तो हम विविध भारती को कैसे भूल जाएं,
1: बिल्कुल
0: जिसमें भूले बिसरे गीत प्रसारित होते थे, बिना का
1: जी
0: गीतमाला कैसे भूल जाएं,
1: जी
0: जब
1: जी
0: अमीन सयानी की आवाज गूंजती थी रात
1: जी
0: 8 बजते ही,
1: जी जी
0: तब यकीन मानिए कि इन तरंगों ने तो सरहद पर बैठे हमारे जवानों को भी,
1: जी
0: हमारे फौजियों के
1: जोश भर
0: कार्यक्रम से,
1: दिया
0: हाँ जयमाला कार्यक्रम ने जोश पैदा किया,
1: जी
0: और उन्होंने वहां सरहद पर बैठकर बर्फ के बीच में बैठकर अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया,
1: बिल्कुल
0: उन्हें ऐसा लगा कि वो नहीं, वो अपने परिवार के संग जुड़े हुए हैं।
1: जी
0: जब प्रोग्राम आता था आपकी पसंद के गीत और उसमें नाम बोले जाते थे तो हर व्यक्ति अपना नाम सुनने के लिए बेचैन होता था,
1: जी
0: और जैसे उसका नाम आता था वो बड़ी खुशी से तालियां बजा बजा कर हंसता था।
1: जी
0: इतना ही नहीं कि खेतों में काम कर रहे किसान, उनके पैर देखिए रेडियो के जो गाने चलते थे भूले बिसरे गीत या बिना का गीत माला
1: जी
0: या नई तरंग के गाने, वो बिल्कुल उसी स्पीड में काम करने लगते थे।
1: जी
0: तो यानी
1: किसानों के लिए भी बहुत सारी,
0: किसानों
1: जो कृषि जगत प्रोग्राम होता है वो किसानों के लिए होता है, उसमें बहुत सारी जानकारियां होती हैं।
0: जी, तो आप देखिए ना कि आज ये रेडियो की तरंगे ही थी
1: जी
0: जिन्होंने हमें बिना इंटरनेट, बिना बिजली के, बैटरी के सहारे हमें
1: जी
0: एक ग्लोबल फैमिली बना दिया,
1: बिल्कुल
0: और इस ग्लोबल फैमिली ने ऐसा एक मजबूती, ऐसी मजबूती पाई कि आज भी रेडियो के प्रोग्राम बड़े चाव से सुने जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: कोई भी मेरे यहाँ, मैं आपको कहना चाहूंगी मेरे घर में आज भी रेडियो है,
1: जी
0: और यहाँ पे जॉली जी बनाते थे ट्रांजिस्टर,
1: जी जी
0: जॉली
1: जी
0: फैक्ट्री।

0: की अगर आपको याद हो,
1: वो
0: उनका ट्रांजिस्टर आज भी मेरे घर में,
1: घर घर में था उस
0: जी,
1: समय
0: जी, उस समय तो घर घर में था, लेकिन आज भी लोगों के पास मौजूद है
1: जी।
0: हालांकि उसके पार्ट्स मिलने बंद हो गए, लेकिन तब भी लोग बड़े चाव से उसको सुन रहे हैं
1: जी,
0: संभाल संभाल के रख रहे हैं।
1: जैसे कि सर शिक्षा संबंधी कार्यक्रम है रेडियो के माध्यम से, जैसे युवा वाणी प्रोग्राम आता है, तो उसमें क्या जागरूकता मिलती है युवाओं को, क्या ज्ञान मिलता है और क्या आगे उनका क्या भविष्य होता है, फ्यूचर क्या, रेडियो उसमें क्या भागीदारी होती है रेडियो की?
2: हाँ, युवाणी युवक युवतियों को
1: जी
2: अपना करियर के बारे में ज्ञान देता है
1: जी,
2: आपका शिक्षा के संबंध में ज्ञान देता है, विभिन्न नाटक और विभिन्न पढ़ाई के संबंध में
1: जी,
2: जो
1: सामान्य ज्ञान वगैरह,
2: सामान्य ज्ञान देता है
1: जी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं युवाओं के लिए, नौकरी की भी विज्ञप्तियाँ
2: हाँ,
1: रेडियो से प्रसारित
2: जी
1: होती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अभी आपने बोला कि प्रश्नोत्तरी, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी होती है, तो उसके माध्यम से भी बहुत ही ज्ञान मिलता है युवाओं को, और जो आगे तैयारी करने में भी उन्हें
2: मदद
1: सक्षम
2: करता
1: होते हैं,
2: है।
1: मदद मिलती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, महिलाओं के सशक्तिकरण और किशोरी के जो स्वास्थ्य हैं उसके लिए भी समय समय पर कार्यक्रम होते हैं, वो किस तरह के होते हैं और कैसे ज्ञानवर्धक होते हैं रेडियो के माध्यम से, सर बताएं आप।
2: किशोर किशोरियों को जौन संक्रमण
1: जी
2: और जौन रोग और मानसिक और शारीरिक स्तर में किशोर
1: जी
2: अवस्था में जो विकास, ये सब में ज्ञान दिया जाता है, और उनको स्वास्थ्य के सहित शिक्षा का भी ज्ञान दिया जाता है,
1: जी
2: और महिलाओं को कैसे व्यवहार करना, कैसे समाज को कंट्रोल में रखना, वॉयवाडेड नहीं हो जाना,
1: जी जी
2: ये सब सीखा जाता है, उनका अधिकार के बारे में भी शिक्षा दिया जाती है
1: जी,
2: जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन
1: जी
2: विभिन्न जौन रोग को रुकना कैसे,
1: हम्म,
2: ये संबंध में ज्ञान दिया जाता है
1: जी। डॉक्टरों की ये जो भेंट वार्ताएं होती हैं
2: हाँ,
1: प्रोग्राम में, तो उनके माध्यम से लाभ उठाती है महिलाएं
2: जी।
1: परिवार एक संस्था के रूप में पूरी कम्युनिटी होती है कि परिवार, जिसमें कि बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, किशोरियां, छोटे बच्चे, यहाँ तक कि नवजात बच्चे होते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी वो कैसे रेडियो के माध्यम से, किस तरह से नीना जी उससे लाभ उठा सकते हैं?
2: स्वास्थ्य वाणी रेडियो डॉक्टर हमारी सेहत, स्वास्थ्य चर्चा, सखी, घर संसार इत्यादि प्रोग्राम
1: जी
2: स्वास्थ्य के लिए आकाशवाणी से प्रचारित होता है, विशेषज्ञ डॉक्टर को द्वारा रोग की बचाने का, पोषण और मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा की जाती है
1: जी,
2: मातृत्व एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम में पोषण, मातृ स्तन्यपान, सुरक्षित प्रसव, टीकाकरण तथा चिकित्साओं का उनका बीमारियों और बीमारियों से बचने की सलाह दी जाती है, संक्रामक बीमारी जैसे मिजिल्स या खसरा, चिकन पॉक्स, ये सब बीमारी से कैसे बचना और क्या चिकित्सा करना, जिसको बीमारी हो गया
1: जी जी,
2: ये संबंध में रेडियो से ज्ञान मिलती है
1: जी जी।
2: परिवार नियोजन, छोटा परिवार कैसे बनेगा, फैमिली प्लानिंग, ऑपरेशन
1: जी,
2: और विभिन्न गर्भनिरोधक उपाय कैसे कार्य करेगा, कैसे छोटा परिवार होगा, सुखी परिवार होगा, ये संबंध में भी रेडियो से ज्ञान प्राप्त होता है
1: जी।
2: भ्रूण हत्या को रोकना, विशेषकर कन्या भ्रूण हत्या रोकना, ये रेडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है
1: जी। एक पीढ़ी अंतराल होता है, जेनरेशन गैप, तो इसमें रेडियो कैसे भूमिका निभाता है? जैसे बहुत सारे कार्यक्रम हमारे होते हैं, पहले हम बड़े बुजुर्गों के लिए, फिर हमारे बच्चों के लिए, इसी तरीके से बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें क्या भूमिका होती है रेडियो की?
0: रेडियो ने पीढ़ियों के अंतराल को मिटाने में एक पुल का काम किया है
1: जी।
0: ये एक ऐसा माध्यम बन गया जो घर के बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक को एक साथ जोड़ा, जैसे सामूहिक अनुभव
1: जी।
0: मोबाइल के समय क्या होता है कि चार जने अगर एक सोफे पे भी बैठे तो हर प्राणी अपने मोबाइल में खोया हुआ एकाकी है, लेकिन रेडियो रेडियो ने चारों को अपने में बांध लिया, अपने से जोड़े रखा
1: जी।
0: जो उसमें प्रोग्राम आ रहा है सब बड़े ध्यान से

0: नहीं, और
1: जी
0: इतना ही नहीं, बीच बीच में चर्चा भी चल रही है उसपे,
1: जी जी
0: और बीच बीच में अगर कोई एक दूसरे से पूछ भी रहे हैं कि भाई ये ऐसा बता रहे हैं तो क्या ये सही है, और बीच में अगर कोई बुजुर्ग बैठा है तो वो अपने उसमें टिप्पणी जरूर करता है।
1: जी
0: तो अब आप देखिए, रेडियो ने दादा दादी माता पिता बच्चों को एक साथ बैठाया, कितनी बड़ी एडवांटेज मिली हमें,
1: जी जी
0: और उसने तब उस पीढ़ी के अंतराल उसमें दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जहां दादा दादी भी बैठे हैं, माता पिता भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, यानी तीन पीढ़ियां एक साथ बैठी
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: और उसके साथ अब आया संगीत संगम,
1: जी
0: जिसमें किशोर कुमार के या मोहम्मद रफी के गाने बजाए जा रहे हैं, तो क्या हुआ, बच्चों ने उन गानों के साथ नए गानों को तालमेल बैठा के रिमिक्स बना लिया,
1: जी
0: और वो भी फुदक रहे हैं, वो भी गा रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: और उनके सामने उनके दादा दादी मम्मी पापा बड़े खुश होकर देख रहे हैं कि बच्चों में कितना टैलेंट है,
1: जी
0: और
1: जी
0: ये टैलेंट अभी तक छिपा हुआ था। अब देखिए, तकनीकी तालमेल भी बैठ गया,
1: जी
0: कैसे कि रेडियो के माध्यम से उन्होंने जब सारी वार्ता सुनी, सब चर्चाएं सुनी, सब कुछ सुना, तो
1: जी
0: उन्हें ज्ञान भी उनका बढ़ा, स्थानीय संस्कृति के बारे में पता चला,
1: जी
0: कहानियों का जो रूपांतरण आता
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: कहानियों को जो प्रसारित किया जाता है, तब उन्हें पंचतंत्र के बारे में पता चला,
1: जी
0: चाचा चाची की कहानी, चंदू चाचा, चंदन नंदन, इतनी जो चंदा मामा जिसके बारे में वो जानते भी नहीं थे, सब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, लोक कथाएं उन्होंने सुनी,
1: जी
0: ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देखिए, जब चौपाल पर सब लोग बैठते हैं
1: जी
0: तो लोग कथाएं सुनाते हैं, जिससे सब लोग बड़े चाव से सुनते हैं, आज की पीढ़ी तो विशेषकर, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: उसे सब कुछ पता ही नहीं है, और इतिहास के बारे में सुनते हैं, और आज की पीढ़ी अपने पापा से, अपनी मम्मी से, आप अपने जमाने की बातें बताइए, दादा दादी अपने जमाने की शुरू करते, तो सब बड़ा मुंह पे हाथ रख के ध्यान से उनकी ओर सब सुनते रहते हैं,
1: जी
0: जो रेडियो में जितना भी प्रसारण हुआ वो
1: जी
0: सबने बड़े ध्यान से सुना और आपस में उसके बारे में चर्चा करी।
1: जी
0: तो मैंने देखा कि यहाँ पीढ़ियों का अंतराल तो दिखाई नहीं दिया, सब
1: सही
0: एक साथ बैठे,
1: जी
0: तो
1: जी
0: पीढ़ी गैप खत्म हो गया, जनरेशन गैप समाप्त हो गया। तो
1: जी
0: ये रेडियो की मैं तो कहूंगी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है
1: जी
0: कि जिसने जनरेशन गैप को खत्म किया।
1: बिल्कुल हिमांशु जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि स्वास्थ्य की दृष्टि से रेडियो हमारे लिए कितना फायदेमंद है?
2: स्वास्थ्य की दृष्टि से रेडियो का कोई रेडिएशन नहीं है, हजार तो रेडिएशन हजार से मुक्त है,
1: जी
2: और रेडियो को कहीं भी सुन सकते हैं आप, और इसका स्वास्थ्य के ऊपर कुप्रभाव नहीं है।
1: बिल्कुल, जैसे कि हम अदर चीजों को, मोबाइल है या फिर टीवी वगैरह है,
0: हाँ,
1: उसको
0: इससे
1: देखते,
0: स्क्रीन को देखने में
1: जी
0: आंखों पे असर
1: जी
0: पड़ता है,
1: जी
0: तनाव
1: जी
0: पैदा होता है, लेकिन हमारा रेडियो तो
1: जी
0: आंखें बंद कान खुले वाला माध्यम है,
1: जी
0: जिसने ना तो हमें तनाव दिया ना
1: जी
0: हमारी आंखों पर जोर दिया
1: जी
0: है, और आप जब सुनते हैं तो अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: और कल्पना जो अपनी दुनिया बुनते हैं आप, तो
1: जी
0: उस बुनाई को साकार करने के लिए प्रयास करते हैं,
1: बिल्कुल
0: एक ठोस प्रयास। तो देखिए कितनी प्रगति हुई,
1: बिल्कुल
0: बच्चे की प्रगति हुई, घर में प्रगति हुई, और मैं कहूँ
1: जी
0: समाज की भी प्रगति जुड़ी हुई है
1: बिल्कुल
0: उससे।
1: बिल्कुल
0: तो मानसिक स्वास्थ्य को सुकून देने वाला कोई अगर माध्यम है तो वो सिर्फ रेडियो है।
1: बिल्कुल, यानी कि जो हमारी इस परिचर्चा का सार है वो ये है कि रेडियो जो है एक मनोरंजन का साधन तो है, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक, और ग्रामीण अंचलों में जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे ग्रामीण महिलाएं या बुजुर्ग या फिर किसान लोग उससे फायदा उठा सकते हैं, तो देखा जाए तो रेडियो और चीज़ों यानी कि टीवी, मोबाइल, इन सारी चीज़ों से बहुत
0: बेहतर
1: ही
0: है,
1: बेहतर है।
0: बेहतर है जी। तो सुनीता जी, आगे मैं बस एक लाइन जरूर कहना
1: जी
0: चाहूंगी
1: जी
0: कि आकाशवाणी के सभी अधिकारीगणों को, श्रोताओं को, और यहाँ बैठे हम सभी को, और इस आकाशवाणी के परिवार को 90 वर्षों के शानदार सफर की बहुत बहुत बधाई, और मेरी ये मनोकामना है या मेरा ये आशीर्वाद है कि रेडियो का ये साथ परिवारों में हमेशा गूंजता रहे, और जय हिंद जय भारत।
1: बिल्कुल, इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए डॉक्टर हिमांशु शेखर रथ जी और नीना टंडन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी पहुंचाई इसके लिए भी आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
2: धन्यवाद जी।
0: धन्यवाद।
3: रेडियो की तरंग परिवार के संग, ये था विषय परिचर्चा का। डॉक्टर हिमांशु शेखर रथ और नीना टंडन इस परिचर्चा में भाग ले रही थी और संचालन कर रही थी हमारी साथी सुनीता सिंह।
1: बिल्कुल आयशा, और भाई अब हम बात कर लेंगे हेल्थ टिप्स की, क्योंकि देखिए हेल्थ टिप्स भी

0: हमारी प्रोग्राम का एक हिस्सा है और जिसमें हम तरह तरह के हेल्थ से जुड़ी हुई बातें हम शेयर करते हैं अपने श्रोताओं से, जिससे कि वो स्वस्थ रहें और सभी जो टिप्स हैं उनके माध्यम से स्वास्थ्य लाभ लें। तो आज हमारा जो हेल्थ टिप्स का विषय है वो है कमर दर्द से कैसे विषय है, और तो इस पे हम पर चर्चा कर लें।
1: बिल्कुल सुनीता मैम, आजकल कमर दर्द जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दिन भर थोड़ा सा काम कर लो और सब कमर दर्द से परेशान नजर आते हैं। तो श्रोताओं, काम की अधिकता और गलत बैठने के तरीके से हमारे कमर दर्द की जो समस्या है ना वो बढ़ती जा रही है। हम कई कई घंटे एक ही तरह से बैठते हैं, कमर झुकाकर बैठकर काम करते हैं, जिससे हमारी कमर दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा है शो। और कुर्सी पर बैठते समय अपनी जो पीठ है उसको सीधा रखें और कंधे पीछे की ओर करके कंप्यूटर स्क्रीन आंखों के स्तर के सामने ही होनी चाहिए। और अगर आप लंबे समय तक डेस्क पर काम कर रही हैं तो पीठ के निचले हिस्से के सहारे के लिए आप छोटे से तकिए का उपयोग करें ताकि जो कमर है उसको आराम मिले।
1: और साथ ही हर 40 मिनट में ब्रेक जरूर लें। एक ही जगह पर घंटों बैठे ना रहें। हर 40 से 50 मिनट में उठें, थोड़ा सा टहलें और हल्की स्ट्रेचिंग करें।
0: जब भी कोई भारी चीज़ उठानी हो तो झुकने के बजाय अपने घुटनों के बल बैठें, फिर ताकत लगाकर खड़े हों और भारी वस्तु को हमेशा शरीर के करीब रखें।
1: साथ ही जो आपकी दिनचर्या है ना उसे योगासन से करें। ये रीढ़ की हड्डी को लचीला और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है।
0: अपने वजन को नियंत्रण में रखें क्योंकि ज़्यादा वजन रीढ़ की हड्डी और जोड़ों पर दबाव डालता है। और साथ ही संतुलित आहार लें और सक्रिय रहें क्योंकि एक्टिव रहने से जो हमारी मांसपेशियां हैं वो सुचारू रहती हैं और हमारा शरीर जो है अच्छे से काम करता है।
1: तो क्यों ना सुनीता मैम, अब अपने पत्रों की बात कर लीजिए।
0: बिल्कुल
1: तो अब हम बात करते हैं पत्रों की। हमारे पास सुंदर सा और सजा हुआ लाल नीली स्याही से लिखा हुआ पत्र आया है और इसको भेजने वाले हमारे श्रोता हैं थाना टीन ऊंची मस्जिद रामपुर से इरफान खां PWD वाले, शाहिदा परवीन उर्फ शीबा, इमरान खां, रेहान खां, इकराम खां, समीना बी, आसिफा और शबीना ने।
0: आप सभी ने 12 तारीख का परिवार जगत प्रोग्राम सुना और हमें पत्र लिखा और पूरे परिवार, ऐसा देखो हमारा जो परिवार जगत प्रोग्राम है उसको बड़ी शिद्दत के साथ सुनता है और ये हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि सभी हमारी प्रोग्राम को सुने और जो छोटी बड़ी कमियां हैं उनको पत्र के माध्यम से ज़रूर लिखें। और पत्र लिखने के लिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं।
1: बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप कभी भी हमें पत्र भेजना नहीं भूलते हैं।
0: बिल्कुल, और हमारी थाना टीन वाली श्रोता के साथ साथ और भी श्रोता हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र का जो पता है वो तो हम अपने प्रोग्राम में समय समय पर बताते रहते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। कार्यक्रम परिवार जगत द्वारा केंद्रीय निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन कोड नंबर है 2449012। और भी श्रोता हमें पत्र लिखना ना भूलें। और अब श्रोता को हम क्या करें, क्या प्यारा सा गीत सुनवा दें?
1: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को एक प्यारा सा गीत सुनवा दिया जाए।
0: बिल्कुल।

0: इसी के साथ प्रोग्राम से सुनीता सिंह,
1: और आयशानवार को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार,
1: आदाब।

अभी आप सुन रहे थे परिवार जगत, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 2 बजे हैं, अब दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: his life to the service of the nation. Every step he has taken has been aimed at the progress and development of the country. The people of India deeply admire and are inspired by him. I have been fortunate to work with him on many fronts.
1: President Draupadi Murmu has arrived in Gangtok on a three-day visit to Sikkim. During her visit, the president will inaugurate pink buses dedicated for women aimed at improving safe and accessible transport facilities in the state. She will also visit the orchidarium at Ridge Park to witness Sikkim's rich ecological and floral heritage. Later in the day, she is scheduled to visit the Namgyal Institute of Tibetology, known for preserving rare manuscripts and Buddhist cultural artifacts. Millions of people from across the globe, including India, are performing Hajj in Saudi Arabia today, marking the beginning of the five-day annual pilgrimage yesterday. Hajj pilgrims spent the night at Mina. They are now converging at Plains of Arafat for the main ritual of Hajj, reciting prayers. They will spend the day there praying and asking for God's forgiveness. The pilgrims will listen to the Khutbah-e-Hajj or Hajj sermon at Nimra Mosque and offer midday and afternoon prayers together before leaving for Muzdalifah in the evening. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued a yellow alert for heatwave conditions today in Delhi. Heatwave conditions in the national capital are expected to continue till tomorrow, with maximum temperatures remaining between 44 and 46 degrees Celsius. IMD also predicted severe heat wave conditions in places over Haryana, Chandigarh, East Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Vidarbha and West Rajasthan today. Meanwhile, the southwest monsoon is expected to reach Kerala today or tomorrow. An official declaration on the onset of the monsoon is expected from the Met Department. More from our Thiruvananthapuram correspondent.
2: The IMD has issued an yellow alert for isolated heavy rainfall today in the districts of Thiruvananthapuram, Kollam and Alappuzha in Kerala. The southwest monsoon will be officially declared over Kerala once at least 60% of the 14 weather monitoring stations across Kerala and Lakshadweep record a minimum of 2.5 millimeters of rainfall for two consecutive days after May 10. Wind speed and inset satellite data will also be considered before confirming the onset of the monsoon. While districts from Thrissur northwards have not received significant rainfall since this morning, several southern regions continue to witness steady showers. Places including Kochi, Moonar, Kumaragam, Nilakkal, Kummali, Shabarimala, Varkala and Ponmudi have recorded around 5 millimeters of rainfall since 10 o'clock this morning. Nidhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
1: In sports, the playoffs in IPL cricket are beginning today with Gujarat Titans taking on defending champions Royal Challengers Bengaluru in qualifier 1 in Dharamshala this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. The winner of the match will directly advance to the final, while the losing side will get another opportunity in qualifier 2. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi. Quad commits to stable and secure energy markets. India and the US sign key agreement to strengthen supply, mining and processing of critical minerals and rare earths. Union Home Minister Amit Shah visits Sanchu border post in Rajasthan, launches Vibrant Villages Program 2 in border regions of the state. Millions of pilgrims begin main ritual of Hajj pilgrimage in Saudi Arabia. And in the IPL qualifier 1, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in Dharamshala this evening. And with that, we end the midday news.
3: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: Economic resilience should be promoted.
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
3: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
4: As democratic nations,
5: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
6: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
3: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री 37वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरूआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 के से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कलाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
7: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से

0: पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमरीकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरा दौर।

कार्यक्रम सुनहरा दौर सुनने वाले सभी श्रोताओं को शाजिया परवीन का सादर नमस्कार। उम्मीद करते हैं हमारे सभी श्रोता खैरियत से होंगे। श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं 70 के दशक के कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म कभी कभी से

अभी आपने सुना रोटी फिल्म से ये गीत, और अब कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म जानी दुश्मन से।

अभी आपने सुना फिल्म गोरा और काला से ये गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरा दौर। कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं 70 के दशक के कुछ फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सुहाग से

और अब कार्यक्रम का अगला व अंतिम गीत आशा भोसले की आवाज में। फिल्म का नाम है अनहोनी।

0: दिन, आराम, राति, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना।
1: इसके साथ ही आज का सुनहरा दौर कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। शाजिया परवीन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सुनहरा दौर, मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। इन्हीं मीटर्स पर शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। अब से लेकर शाम 5 बजे तक विविध भारती मुंबई की प्रसारण सेवा जारी रहेगी। मीडियम वेव पर हमें ये सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।

0: की सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: भाई मंजरी, क्या बात है, आज बहुत ही खुश मिजाज लग रही हो।
2: जब आप मिलती है ना तो खुशी वैसी अपने आप बाहर निकल के आ जाती है, और जब सखी सहेली का मंच होता है और फिर लगता है कि हमें कितने सारे लोग सुन रहे होंगे कि आज ये दोनों फिर आ गई है, फिर क्या क्या बोलेंगी।
1: ये तो बात है ना। देखिए, दोपहर की जो गर्मी है ना, इसमें अगर थोड़ी हल्की फुल्की चुहलबाजी हो जाए, बोछार हो जाए हंसी मजाक की, तो हमारी जो सखियां हैं, जो सखा है ना, वो भी हल्की ठंडक महसूस करने
2: महसूस करते हैं, और जो थोड़ा सा झपकी लेते हैं वो भी थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं भाई अभी तो
1: क्या बात करने वाली है, आज
2: क्या बोलने वाली है।
1: तो बताओ आज क्या बात करने वाले हैं।
2: देखिए, जब अपने छुट्टियों का समय शुरू हो गया है तो जब परिवार के कुछ लोग कहीं बाहर जाते हैं और जाते जाते वो बता जाते हैं, देखो तुम घर पर हो और मेरे आने से पहले ये काम ठीक करा लेना, कुछ बिजली का खराब होगा तो वो करा लेना, कुछ चीजें लानी खरीद के राशन पानी लाना है वो भर लेना, नहीं तो किचन के डिब्बे आप ठीक करा लेना, नहीं तो कूलर ठीक करा लेना। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वो बता के जाते हैं। तो क्योंकि हमें तो घर संभालना है तो वो तो बाहर चले गए घूम फिर।
1: मुझे लग रहा है मंजरी कि तुम्हारे पतिदेव जो है कहीं बाहर गए हैं और तुम्हें ये सारी बातें कहकर गए हैं कि मंजरी मेरे आने तक ये सारे काम हो जाने चाहिए।
2: मंदाकिनी मैम, देखिए मंदाकिनी जी, क्या होता है कि ये सारी बातें जो होती ना ये हर घर में होती हैं।
1: जी,
2: कुछ मेरे घर की बात आपने जैसे कह दी तो हम भी सोच सकते हैं कि भाई आपके घर में भी ऐसी चीजें।
1: मेरे घर में तो ये हो ही रहा है कि भाई हमारे घर के कुछ लोग जो बाहर घूमने गए हैं, हमारे अपने लोग, जब वो लौटेंगे तो उनके आने से पहले कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करके रखने हैं।
2: बिल्कुल।
1: हालांकि उन्होंने उस अंदाज में नहीं कहा होगा कि भाई काम हो जाने चाहिए, लेकिन आपके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना होती है कि भाई कोई हमारे परिवार के लोग घूमने गए हैं, जब वो वापस आए तो उन्हें ये सुविधा हम दे दें, क्योंकि हम घर पर ही हैं।
2: हम घर पर हैं। और इसमें बड़ा वो भी रहता है कि
1: आनंद भी आता है,
2: आनंद भी आता है, और जब काम के बीच में हम थोड़ा समय निकाल के लिए अपने घर के लिए देते हैं तो लगता है कि अरे आज कर लेंगे, अच्छा अभी तो बहुत दिन है वो उनके आने में, अभी कर लेंगे। जब आखिर के दिन बचते हैं ना,
1: तब
2: भागदौड़ मचती है कि भैया अब कर लो, नहीं आएंगे तो फिर ये सुनने को
1: अधूरापन मिलेगा, व्यवस्था मिलेगी।
2: कहने का मतलब है खुद से काम करने के लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है।
1: बिल्कुल, ये तो है, अगर हम खुद से नहीं बढ़ेंगे तो वो काम नहीं होता है। अब आप खुद आगे बढ़िए और बताइए कि आज हमारे विषय क्या है बातचीत के।
2: तो देखिए, हम बताते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जो शादी में जनवासे के किस्से हुआ करते थे, वो आप सभी के ने ये चीजें महसूस करी होंगी। तो चुलबुले से किस्से हैं, रूठने मनाने के किस्से होते हैं, तो आप साझा कीजिए, याद करिए अपने मेमोरी को और लिखिए। और उद्यमी महिला में हम बात करने वाले हैं राधिका अग्रवाल, ऑनलाइन मार्केट प्लस शार्प क्लूज की सह संस्थापक हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और मुहावरों की दुनिया में कान का कच्चा होना, तो इसके बारे में हमारे सभी साथी सखियां सहेलियां सभी लोग लिखकर भेजें।
1: लिखे ये कि क्या वो खुद कान के कच्चे हैं, ये भी लिखना जरूरी है। अभी क्या होता है, हमारे श्रोता क्या करेंगे, कान के कच्चे मुहावरे का अर्थ लिखने लग जाएंगे। वो अर्थ हमें नहीं लिखना है, अर्थ तो आप जानते ही हैं।
2: आप बता सकते हैं कि फलाना अभी कान का कच्चा है।
1: हाँ, ऐसी जिंदगी में हमारे साथ हुआ कि किसी कोई व्यक्ति कान का कच्चा था और उसने बात को सुनकर हम पे ऐसा आरोप मढ़ दिया। तो ये जो किस्से हैं जिंदगी में, ऐसा बहुत बार होता है हमारे अपने घर में। कुछ लोग हमारे अपने भाई बहन, अपने माता पिता भी हो जाते हैं। कई बार हम कहते हैं, अरे भाई माँ आपको पापा ने और आपने बात मान ली, तो आप कान की कच्ची हो उसका मतलब।
2: तो इस तरह की छोटी छोटी बातें लिखकर भेजिए, जिसमें आपको भी मजा आए, हंसी आए और हमें भी पढ़ के अच्छा लगे। और अच्छे काम की शुरुआत खुद से, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मंदाकिनी जी, उससे पहले तो हम लोग गीतों से समा बांध देते हैं।
1: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत।

0: व्यक्ति करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग ईमानदार बने, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, रिश्तों में भी प्रेम उनके बना रहे और हर जगह शांति और सहयोग दिखाई दे। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं ना कि किसी भी अच्छे बदलाव की शुरुआत दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। अगर हम किसी से अच्छा करवाना चाहते हैं तो हमें खुद अच्छा करने के बारे में पहले सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: यदि हर व्यक्ति अपने व्यवहार, सोच और कर्म को सुधारने का प्रयास करे तो पूरा समाज अपने आप बेहतर बन सकता है। इसलिए कहा जाता है अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। यानी अगर कुछ कोई किसी के अंदर क्वालिटी है, गुण है, वो अच्छा करना चाहता है तो आप उसको एक अवसर जरूर दें, उसको देखें कि वो कितना अच्छा कर सकता है।
1: बिल्कुल, ये तो आपने कही मंजरी बात की, दूसरा आप पर नजर लगाए हुए है कि भाई आपको हम मौका दें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं में भी बदलाव करना बहुत जरूरी है। अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि हम समाज का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समाज अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। यदि हम अच्छे हैं तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा है तो समाज अच्छा होगा और देश अच्छा बनेगा। अक्सर क्या होता है, दूसरों की गलतियां हम गिनाते रहते हैं लेकिन अपनी कमियों पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि सच्चाई ये होती है कि सुधार की पहली सीढ़ी क्या है?
0: आत्म
1: आत्मसुधार।
0: सुधार है। और देखिए, हम चाहते हैं ना कि लोग समय का सम्मान करें, तो पहले हमें स्वयं समय का पालन करना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बने तो हमें अपने व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। केवल उपदेश देने से बदलाव नहीं आता है बल्कि अपने कर्मों से प्रेरणा देने से बदलाव आता है। छोटी शुरुआत उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी अच्छे काम के लिए हमेशा बड़े मंच या बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है। छोटी छोटी आदतों से ही समाज में बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं, जैसे कि सड़क पर कचरा ना फैलाना या हमारे आसपास गली मोहल्लों में हम कचरा ना डालें, जरूरतमंद की सहायता करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, और क्या कहते हैं कि जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके लिए हम भोजन और पानी की व्यवस्था करें। इस तरह के हम छोटे छोटे काम खुद भी कर
1: अपने
0: सकते
1: घर
0: हैं।
1: में हम पानी और बिजली को बचाएं। कितना पानी का नुकसान करते हैं हम लोग, पानी चलता रहता है नलों से लगातार। आपने देखा होगा छोटे शहरों में तो लोग पानी से घर धोते हैं और धोते ही जाते हैं, बाल्टियों भर भर के बाल्टियां बाहर फेंक देते हैं। तो ये पानी का इतना दुरुपयोग हम करते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं है कि, और बिजली चल रही है तो चले, दिन भर कूलर, दिन भर एसी में हम बैठे रहने के आदि हो गए हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करें ना, कम से कम पेट्रोल बचाएं, हम अपना ईंधन बचाएं। हम छोटी सी थोड़ी सी दूर पर जाते हैं और अपनी स्कूटी स्टार्ट कर लेते हैं या कार चलाने की हमें आदत है तो हम कार लेकर भी चले जाते हैं, गाड़ी लेकर भी हम चले जाते हैं, लेकिन हम पैदल नहीं चलते हैं। तो ये चीजें जो है, खुद में सुधार लाना बहुत जरूरी है। सच बोलना सीखें, ईमानदारी अपनाना सीखें। हम दूसरे से उम्मीद करती हैं कि वो सच होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर जब बात आती है तो हम झूठ का सहारा ले लेते हैं। और ये काम छोटे जरूर लगते हैं मंजरी, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है हमारे जीवन में। जब व्यक्ति अच्छा काम करता है तो दूसरे लोग उससे बिल्कुल प्रेरित होते हैं।
0: बिल्कुल, और हमारे साथी भी लिखते हैं मंदाकिनी जी कि हमारी आदत होती है कि अक्सर हम सबको सलाह देते रहते हैं, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन खुद ऐसा करने से झिझकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रास्ता चलते रुक कर किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं। अगर सब ये सोचे कि कोई करे या नहीं, मुझे तो जरूरतमंदों की सहायता करनी ही है और किसी को कहने से बेहतर मैं खुद वो काम करूं, तो हमें देख कर हो सकता है दूसरे लोगों की सोच में भी बदलाव आए। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी के लिए, अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरे के लिए भी आप अच्छा करना सोचिए। आपके आपके लिए खुद अच्छा होने ही लगेगा, वो आपको, आपके कर्मों का फल आपको खुद मिलेगा, लेकिन आप अच्छा तो करने की सोचिए।
1: बिल्कुल, कहते हैं कि एक राजा कैसा व्यवहार चाहता है जैसा दूसरा राजा चाहता है। यानी एक राजा को दूसरे राजा से पहले अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी तो दूसरा राजा पहले राजा से अच्छा व्यवहार करेगा। तो वही बात हमारे सामने होती है कि हम जब दूसरे के काम को प्रेरित करेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमें लगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं। जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। यहाँ कुछ व्यवहारिक तरीके हैं जिन्हें आप खुद को बेहतर बनाकर अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें, बहुत बड़ा लक्ष्य लेने के बजाय रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना या नियम व्यायाम करना सीखें, स्वयं की आदतों का विश्लेषण करें, अपनी दिनचर्या में से बुरी आदतें जैसे देर तक सोना, मोबाइल का बहुत उपयोग, इसको पहचानें, सुधारें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अच्छे काम के लिए सही सोच और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। खुद से सकारात्मक वादे करें, ज्ञान बढ़ाएं, खुद को शिक्षित करें और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का प्रयास करें, अब जिससे आप दूसरों की बेहतर मदद कर सकें। इसके अलावा हर दिन कुछ सकारात्मक सीखने का प्रयास करें, आभार प्रकट करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे समय का इंतजार न करें, जो आज आपके पास समय है वहीं से मेहनत करना शुरू करते हैं।
0: बहुत सुंदर सी बात लिखी है इन्होंने।
1: और मंजरी, अभी हमें एक छोटा सा अंतराल लेना है, फिर मिलते हैं।

0: स्टोरी सेंट्रल के बाद सभी सखियों और सखाओं का स्वागत
1: स्वागत है।
0: है।
1: और देखिए, एक संदेश है मंदाकिनी जी लिखते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि लोग उपदेश से नहीं उदाहरण से सीखते हैं। जैसे सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल का उपयोग बहुत कम करें, तो सबसे पहले अभिभावकों को स्वयं मोबाइल का उपयोग कम करना होगा। हमारा आचरण ही सामने वाले को संदेश देता है। हर इंसान दूसरों को बदलने का प्रयास करता है, जबकि पहली शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। बदलाव शिकायत करने से नहीं बल्कि शुरुआत करने से आता है, और अच्छे कार्य की शुरुआत स्वयं से की जाए तो बेहतर होता है। गांधी जी ने कहा था कि जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हो तो सबसे पहले वही बदलाव खुद में लाना होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत सबसे पहले स्वयं से करें। जैसे एक दीपक पहले स्वयं जलता है तभी दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार व्यक्ति पहले अपने भीतर अच्छाई लाता है तब कहीं अच्छाई समाज में फैलती है। कुछ उदाहरण है, जैसे यदि हम चाहते हैं कि लोग सड़क पर कचरा न फैलाएं तो सबसे पहले हमें स्वयं कचरा डस्टबिन में डालना होगा। दूसरा, यदि हम चाहते हैं कि परिवार में प्रेम और सम्मान बना रहे तो पहले हमें अपने व्यवहार में मधुरता लानी होगी। और तीसरा ये कि अगर हम दूसरों से समय की पाबंदी की अपेक्षा करते हैं तो पहले हमें स्वयं समय का सम्मान करना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से ही करना बहुत अच्छा विषय है। जब हम स्वयं करेंगे तो बाकी लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल लैपटॉप पर जब खाली होते हैं बैठ जाते हैं और बच्चों को मना करते हैं। वास्तव में हम तो काम के कारण बैठते हैं, बच्चे तो छुट्टियां हैं, क्या करें। कितनी भी अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखें पर खाली होते ही वे मोबाइल चलाते हैं, उनको मना करते हैं और समझाते हैं। बड़े बच्चे तो समझ जाते पर छोटे, उनके मन में यही रहता है कि हम चला रहे हैं तो वे नहीं। फिर उनका समय तय किया है, बस इतने ही समय। ये तो एक छोटी सी बात है, और भी बहुत कुछ अच्छी बात हम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, उदाहरण तो आपको ही देना होगा। आप कहिए कि देखो हम 1 घंटे चलाएंगे,
0: बिल्कुल
1: तुम लोग छोटे हो, तुम लोग 1/2 घंटे चलाओगे। तो इस तरह उनका टाइम थोड़ा कम कीजिए।
0: जी बिल्कुल, तो सही कहा। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है, मोबाइल और बच्चे। तो
1: बच्चे
0: हाथ में मोबाइल लेकर दिन भर घूमते हैं।
1: बिल्कुल, अपनी मम्मी से बच्चे कंपटीशन करते हैं, मम्मी तुमने 1 घंटे चलाया मैं भी चलाऊंगा। तो वो फिर गलत है। या फिर आप अपने कान बगल में रख के सो रहे हैं तो बच्चे वही मोबाइल पकड़ के सोने लग जाते हैं। हमें चाहिए,
0: वो सीखते हैं ना, जैसा आप बताएंगे वैसा अनुसरण तो बच्चे करेंगे ना।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें अपना पहले खुद ही उदाहरण पेश करना होगा। कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, करके तो देखिए। कहते भी हैं कि रात के सोने से पहले 2 घंटे पहले आप मोबाइल बंद कर दीजिए, ऐसा कहते हैं। और सुबह उठने के 2 घंटे बाद ही मोबाइल देखिए, तो आप देखिए आपके जीवन में धीरे धीरे आपके विचारों में सुख शांति आने
1: बिल्कुल
0: लग जाती है। क्योंकि उठते ही जब हम खोलते हैं तो हजारों नकारात्मक बातें, नकारात्मक समाचार मोबाइल में दिखते हैं और हमारे दिमाग में घूमते हैं कि अरे ऐसा है, तो हम नकारात्मक होते चले जाते हैं। तो शुरुआत खुद से करें अच्छे काम की, कि आप कोई किताब पढ़ें, बच्चों को किताब पढ़ने का मौका दें। एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में यदि सकारात्मक बदलाव लाना है कि अच्छे काम की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। जब हम अपने आप को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं तो लोग हमारा अनुसरण करते हैं। जब हम अपनी आदतों, अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी बदलता है। दूसरों से अपेक्षा रखने से बेहतर है स्वयं से अपेक्षा रखें। कहा भी गया है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो जे आचरही तेनर न घनेरे।
1: क्या बात है। और एक लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से, ये बड़ा प्रेरणादायी विचार है। यदि आप समाज, परिवार या अपने आप में, जीवन में कोई सकारात्मक प्रभावशाली बदलाव लाना चाहते हो तो उसकी शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए। अगर हम दूसरों का इंतजार किए बगैर खुद पहल करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी संभव हो जाता है। बस और कुछ नहीं, शरीर रूपी इंजन को एक किक की जरूरत होती है। क्या बात
0: क्या
1: है,
0: बात
1: बहुत सुंदर बात लिखी है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छे अच्छे संदेश लिखकर भेजे हैं, तो उन्हें धन्यवाद कहते हुए गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो देखिए भाई, ये गाना कितना सटीक है ना
1: हाँ
0: नंदाकिनी जी हम लोगों की सूरत एक जैसी नहीं मिलती, कुछ तो बदलाव है ना। तो ये
1: बिल्कुल
0: सफल, आप हंस रहे हैं ना इसी बात पर कि मंत्री ने बस छेड़ दी बात, है ना।
1: हाँ। और ये
0: तो
1: ऐसी बातें हैं जिस पर घंटों चर्चा करें तो भी कम पड़ जाती हैं, क्योंकि जिस
0: जी
1: खूबसूरती से गीतकार ने बात कही है उस पर घंटों चर्चा की जा सकती
0: बिल्कुल।
1: है
0: तो चलिए
1: ना।
0: हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारी सफल महिला उद्यमी है राधिका अग्रवाल। राधिका अग्रवाल भारत की उन प्रेरणादायक महिला उद्यमियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने भारतीय ई कॉमर्स जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। वे shopclues.com की सह संस्थापक को फाउंडर है। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प, नई सोच और मेहनत से महिलाएं व्यापार और तकनीकी की दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं।
1: तो राधिका घई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक इंटरनेट उद्यमी हैं और यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली भारत की पहली महिला हैं। और ये सिलिकॉन वैली में 2011 में स्थापित ऑनलाइन मार्केट प्लेस शॉपक्लूज की सह संस्थापक हैं। वर्तमान में ये कंपनी की मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में भी कार्यरत
0: जी।
1: हैं।
0: और राधिका का जन्म एक शिक्षित और अनुशासित परिवार में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे, इसलिए बचपन से ही उन्होंने अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास सीखा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गईं। हाँ
1: बिल्कुल, उन्होंने अमेरिका की प्रसिद्ध वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस से एमबीए की डिग्री ली और पढ़ाई के दौरान उन्होंने मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और उपभोक्ता व्यवहार को गहराई से समझा भी, और यही ज्ञान आगे चलकर उनके

0: व्यवसाय में बहुत काम भी आया जी। और व्यवसाय शुरू करने से पहले राधिका अग्रवाल ने कई बड़ी कंपनियों में काम किया। उन्होंने फैशन और रिटेल क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में अनुभव प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें ये समझ आया कि ऑनलाइन व्यापार का भविष्य बहुत बड़ा है और भारत में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।
1: हाँ, और अगर 2011 की बात करें ना मंजरी, तो राधिका अग्रवाल ने अपने पति संजय सेठी और सहयोगी संदीप अग्रवाल के साथ शॉपक्लूज की स्थापना की, और उस समय भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार तेजी से बढ़ ही रहा था।

0: क्लूज का मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक हो गया और ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहलाने लगी। और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत की पहली महिला उद्यमों में वो शामिल हुई जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टार्टअप खड़ा किया और ये उपलब्धि भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का कारण भी बनी। और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी मंजरी, उन्हें बड़े प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करना पड़ा। शुरुआत में निवेश जुटाना, ग्राहकों का विश्वास जीतना और व्यापार को तेजी से बढ़ाना उनकी बड़ी चुनौतियों में शामिल भी था। लेकिन हाँ, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने नई रणनीतियों की, ग्राहक सेवा और सस्ती कीमतों के माध्यम से अपनी कंपनी को बहुत आगे तक बढ़ाया।
1: बिल्कुल, और राधिका अग्रवाल हमेशा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का और अपने सपनों को पीछा करने के लिए प्रेरित करती थी। उनका मानना है कि महिलाएं यदि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ काम करें तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। और वे ये भी कहती थी कि असफलता से डरना नहीं चाहिए क्योंकि हर असफलता हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। और राधिका अग्रवाल को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारत की प्रभावशाली महिला उद्यमियों को में गिना जाता है। कई बिजनेस पत्रिकाओं और मंचों ने उन्हें प्रेरणादायक महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में सराहा है। और राधिका अग्रवाल को कई पुरस्कार भी मिले, जैसे आउटलुक बिजनेस अवार्ड में आउटलुक बिजनेस वुमेन ऑफ वर्थ 2016 में और एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016 में, सीएमओ एशिया अवार्ड 2016 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार प्राप्त किया आपने, और सीईओ इंडिया अवार्ड्स 2016 में सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। एसोचैम का वर्ष सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार 2017 में वे महिलाओं को उद्यमिता और नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और राधिका अग्रवाल की कहानी मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास की कहानी। उन्होंने ये साबित किया कि यदि सोच बड़ी हो और इरादे मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। वे आज भारत की युवा पीढ़ी विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वे आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत है। चलिए एक छोटा सा ये संदेश सुन लेते हैं। अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: तो मंजरी, अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ

0: जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे।

0: मान लिया और हमसे झगड़ा कर लिया तो हाथ मलोगी दोस्ती से, देख लेना।
1: लेकिन आपको पता है कि मंजरी ऐसी है नहीं, वो
0: कान का कच्चा होना बहुत गलत बात है,
1: वो कान की कच्ची है भी नहीं। और बहुत से लोगों में ऐसी आदत होती है कि वो अपना प्रभाव बनाने के लिए, दूसरे के उभरती हुई प्रतिभा को दबाने के लिए, वो अगले सामने वाले से ऐसी बातें कर देते हैं कि कान की कच्ची वाली आदत हो जाती है। फिर वो उससे नहीं पूछता है कि भाई ये वाकई में ऐसी है या नहीं, वो जानने की कोशिश नहीं करता, वो उसकी कहने पर ही चलते
0: विश्वास
1: हैं।
0: कर लेते
1: तो
0: हैं।
1: ऐसा नहीं होना चाहिए।
0: ऐसे कान के कच्चे लोग बहुत हमारे आसपास होते हैं कि जिनको कुछ भी कह दो वो मान लेते हैं, उसका सही गलत की गणना
1: बिना सोचे समझे किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेना या सुनी सुनाई बातों में आ जाना। तो मंदाकिनी जी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप उसी से बात कर लीजिए, वो कैसा है आप अपनी नजरों से उसको परखने की कोशिश कीजिए ना। कोई दूसरा कुछ कहता है ये ऐसी वैसी, तो क्यों आप

0: ये बहुत गलत बात
1: बिल्कुल
0: है।
1: सही बात है।
0: तो एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होना अर्थ सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना या बिना सोचे समझे किसी की बात मान लेना। ये वीडियो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ और उदाहरण समझाता है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि आप अच्छा कुछ
1: बिल्कुल
0: तो
1: पड़ता
0: सबसे
1: है।
0: पहले तो
1: हाँ
0: इंसान को मंदाकिनी जी अपने व्यक्तित्व को बचा के रखने की सोचना चाहिए कि नहीं, मैं जैसी हूं मैं वैसी रहूंगी,
1: बिल्कुल
0: कोई मुझे कुछ भी कहे मैं उसकी
1: डिगा
0: बातों
1: नहीं
0: में
1: सकता।
0: डिगा नहीं सकता जिसे
1: हाँ
0: कहते, वो
1: मतलब
0: होना
1: अपने
0: चाहिए
1: किरदार को हमें मजबूत बनाना
0: जी।
1: चाहिए, ना कि उथल पुथल वाला
0: उथल
1: इधर
0: पुथल
1: इधर ढुल गए उधर ढुल
0: नहीं
1: गए
0: नहीं थाली
1: आपका।
0: का

0: उठने की सोचना चाहिए कि नहीं, मैं जैसी हूं मैं वैसी रहूंगी,
1: बिल्कुल
0: कोई मुझे कुछ भी कहे मैं उसकी
1: डिगा
0: बातों
1: नहीं
0: में
1: सकता।
0: डिगा नहीं सकता, जिसे
1: हाँ,
0: कहते वो
1: मतलब
0: होना
1: अपने
0: चाहिए
1: किरदार को हमें मजबूत बनाना
0: जी।
1: चाहिए, ना कि उथल पुथल वाला,
0: उथल
1: इधर
0: पुथल
1: इधर ढुल गए उधर ढुल गए,
0: नहीं, थाली
1: आपने कहा
0: गंगन जिसे कहते हैं वैसा
1: हाँ
0: नहीं होना
1: उधर
0: चाहिए
1: उसकी बात सुन ली उधर
0: जी।
1: उसकी बात मान ली, तो आपका अपना व्यक्तित्व
0: मैं यूं ही विश्वास करके कदम नहीं उठाता और अपने काम का पक्का होता है, जिससे कोई पीठ पीछे भी उसके किसी निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकता। तो कान का कच्चा नहीं काम का पक्का होना चाहिए।
1: बहुत
0: हमारी
1: अच्छा,
0: सखी ने बहुत अच्छी सी बात लिखकर भेजी है
1: बिल्कुल बहुत अच्छा। वही एक लिखते हैं हमारे श्रोता कि कई बार दूसरों की चुगली या अफवाहों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से आपसी रिश्तों में दरार या विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्ती में दरार या परिवार में कलह का मुख्य कारण यही कान का कच्चा होना भी होता है।
0: बिल्कुल सही बात लिखी है।
1: जी
0: और एक लिखे हैं कि कान के कच्चों से दूर रहना ही बेहतर है, आपके संबंध खराब करते हैं वे उनके लिए बहुत मित्र नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो ना, आप समूह में सबके साथ में है तो कौन कान का कच्चा है ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और एक लिखते हैं कि कान का कच्चा वह व्यक्ति जो बातें इधर से उधर करता हो, ऐसे व्यक्ति आपकी जरूरत की बात गोपनीयता खराब कर देते, यानी आपकी जरूरत की बात को भी वो किनारे करके अपना मतलब निकालना कहना चाहिए,
1: मतलब
0: ऐसे लोग जो होते
1: गोपनीयता जो
0: हैं
1: बातों की होती
0: हाँ
1: है दो दोस्तों के बीच में, उसको भी वो हटा देते हैं,
0: हटा
1: खंडित
0: देते
1: कर
0: हैं,
1: देते
0: मतलब
1: हैं,
0: दोस्ती तो को किनारे कर देते हैं और
1: हाँ
0: अपना अपना
1: मतलब
0: पाने के
1: निकाल
0: लिए,
1: लेते
0: मतलब
1: हैं,
0: निकालने के
1: हाँ
0: लिए, अपने को
1: हाँ
0: सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे के व्यक्तित्व को गिरा देते हैं,
1: गिरा
0: तो वो
1: देते
0: चीज
1: हैं
0: नहीं होनी
1: बिल्कुल।
0: चाहिए।
1: वही एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि कान का कच्चा यानी बिना किसी सबूत के दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेना, आज के समय में ये मुहावरा हर किसी को समझने की जरूरत है ताकि गलतफहमियों से बचा जा सके। विविध भारती पर हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मजेदार विषय सुनने को मिलते हैं, इसके लिए ये बहुत बहुत बधाई देते
0: जी
1: हैं।
0: सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे से संदेश लिखकर भेजें। एक गीत सुनते हैं फिर हम लोग मजेदार किस्से जनवासी के सुनते हैं।
1: वाह।

0: हमारे देखिए श्रोताओं ने लिखा है कि तेरी सूरत से नहीं मिलती वाला गाना जो है बहुत समय बाद सुना है, तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है सुन
1: अच्छा, क्या बात है।
0: करके। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं जनवासे की ओर, जो हमारे यादों से जुड़े हुए किस्से। और जनवासे में देखिए ऐसा होता था ना कि लड़की वाले जो थे, लड़के वालों को रुकने का एक स्थान देते थे, वहां ठहरते थे सब लोग, और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम रखा जाता था। घड़े का पानी उस समय रखा जाता था, आज तो चलो आप ठंडा पानी की बोतलें रख दो, लेकिन उस समय घड़ा ही रखा जाता था। शरबत के पाउचेस पैकेट रख दिए जाते थे, कि चीनी और नींबू रख दिया गया कि शरबत घोल के बनाएंगे। खरबूजा तरबूज इन समय में ये सब रखा
1: मौसमी
0: दिए
1: फल
0: जाते
1: थे
0: थे,
1: जो।
0: मौसमी
1: हाँ
0: फल, बर्फ रखी है। तो कुछ बाराती लड़के लड़कियां बहुत शैतान टाइप के होते थे, तो वो जा करके उसमें से नींबू गायब कर दे, तो चीनी गायब कर दे। अब जब वो बना रहे हैं आके लड़की वाले बेचारे, तो वो चीजें कम पड़ गई हैं, तो अब उनको कह भी रहे हैं कि इसमें तो खट्टा नहीं है, इसमें नींबू और डालिए। वो बेचारे, इतना तो नींबू लाए थे, कहाँ चला गया। तो मतलब इस तरह के किस्से जनवासे में
1: हाँ,
0: अक्सर होते
1: होते
0: थे।
1: हैं बिल्कुल।
0: और
1: और ये एक रोचकता
0: जी
1: बनाए रखते हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता
0: बड़ा
1: है शादी विवाह में,
0: बहुत
1: जब इस
0: अच्छा
1: तरह
0: माहौल
1: की
0: होता था। और
1: छुटपुट मजाक होती
0: जी,
1: है।
0: और वो चारपाई गद्दे नहीं पड़े तो शीशा नहीं है तो कंघा, और शैम्पू नहीं है तो बालों में तेल
1: हाँ, बड़ी
0: लगाना नहीं
1: सादगी
0: है।
1: से वो जनवासा होता
0: हाँ,
1: था, दिखावटी दिखावट
0: दिखावटी
1: कहीं
0: नहीं
1: नहीं
0: होता,
1: थी।
0: मतलब अगर चीजें कोई भी कम हो गई तो नुक्स निकालने वाले भी
1: हाँ,
0: वही
1: होते
0: लोग
1: थे।
0: होते थे।
1: हाँ
0: और बड़ा झगड़ा भी होता था कि हमारे लिए तो चारपाई नहीं रखी, हमारे लिए तो गद्दा नहीं रखा। और जब वो मिठाई की, नाश्ते के लिए मिठाई के डब्बे दिए जाते थे, तो सब लोग खोल के देख रहे हैं कि अरे इसमें तो 5 पीस हैं, इसमें तो 6 पीस हैं, ये ज्यादा कैसे हुआ या कम कैसे हुआ। इस तरह की भी नोकझोंक आपस में ही होने लग जाती थी, तो उसका
1: बिल्कुल,
0: भुगतान जो
1: वे
0: कहते हैं ना, वो लड़की वालों
1: लड़की
0: को
1: वाले
0: करना
1: ही
0: पड़ता
1: करते थे। हाँ बिल्कुल
0: जी।
1: सही कहा।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारात को पहले गांव से बाहर बड़े आम के बाग में ठहराया जाता था, वहीं जलपान कराया जाता था, फिर गांव के बीच में एक बड़ा हॉल होता था, उसमें बारात को ठहराया जाता था और उसको जनवासा कहते थे। तो मंदाकिनी जी, बड़ी यादें हैं
1: बिल्कुल
0: सबकी।
1: आपने कहा, और ये याद आते ही पुराने वो दिन याद आ गए जब शादी विवाह का मौसम होता था। मुझे याद है हम लोग बच्चे होते थे और हम अपने पापाओं की जिद करते थे, पापा वहां लेके जाओ
0: जी
1: जनवासी में कौन कौन आया है, और वो हमें लेके जाते थे। तब इस तरह की शरारतें हम समझते भी थे और कई बार हंसते भी थे कि अरे कैसी कैसी बातें यहाँ होती हैं, लेकिन
0: बिल्कुल
1: जो व्यवस्था होती थी वो बहुत अच्छी होती थी कई
0: बिल्कुल। वो
1: बार।
0: अपने हिसाब से देखिए, सब
1: हाँ
0: लोग अच्छा ही करते थे,
1: बिल्कुल, और मन से
0: मन
1: व्यवस्था
0: से
1: होती
0: करते थे,
1: थी।
0: और जिसको
1: हाँ
0: कमी निकालना है वो तो निकालता ही है।
1: हाँ
0: और भाई एक बड़ा मजेदार इसमें होता था कि भाई दूल्हे का जीजा जी रूठ गए, दूल्हे के फूफा जी रूठ गए, दोस्त रूठ गए, इस
1: बिल्कुल,
0: तरह की भी उनको
1: रूठने
0: सुविधाएं।
1: मनाने की जो
0: हाँ,
1: बातें भी बहुत होती थी,
0: बहुत
1: कोई नाराज हो
0: होती
1: जाता था
0: थी
1: उसको मनाया
0: बिल्कुल।
1: जाता था।
0: और खाने पीने की भी कोई चीज व्यवस्था नहीं है तो उसमें भी जनवासे में रूठे पड़े कि हमें तो ठीक से मान मनोवल नहीं किया गया, बुलाया नहीं है, तो बहुत सारी चीजें होती थी।
1: बिल्कुल सही कहा, इसलिए
0: तो
1: फूफाओं को मामाओं को बड़ा संभाल कर रखना पड़ता था क्योंकि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे ना।
0: जी। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि पुराने समय में बारात के रुकने के लिए किसी बड़े भवन या स्कूल आदि में व्यवस्था की जाती थी, जिसे जनवासा कहते हैं। यहाँ पर वधु पक्ष दूल्हे और बारात को आदरपूर्वक मुख्य विवाह स्थल मंडवे पर चलने का न्योता देते हैं। वधु पक्ष की महिलाएं और सखियां ढोल मंजीरे के साथ जनवासे के बाहर या आंगन में जुटती हैं, और वे दूल्हे, समधी, दूल्हे के पिता, फूफा और जीजा का नाम लेकर विशेष रूप से तैयार किए गए गाली गीत गाती हैं। इन गीतों में समधन के सीधेपन या बारातियों के खाने पीने की आदतों पर बेहद मीठे अंदाज में मजाक उड़ाया जाता है, जिसका वर पक्ष कभी बुरा नहीं मानता था। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी इन गीतों से वो लोग बुरा भी मान जाते थे, क्योंकि उस समय देखा था ऐसे होता था, थोड़ा मजा आता था, लेकिन वो गाने
1: लेकिन
0: बहुत अच्छे
1: हाँ,
0: थे,
1: ये गीत हमारे शादी विवाह की जान होते थे।
0: जान होते थे। सही
1: एक
0: बात
1: श्रोता
0: है।
1: लिखते हैं कि शादी में जनवासा यानी बारात ठहरने की जो जगह है केवल एक कमरा या हॉल नहीं है, बल्कि ये बारात की जान और हंसी मजाक का मुख्य केंद्र होता है। यहाँ बिताई गई रातें और बारातियों के कारनामे सालों साल तक परिवार की कहानी और चुटकुलों का हिस्सा रहते हैं। जनवासी में सबसे पहले आप और मजेदार किस्सा आधी रात के बाद चाय का होता है, जब सारे बाराती तैयार होकर दूल्हे के साथ मंडप में जाने का इंतजार करते हैं, तब जनवासी का माहौल किसी हॉस्टल के कमरे जैसा हो जाता है। 3 बजे रात में चाय की डिमांड होना और किसी की चाय न मिलना, फिर पूरी बारात का खुद ही उठकर चाय बनाने की जुगत करना, ये भी एक आम दृश्य होता है।
0: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि शादी में जनवासे का बड़ा महत्व है, यहाँ पर इतिहास रचे जाते हैं, किस्से कहानियां बनते हैं, बारात के ठहरने के स्थान को जनवासा कहते हैं। पहले के समय में ज्यादातर किसी स्कूल या धर्मशाला को जनवासा के लिए निश्चित किया जाता था, ऐसे में मन मुताबिक सुविधा उपलब्ध करवाना मुश्किल होता था। वैसे में कोई रूठने वाले बारातियों तब तो विवाद होना आवश्यक होता था, पर उनमें से ही कुछ लोग, बीच बचाव करने वाले लोग भी होते थे जो मामले को शांत
1: कर
0: करना आते थे।
1: देते
0: बिल्कुल।
1: थे। और एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा सिर्फ बारातियों के ठहरने की जगह नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट, हंसी मजाक और यादों का एक अनमोल हिस्सा है जो शादी को और भी यादगार बना देता है। मेरी शादी में बारात एक रात जिस धर्मशाला में रुकी थी उसी धर्मशाला से लगा हुआ सिनेमा हॉल था। छत पक्की थी लेकिन कुछ हिस्सा टीन शेड से ढका था, जिसमें से जनवासे में ठहरे बारात में गए बच्चे फिल्म देखते रहे जिसे आज भी वो याद करते हैं।
0: बिल्कुल। और ये लिखते हैं कि जन्माष्टमी ये नियत स्थान विवाह में लड़की वालों द्वारा ऑपरेट होता है, या यूं कहें दोनों के सहयोग से हो सकता है, लड़का और लड़की के परिवार वालों की ओर से, जिसमें दोनों को सुविधा हो जाती थी और अधिक भार लड़की वालों पर नहीं आता। जन्माष्टमी वो स्थान है जहाँ पर दूल्हा और बराती बेफिक्र होकर आराम करते हैं। यह स्थान विवाह मंडप के आसपास ही होता है। बहुत सी अच्छी सी बात है। और जन्माष्टमी भी देखा जाता था कि कितनी पास है कितनी दूर है, और वहां पर उनके स्वागत के लिए कोई खड़ा है नहीं खड़ा,
1: नहीं
0: ये
1: खड़ा
0: सब
1: है।
0: भी चीजें होती
1: बिल्कुल
0: थी।
1: बिल्कुल,
0: और लाइट की व्यवस्था है या नहीं है, या फिर
1: मतलब सही समय पर उन्हें खाना पीना
0: हाँ
1: हर चीज प्रोवाइड कराना,
0: बिल्कुल।
1: हर पूरा एक
0: और
1: जिम्मेदारी
0: बड़ा
1: बन
0: मजा भी
1: जाती
0: आता
1: थी।
0: था कि भाई
1: हाँ
0: अगर पत्तल में उनको खाना परोसा गया है तो पूरी गरम क्यों नहीं है, रसगुल्ले ज्यादा क्यों नहीं मिल रहे हैं, रायता सही से क्यों नहीं
1: मिल
0: परसा
1: रहा
0: जा रहा है। तो
1: है,
0: इस तरह की जो थोड़े बहुत होते थे
1: चूहलबाजी भी होती
0: चूहलबाजी
1: थी।
0: टाइप की भी
1: हाँ
0: होती थी, तो
1: बिल्कुल
0: बड़ा यादगार दिन है वो।
1: बिल्कुल।
0: अभी तो जैसे कि अभी व्यवस्था होटलों में हो जाती है तो
1: हाँ अब
0: सब
1: वो जनवासी का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि
0: हाँ
1: होटल भी दूर दूर होते हैं
0: बिल्कुल
1: और अभी कई चीजें बदल गई हैं ना,
0: बदल गई।
1: वो
0: होटल में एक
1: चीज
0: साथ खाना
1: शादियां
0: खा
1: भी
0: रहे
1: होटल
0: हैं
1: में हो गई हैं,
0: जी
1: घरों में वो स्थान ही खत्म हो गया है जहां बैठकर गीत गाए जाते थे,
0: बिल्कुल
1: पूरा हल्दी से लेकर सारे कार्यक्रम किए
0: सारे
1: जाते थे,
0: कार्यक्रम।
1: तो ये चीजें अब बहुत कम हो गई हैं
0: लेकिन मुझे
1: जिसका।
0: तो वो जनवासे वाले दिन बहुत याद आते हैं।
1: बिल्कुल याद
0: तो
1: आते हैं।
0: चलिए हम लोग एक गीत सुनते हैं फिर
1: हाँ फिर
0: बाकी
1: बात
0: संदेश
1: करते हैं।
0: लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो मंजरी, मुझे तो लग रहा है कि जनवासे में तुम तो रूठ के नहीं बैठ गई हो।
1: नहीं, हम नहीं रूठ के बैठ गए, लेकिन मुझे याद है कि एक बार जनवासे में मुझे अकेला छोड़ के लोग खाने चले गए तो हमने आंख बंद कर ली, अंधेरा था चारों तरफ, तो इस तरह के हमारे साथ भी हादसे हो
0: कैसे
1: चुके हैं।
0: हुए
1: बाद में
0: हैं?
1: जो भैया लोग छोड़ के गए तो उन्हें बहुत डांट पड़ी तो इस तरह की यादें भी हैं। और हमारे साथी लिखते हैं, जनवासा जिसे जनवासा भी कहा जाता है, बिताए गए ये पल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं। यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक से दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासे के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक बन जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: सही
1: सही
0: कहा।
1: बात
0: हाँ,
1: है।
0: मैं एक श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह का मौसम है पुराने जमाने का, यानी मेरी माँ की शादी के समय का, 1951 की बात कर रहे हैं ये। उन्होंने बताया कि किस्सा जनवासा, यानी वो जगह जहाँ बारात और दूल्हे को दुल्हन के परिवार द्वारा स्वागत करके विश्राम के लिए ठहराया जाता है। छोटे गाँव में महीने में शादी थी। एक बड़ा घर व्हाइट वॉश कराकर उस जमाने की सुख सामग्री के साथ तैयार रखा गया। गर्मी का मौसम था तो खस के पर्दे लगा दिए गए। रात का सीमांत पूजन भोजन ये कार्यक्रम हो गए। शादी के दिन देखा तो सभी बारातियों के तन पर बड़े बड़े लाल धब्बे और सूजन दिखाई दे रही थी। पूछने पर पता चला कि रात को ठंड जगह की आकर्षण से लाल चींटियों ने बहुत समय में वहां आसरा कर लिया था और बारातियों को काट खाया और अपना आतिथ्य दिखाया। तो बड़े बड़े होटल से शान चौकत में अब तो जनवासा होता है, लेकिन उस समय की घर की बात बताइए कि चींटियां वगैरह थी, उन्होंने काट खाया तो हर बाराती के उस शरीर में लाल निशान बने हुए
1: बिल्कुल।
0: थे।
1: और जनवासे में ये भी देखा जाता था कि भाई उनके लिए पंखा रखा गया है कि नहीं, हाथ का पंखा होता था उस समय, तो वो है कि नहीं है। और एक हमारे साथी लिखते हैं, अब तो जनवासे के नाम से कुछ भी नहीं है, एक बारात घर में सब कुछ हो जाता है, अब तो बाराती रात में रुकते भी नहीं है। और ये जनवासे में चाय की बड़ी वो होती थी कि चाय चाहिए चाय चाहिए, अब सुबह चाय चाहिए तो मालूम पड़ा दूध नहीं आया है, तो वो बड़ी समस्या हो गई है, अब क्या किया जाए। तो उसमें भी कुछ लोग शैतानी करते थे कि भाई कम दूध डाल के, जैसे जितना भी दूध है उसी में चाय बना दी, अब तो यही है, पी लो पी लो तो कुछ पीते थे, कुछ सोचते अरे गर्म पानी समझ के ही पी लो तो बड़ी चीजें अलग अलग तरीके की उस समय में थी, लेकिन उनका भी एक अपना एक अलग
0: मजा था।
1: मजा था।
0: वही श्रोता लिखते हैं कि जनवासा में बताए गए ये बल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं। यहाँ जनजान अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक में दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासी के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक भी होते हैं।
1: बिल्कुल। और एक लिखते हैं, शादी में जनवासी के किस्से, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है और आज कल भी ऐसा होता है, ये जिज्ञासा बनी रहती है। वैसे देखा ये जाता है कि लोगों के पास समय अभाव है और इस दृष्टिकोण से फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं।
0: अब तो फॉर्मेलिटी ही
1: जी
0: निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पहले जनवासा गांव के स्कूलों में, पंचायत घर में या शामियाना लगाकर भी, या आम के बगीचे में भी तैयार किया जाता था।
1: और जब आम के बगीचे में होता था ना मंदाकिनी जी,
0: हाँ
1: तो वो तो किसी और का बगीचा है,
0: हाँ
1: अब
0: हाँ
1: आम लगे हैं,
0: हाँ
1: अब बराती लगे तोड़ने में, अब
0: हाँ
1: वो फिर झगड़ा मच रहा है तो मतलब आप बरातियों को बोल भी नहीं सकते कि भैया आम ना तोड़ो, तोड़ लिया है तो बाग वाला गुस्सा रहा है, तो इस तरह के बड़े
0: रोचक किस्से
1: रोचक
0: जनवासी
1: किस्से
0: की
1: हो
0: दुनिया से
1: जाते थे।
0: जुड़े हुए हैं। बिल्कुल,
1: जी
0: आज हमने इन किस्सों को याद किया। हमारे श्रोताओं ने भी अपने वो खूबसूरत किस्से साझा हमसे किए हैं
1: जी
0: और अब हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी

0: कभी कभी हमारे साथी लिखते हैं कि जनवासा गुजराती में से उतारो कहा जाता है, मतलब जान यानी बारातियों का उतार का ठहरने की जगह।
1: महक रही है सांसों की रागनी में, कभी कभी ऐसा।
2: तो मंजरी, आज तो बहुत सारी बातें हमने अपनी सखियों और सखाओं से कर ली और पुराने दिनों की याद ताजा हो गई
0: बिल्कुल
2: है ना, वो किस्से जो हम भूल गए थे
0: आज फिर से ताजा हो गए। ताजा तो सभी को धन्यवाद देते हुए नमस्कार करते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और
2: मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा, फिल्म ओ माई गॉड, बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारस नाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

0: क्या बात है बांसुरी की, इस
1: धन्यवाद।
0: मधुर तान को सुनकर आप, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अभिभूत और वशीभूत हो गए होंगे। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया। इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और
0: घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ जी का कैसा लग रहा है आपको यहां आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया। इसके लिए मैं आपका दिल से

0: क्या
1: सो
0: बात है,
1: थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट
0: अपने ही
1: गिफ्ट।
0: परिवार में वापसी है आपकी एक तरह से।
1: बिल्कुल कह सकते हैं इट्स अ होम कमिंग बैक।
0: बिल्कुल बिल्कुल। यहां एक चीज जो है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं कि आपके पिताजी पंडित अमरनाथ जी
1: पंडित
0: गायक पंडित अमरनाथ जी से
1: जी ने
0: अलग
1: अलग हैं, बांसुरी वादक
0: जी। बिल्कुल बांसुरी वादक पंडित अमरनाथ जी, जिनका ताल्लुक आकाशवाणी से भी रहा, आकाशवाणी के वाद्य वृंद के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: जी जी पिताजी ने तकरीबन 61-62 डिफरेंट रागास पे अपनी वाद्य वृंद की रचनाएं की।
0: क्या बात है।
1: और जो प्योर, जिसमें से बहुत प्रचलित राग भी नहीं थे, जिसमें से कई ऐसे राग थे जिसमें जो बहुत अक्षोभ राग भी हैं, अक्षोभ राग जैसे जो लोग ज़्यादा सुनते नहीं, बजाते नहीं, गाते नहीं, करते नहीं, और बहुत डिफिकल्ट राग भी हैं जैसे बिलास खानी तोड़ी। बिलास खानी तोड़ी राग गाना बजाना ही, उसको उस राग को संभालना ही मुश्किल है।
0: जी
1: और गोरख कल्याण, ये सब राग संभालने ही मुश्किल हैं। मारू विहाग और फिर केदार, ये सब रागों को सिर्फ संभाल लेना ही काफी है।
0: और इन रागों में वाद्यवृंद
1: वाद्य वृंद बनाना, वो भी
0: और
1: उनके
0: भी
1: चलन के आधार पे।
0: जी
1: अब सा रे ग म प ध नि ज नि ध प म ग रे ज, अब ये जब आप ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हैं 80 लोगों के साथ,
0: 80 लोग,
1: हाँ
0: ये मायने रखता है।
1: 80 आर्टिस्ट, वो भी 80 आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, वो एक एक चुन के हिंदुस्तान के नगीने हैं, जो अपने अपने अपने वाद्य के अपने अपने घरानों के खलीफा आप समझ लीजिए, जिनको जो अपने घराने के गुरु हैं और गुरु के सुपुत्र हैं, जो जनरेशन से चले आ रहे हैं। उनको दिल्ली में हम सुनते थे कि जो उनको अपने घरानों का खलीफा बोलते हैं, अपने घरानों का गुरु, महागुरु ऐसा समझ लीजिए। तो वो सब उस रूम में मौजूद हैं और पिताजी की कंपोजिशन वो बजा रहे हैं। और जो नोटेशन जो पिताजी करते थे, हिंदुस्तानी नोटेशन, सारे गामा पा ध नि सा और SRGM, सारे
0: अच्छा,
1: गामा पा ध
0: दोनों नोटेशन करते थे वो
1: पिताजी करते थे। हाँ, सो स्टाफ नोटेशन नहीं लिखते थे वो, हिंदी नोटेशन लिखते थे बट उसको SRGM में लिखते थे।
0: जी जी।
1: सो वो नोटेशन जो जब पिताजी बनाते थे कंपोजिशन, सो मैं और मेरे बड़े भाई पंकज नाथ जी, हम वैसे तीन भाई हैं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं श्री पवन कुमार नाथ जी, वो म्यूजिक में नहीं है, और मुझसे बड़े जो हैं श्री पंकज नाथ जी, वो बांसुरी वादक हैं, और मैं उनके बाद सबसे तीसरा छोटा पारसनाथ। तो हम तीन भाई हैं और दो म्यूजिक में हैं, एक म्यूजिक में नहीं है
0: जी।
1: तो मैं और पंकज नाथ जी हम लोग पिताजी के साथ रात भर बैठ के उनके साथ नोटेशन लिखा करते थे, वो बनाते रहते थे, सुर बनाते रहते थे और कंपोजिशन बनाते रहते थे, तो हम दोनों नोट करते रहते थे, नोटेशन करते रहते थे। तो वहाँ से हम नोटेशन सीखने को भी, एक जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई इंडस्ट्री में
0: बुनियाद पक्की हुई
1: एक तरीके से बोल लीजिए, वो एक ट्रेनिंग भी थी
0: जी,
1: और एक तरीके से काम भी होता रहा।
0: मैं ये देख पा रहा हूँ कि इतना अनुशासित और सख्त बचपन था, तो उसमें बदमाशी की जगह कितनी थी।
1: वो निकल ही जाता है बचपन में। बचपन ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी भी जगह या मौका मिले तो बदमाशी कर ही लेता आदमी।
0: कौन कौन सी बदमाशियां की कुछ याद कीजिए। उसके बाद जाहिर है कि बदमाशी के साथ एक चीज साथ में आती है, वो है कुटुंबस।
1: हाँ, अभी आर्टिस्ट है।
0: हाँ।
1: और मुझे ऐसा लगता है कि बचपना जो होता है वो अपने आप में ही बदमाश होता है, और प्लस आर्टिस्ट घराने का बच्चा हो
0: जी,
1: तो और भी बदमाश
0: और भी। तो आप क्या कारनामे करते थे?
1: हम लोग करते थे बचपन में।
0: शर्मा रहे, बता रहे थे।
1: हाँ, थोड़ा सा शर्मा हो गया बट हाँ, बदमाशी करते थे।
0: बगीचों से आम चुराए, चोरी
1: बहुत
0: से
1: चुराए,
0: देखी
1: है। बहुत चुराए हमने, आम चुराए और हमने अपने टीचरों को भी बहुत परेशान किया है।
0: ओहो हो,
1: प्रिंसिपल को भी थोड़ा परेशान किया है,
0: थोड़ा।
1: हाँ। इतना थोड़ा कि उन्होंने
0: घर शिकायत भेज दी।
1: घर शिकायत नहीं, घर वालों को स्कूल ही बुला लिया था।
0: अरे बाप रे। फिर
1: पिताजी आए, उन्होंने, अच्छा एक्चुअली मैं आपको बता दूं,
0: लेकिन किया क्या था आपने ऐसा? कुछ तो खतरनाक वाला किया होगा।
1: आपने मुझे पकड़ लिया रंगे हाथों पकड़ लिया आपने मुझे।
0: जी जी जी।
1: मैं बचपन में भी नहीं पकड़ा था मुझे तो टीचर ने।
0: अच्छा।
1: इसको कर्मा बोलते।
0: वापस आ गया।
1: मुझे लगता है कोई ना कोई टीचर आया आपके रूम। हाँ, तो बदमाशी की है सर। हाँ कभी कभी स्कूल से, जैसे कभी होमवर्क नहीं कर पाना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको
0: जी,
1: कि मुझसे होमवर्क नहीं हो पाता था।
0: अच्छा,
1: और जिस स्कूल में हम थे, मैं बॉय स्कूल में था, सो वहाँ के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे
0: जी,
1: बहुत स्ट्रिक्ट थे,
0: उस जमाना भी सख्ती का था
1: बहुत ज्यादा था, और मतलब लिटरली पिटाई पड़ती थी बहुत ज्यादा। सो उस पिटाई से बचने के लिए हमने थोड़ा स्कूल कभी कभी घर से निकले हैं पर पहुंचे नहीं
0: कहीं और पहुंच गए
1: तो ऐसी बदमाशियां रही, फिर खेलने चले गए
0: जी,
1: गेम खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, तो ये मस्तियां की हैं और पिताजी को पता नहीं होता था, और ये डर भी होता था उनको अगर पता चल गया
0: तो क्या
1: तो
0: हाल होता,
1: बाप रे दुनिया अलग और मैं अलग
0: कितना सख्त अनुशासन, आप सबसे छोटे थे तो लाड़ भी उतना ही रहा होगा, अनुशासन भी उतना ही।
1: अनुशासन के टाइम पे बिल्कुल लाड नहीं था
0: जी,
1: कोई छोटा बड़ा देखा ही नहीं। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बचपन में मैंने, मेरे भाई ने, हम प्रॉपर नींद सोए नहीं है, मतलब वो इसलिए नहीं सोए हैं, शायद उसकी वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठा हूँ
0: जी। ये एक साधना का हिस्सा रहा कि नींद में कटौती होती रही और सीखने का मामला चलता रहा।
1: वो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि वो एक करेक्ट एज है
0: जी
1: अनुशासन में रहने का, जीवन अगर बनता है तो उसी एक करेक्ट एज में, वो भले ही बच्चा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हो या भले ही बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा हो, अगर वो अच्छे माहौल में है ना, तो उसकी मेमोरी और मसल मेमोरी में वो बात जा रही है।
0: क्या प्यारी बात बोली है जी,

0: इंजर्ड हो गए थे, उनको उसने छुआ था, गोलियां लगी थी। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उस हालत में इंजर्ड नहीं हुए थे कि मतलब आदमी डेथ के उसमें चला जाए, बट ही वॉज इंजर्ड, हिज सीरियसली इंजर्ड।
1: लेकिन वो शहनाई भी बजाते थे
0: शहनाई छोड़ी नहीं उन्होंने, रियाज नहीं छोड़ा उन्होंने।
1: फौज में होते हुए भी।
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह,
0: शहनाई, और इस बांसुरी को बोलते हैं त्रिपुरा बांसुरी,
1: त्रिपुरा बांसुरी,
0: जो मेरे दादाजी ही बजाते थे पूरे खानदान में,
1: गजब।
0: सिर्फ दादाजी बजाते थे त्रिपुरा बांसुरी। अच्छा, त्रिपुरा बांसुरी में क्या एक स्पेशलिटी है सर, कि इसमें जैसे हम नॉर्मल बांसुरी है,
1: जी
0: हमारी ये नॉर्मल बांसुरी है, यहाँ पे कॉर्ग लगता है माउथ माउथ होल के पास,
1: जी बिल्कुल।
0: ये त्रिपुरा बांसुरी में कॉर्ग नहीं होता है, ये पूरी खाली होती है अंदर से,
1: अरे गजब।
0: एक बांस की नली है और उसमें जो सुरों के होल किए हुए हैं। और
1: जी
0: यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे बांसुरी वादकों को देखा होगा, बहुत आजकल जो पीछे पंचम का होल है, ये तो हम बचपन से देख रहे हैं अपने बांसुरी, अपने घराने के बांसुरी में। हालांकि हम पंचम का होल यूज नहीं करते, हम जो कृष्णा बांसुरी है
1: जी
0: नॉर्मल वो वैसे ही बजाते हैं,
1: जी
0: पंचम हम
1: बिल्कुल
0: होल यूज नहीं
1: यूज
0: करते।
1: नहीं करते हैं।
0: तो हमने तो अपने बचपन में दादाजी को त्रिपुरा और बांसुरी, ये कम से कम नहीं तो 200 साल पुरानी बांसुरी है,
1: क्या बात है, ये तो अद्भुत
0: अद्भुत बांसुरी,
1: अद्भुत
0: उनका
1: बांसुरी
0: आशीर्वाद
1: है
0: है।
1: जी।
0: मंदिर में रहती थी ये बांसुरी, हमेशा
1: वाह
0: मंदिर में रहती थी। सुबह तो हमारा कैसा था कि दादाजी हमारे मिलिट्री के थे, तो उनका अनुशासन शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट था। 4 बजे हम तीनों को उठा देते थे वो, हम तीनों का 4 बजे उठ के, मैक्सिमम 4:30 बजे उठ के सिर्फ एक काम था कि राग भैरव में एक स्थाई गानी है, तीनों को गानी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उसके पीछे वो उनका सोच ये था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उस वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जी है वो आपको महसूस करनी है, और उस मुहूर्त में जो राग है वो रागों का जो, क्योंकि हमारे जो राग रागनी है ये हमारे देव देवताओं का उत्पन्न किया हुआ है, ये तो साक्षात आजकल जो म्यूजिक जो एंटरटेनमेंट है वो तो पहले पूजा और प्रार्थना के लिए यूज होता था,
1: जी।
0: सिर्फ और सिर्फ पूजा और प्रार्थना और सिर्फ साधना ही होती थी संगीत के सुरों से। तो अभी क्या था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सिर्फ भैरव राग गवाने का एक ही उद्देश्य था कि वो आशीर्वाद ईश्वर का, वो भैरव राग का आशीर्वाद, सरस्वती माँ का आशीर्वाद उस मुहूर्त में हमें मिले।
1: वाह
0: तो सा सा सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा ब मा गा रे सा, एक हम बंदिश गाते थे तीनों भाई उठ के, जा

0: वाह वाह
1: जागो
0: वाह वाह,
1: मोहन प्यारे जागो। तो ये बंदिश हम सुबह गाते थे, उसके बाद हम तीनों नींद में गाते थे। अब ये तो हुई दादाजी की सोच, अब तीन बच्चों की सोच बताता हूँ कि हमें ऐसा लगता है क्यों क्यों उठाया जा रहा है 4 बजे सुबह, क्यों नहीं सोने दिया जा रहा है, ये क्या पनिशमेंट है, ये क्या है। क्योंकि नींद इतनी प्यारी होती है ना,
0: बिल्कुल
1: और
0: बचपन
1: वो
0: की नींद
1: चार
0: है,
1: साढ़े चार बजे तो एकदम चरम सीमा की नींद होती है।
0: बिल्कुल
1: उस वक्त जगा दिया जाता था। दिल्ली, आई बॉर्न बॉटम इन दिल्ली,
0: जी,
1: तो दिल्ली की सर्दी भी खतरनाक होती थी उस
0: खतरनाक जी।
1: पर वो जगाते थे। फिर उसके बाद वो हो गया, फिर 5:30 बजे के बाद हमें अलाउड नहीं था कि बेड से उठना ही है और फिर बाहर निकलना है घर से, एंड जस्ट हैव टू गो वॉक, डू व्यायाम, जो प्राणायाम, वट एवर। ये मैं अपने बचपने की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं 5th 6th स्टैंडर्ड की बात बता रहा
0: जी
1: हूँ।
0: जी
1: एंड देन वो होने के बाद फिर घर आए, नहाया धोया, नाश्ता किया। 7:30 8 बजे हम लोग रियाज पे बैठ गए। 8 बजे रियाज पे बैठे हैं नाश्ता करके, उसमें दादाजी के साथ भी जब पूजा करते थे दादाजी, तो ये बांसुरी बजाते थे।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो पूजा के टाइम पे वो राग दुर्गा में एक स्थाई बजाते थे।
0: अरे गजब।

0: फिर इसके साथ सरगम उन्होंने कुछ कुछ बनाई थी, बताई थी हमें, तो सरगम बजाते थे हम लोग। तो एक हाजिरी होती थी हमारी, पिताजी भी होते थे, दादाजी होते थे, हम दोनों होते थे। उसके बाद फिर दादाजी अपने शेड्यूल में बिजी हो जाते थे, पिताजी जॉब में जाते थे, हम लोग रियाज करते थे दोनों भाई। हमारा रियाज होता था तकरीबन 8 बजे से 8:30 बजे से लेके दोपहर को 12:30-1 बजे तक, 5 घंटे का एक टाइम का रियाज। फिर दिन में लंच के बाद 2 घंटे होते थे, उसमें आप कुछ और कीजिए, जैसे कुछ और सीखिए या बगीचे में कुछ कीजिए या कुछ भी घर में कुछ और सेवा कीजिए, घर का कुछ काम कीजिए, वैसा कुछ। फिर 4:30 बजे से 4, 4:30, 5 बजे से वापस रियाज, वो रात को चलता था 10, 10:30 बजे तक। तो दिन में तकरीबन 11, 12, 13 घंटे का रियाज होता था। उसी 13 घंटे में पूरे दिन शिष्य आते थे, अपने टाइम से आते थे, जिनको जाना होता था वो चले जाते थे, वो चलता ही रहता था एक रोटेशन में, तो वो माहौल रहता था।
1: वाह वाह,
0: फिर रात को आप समझिए 10:30 बजे अगर हम लोग छोड़ा है रियाज करके दिन भर, अब सोने गए हैं 12 के आसपास, तो पिताजी आए रिकॉर्डिंग से और 1 बजे या कभी 2 बजे उनका कुछ मूड हुआ बताने का, वो कुछ सोचते हुए आए हैं, बच्चों को बताऊंगा,
1: और बच्चे तो सो रहे हैं।
0: बच्चे सो रहे हैं। अब बच्चे कौन, मैं और मेरे बड़े भाई पंकज जी। अब पिताजी ने हमें कभी बचपन में, मेरी माता ने, पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया, पर डर इतना था कि उनके आंखों से और आवाज से डर लगता था। तो ये था कि अब पिताजी आ गए 12-1 बजे, उन्होंने कहा चलो बांसुरी लेके आओ। अब नींद से आधी नींद से उठे, मुंह में पानी डाला है, फिर दोनों बांसुरी लेके आ गए। अब सर वो सेशन चल रहा है सुबह 4-5 बजे तक,
1: ओ हो, तो सारी रात जागना है
0: पूरी सारी लाख जाग गए,
1: और सुबह का तो फिर शेड्यूल तय है।
0: सुबह का शेड्यूल थे। पर फिर कभी कभी पिताजी संडे, क्योंकि आकाशवाणी छुट्टी होती थी, तो सैटरडे संडे पिताजी भी बैठते थे रियाज पे। फिर वो जब पिताजी बैठते थे तो और लंबा डिटेल क्या रियाज होता था दादाजी के साथ भी, तो होते होते फिर वो बचपन पूरा वैसे ही उसी
1: रियाज करते
0: अनुशासन से,
1: हुए,
0: रियाज करते
1: अनुशासन
0: हुए
1: में,
0: अनुशासन से इसी तरीके से गुजरा है।
1: क्या
0: पर
1: बात है।
0: मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि इस जीवन में मुझे, मैं जितना ही अपने आप को ग्रैटिट्यूड महसूस करूं यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, या उस सोर्स के लिए जिसने मुझे ये लाइफ दी है, कि मुझे ऐसे परिवार में ऐसे दादा दादी जिन्होंने पूरा बचपन में हमें प्यार भरपूर दिया,
1: जी
0: संगीत दिया, जिसके वजह से हमारी जिंदगी बनी,
1: जी
0: मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी, और फिर संगीत सिखाया, और फिर जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज दी,
1: जी
0: ऐसे परिवार में मेरी जीवन की शुरुआत हुई। कोई भाग्यशाली, मैं अपने आप को बहुत मानता हूँ कि ऐसे घराने का बच्चा हूँ और ऐसे घराने में पैदा हुआ हूँ। और भी बहुत एक बड़ी बात है कि जीवन को जीने के लिए कई बार ऐसा होता है, प्रोफेशन आप पैसा कमाने के लिए चुनते हो, जिससे आप पैसा कमाते हो, पर आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है, और पैशन आपका कुछ और होता है, पर आप पैशन के लिए काम कर ही नहीं पाते हो।
1: बिल्कुल।
0: जीवन जीने का, आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो वो पैशन है आपका, वो कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है,
1: बिल्कुल।
0: ट्रैवल करना हो सकता है, कुछ भी, मतलब म्यूजिक हो सकता है। और तो मेरा तो पैशन भी यही है, जीवन भी यही है, ऐसा नहीं लगता है ये मेरा साज है, ऐसा लगता है मेरे शरीर का एक अंग है,
1: बिल्कुल।
0: ये और मैं एक ही हैं। सो मैं इस जन्म में आर्टिस्ट बन के पैदा हुआ हूँ, और एक साज की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान के साज की सेवा कर रहा हूँ, जिन्होंने इस साज से पता नहीं कितने लोगों का कितना उद्धार हुआ है, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है।
1: क्या बात है पारस जी। हम अब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो दादाजी वाली बांसुरी है, त्रिपुरा बांसुरी,
0: जी
1: उस पर कोई धुन बजाएं, और उसके बाद हम एक फिल्मी गाना सुने आपकी पसंद
0: जी
1: का।
0: मैं दादाजी की बजाई हुई धुन में आपको सुनाता हूं,
1: जी
0: पर त्रिपुरा बांसुरी मैंने बजानी, मेरे लिए ये एक बहुत ड्रॉबैक है मेरे लाइफ का,
1: जी
0: कि ये बांसुरी मैं कोशिश की थी मैंने बजानी,
1: जी जी
0: पर दादाजी जब तक उनके दांत थे और वो इस तरीके से होल्ड कर पाते थे,
1: जी जी जी
0: इसको ऐसे बजाते हैं,
1: समझ गया।
0: देखिए, तो एक होती है सीधी बांसुरी, आपने
1: हाँ,
0: देखी होगी, ऐसे
1: और
0: शहनाई की
1: ये
0: तरह बजाते हैं,
1: जी जी जी
0: एक होती है ये जो हम बजाते हैं कृष्णा बांसुरी,
1: जी
0: इसको कृष्णा बांसुरी बोलते हैं, तो मैंने कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी होगी थी, इसको
1: हमेशा।
0: ऐसी, तो इसको बोलते हैं आड़ी बांसुरी,
1: हाँ
0: आड़ी बांसुरी भी बोलते हैं, कृष्णा बांसुरी भी बोलते हैं, और इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य भी बोलते हैं।
1: जी
0: फिर ये हो गए त्रिपुरा बांसुरी, इसको बजाते हैं ऐसे। इसका ये पंचम का हुल है
1: जी
0: और ये बाकी आगे नॉर्मल जैसे बांसुरियों पे होता है
1: उस तरह के।
0: उस तरीके का है। और इसमें एक और खास बात है कि आप देखिए, इसमें जो कृष्णा बांसुरी है, इसमें जो एक मध्यम तीव्र मा, जो क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्लूट मेकर्स अपने नाम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे फ्लूटिस्ट अपने नाम बढ़ाने के लिए वो चीजें अपने आप को, क्योंकि अपना नाम आजकल के जीवन में क्या हो गया ना सर, भोगना भोगना ग्रीडीनेस
1: जी जी
0: इतना ज्यादा बढ़ गया है कि झूठ पे झूठ बोलते हैं लोग।
1: जी
0: आप सोचिए, ये मैं 200 साल पुरानी बांसुरी मैं आपको दिखा रहा हूं,
1: जी बिल्कुल
0: इसमें दो चीजें दिखा रहा हूं मैं आपको, इसमें एक तो पंचम होल दिखा रहा हूं
1: हाँ बिल्कुल
0: और दूसरा एक ये मध्यम तीव्र मध्यम का ही
1: हाँ
0: नोट है।
1: बिल्कुल है
0: ठीक है,
1: आखिर में।
0: ठीक है। अब ये दोनों चीजें बहुत सारे सब बोलते कि ये हमारा है हमारा है हमारा है,
1: ये तो 200 साल पुरानी बांसुरी है
0: हमने तो बचपन से देखा है,
1: जी
0: हमने कभी बोला ही नहीं ऐसा, क्योंकि हमें उस तरीके से कभी ना, हमने कभी ना देखा, ना कभी पिताजी का कभी वैसा विचार रहा, ना कभी दादाजी का वैसा विचार रहा कि ये हमारा है हमारा है, हमने किया है हमने किया है हमने किया है। पिताजी और दादाजी का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है हमेशा से, पिताजी का आज भी है, कि ये ईश्वर का दिया हुआ साज है, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, हमारा नहीं है ईश्वर का है, ईश्वर ने हमें चुना है, तो आपके थ्रू जो अच्छा जितनों का हो सके अगर हो पा रहा है तो वो भी ईश्वर ने आपको चुना, उसके लिए
1: आप माध्यम है
0: आप अपने आप को मत मत समझिए कि आप भगवान हैं,
1: जी
0: आप भगवान नहीं है। आप भगवान होते तो आपने अपने लिए कुछ कर लिया होता सबसे पहले, जिन लोगों की वजह से आपका हो रहा है वो आशीर्वाद ईश्वर का दिया हुआ है।
1: बहुत सही
0: तो हमने तो बचपन से ये देखा है सर। अब ये त्रिपुरा बांसुरी जो है ना, ये दादाजी का ही आशीर्वाद है, मैं ये बांसुरी बजा पाता हूं, मैं जो
1: जी
0: भी है मेरे पास उन्हीं का आशीर्वाद है, पर ये बांसुरी मैं बजा नहीं पाता,
1: कोई बात नहीं तो
0: इसका
1: आप
0: साउंड क्रिएट नहीं कर पाता।
1: जी तो आप
0: ये
1: अपनी
0: मैं लाया
1: कृष्णा
0: इसलिए
1: बांसुरी
0: हूं,
1: बजाइए
0: मैं
1: जी
0: लाया इसलिए हूं कि उनका आशीर्वाद हमें, खैर
1: साथ
0: मेरे,
1: चले।
0: मेरे साथ, मेरे हमेशा साथ रहता है ये,
1: वाह
0: हमेशा।
1: क्या प्यारी
0: हाँ,
1: बात है।
0: ये कि हम मेरे फ्लूट किट में रहता है।
1: जी
0: अब मैं आपको एक चीज बता रहा था, जो तीव्र माँ का ये है,
1: जी जी
0: अब ये बांसुरी पे तीव्र माँ का यहाँ होल
1: हाँ है
0: है ना।
1: जी
0: इसलिए आप कभी गूगल यूट्यूब में सर्च करेंगे ना, आपको ज्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा दादाजी का,
1: जी जी जी
0: पिताजी का भी ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वो सुरों में खोए रहते थे, म्यूजिक में खोए रहने वाले लोग थे, शागिर्दों के साथ रहने वाले लोग थे, संगीत में खोए रहने वाले लोग थे, वो टेक्निकली वो उस चीज को समझ ही नहीं पाए। अब
1: जी
0: हमें भी जब समझ में आया ना, तो दादाजी हमें छोड़ के, शरीर छोड़ के जा चुका था उनका। अब पिताजी भी अपने एक मिजाज के हैं, तो हम भी उनके, क्योंकि हम बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, शिष्य भी हैं। अब पिताजी कब गुरु से पिता बन जाते हैं, पिता से कब गुरु बन जाते हैं, समझ में नहीं आता है,
1: बिल्कुल सही
0: वो
1: है
0: देखना पड़ता है।
1: जी
0: तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने बोला दादाजी के लिए जो हम बजाते थे बचपन में,
1: हाँ हाँ
0: दादाजी के साथ राग दुर्गा मैं आपको सुनाता
1: ठीक है। और उसके
0: हूं,
1: बाद एक फिल्मी गाना भी सुनते
0: मैं
1: हैं
0: फिल्मी गाना भी सुनाऊंगा
1: जी।
0: आपको।

0: क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: अब बताइए गाना कौन सा सुना जाए।
1: मैं आपको एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है
0: जी जी,
1: जो कि मैं अक्सर बजाता भी हूँ, वो है पिया तो से नैना लागे रे।
0: क्या बात है, गाइड फिल्म का ये गाना है।
1: बहुत अच्छा गाना है।
0: वाह वाह वाह।
1: और लता जी ने तो
0: कमाल किया,
1: उनको सादर कोटि कोटि प्रणाम है। और इतना अच्छा कंपोज किया है
0: एसडी बर्मन साहब ने।
1: वाह वाह। तो मैं वो आपको
0: जरूर जरूर स्वागत है।

0: अभी इसमें क्या किया ना मैंने, जैसे मैं इसको थोड़ा फ्यूजन अंदाज से भी बजाता हूँ कभी कभी,
1: जी,
0: तो इसमें एक छोटी सी थीम ऐड की है मैंने,
1: अच्छा
0: बहुत ही छोटी सी। अब जैसे ये चल रहा है,

0: फारस जी, आपके बचपन की साधना, बचपन का माहौल, सख्त अनुशासन, ये तमाम बातें हमने यहाँ सुनी और जानी
1: जी।
0: एक बात जो हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है जानना, वो है कि किस उम्र में आपको बांसुरी पकड़ा दी गई थी?
1: सर, ये मुझसे सवाल पूछा जाता है, मैं हर बार यही जवाब देता हूँ, जब एक बच्चे को एहसास होने लग जाता है ना,
0: जी,
1: कोई सेंस शुरू हो जाता है दुनियादारी का, मुझे लगता है कि उसी एज में मैंने बांसुरी हाथ में ले ली थी।
0: जी,
1: एक बच्चा होता है जब सिर्फ रो रहा होता है, सिर्फ एक सोता रहता है, खाता
0: शिशु
1: रहता
0: होता
1: है,
0: है जब
1: शिशु
0: वो।
1: होता है वो, तो जब एक बच्चा लड़कपन में आ जाता है
0: जी
1: तो उस एज में बांसुरी हाथ में आ गई थी।
0: वाह वाह वाह।
1: अब वो कौन सी एज थी, मे बी मैं 2 साल का था, 3 साल का था, या कितने भी, मैं इतना बता मुझे पता है कि मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी, मेरे दादाजी के साथ में गया था और जो स्टेज परफॉर्मेंस थी तो 5 साल की एज में थी।
0: बाप रे, इतनी कम उम्र में परफॉर्मेंस।
1: हाँ, वही राग दुर्गा ही बजाया था मैंने। उस वक्त क्या था, वो 5 साल की एज में वो जो जितना उन्होंने सिखाया था वो रट के गया था मैं तो सरगम वगैरह उसी हिसाब से बजाया, तो उस वक्त ऐसा, अभी तो जैसे मैंने आपको एक थोड़ा उपज थोड़ा सा करके दिखाया,
0: जी,
1: उस वक्त वैसा नहीं था, तो वो उन्होंने जैसे जैसे सरगम के साथ,
0: वो उम्र भी बहुत छोटी थी।
1: हाँ, काफी छोटी थी। फिर उसके बाद मेरा सबसे पहला इंटरव्यू है, 5 साल की एज में ही मैंने दूरदर्शन में एक ये प्रोग्राम आता था सुबह सवेरे, तो 5 साल की एज में मेरा पहला इंटरव्यू है।
0: अरे बाप रे,
1: हाँ,
0: तो सवालों के जवाब देने की बुद्धि आ गई थी तब तक गजब।
1: वो ये आशीर्वाद है।
0: जी,
1: वो उन्होंने सवाल भी

0: वैसे ही किए होंगे
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: कि सुबह उठ के आप कौन सा नाश्ता करते हैं, हॉर्लिक्स पीते हैं कि क्या करते हैं, उनके
1: जब
0: सवाल भी
1: पीने
0: बहुत होंगे
1: जाई
0: जी।
1: तो किस तरह का नाता बाकी तमाम चीजों से जुड़ा, खेलकूद से, सिनेमा से?
0: सिनेमा से इतना नहीं जुड़ा
1: जी
0: उस वक्त, म्यूजिक क्योंकि मैंने जैसा कहा कि टीनेज में तो मैं प्रोफेशनली म्यूजिशियन एज अ म्यूजिशियन दिल्ली में
1: जी
0: काम करने लग गया था, तो फिल्म से नाता क्योंकि बचपन से ही टीवी और रेडियो से मतलब सुनने में और करने। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं आई मीन रेडियो कैसे सुना है, गाने कैसे सुने हैं। मेरी माताजी, मेरी दादी और हमारी बुआ जी, तो हम लोग सब साथ में मिलके होली के टाइम पे मेरी माताजी और दादी जी वो गुजिया बनाते थे घर पे, नमक
1: बिल्कुल
0: पारे, गुजिया, घर के में मिठाई। तो पहले बाहर से नहीं आता था मिठाई,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हालांकि हमारे घर में तो तब त्योहार पे अभी भी बाहर से नहीं आता, वो बच्चे शागिर्द वगैरह जो आते हैं वो लेके आते, बट घर पे ही बनता है ज्यादातर,
1: और वो ठेठ बनारसी।
0: ठेठ बनारसी। तो मेरी दादी माँ और माता जी गुजिया बनाते थे और रात भर का कार्यक्रम रहता था वो।
1: गजब।
0: हाँ तो उस वक्त रेडियो चलता था, उस वक्त रेडियो चलता तो रेडियो में सब पुराने गाने, लता जी के, खयाम साहब के, रफ़ी साहब के, किशोर कुमार जी के, मुकेश जी के, आशा जी के, सब वही उस वक्त जो गाने सुनते रहता था ना मैं। तो अभी जो कुछ कुछ गाने मुझे पुराने याद हैं, अब जैसे रसिक बलमा,
1: जी
0: अब बहुत सारे लोगों को वो गाना ही नहीं पता,
1: हाँ, चोरी चोरी फिल्म का।
0: अब वो मैंने कितने सालों से सुना ही नहीं, मैं खुद ने नहीं सुना वो गाना,
1: जी
0: वो तब
1: जी
0: का सुना हुआ है,
1: गजब।
0: तो वो जहन में, वो भी मैंने कहा ना बचपन में अगर आपके माहौल अच्छा हो तो आपके मसल मेमोरी में क्या बात चली जाती है ना, आपके मेमोरी में कौन सी बात घुस जाती है और वो फिर कहाँ काम आती है आपको पता नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आपको जैसा कि मैं बताऊं कि मैं क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इवेंट्स भी करता हूँ, कॉरपोरेट इवेंट्स भी करता हूँ, वहाँ बहुत सारे जगहों पे फरमाइश होती है कि ये वाला गाना पुराना गाना है, इस तरीके से आप सुनाइए ये गाना है। अब एक वो गाना है मदर इंडिया का गाना है एक वो,
1: हुलिया ही रे कन्हाई।
0: हाँ अब वो गाना वैसे आप सुनने जाएंगे तो नहीं सुनने को मिलेगा, पर उस वक्त आकाशवाणी में बजता था तो
1: जी
0: वैसा था, तो फिर आए दिले नादान,
1: वाह वाह वाह, रजिया सुल्तान
0: हाँ
1: फिल्म का
0: रजिया सुल्तान,
1: गाना।
0: तो कितना कमाल गाना है वो।
1: बिल्कुल
0: हो तो वैसे ही होते होते फिर वो उस हिसाब से चल पड़ा। तो खैर फिल्मों से नाता उस वक्त था नहीं वैसा, क्योंकि जुड़ नहीं पाते थे उस वक्त की मूवीज से हम,
1: जी
0: पर दादाजी की वजह से हमने कुछ कुछ फिल्में देखी हैं, जैसे बॉम्बे टू गोवा, पड़ोसन
1: अरे बाबा।
0: और गुजुटी सेनाई और भी बहुत सारी पिक्चरें उस वक्त थी। फिर ज़्यादातर यही रियाज रहता था, फिर रिकॉर्डिंग्स प्रोग्राम्स में जाना, और फिर कभी जब खाली टाइम मिलता था तो हम लोग, हम भाइयों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक,
1: अच्छा,
0: बहुत शौक,
1: क्या बात है।
0: एंड आई वॉज दी बेस्ट प्लेयर
1: अरे
0: इन द
1: वाह,
0: टीम।
1: तो
0: यस
1: आप बॉलर थे या आप
0: मैं बॉलर ज़्यादा
1: ऑलराउंडर
0: बेहतर
1: थे?
0: था,
1: अच्छा।
0: ऑलराउंडर ही था ज़्यादातर, बट ज़्यादा बॉलर वाला काम था मेरा,
1: क्या बात है,
0: था
1: तो फास्ट बॉलर थे।
0: फास्ट बॉलर लाइक शोएब अख्तर।
1: वाह वाह वाह वाह, इतना एग्रेसिव, क्या बात है। तो अभी क्रिकेट देखने का वक्त मिल पाता है?
0: अब तो सर सिर्फ बस देखते ही हैं ऐसे, बस पोस्टर एडवर्टाइजमेंट में दिख जाता है और कुछ नहीं।
1: जी, लेकिन घर से विरोध था क्रिकेट खेलने का?
0: विरोध ये था कि अब जब खेल के थे ना, वो मैं बता रहा हूं ना, एक्सट्रीम होता है आर्टिस्ट हर चीज में,
1: खेल रहे हैं तो फिर
0: फिर
1: बस
0: खेल रहे तो फिर इतना खेल रहे कि सुबह 9 बजे से गए, शाम को 8 बजे घर आ रहे हैं।
1: डरते डरते।
0: हाँ कि मतलब कहाँ है, दिन भर बच्चा है कहाँ, मोबाइल भी नहीं था तब तो,
1: हाँ हाँ बिल्कुल
0: कोई मैसेज ही नहीं है घर पे कि बच्चा जगाया कहाँ,
1: हाँ,
0: तो ये एक अजीब सी बात थी, मतलब सुबह गए हैं खेलने तो चले
1: बस
0: ही गए बस।
1: जुनून के तहत खेल
0: हाँ
1: रहे हैं।
0: वो फिर खाना पीना भी वहीं बाहर खा रहे हैं, कुछ चल रहा है नाश्ता पानी, और फिर उस वक्त क्या होता था, फिर जैसे आसपास के जो मोहल्लों में जो टीम होती है अलग अलग,
1: उनके
0: जैसे
1: मुकाबले। हाँ
0: फॉर एग्जाम्पल वाई ब्लॉक का एक टीम है, जेड ब्लॉक का एक टीम है, तो उनका फिर मुकाबला भी हो रहा है,
1: बिल्कुल।
0: तो वो भी होता था कि शाम को मैच है और उसकी तैयारी करने के लिए सुबह हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वैसा रहता था, तो दिन भर चला जाता था उस जुनून में, फिर ध्यान नहीं रहता था कि घर पे बताना भी है, पर घर वाले तो मजाक।
1: ये
0: हाँ
1: भारी भूल बड़ी महंगी पड़ती होगी।
0: वो महंगी पड़ती थी।
1: अच्छा, पढ़ाई और संगीत में संतुलन कैसे बन पाता था?
0: पढ़ाई में मैंने आपको पहले ही दे
1: इशारा
0: दिया था,
1: किया।
0: इशारा किया था कि ज्यादा सवाल नहीं रखेंगे
1: अच्छा ये कोर्स से बाहर का सवाल है
0: पर आप इशारा शायद समझ के भी आपने मुझे फिर वापस
1: फिर वापस ले आए
0: आप बार बार मुझे स्कूल ले जाते हो पता नहीं क्यों।
1: नहीं नहीं स्कूल से बाहर आ जाते हैं,
0: स्टूडियो चलते हैं ना,
1: स्टूडियो चलते
0: मजा आता है।
1: आकाशवाणी के गलियारों से जुड़ी यादें बताइए। पिताजी तो स्टाफ आर्टिस्ट थे तो
0: वहां पे
1: उनके
0: क्या
1: साथ जाते होंगे आप स्टूडियो?
0: जी हम जब जाते थे पिताजी के साथ, मैं दादाजी के साथ भी जाता था अपने, और दादाजी का जो ग्रुप था वो अलग था।
1: अच्छा
0: हाँ, तो दादाजी क्योंकि रिटायर हो गए थे तब तक,
1: हाँ हाँ
0: जब हम उनके साथ जाते थे तो वो पेंशन के लिए जाते थे
1: जी,
0: दादाजी
1: जी
0: अपने कुछ ऑफिशियल कुछ पेपर वर्क के लिए जाते थे उस वक्त, तो उनके साथ जाने का एक अलग मजा था, वो एक अलग फीलिंग थी दादाजी के साथ जाने का। तो फिर पिताजी के साथ भी हम जाते थे, तो पिताजी के साथ तो मतलब काम के लिए ही जाते थे ज्यादातर। दादाजी के साथ कभी दादाजी का रिकॉर्डिंग होता था तो शहनाई का रिकॉर्डिंग होता था उनके साथ पूरा। अभी जो मैंने तानपुरा चलाया
1: जी जी
0: उसमें पेटी वाली सुरपेटी आती थी, तो कभी मैं कभी मेरे भाई हम लोग गए तो वो पेटी वाली सुरपेटी आज भी हमारे घर पे रखी है। तो वो सुर जो बैकिंग मिलता था सुर का वो तानपुरा और वो पेटी वाली सुर का। तो फिर उसके बाद जब पिताजी के साथ जाते थे तो पिताजी कभी कभी अपने साथ, जैसे कभी पिताजी का रिकॉर्डिंग हुआ क्लासिकल किसी बांसुरी पे किसी ग्राहक का, तो पिताजी के साथ ऐसे ही सपोर्ट के लिए गए। और आकाशवाणी में ज़्यादातर फिर जब वो वाद्य वृंद की रचना उनकी जब रिकॉर्डिंग होती थी तो वो एक दिन की नहीं होती थी उसमें। आप सपोज कीजिए कि अगर 20 पेज का पूरा है
1: कंपोजिशन,
0: कंपोजिशन है, तो शुरू में हमने 10 पेज किया, तो एक दिन 10 पेज हुआ, फिर एक दिन 10 पेज हुआ, फिर अगर कुछ ऐसा हुआ कि वापस करना है तो 4-5 दिन हो जाता था उसमें।
1: बिल्कुल।
0: तो उस वक्त क्या होता था सर के हम जब जाते थे पिताजी के साथ तो वहाँ जितने भी बड़े जो सीनियर जो दिग्गज कलाकार सब अपने अपने घर के गुरु जो होते थे उनके बीच में बैठ के ना सबकी मजाक में भी जो बातचीत सुन के जो एक मजा तो आता था वो एंटरटेनमेंट अलग है, पर बहुत सारी चीजें समझ में भी आती थी, दुनियादारी की चीजें समझ आती थी। बातचीत में से ये समझ आता था कि किस बात का कैसे जवाब देना होता था, हाजिर जवाब भी समझ में आती थी
1: जी।
0: और ये सब तो दुनियादारी की चीजें, ये आप घर पे नहीं सीख सकते।
1: नहीं बिल्कुल नहीं,
0: ये आपको घर से चौखट से बाहर निकल के ही पता चलता है। पर मुझे और मेरे भैया को बहुत प्यार देते थे सब, क्योंकि हम छोटे छोटे से थे और अपने काम में सिंसेयर थे, और नोटेशन सबको प्रोवाइड करना और सब सबका ख्याल रखना। और हम जाते थे दोनों भाई, सपोज ये हॉल है, अब इस हॉल में चारों तरफ आर्टिस्ट ऐसे बैठे हैं सर्कल लेके, तो हम सबके पैर छूते थे। पिताजी हमारे घर ने माता पिता ने ये बोला है कि बड़े जो है सब आर्टिस्ट है सबका आशीर्वाद लो
1: जी,
0: तो पूरा एक हमारा चक्र
1: चक्कर लगता है
0: तो वहां फिर वो बोलते थे कि बेटा इतना ऐसा करने की जरूरत नहीं। वो जो वहां पे जो भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जिनको लगता था कि ये बच्चे इतने अदबदार हैं इतने प्यारे हैं तो इनको एक तरीका बता दो, और तो पिताजी तो रोकते नहीं थे, पर उनमें से एक जो बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहा कि बेटा ये पूरा ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप सबको प्रणाम कर दो बीच में खड़े होके और फिर अपनी जगह बैठ जाओ। तो वैसा एक पिताजी के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता था। फिर रिकॉर्डिंग के बाद जब उनके साथ निकलते थे तो सब अपने अपनी चीज़ें बताते थे उनको कि ये पार्ट में ये इस तरीके से अगर ये नोटेशन और क्लियर हो जाए या कुछ और ऐसा हो जाए, तो पिताजी वॉज ऑलवेज सो वेलकमिंग कि ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कंपोजिशन बनाई है तो किसी और का सुनेंगे नहीं, क्योंकि सारे ही बाखूबी बड़े दिग्गज कलाकार हैं। तो वो अगर कुछ सजेशन उनको ऐसा लगता था कि नहीं इससे और खूबसूरत हो रहा है, ही ऑलवेज यूज टू टेक दिस सजेशन एंड मेक द
1: चेंजेस अकॉर्डिंगली,
0: मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली, एंड वो हमेशा ही रिस्पेक्ट करते थे उस जेस्चर का।
1: क्या
0: तो
1: बात है?
0: वो एक बड़ा शाम को फिर एक अलग माहौल होता था कि जैसे कभी कभी बैठक होती थी घर पे हमारे या किसी और के घर पे बैठक हो रही है संगीत की, तो वहां पे मैं और जब हम दोनों भाई जाते थे तो आप सपोज कीजिए कि एक तरीके की क्लास ही होती थी, एग्जाम ही नहीं होता था वो, कि आप कुछ बड़े बड़े आर्टिस्टों के बीच में उस एज में कुछ आपको बजाने के लिए बोला, अब आपको कुछ बजाने के लिए बोला है,
1: हाँ
0: अब वो क्या है वो आप डिसाइड कीजिए.
1: बिल्कुल
0: सो आपको अब वो उसमें टेंशन बजाने से ज्यादा, फीलिंग से ज्यादा 80% टेंशन होता था कि क्या बजाए, गलत ना हो जाए,
1: इतने सारे लोग
0: इतने
1: हैं.
0: सारे लोगों के बीच में. तो उनकी वो एनर्जी और वो इम्प्रेशन भी और पर्सनैलिटी की वो विभूति सब बैठे हैं एक रूम में, तो उनके बीच में बैठ के बजा रहे हैं, तो एक घबराहट रहती थी. तो वैसा रेगुलरली वैसा ही था बचपन में ज्यादातर.
1: गजब, यानी चारों तरफ सिर्फ संगीत संगीत और संगीत था.
0: वही था, वही था.

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी। ये था पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आप सुनेंगे अगले हफ्ते।

शुभ संध्या। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अभी तक आप विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई से कार्यक्रम सुन रहे थे। संध्या के 5 बजे हैं। मीडियम वेव और FM के मीटर्स पर आकाशवाणी रामपुर से हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं।

आज शाम कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आकांक्षा की ओर से प्यार भरा नमस्कार। काश कुछ पल यूं ही ठहर जाते, जो अपने थे फिर वो दोबारा नजर आते। दिल आज भी उसी मोड़ पर खड़ा है जहां आप मुस्कुरा कर कहते, फिर मिलेंगे।

आकाशवाणी रामपुर से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम आज शाम आकांक्षा के साथ। ऐ मेरे हम सफ़र, ऐ मेरे हम सफ़र, तेरे साथ चलना ही मेरी मंजिल है। तेरी हंसी से होती है मेरी सुबह और हर शाम, तेरी खामोशी भी मेरे दिल में शामिल है। तू साथ हो तो हर रास्ता आसान लगे, ये दिल तेरे बिना हर पल बस

इन्हीं खूबसूरत एहसासों के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपने हम सफ़र का साथ यूं ही बनाए रखिए, क्योंकि सफ़र खूबसूरत मंजिल से नहीं, साथ चलने वालों से बनता है। फिर होगी आपसे मुलाकात इस वादे के साथ कि आप मुस्कुराते रहेंगे। आकांक्षा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी रामपुर है। संध्या के 5:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवाणी, श्रीरीन खान और नतांश अग्रवाल के साथ।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। स्वागत है आपका अपने प्रोग्राम युववाणी में। आज मैं हूं आपका रेडियो सत्रीय नितांश अग्रवाल
1: और मैं हूं शीरीन खान। एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए जोश, नई उमंग और ढेर सारी बातों के साथ। तो कबूल कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशियों से भरे और मुस्कान के साथ हमें सुन रहे होंगे। रोज़ की तरह आज भी आप सबका बेसब्री से इंतज़ार था, तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम आज के सवाल के साथ। और आज का हमारा सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है?
1: दोस्तों, सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। हमारा सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको जाना होगा हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी रामपुर पर, और उसके अपडेटेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिख भेजना होगा अपना सही जवाब। सही जवाब देने वाले श्रोता साथियों का नाम हम अनाउंस करेंगे प्रोग्राम के एंड में।
0: शिरीन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ सम्मान सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि पूरे देश की भावना और संस्कृति को सम्मानित करते हैं?
1: बिल्कुल नतांश, और ऐसे ही सम्मानों में सबसे खास है पद्म पुरस्कार। ये केवल पुरस्कार नहीं बल्कि देश के लिए असाधारण योगदान देने वाले लोगों को दिया जाने वाला सम्मान है।
0: सही कहा दोस्तों, पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है।

0: इनकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है और बाद में राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये सम्मान प्रदान किया जाता है। शिरीन, क्या तुम्हें पता है पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं?
1: जी हाँ, पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री।
0: आपको बता दें, जहाँ पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है,
1: वहीं पद्म भूषण उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है।
0: कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य और उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों के लोग इस सम्मान से नवाजे जाते हैं।
1: और नदाश, तुम्हें पता है वर्ष 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं।
0: तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस वर्ष के पद्म विभूषण सम्मान प्राप्तकर्ताओं की।
1: महान अभिनेता धर्मेंद्र देओल को मरणोपरांत कला क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है।
0: वहीं पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को लोक सेवा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है।
1: उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध शास्त्रीय वायलिन वादक एन राजम को कला क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है।
0: साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पी नारायणन को यह सम्मान दिया गया है।
1: और पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अछूतनंदन को मरणोपरांत लोक सेवा के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया है।
0: शिरीन, उत्तर प्रदेश के लिए बेहद गर्व की बात है कि बनारस घराने की महान संगीत साधिका एन राजम को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है।
1: अरे, कुछ और भी चर्चित लोग हैं जिन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है, जैसे मशहूर गायिका अलका याग्निक को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, और खेल जगत से भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वहीं महिला क्रिकेट की स्टार खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर को भी पद्मश्री मिला है।
0: और श्रीन, यही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई लोगों ने हमारे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, जैसे अनिल कुमार रस्तोगी को कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है, अशोक कुमार सिंह को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, बुद्धरश्मि मणि को पुरातत्व के क्षेत्र में, चिरंजीव लाल यादव को कला के क्षेत्र में, केवल कृष्ण ठाकराल चिकित्सा क्षेत्र, मंगला कपूर साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र, प्रवीण कुमार खेल क्षेत्र, रघुपत सिंह कृषि क्षेत्र, राजेंद्र प्रसाद और श्याम सुंदर को चिकित्सा क्षेत्र से सम्मानित किया गया है। इन सभी विभूतियों ने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर उत्तर प्रदेश और पूरे देश का मान बढ़ाया है।
1: सच में पद्म पुरस्कार हमें ये सिखाते हैं कि मेहनत, लगन और समाज के लिए किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता।
0: और शायद यही इन सम्मानों की सबसे बड़ी खूबसूरती है, ये केवल व्यक्तियों का नहीं बल्कि भारत की प्रतिभा, संस्कृति और सेवा भावना का सम्मान है।
1: तो दोस्तों, हमारी ये बातचीत तो यूं ही चलती रहेगी। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के उस पार है बहुत कुछ खास।

0: वेलकम बैक दोस्तों। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम युववाणी में। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर।
1: कुछ ख्वाबों की बात, कुछ अपनों का साथ, नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
2: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
1: वाकई कुछ खास है आज,
2: कुछ खास है आज।
3: बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान कवि, साहित्यकार, संगीतकार और क्रांतिकारी व्यक्तित्व की, जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज में नई चेतना जगाई। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं

0: विद्रोही कवि के नाम से प्रसिद्ध काजी नसरुल इस्लाम की।
1: दोस्तों आपको बता दें, काजी नसरुल इस्लाम का जन्म 24 मई सन 1899 को वर्तमान पश्चिम बंगाल के आसनसोल क्षेत्र में हुआ था। बचपन से ही उन्हें साहित्य, संगीत और रंगमंच में गहरी रुचि थी। आर्थिक परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों को रुकने नहीं दिया। उन्होंने मस्जिद में अजान देने से लेकर लोक नाटकों में अभिनय करने तक कई काम किए और यही अनुभव आगे चलकर उनकी रचनाओं में दिखाई दिए।
0: दोस्तों, नसरुल इस्लाम केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि वे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ उठने वाली बुलंद आवाज थे। उनकी प्रसिद्ध कविता विद्रोही ने युवाओं में स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की भावना जगाई। उनकी रचनाओं में प्रेम भी है, क्रांति भी है, मानवता भी है और समानता का संदेश भी।
1: उन्होंने हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के बीच एक खूबसूरत सेतु बनाने का कार्य किया। उनकी कविताओं और गीतों में धार्मिक सौहार्द और भाईचारे की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। यही कारण है कि वे आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं।
0: संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान को नजरुल गीति के नाम से जाना जाता है। उन्होंने हजारों गीत लिखे जिसमें देशभक्ति, भक्ति, प्रेम और प्रकृति जैसे अनेक विषय शामिल हैं। उनके गीत आज भी बंगाल और बांग्लादेश में बड़े प्रेम से गाए जाते हैं।
1: आपको बता दें कि भारत के कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बंगाली समुदायों में 26 मई यानी आज के दिन उनकी जयंती बड़े उत्साह और सम्मान के साथ मनाई जाती है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, कविता पाठ, संगीत प्रस्तुतियां और साहित्यिक गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। स्कूलों, कॉलेजों और सांस्कृतिक संस्थानों में उनके जीवन और विचारों पर विशेष चर्चाएं भी होती हैं।
0: आज के समय में जब समाज को प्रेम, एकता और मानवता की सबसे अधिक आवश्यकता है, तब काजी नसरुल इस्लाम के विचार हमें यही दिशा दिखाते हैं। उनकी रचनाएं हमें सिखाती हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है।

0: दोस्तों हर दिन अपने साथ इतिहास के कुछ सुनहरे पन्ने और प्रेरणा की नई किरण लेकर आता है। आज का दिन भी एक ऐसे महान व्यक्तित्व को समर्पित है जिन्होंने अपने ज्ञान, मेहनत और दूरदृष्टि से भारत के भविष्य को नई दिशा दी।
1: जी हाँ दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं महान कृषि वैज्ञानिक, शिक्षाविद और हरित क्रांति के अग्रदूत बेंजामिन प्यारी पाल की जयंती।
0: दोस्तों, डॉक्टर बीपी पाल का जन्म 26 मई 1906 को हुआ था। बचपन से ही उन्हें प्रकृति और पौधों के प्रति गहरी रुचि थी। यही रुचि आगे चलकर उन्हें कृषि विज्ञान के क्षेत्र में ले गई।
1: उस समय भारत कृषि के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर थी, उत्पादन कम था और किसानों को अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था। देश को ऐसे वैज्ञानिकों की आवश्यकता थी जो खेती को नई सोच और नई तकनीक दे सके।
0: और यहीं से शुरू हुआ डॉक्टर बीपी पाल का प्रेरणादायक सफर। उन्होंने कृषि अनुसंधान के माध्यम से गेहूं की बेहतर और उन्नत किस्मों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके प्रयासों से फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार हुआ।
1: दोस्तों, जब हम हरित क्रांति का नाम सुनते हैं तो उसके पीछे कई महान वैज्ञानिकों की मेहनत छिपी होती है। डॉक्टर पाल उन्हीं प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक जिन्होंने भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने केवल प्रयोगशालाओं में काम नहीं किया बल्कि किसानों की समस्याओं को समझा और उनके समाधान खोजने का प्रयास किया। यही कारण है कि उनका काम सीधे आम लोगों के जीवन से जुड़ गया।
0: आपको बता दें, डॉक्टर बीपी पाल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के पहले महानिदेशक भी रहे। उनके नेतृत्व में कृषि अनुसंधान को नई पहचान मिली और विज्ञान को किसानों तक पहुंचाने का काम तेज हुआ। दोस्तों, एक सच्चा वैज्ञानिक वही होता है जो अपने ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए करे, और डॉक्टर बीपी पाल इसका बेहतरीन उदाहरण थे।
1: दोस्तों, उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं आता, उसके पीछे होती है वर्षों की मेहनत, धैर्य और अपने लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण। आज के युवाओं के लिए उनका जीवन एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। अगर मन में सीखने की लगन और कुछ नया करने का जुनून हो तो व्यक्ति समाज और देश दोनों के लिए बदलाव ला सकता है।
0: और हाँ, कभी कभी खेतों में उगती हरियाली के पीछे भी किसी वैज्ञानिक की वर्षों की मेहनत छिपी होती है। इसलिए हमें उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने चुपचाप देश के भविष्य को मजबूत बनाया।
1: दोस्तों, ये था हमारा आज का सेगमेंट कुछ खास है आज।
2: कुछ ख्वाबों की बात,
3: कुछ अपनों का साथ,
2: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
3: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
2: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
3: वाकई कुछ खास है आज,
2: कुछ खास है आज।
0: दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्यारी सी गजल।

0: दोस्तों अब वक्त हो गया आज के स्पेशल सेगमेंट भारत के गलियारे से की ओर और चलते हैं पहले सब सेगमेंट घुमक्कड़ की ओर। दोस्तों अब वक्त हो चला है हमारे पसंदीदा सब सेगमेंट घुमक्कड़ी का, जहां हम सिर्फ सफर नहीं करते बल्कि उन जगहों की रूह से मुलाकात करते हैं।
1: तो आज चलिए चलते हैं उत्तराखंड की वादियों में बसे एक ऐसे शहर की ओर जो पहाड़ों की चुप्पी में भी कहानियां सुनाता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अल्मोड़ा की। और आज अल्मोड़ा खुद आपसे बात करेगा।
0: स्वागत है मुसाफिरों, मैं हूँ अल्मोड़ा। कुमाऊं की पहाड़ियों पर टिका एक शांत सपना। मेरी सुबह है, सूरज की सुनहरी चादर ओढ़कर जागती हैं, और मेरी शाम है, बादलों के संग धीरे धीरे ढलती हैं।
1: मेरी हवाओं में चीड़ और देवदार की खुशबू है। मेरी गलियों में पुराने समय की आहटें हैं और मेरे लोगों की मुस्कान में पहाड़ों जैसी सादगी।
0: तुम जब मेरे लाल बाजार की संकरी गलियों से गुजरोगे तो तुम्हें लगेगा जैसे समय धीरे धीरे चलने लगा हो। यहाँ की बाल मिठाई की मिठास सिर्फ स्वाद नहीं, याद बन जाती है।
1: लेकिन मुसाफिर, मेरे दिल के सबसे करीब अगर कोई जगह है तो वो है पहाड़ियों पर बसा कसार देवी मंदिर।
0: जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो सिर्फ मंदिर नहीं देखोगे बल्कि एक ऐसी शांति महसूस करोगे जो शब्दों में नहीं समाती।
1: कसार देवी की पहाड़ी पर बैठकर मैंने न जाने कितने लोगों को खुद से मिलते देखा है। कहा जाता है कि यहाँ की धरती में एक अनोखी ऊर्जा है। विदेशों से आने वाले यात्री, कलाकार, लेखक और साधु सब यहाँ आकर जैसे ठहर जाते हैं।
0: सुबह जब सूरज हिमालय की चोटियों पर सुनहरी रोशनी बिखेरता है तो कसार देवी की घंटियाँ हवा के संग मिलकर ऐसा संगीत बनाती हैं जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है।
1: वहाँ बैठकर ऐसा लगता है जैसे पहाड़ खुद ध्यान में लीन हो और हवा धीरे धीरे कह रही हो, थोड़ा रुक जाओ, खुद को सुनो।
0: मैंने भागती दुनिया से थके लोगों को सुकून दिया है, मैंने अकेले यात्रियों को दोस्ती दी है, मैंने हर आने वाले को कुछ न कुछ लौटाया है, कभी शांति, कभी प्रेरणा और कभी खुद से मिलने का मौका।
1: तो मुसाफिर, अगर कभी जिंदगी बहुत शोर करने लगे तो मेरे पास चले आना। मैं तुम्हें पहाड़ों की खामोशी में छिपी वो बातें सुनाऊंगा जो शहरों के शोर में कहीं खो जाती हैं।
0: वाह दोस्तों, सच ही कहा जाता है, कुछ जगहें सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती बल्कि दिल में बस जाने के लिए होती हैं, और अल्मोड़ा उन्हीं में से एक है। तो बैकपैक कीजिए, पहाड़ों को महसूस कीजिए और निकल पड़िए एक नई घुमक्कड़ी पर।

0: दोस्तों चलिए बढ़ते हैं भारत के गलियारे से के अगले सब सेगमेंट इमारतें बोलती हैं की ओर।
1: दोस्तों अब वक्त हो चला है हमारे सबसे बेहद खास सब सेगमेंट इमारतें बोलती हैं का, जहां इमारतें सिर्फ पत्थरों और दीवारों की कहानी नहीं बल्कि अपने इतिहास भावनाओं और संस्कृति की आवाज बन जाती हैं।
2: तो आज हम पहुँचे हैं पंजाब के अमृतसर में स्थित उस पवित्र स्थल पर जिसे पूरी दुनिया गोल्डन टेंपल के नाम से जानती है, और आज स्वर्ण मंदिर खुद आपसे कुछ कहना चाहता है।
3: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर।
1: सत श्री अकाल, मैं हूँ हरमिंदर साहिब। कुछ लोग मुझे स्वर्ण मंदिर कहते हैं तो कुछ मुझे शांति का घर।
2: मैं सिर्फ सोने से चमकती एक इमारत नहीं, मैं सदियों से इंसानियत, सेवा और समानता की रोशनी बिखेरता एक एहसास हूँ।
1: मेरे चारों ओर फैला ये सरोवर न जाने कितने थके हुए चेहरों को सुकून दे चुका है। मेरी सीढ़ियों पर आते ही लोग अपने दुख, अपना अहंकार और अपनी बेचैनियां सब बाहर छोड़ आते हैं।
2: सुबह जब गुरुवाणी की मधुर आवाज मेरी दीवारों से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण प्रार्थना में डूब गया हो।
1: मैंने राजाओं को भी देखा है, मैंने साधारण लोगों को भी देखा है, लेकिन मेरी चौखट पर आकर सब एक जैसे हो जाते हैं।
2: मेरे लंगर में बैठकर हजारों लोग हर दिन साथ भोजन करते हैं। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, यहाँ सिर्फ इंसानियत है।
1: मैंने इतिहास के कई कठिन दौर देखे हैं, आंधियां भी देखी, संघर्ष भी देखा, लेकिन हर बार लोगों की श्रद्धा ने मुझे और मजबूत बना दिया।
2: रात के समय जब

0: मेरी सुनहरी परछाई सरोवर में उतरती है तो ऐसा लगता है जैसे चांद खुद मेरे पास बैठकर बातें कर रहा हो।
1: तो दोस्तों, अगर कभी आपका मन शोर से भर जाए, अगर जिंदगी बहुत तेज भागने लगे, तो हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर चले जाना।
0: कुछ देर यहाँ बैठना, गुरबाणी सुनना और फिर महसूस करना कि असली शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही छिपी है।

0: दोस्तों, कुछ गज़ल वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि हर बार सुनने पर और गहरी उतर जाती हैं दिल में।
1: ऐसी ही एक सदाबहार गज़ल लेकर आए हैं, जिसे लिखा था शायर शहरयार ने और संगीत से सजाया था खयाम साहब ने।

0: श्रोता साथियों, ये थे हमारे आज के सेगमेंट्स और अब वक्त है आज के सवाल का सही जवाब जानने का। हमारा सवाल था, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, और इसका सही जवाब है भारत रत्न। और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता साथी हैं आप सभी,
1: राजवीर सिंह यादव, शाहरुख अंसारी, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र शाह, मोहम्मद रफ़ी पवार, बहनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, जगदीश धाकर नायमा, नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, धर्मेंद्र छेपा, दिनेश कुमार वर्मा, अजीत कसाना लदावली, भागवत चौबे लाडला जी, अशोक सिंह, दीपांशु खोरवाल, राजपाल गजभिये, जॉन डी कैस्ट्रो, हीरामणि वर्मा, भाई रफत साहब, चौधरी राजवीर सिंह, रियासत हुसैन सिद्दीकी, भेरूलाल वाक्तरिया धाकड़, सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, राम कुमार रेवाड़, पन्नालाल प्रजापति, कैलाश फूलमाली, मसरूर हसन, पीएस नवाकर, निर्मला नेवाकर, विशाल नवाकर, नवी हसन अब्बासी, अभिजीत गवांकर, दीपेश वर्मा, गंगा सिंह रावत, अनिल बी घोड़के, अल्ताफ होजरे, सुनील पाठक, मोहम्मद यासिन अंजन, रवि कुमार राहुल, लाल मोहम्मद अंसारी, विजय सिंह महोबिया, मोहम्मद जाहिद अली, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, प्रवीण चौहान, हाजी गफ्फार खान, गजन

0: नीले दरे पुल भाबली, विजय सुरारकर, संजय डिंगिया, मिसबा शमशी, मोहम्मद आमिर अंसारी, उत्तम सिंह जांगेल, फागुराम यादव, विनोद मोड़त, शमशुल कुमार राही, शकील अहमद इद्रीसी, रवि रस्तोगी, सुरेश गगनेजा, धीरज भाई रबारी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, मोहम्मद हफीज, रिहाना खान, नितेश कुमार देवांगन, मुकेश कश्यप, दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू और श्रीमती कुमारी साहू, आप सभी को सहयोग देने की बहुत बहुत बधाई।
1: दोस्तों, आप सभी ने दिए हैं इस सवाल के सही जवाब। चलिए सुनवाते हैं आपको आज की ये आखिरी गजल।

0: तो साथियों अब वक्त है आपसे विदा लेने का। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का प्रोग्राम, हमें बताना ना भूलें हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी आई है युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन कोड संख्या है 244901। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संदेश भेज सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876। हमारा व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876। हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com। आप हमें इस पर मेल भी भेज सकते हैं। इसी के साथ मैं आपकी रेडियो साथी शीरीन खान
1: और मैं नतांश अग्रवाल को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

शीरीन खान और नतांश अग्रवाल के साथ अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल तथा समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों के बारे में दृश्यों के साथ जानकारी को लेकर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका क्वाड साझेदारी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग ने कहा कि क्वाड ने क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा की है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है।

0: मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की भी शुरुआत की। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंत राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 419 अंक गिरकर 76,010 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। आईपीएल क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं, सुनिए जरूरी संदेश।

0: अरे अरे सुनो, रुको रुको, एक्सीडेंट हो गया।
1: अरे अरे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट।
2: अरे भाई कोई 100 नंबर डायल करो, 100 नंबर, 100 नंबर डायल करो भाई साहब, जल्दी जल्दी।
3: 100 पे नहीं, 108 लगाओ, 108
4: नहीं, 112 लगाओ।
5: अरे भाई इसकी जान चली जाएगी, आप लोग एक ही नंबर बताओ, बार बार कंफ्यूज मत करो।
4: अरे भाई एक ही नंबर पर सारे काम, 112 लगाए, तत्काल पुलिस बुलाए, फायर एम्बुलेंस की सर्विस तुरंत पाए।
6: हेलो 112।
7: नमस्कार 112 UP।
6: गांधी समाधि रामपुर पर एक्सीडेंट हो गया है।
7: कृपया अपना शुभ नाम बताइए।
6: सुनील।
7: एम्बुलेंस के साथ साथ आपको पुलिस और फायर की भी जरूरत है?
6: नहीं सर, सिर्फ एम्बुलेंस की।
7: आपको सहायता शीघ्र भेजी जा रही है। डायल 112 में कॉल करने के लिए धन्यवाद।
8: तो सुना आपने, अब 112 पर मिलेगी आपको जीवन रक्षा संबंधी हर आपातकालीन सेवा। SMS करें या कॉल, ईमेल भेजें या 112 इंडिया मोबाइल ऐप पर मिलेगी आपको तुरंत सहायता। अब सिर्फ एक ही नंबर याद रखें, 112, और समझदारी से काम लें।
9: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
10: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
9: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: क्यों करते मुझको बर्बाद, बस इतना तो रखना याद, मेरे बिना संभव न जीवन, सर्व सुलभ मैं हूँ अमूल धन।
1: जी हाँ, पानी है जीवन की आस, जल संरक्षण का करो प्रयास।

0: पानी पानी
1: कहाँ से लाऊं पानी
0: पानी
1: एक बूंद भी पानी नसीब नहीं।
0: पानी
1: कई दिन हो गए पानी हलक से नहीं उतरा।
0: पानी, पानी।
2: ये तस्वीर है आने वाले कल की। अगर अब भी नहीं सोचा तो बहुत देर ना हो जाए। पानी बचाने के प्रयास आज से, अभी से शुरू कीजिए।

ये आकाशवाणी रामपुर है। समय 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम में ये पहला गीत आपको सुनवाएंगे आतिफ असलम की आवाज में। फिल्म का नाम है बत्ती गुल मीटर चालो। इस गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने और संगीत है रोचक कोहली का।

आकाशवाणी रामपुर से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं भारत, इस फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है विशाल शेखर ने और साथ निभाया है श्रेया घोषाल ने। शब्द लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत है महकदीप बोस का।

चित्रपट संगीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं हेमपाल और दीपक कुमार।

0: कार्यक्रम कृषि जगत की संध्या बेला में सभी साथियों को हेमपाल भैया
1: और दीपक की राम
0: राम राम।
1: राम।
0: और सुनाओ दीपक भैया, कैसे हाल चाल हैं?
1: भैया हमारे हालचाल तो ठीक ठाक हैं, और हमें उम्मीद है जो हमारे किसान साथी हैं ना, उनके वो हालचाल ठीक होंगे।
0: बिल्कुल सही बात है। देखो, हालचाल सही रहने चाहिए, क्योंकि जब वो सब लोग अच्छे से होंगे तभी मन प्रसन्न रहेगा, और जब वो हम सब वो प्रसन्न रहेंगे तभी हम खेती बाड़ी को काम अच्छे से कर सकेंगे।
1: हाँ बिल्कुल भैया।
0: और सुनाओ भैया, खेतन में इस समय क्या चल रहा है?
1: देखो भैया, इस समय खेतन में जो है हमारे किसान साथी ने कुछ ने तो खेत की जुताई कर दी है, और कुछ जो है भैया अब इस समय नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं।
0: बिल्कुल भैया, धान की नर्सरी की।
1: हाँ धान की नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं, उनमें जैसे पानी लगाना हो, जैसे पहले पलेवा कर देंगे उनमें, फिर बाकी बार दोबारा फिर जुताई करेंगे, फिर अपनी नर्सरी की आगे तैयारी करेंगे।
0: बिल्कुल। देखो भैया, चाहे धान की बात हो या फिर और कोई फसल की बात हो, हर फसल के लिए जरूरी होता है कि हम उस फसल से उत्पादन अधिक कैसे लें।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो अधिक उत्पादन करने के लिए सबसे जरूरी जो काम है, और वो सबसे पहले जो काम है, वो होता है बीज को।
1: बिल्कुल भैया, बीज जो है हमारी खेती की रीढ़ मानी जाती है।
0: बिल्कुल, अगर बीज हमारा सही है
1: हाँ
0: तो हमारी फसल भी अच्छी होगी।
1: बिल्कुल
0: एक किस्म की बीज जो है खेत की एक आत्मा है।
1: बिल्कुल भैया।
0: तो भैया देखो, आज इसी विषय पर कुछ अपने साथियों से बात करते हैं कि बीज को चयन कैसे करें।
1: बिल्कुल देखो भैया, बीज को चयन जो है हमें आज के समय में जो है भैया अच्छी गुणवत्ता को बीज ही लेना चाहिए।
0: बिल्कुल भैया, क्योंकि पहले का हो तो
1: हाँ पहले।
0: पहले लोग अपने घरन में रख लेते,
1: हाँ
0: कौने राख डाल के अपने मटोराम भर लो, या फिर कलसा भर लो, या फिर और किसी बर्तन में उन्हें रख लो और बै बीज बो देते,
1: हाँ
0: बासा कहीं ना कहीं फसल पर प्रभाव पड़तो।
1: बिल्कुल, उपज कम होती और जो हो जो दाना होतो वो भैया छोटो ही जातो।
0: बिल्कुल, आज वैज्ञानिक युग है,
1: हाँ
0: आधुनिक युग है, और उसके साथ जब हम चलेंगे तभी हमें मुनाफा होए, और
1: बिल्कुल
0: हमारे वैज्ञानिक, हमारे जो विशेषज्ञ हैं, उनकी जय राय है हम किसान साथियों के लिए कि हम जो भी खेती में काम करें वो अत्याधुनिक तरीके से करें। अगर बीज की बात करें तो बीज को चयन बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए।
1: देखो, खेत की तैयारी करने से पहले बाको मन बना लेना चाहिए हमें खेत में कौन सा बीज लगाने हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ जब आप बीज लेन जाएं तो सबसे पहले एक बात को और ध्यान रखें कि मौसम का है, और हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है, हमारे खेत की मिट्टी कैसी है, इसके अनुसार ही बीज को चयन करें।
1: और एक बात को विशेष ध्यान रखें, प्रमाणित ही बीज को खरीदें भैया।
0: बिल्कुल, जो बात तो बहुत ही ज़रूरी है
1: हाँ
0: कि जिस पर सरकारी टैग लगे हुए प्रमाणित बीज हुए उसी को खरीदें, सस्ते के चक्कर में नकली बीज बिल्कुल ना लें।
1: बिल्कुल, जब होती है हमारे कुछ किसान भैया जब देखते हैं कि अरे वहाँ पर कम को मिल लो, सस्ते में मिल लो, वो ले लेते हैं, फिर क्या होता है भैया थोड़े से 2-4 रुपया किलो के हिसाब से सस्तों तो मिल जाता है, लेकिन हमारी फसल बिल्कुल ख़राब हो जाती है।
0: और हम ऐसा ही ले, हम अपने किसान साथियों से कह रहे हैं कि अच्छो बीज लियो, क्योंकि पिछले दिनों का भवन है कि हमारे पड़ोस में एक गुंगम गुप गुपकन दास भैया है,
1: हाँ
0: उनने कहा करो कि बाजार में तो बड़े महंगे मिल लो गेहूँ,
1: हाँ
0: उनने घर को ही गेहूँ बोए दो। एक तो मौसम खराब ही हो, और दूसरे जब घर को गेहूँ बोए दो और एक खेत में उन्हें कोई सस्तो बीज ला के बोए दो, तो उनको भैया गेहूँ खराब ही गए। तो इसी लिए हमने अपने किसान साथियों को बताना चाहिए कि अच्छे बीज, प्रमाणित बीज अच्छी दुकान से लें, मतलब जो रजिस्टर्ड दुकान हुआ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, उसी से लें, और उसके रसीद जरूर लें।
1: हाँ बिल्कुल, आजकल तो भैया जय देख रहे हैं कि सामान्य जो बीज है घर के पहले की अपेक्षा आजकल हाइब्रिड बीज आ गए हैं,
0: बिल्कुल
1: बे उत्पादन भैया उनसे 2 गुना दे रहे हैं।
0: हाँ। तो हाइब्रिड बीज की अगर किसान साथी चाहें तो उसको भी आप संकर बीज यानी उसको भी चयन कर सकते हैं, लेकिन जो सावधानी हमने बताई है उनको जरूर ध्यान रखें।
1: और भैया जाके साथ साथ में बीज को उपचार तो जरूर करें।
0: वो तो भैया जरूरी है,
1: हाँ
0: क्योंकि अगर उपचार ना करो
1: हाँ
0: तो कई बीमारी ऐसी होती हैं जो बीज के बीज जनित होती हैं।
1: बिल्कुल, ऐसा होता है भैया बीज जनित होती है, अगर बीज को उपचार ना करो तो फिर स्प्रे करते कर थक जाता है, तो बीमारी खत्म ना
0: ना
1: होती है
0: बे
1: फसल
0: जो जो
1: की।
0: बीज से बीमारी है वे कैसे खत्म हो जाए,
1: हाँ
0: कहते ना कि अरे जाके तो जैसे कोई बच्चा है, अरे जाके तो जन्मजात जो बीमारी है
1: हाँ
0: जो सही ना हो। देखो, जो जन्म से बीमारी है, जो बाकी बीज से बीमारी है, वो तो सही होना असंभव है। इसलिए
1: बिल्कुल
0: हम बीज को ही अगर उपचार कर लेंगे, उसको स्वस्थ कर लेंगे, तो हमारा पैदावार जाहिर सी बात है अच्छी हुई।
1: हाँ, जो फफूंद जनित बीमारी है बिना लगती है कि झुलसा की बीमारी लग गई, कि गलन की बीमारी लग गई, जैसे देखने को मिलता है
0: और
1: भैया
0: कभी कभी बीज को नीचे जमन से पहले ही कीट खा जाता है,
1: कीट खा जाता। हाँ
0: तो किसान साथी हमारे अगर उससे फफूंदी नाशक दवा से उपचार करना चाह रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा है
1: हाँ
0: और बवेरिया बेसियाना है, जो जो है उसके लिए कीटनाशक के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, और कार्बेंडाजिम है, मैंकोजेब है, ये फफूंदी नाशक दवाई हैं। इनमें से एक दवा से आप बीज उपचार कर सकते हैं। जाके अलावा हमने अभी कीटनाशक दवा की बात करी तो जैविक में तो आप बवेरिया बेसियाना उपचारित करें, और अगर अंग्रेजी दवा से करना चाहें तो जैसे दीमक वगैरह है खेत में या और कोई, तो बाऊ से सही जाए, लेकिन जो क्लोरोपारिफास दवा आती है उससे भी बीज उपचार कर दें। इसके अलावा इमिडाक्लोप्रिड जो दवा आती है बाजार मिल जाती है उससे भी आप उपचार कर सकते हैं।
1: हाँ, बीज उपचार करण से जो होता भैया हमारे बाबा में, तो देखो डीमक कीट वगैरह बोना लगाए और फफूंदजनित बीमारी जो हुई बाऊ खत्म हो जाएगी और आगे के लिए जो फसल हमारी उखा आवाई तो वह बिल्कुल स्वस्थ आवाई।
0: और किसान साथियों को एक और बात बता देंगे, जो दलहनी बीज है ना उन्हें जो है पीएसबी कल्चर राइजोबियम कल्चर से उपचार जरूर करें।
1: हाँ।
0: और इसके अलावा किसान साथियों बीज उपचार में एक बात बहुत ही ध्यान रखने की, आप बीज उपचार FIR फार्मूला से ही बीज को उपचार करें। तो साथियों हमें उम्मीद है कि आप इस फार्मूला को ध्यान में रखकर बीज को उपचार करेंगे और अपनी फसल से अच्छो उत्पादन लेंगे। यदि आप उत्तम बीज और सही देखभाल करेंगे तो आपकी खेती से अच्छा लाभ मिलेगा।
1: हाँ भैया, और इन सब बातों को अगर हमारे किसान साथी ध्यान रखेंगे तो अपनी फसल से जो उत्पादन दोगुना जरूर लेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जाके लाओ भैया, देखो खेती बाड़ी की जबात तक करिए। हाँ। अब कुछ पशु की भी बात कर ले।
1: बिल्कुल, इस पशुपालन तो हमारे किसान साथी करते ही है।
0: हाँ,
1: और भैया पशु के लिए जो है दानों पानी तो खानों खिलाते ही है और उनसे दूध मिलता है, तो जो दुधारू पशु हैं उनके लिए पौष्टिक तौर पर कैसे आहार दें?
0: बिल्कुल, देखो जो दूध देने वाले पशु होते हैं ना तो उनके लिए कुछ अलग सही व्यवस्था करनी होती है उनके खान पान की।
1: हाँ।
0: रहन सहन से लेकर खान पान तक की सभी व्यवस्था अलग से करनी होती है। तो हम उनके, और वैसे हुआ भैया देखो चौमासे समारोह ऐसे समय में चारे की बड़ी समस्या ही जाती है।
1: हाँ।
0: हरु चारो वगैरह ना मिल पाता है, तो ऐसे समय में एक अगर जानकारी हमारे किसान साथियों के मिल जाए कि दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक आहार काका होना चाहिए, इन तमाम और कैसे होने चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी के लिए हम अपने किसान साथियों के लिए डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा से विस्तार से जानकारी दिलवा रहे हैं और आपसे बातचीत कर रहे हैं हमारे भैया डॉक्टर विनय वर्मा। तो साथियों सुनो जो भेंट वार्ता।
2: किसान भाइयों, खेतीबाड़ी के साथ ही साथ हम सभी लोग पशुपालन कर रहे हैं और जमाने से करते चले आ रहे हैं। वो बात अलग है कि खेती में अब काम करने वाले पशुओं का प्रयोग कम हो रहा है क्योंकि वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से अब खेती हो रही है, लेकिन दुधारू पशुओं को हम बराबर पाल रहे हैं और पालना भी चाहिए क्योंकि दूध हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। बात आती है दुधारू पशुओं की, तो उनके लिए हमें पौष्टिक आहार देना पड़ता है, तभी हमें अच्छा दूध मिल सकता है और उनकी सेहत के लिए भी जरूरी है। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए ताकि जो भी आहार हम उन्हें दें वो पौष्टिक हो और उससे क्या फायदे हैं, आज विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा जी, जो कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में पशु पोषण विभाग में विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। पौष्टिक आहार का जिक्र हम हमेशा करते रहते हैं अपने पशुओं के लिए और अभी भी हम देखते हैं गाँव में कि जब हम अपने पशुओं को चारा खिलाते हैं और आहार की व्यवस्था करते हैं तो पूर्ण रूप से वो पौष्टिक नहीं होता है, क्या फायदे हैं, क्यों जरूरी है?
3: पौष्टिक आहार का मतलब यह है कि जो पशु को हम आहार देते हैं
2: जी,
3: उस आहार के द्वारा पशु की जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं तो विभिन्न तत्वों की, चाहे वो प्रोटीन हो, एनर्जी हो, मिनरल है, विटामिन है, इनकी आवश्यकताएं उस आहार से पूरी होनी चाहिए। बात पौष्टिकता की आती है तो मैं ये देखता हूँ कि किसान भाई इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान नहीं देते हैं कि किस पशु के लिए हमें कितना प्रोटीन या एनर्जी की आवश्यकता होगी
2: जी।
3: तो यहाँ जैसे कि वो चारा बनाते हैं अपने पशुओं के लिए तो उसमें उनके पास सूखा चारा होता है, हरा चारा होता है, दाना मिश्रण होता है और साथ में कुछ और भी चीज़ें वो अपने पशुओं को खिलाते हैं
2: जी।
3: तो इन चीज़ों में हर चीज़ का ठीक से समावेश करके प्रोटीन और ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि वो चारे जो हैं पाचक हों और पशुओं को स्वादिष्ट भी लगें। तो इन चार पांच चीजों का ध्यान अगर हमारे किसान भाई रखेंगे
2: जी,
3: तो उससे वो अपने पशुओं को पौष्टिक आहार बना सकते।
2: डॉक्टर साहब, देखा जाए तो साल के हर सीजन में, हर महीने में अच्छा हरा चारा नहीं मिल पाता है, और जब हरा चारा मिलता है तो हमारे जो किसान भाई है, पशुपालक है, वो हरा चारा ही देने लगते हैं, और जब नहीं होता तो भूसा देना शुरू कर देते हैं। तो ये व्यवस्था कैसे सही हो, कैसे हरा चारा हमेशा मिलता रहे, और या फिर यदि हरा चारा नहीं है तो उससे संबंधित पौष्टिकता के लिए हमें दाना बराबर मात्रा में दें, इसके बारे में बताएं।
3: जैसे कि जो चारे उपलब्ध होते हैं उसमें जो भूसा है, पुआल है, इसका पोषण मान सबसे कम होता है, और हरे चारे जो होते हैं उसमें जो दलहनी चारे होते हैं उनका पोषण मान ज़्यादा होता है, और जो मक्का, ज्वार, बाजरा ये चारे होते हैं ये मध्यम आकार के पोषण मान वाले होते हैं
2: जी।
3: अब जैसे अभी आपने बताया कि कभी कभी इन चारों की उपलब्धता बहुत होती है, जैसे आजकल मक्के का, ज्वार, बाजरे का सीजन है
2: जी,
3: तो प्रचुर मात्रा में इसकी उपलब्धता है। तो एक तो किसान भाई ये कर सकते हैं कि इन चारों का संरक्षण कर लें उन समय के लिए जिस समय चारे उपलब्ध नहीं।
2: अच्छा,
3: तो इसमें दो प्रकार से संरक्षण हो सकता है, एक तो साइलेज बनाया जाता है और दूसरा इसका हे बनाते हैं
2: जी।
3: हे का मतलब है कि चारे को पौष्टिक अवस्था में काट करके उसको छाये में सुखा लें और उसको फिर ठीक से संरक्षित कर लें
2: जी।
3: और जब हमारे पास हरे चारे उपलब्ध ना हो, ऐसी अवस्था में इन हरे चारों को आप जो संरक्षित हैं उनको पशुओं को खिला
2: जी।
3: दूसरा, साइलेज बनाने की प्रक्रिया जो है वो थोड़ा कठिन है, उसके लिए वैज्ञानिक तरीके से उनको साइलेज बनाना पड़ेगा। इसमें चारों को महीन काटा जाता है चारे की मशीन से, फिर उनको पैरों से या अगर ज्यादा मात्रा में बनाया जा रहा है तो ट्रैक्टर से उसको दबा करके उसमें एनारोबिक फर्मेंटेशन बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन न जाने। तो उसके बारे में विस्तार से वो कृषि विज्ञान केंद्रों से या भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में बहुत समय पर प्रशिक्षण होता रहता है, वहां आकर के साइलेज बनाने का प्रशिक्षण ले सकते
2: जी।
3: अब बात आती है कि जो सूखे चारे हैं उनका भी पोषण मान बढ़ाया जा सकता है। सूखे चारों को अन्य चारों के साथ मिला करके भी अगर आप देंगे तो उसका पोषण मान ऐसे तो स्वयं में नहीं बढ़ता है लेकिन पशु चाव से खा लेता है और इसमें जो ऊर्जा की मात्रा उपलब्ध होती है, प्रोटीन तो बहुत कम होता है, तो पशु को मिल जाती है
2: जी।
3: दूसरी प्रक्रिया है कि इसमें कुछ और चीजें मिला करके हम सूखे चारों का पोषण मान बढ़ा सकते हैं
2: जी।
3: जैसे आपके पास ज्वार बाजरे की कड़वी है, भूसा है, पुआल है, इसमें यूरिया उपचार से भी हम इसका पोषण मान बढ़ा सकते हैं
2: जी।
3: इसके लिए किसान भाइयों को वैसे तो पुनः मैं कहूंगा कि इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर लें या किसी विज्ञान केंद्र से जानकारी ले लें, लेकिन 4 किलो यूरिया को 100 लीटर पानी में घोलना है और उसको 1 क्विंटल भूसे के ऊपर या कड़वी के ऊपर या पुआल के ऊपर इसको ठीक से हजारे से उसको छिड़क देना
2: जी।
3: और फिर उसको भी इकट्ठा करके उस पर पॉलीथीन डाल दें और कुछ उस पर भार रख दें जिससे वहां भी ऑक्सीजन ज्यादा न जाए
2: न पहुंचे।
3: और इस तरह से बनाए हुए या उपचारित किए हुए सूखे चारे को वो 14 दिन के बाद थोड़ा खोल के उसको थोड़ा सुखा लें।
2: अच्छा,
3: क्योंकि इसमें अमोनिया गैस बन जाती है,
2: उड़ जाए वो,
3: तो अमोनिया गैस उड़ जाना चाहिए, और जितना मात्रा में इनको चारा देना हो उतना खोल लें और पशुओं को खिलाएं। इससे प्रोटीन की जो मात्रा है इस चारे में बढ़ जाती है और जो भूसा वैसे जानवर कम खाता है तो इस भूसे को ज्यादा खाने लगता
2: है। जैसा ये तो आपने बात की चरी की, चारे की, भूसे की और इसका साइलेज और हे के बारे में, अब बात आती है कि दाना भी और विशेष रूप से दुधारू पशुओं के लिए बहुत जरूरी है, तो वो कितना दूध दे रहे हैं इस पर भी निर्भर करता है, तो कितने दूध में कितना दाना मिलाएं और भी उसके साथ में कुछ चीजें होती हैं जिनके देने की जरूरत पड़ती है, वो व्यवस्था क्या है?
3: सामान्यतः देखा गया है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनके पास जो अवयव उपलब्ध होते हैं दाना मिश्रण के लिए उसी को मिला करके वो दाना बना लेते हैं
2: जी।
3: ये प्रथा ठीक नहीं है। दाने बनाने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है। एक है जो प्रोटीन युक्त जो है अवयव होता है जिसमें हम खली आती है। दूसरा, एनर्जी युक्त अवयव होता है जिसमें जो है दाना होता है, चाहे मक्के का हो, चाहे जई हो, चाहे जौ हो
2: जी।
3: इसको होता है। और तीसरा होता है जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, जो चूनी है, चोकर है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो इन तीनों को आवश्यक रूप से उस दाना मिश्रण में समाहित कर, साथ में खनिज मिश्रण और लवण, इनकी बहुत आवश्यकता होती है
2: जी।
3: तो 2 किलो खनिज मिश्रण 100 किलोग्राम और 1 किलो नमक, पिसा हुआ नमक ले लें, कोई इसमें जरूरी नहीं है कि आप आयोडाइज नमक लें
2: जी।
3: जो सादा नमक आता है उसको ले लें और उसको जो है दाना मिश्रण में मिलाएं। तो एक मुख्य रूप से तीनों चीजें बराबर भाग लें, चाहे मक्का हो, चाहे वो जौ हो, चाहे जई हो
2: जी,
3: उसको लें, खली लें और चोकर लें, चोकर चूनी जो भी उपलब्ध हो उसको, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला लें, 2 किलो मिनरल मिक्सचर और 1 किलो नमक, इसको मिला लें। और अगर उनके पास हरे चारे की उपलब्धता नहीं है तो विटामिन ए का मिश्रण भी मिलता है बाजार में,
2: अच्छा,
3: उसको भी ले लें और उसमें लिखा हुआ रहता है उसके अनुसार से उसको भी मिला लें
2: जी,
3: कि उसमें क्या कंसंट्रेशन है, उसकी सांद्रता जो है उसके आधार पे उसको मिला लें। और इसको जो है जो गाय होती है उसको 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना
2: जी,
3: और भैंस को 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना अवश्य दें। अब जो गाय या भैंस इनकी गाभिन होती है
2: जी,
3: उसमें भी दाने की आवश्यकता अंतिम 2 महीनों में बढ़ जाती है। तो किसान भाई उन गाय को और भैंसों को भी कम से कम 1 किलो दाना मिश्रण अवश्य दें जो लेट प्रेगनेंसी अवस्था में
2: जी, जी।
3: तो दूध जो है ब्याने के बाद उनको अच्छा मिलेगा।
2: डॉक्टर साहब ये तो आपने बताया कि घर में इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। कुछ किसान भाई ये सोचते हैं कि बाजार का जो पौष्टिक आहार है या दाना मिश्रण मिलता है वो ज़्यादा अच्छा है, इसके बारे में क्या बताएंगे कि बाजार से जो मिलता है आहार या पौष्टिक आहार वो ज़्यादा उपयुक्त होता है क्या, या उसमें कभी कभी कुछ अवयव कम होते हैं?
3: बाजार से जो उपयुक्त आहार होता है
2: जी,
3: उसमें बाजार जो है उसमें जुड़ा हुआ आप समझ सकते हैं
2: जी,
3: तो उसमें तो जो बनाने वाला है कुछ न कुछ प्रॉफिट लेगा ही, क्योंकि जो पशुओं को खिलाने वाले अवयव हैं
2: जी,
3: वो सामान्यतः गांव में उपलब्ध होते हैं। जो चोकर है वो भी किसान के पास मिल जाता है, खली भी उसके पास मिल जाती है
2: जी,
3: नहीं चोकर की उपलब्धता भी रहती है, तो उनको मक्का भी वहाँ उपलब्ध होती है, तो उनको सिर्फ करना है कि उसका दलिया बनाना है
2: जी,
3: इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ और करना है। खनिज मिश्रण वो मार्केट से ले सकते हैं और नमक, इसको मिला के अगर अच्छा तो ये रहेगा किसान भाई खुद बनावे।
2: हाँ।
3: अगर कहीं अवयव की उपलब्धता नहीं है उस अवस्था में वो बाजार में बने हुए जो मिश्रण मिलते हैं
2: जी,
3: उनको लेकर के पशुओं को खिला सकते हैं। उनमें जो बोरी होती है उसके ऊपर निर्देशित रहता है किसी पशु को कितना खिलाना है, उसके अनुसार पशुओं को खिलाएं। उन आहार में थोड़ा एक तो मूल्य ज्यादा देना पड़ता है और उनकी गुणवत्ता जो है, चूंकि अभी भारत सरकार का कोई इस तरह से कार्यक्रम नहीं है जिसमें इनकी गुणवत्ता को निर्धारित किया जाए
2: जी, जी,
3: अतः उसमें इस तरह की चीजें होती हैं। तो किसान भाई अगर खुद आहार बनाएंगे
2: तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा रहेगा और सस्ता भी पड़ेगा। खड़िया और नमक की भी बात की जाती है, क्योंकि गांव में देखा गया है कि सारे जो अवयव हैं आपने बताए हैं वो तो नहीं दाने में मिलाते हैं, लेकिन उपलब्धता के हिसाब से अगर खली है तो ज़्यादा खली कर दिया, उसमें कुछ खड़िया या फिर जो नमक है वो डाल दिया, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हर चीज़ संतुलित हो और इनका भी प्रयोग समय समय पर करते रहें।
3: खड़िया है वो सिर्फ कैल्शियम का स्रोत है।
2: बिल्कुल,
3: तो बहुत बार किसान भाई क्या होता है कि उनके पास दाना मिश्रण होता है उसमें खड़िया मिलाने से दूध की मात्रा थोड़ा बढ़ जाती है
2: जी,
3: लेकिन कैल्शियम के साथ साथ दूध में और भी चीजों की आवश्यकता होती है
2: जी,
3: तो बेहतर तो यही होगा कि वो दाना मिश्रण में जो है खनिज मिश्रण जरूर मिला
2: जी,
3: तो उसमें जितने भी माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं जिंक कॉपर कोबाल्ट आयरन जो उनके रिप्रोडक्शन के लिए बहुत आवश्यक है
2: जी,
3: जो उनके पशुओं में उन्होंने देखा होगा कि गाभिन नहीं हो रहे हैं, उनमें रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम होती है, बार बार गर्मी में आते हैं
2: जी,
3: और जो है उनमें कभी भी जेर गिरने की प्रॉब्लम होती है, तो जो उनके रिप्रोडक्शन से संबंधित समस्या
2: उनके लिए बहुत जरूरी,
3: उनके लिए मिनरल मिक्सर जिसमें माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं
2: जी, जी।
3: उनकी आवश्यकता बहुत
2: जी। डॉक्टर साहब कुछ मौसम ऐसे हैं जहां चारा हरा बहुत होता है, जैसे

0: तो दाना मिश्रण की मात्रा बहुत स्तर तक कम कर
1: कम
0: सकते
1: कर
0: हैं।
1: सकते हैं।
0: तो उस पर भी निर्भर करेगा कि उनका चारा किस प्रकार का है। अगर दलहनी चारा है
1: जी
0: तो उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, और अगर ये दाने वाले चारे होते हैं
1: जी
0: तो उसमें जो है प्रोटीन की मात्रा कम
1: कम
0: होती है।
1: होगी
0: तो दलहनी चारा जैसे बरसीम देते हैं,
1: जी।
0: उसमें दाने मिश्रण को वो जो हमने अभी बताया था 3 किलो दूध पर या 2.5 किलो दूध पर 1 किलो देना है,
1: जी जी
0: उसको 450 से 500 ग्राम
1: आधा
0: कर
1: किलो कर
0: सकते हैं।
1: सकते हैं जी।
0: तो चारे की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता उसके ऊपर निर्भर करेगा कि दाना मिश्रण को कितना कम किया जाए,
1: कितना कम किया जाए और किस प्रकार का चारा उपलब्ध है।
0: उपलब्ध है।
1: डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा जी, आप हमारे कार्यक्रम आए और हमारे किसान भाइयों को ये बताया कि किस प्रकार से हमारे किसान भाई, विशेष रूप से पशुपालक, पौष्टिक आहार अपने पशुओं के लिए कैसे तैयार करें और घर में भी जो सस्ता पोषाहार है ये बनाया जा सकता है, बाजार के पोषाहार पर ही निर्भर न रहें और ये दिमाग से निकाल दें कि वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा आप स्वयं अपनी देख रेख में तैयार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बेहतर जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी हमारे किसान साथी सुन रहे थे भेंटवार्ता, जिसका विषय था दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक आहार, जिस पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा और उनसे जानकारी करवा रहे थे हमारे डॉक्टर विनय वर्मा जी। अब भैया मनोरंजन को समय है, तो अपने किसान साथी इनको एक बढ़िया से लोकगीत से मनोरंजन करवाते हैं, जिसको सोनिका और बा अमित कुमार ने स्वर दिया है।

0: साथियों, अभी आपने सोनिका व अमित की आवाज़ में जो लोग की सुनो, हमें साथियों उम्मीद है कि आपको जो पसंद आओ हुआ है। अब साथी देखो, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ावें उससे पहले हम आपको बता दें कि मई माह यानी इस माह से हमारे कार्यक्रम में कुछ बदलाव करे गए हैं। तो साथियों, जैसे बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को बदलाव करे गए हैं। अगर बुधवार की बात करें तो पहले बुधवार को सफल कृषक भेंटवार्ता आप तक पहुंचाई जाएगी और दूसरे बुधवार को सफल महिला कृषक भेंटवार्ता आप तक पहुंचाई जाएगी और तीसरे बुधवार को मासिक कृषि गोष्ठी जो कृषकों द्वारा करी गई हुई वो आप तक पहुंचाई जाएगी और चौथे बुधवार को सफल कृषि स्टार्टअप से जुड़े किसान से करी गई भेंट आप तक पहुंचाई जाएगी। और अगर पांचवा बुधवार पड़ता है तो उस दिन भी सफल कृषक से करी गई भेंटवार्ता आप तक पहुंचाई जाएगी।
1: बिल्कुल भैया, और अगर गुरुवार पहलो है महीने को तो वह आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष कार्यक्रम, और गुरुवार अगर दूसरो है महीना को तो कृषि पत्रिका खेत खलिहान, अगर गुरुवार तीसरो है महीने को तो आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष कार्यक्रम। और भैया, अगर कार्यक्रम महीने में चौथो अगर गुरुवार है तो कृषि पत्रिका खेत खलिहान, और अगर गुरुवार महीने को पांचवा पड़ जाए तो आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष।
0: और साथियों, अगर शुक्रवार की बात करें तो पहले और तीसरे और पाँचवें शुक्रवार को लोक मंजरी फरमाइशी कार्यक्रम आप तक पहुँचा जाएगा, और साथियों दूसरे और चौथे शुक्रवार को कृषि शंका समाधान, समस्या बावन से जुड़े समाधान पर हम आप तक कार्यक्रम पहुँचाएंगे। साथियों, अभी हमने आपको बताई कि अगर पाँचवें दिन पड़ता है जैसे बुधवार को, गुरुवार को, उसी तरह से अगर शुक्रवार को भी पांचवा दिन पड़ता है तो लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम आप तक पहुंचाओ जाएगा। और साथियों, अभी हम एक जगह गलत बताया गया कि आपको चौथे शुक्रवार को लोक मंजरी कार्यक्रम सुनवाओ जाए, लेकिन साथियों लोक मंजरी कार्यक्रम तीसरे शुक्रवार को सुनवाओ जाएगा और चौथे शुक्रवार को कृषि संघ का समाधान, समस्या व उनसे जुड़े समाधान पर बातचीत जो हमसे जुड़ेंगे किसी फोन के माध्यम से या पत्रों के माध्यम से उसको करो जाएगा। और साथियों, हम आपको बता दें अगर आप हमें फोन कॉल के द्वारा हमसे बातचीत करना चाह रहे हैं और अपनी समस्या रखना चाहें तो आप इन्हीं दिनों में और समय के अनुसार आप 0595 कोड नंबर और 2324326 फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
1: और भैया, हम अपना व्हाट्सएप नंबर और SMS नंबर बता दें जो है 9414100 और 87876। एक बार नंबर फिर 9410087876।
0: और साथियों, ईमेल पर अगर आप हमें कोई पत्र वगैरह लिखें तो आप पत्र मिला AIR Rampur@gmail.com पर आप हमसे जुड़ सकते हैं।
1: और सोशल मीडिया की बात करें तो जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमारे आकाशवाणी रामपुर पर हमारे लिए सोशल मीडिया पर सुन सकते हैं,
0: बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। और साथियों, अगर आप हमें कोई पाती वगैरह या पत्र वगैरह कोई भेजना चाहें तो आप कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर उत्तर प्रदेश पिन 244901 पर लिख भेज सकते हैं। हाँ। तो साथियों, जो हमारे कार्यक्रम में बदलाव करे गए उसके बारे में अब वो अपने किसान साथियों के लिए एक क्षेत्र संकलित कार्यक्रम सुनवाते हैं जिसमें श्री केशव कुमार से हमारे भैया दीपक ने बातचीत करी है, काका बातचीत करी है, हम आपको सुनवाते हैं। साथियों, हम आपको बता दें कृषक ग्राम जगीपुर जैतपुर ब्लॉक बरखेड़ा जिला पीलीभीत से हैं। तो आप साथियों सुनो जो क्षेत्र संकलित कार्यक्रम।
2: जी भैया, आपका परिचय। मेरा नाम केशव कुमार, ग्राम जगीपुर जैतपुर, पोस्ट बड़खेरा, जिला पीलीभीत, तहसील बीसलपुर।
1: जी केशव जी, आप खेतीबाड़ी में कौन कौन सी फसल करते हैं?
2: मैं गन्ने की फसल करता हूँ, धान की प्लस गेहूँ की फसल करता हूँ।
1: अच्छा,
2: मेरे पास 10 एकड़ में गन्ने हैं, 5 एकड़ में धान और गेहूँ की फसल करता हूँ।
1: अच्छा, तो कुल मिला के आपको देखा जाए तो कौन सी फसल आपके लिए जैसे ज्यादा फायदेमंद रहती है?
2: फायदेमंद गन्ने की भी रहती है और गेहूँ की।
1: इस समय बोया था या पहले बोया हुआ है आपका?
2: कुछ सितंबर में बोया था।
1: अच्छा,
2: और कुछ मार्च में बोया है। लगभग 5 एकड़ सितंबर में बो दिया था मैंने, सितंबर अक्टूबर में 5 एकड़ अभी बोया है मार्च में।
1: खेती बाड़ी के साथ साथ और क्या करते हैं आप?
2: खेती बाड़ी के साथ साथ में साइड बिजनेस में अपनी जैसे डेयरी फार्मिंग है वो करता हूँ मैं।
1: अच्छा, आपके पास डेयरी है?
2: जी जी जी।
1: तो डेयरी आपने कब से स्टार्ट की है?
2: डेयरी मैंने 1 जनवरी 2025 में स्टार्ट की थी।
1: अच्छा, मैं कितने पशु हैं आपके पास?
2: मेरे पास 3 गाय 4 भैंसे हैं।
1: इस समय दूध दे रही हैं वो?
2: हाँ, गाय दूध दे रही हैं, भैंसे दे रही हैं लेकिन कम दे रही हैं वो।
1: अच्छा,
2: लास्ट टाइम पे। हाँ।
1: अच्छा, तो उस दूध का आप कहाँ पर भेजते हैं, कैसे क्या करते हैं?
2: होटल में भेज देता हूँ।
1: अच्छा, आपने डेयरी फार्मिंग की है तो आपका कहाँ से आपको योजना का पता चला, कैसे क्या किया, डेयरी व्यवसाय कैसे स्टार्ट?
2: मैंने अपने माध्यम से स्टार्ट की है, मुझे कुछ सहयोग जैसे उद्योग से।
1: अच्छा।
2: मुझे पता लगा कि हाँ, पशुपालनों के लिए लोन प्राप्त होता है।
1: अच्छा,
2: वहाँ से मैंने सूचना प्राप्त की, उसके बाद मैंने वहाँ से सारी जानकारी ली।
1: तो अच्छा, इस पे आपने लोन भी करा रखा है क्या?
2: जी जी।
1: अच्छा, तो इसमें लोन किस प्रकार से किया जाता है? जैसे
2: इसमें उद्योग से होता है लोन, उद्योग में आपको 25% सब्सिडी मिलती है उसमें।
1: अच्छा,
2: और आप 5 लाख 25 लाख तक का लोन करवा सकते हो।
1: अच्छा,
2: पशुपालन के लिए।
1: अच्छा, उसमें जानवरों की कंडीशन रहती, कितने जानवर रहते हैं उसमें?
2: हाँ, जानवरों की कंडीशन रहती है। जैसे आप 5 की फाइल करवाते हो 5 लाख की, तो उसमें आपको 4 जानवर लेने पड़ते हैं, 1 गाय 3 भैंसे।
1: अच्छा, तो ये आपने अपनी खुद की जगह में बनवाया है?
2: हाँ, खुद की जगह में बनवाया है।
1: अच्छा,
2: पहले सेटअप बनवाया, उसके बाद में पशुपालन के लिए सरकार ने पैसे दिए थे।
1: इसमें ब्याज दर क्या रहती?
2: ब्याज दर वो बैंक वाले के ऊपर डिपेंड होता है, 8% भी लगाते हैं, 9 भी लगा सकते हैं।
1: अच्छा, हर बैंक का अलग अलग है ना?
2: हर बैंक का अलग अलग है उसमें।
1: अच्छा, तो इसमें जैसे डेयरी फार्मिंग में कितना फायदा है?
2: डेयरी फार्मिंग में फायदा ही फायदा है, घाटा क्या है उसमें।
1: अच्छा, तब भी एक पशु से जैसे आप जो दूध देता है कितना, जैसे क्या फायदा होता है लगभग कुछ? तो
2: एक जानवर से आप

0: अगर उसका चारा भी निकाल सकते हो तो 300 प्लस 400 रुपये लगभग प्रॉफिट कर सकते हो पर जानवर से, अगर
1: अच्छा
0: आपके पास जानवर अच्छा है
1: एक दिन का,
0: एक दिन का।
1: अच्छा तब तो अच्छा है। तो आपके यहाँ पे दूध किस हिसाब से बिकता है, क्या रेट जा रहा है इस समय?
0: भैंस का दूध जा रहा है 65 रुपये, गाय का
1: अच्छा
0: दूध जा रहा है 50 रुपये, तो
1: अच्छा
0: बिक्री के ऊपर है। पेड मशीन भी लगी हुई है ना, तो पेड मशीन से भी उससे बेच सकते हैं चेक करके। अब तो सारी कंपनियां आ चुकी हैं, सरजनी एक लगी हुई है हमारे यहाँ पे, तो वहाँ भी दूध ले जाकर बेच सकते हैं। तो उसमें बैंक से वो लोग ये मतलब 10 दिन में
1: एक
0: पैसे
1: सेकंड,
0: डालते हैं।
1: डेयरी फार्मिंग में और खेती बाड़ी करने में दोनों को कैसे कर पाते हैं आप? दोनों एक आसानी तरीके से हो जाती हैं?
0: बिल्कुल हो जाएंगी, कुछ
1: अच्छा
0: लेबर का सहयोग करना पड़ता है, सारा
1: अच्छा
0: तो लेना ही पड़ेगा। उधर गन्ने की फसल है, उसमें गुड़ाई है, टाइम पानी है, सिंचाई उचाई सारा काम करना पड़ता है।
1: हाँ वो तो है। और इसके साथ साथ जैसे अगर हमारी खेती से कोई आमदनी जैसे किसी साल जैसे कम हुई तो हमारा डेयरी होता है तो उससे फायदा ज्यादा हो जाता है।
0: जानवरों से हमें मतलब खादें अच्छी प्राप्त होती हैं, तो
1: अच्छा
0: जमीन में हम डाल सकते हैं, गोबर से खाद बनाते हैं, उसे खेत में डालते हैं, उससे ज्यादा फसल हमारी प्राप्त होती है।
1: आपकी जो फसलें हैं इस समय तो गन्ने की फसल है वो अच्छी है इस समय?
0: हाँ ठीक है बिल्कुल।
1: गन्ने की मील आपके पास में ही होगी?
0: हाँ मील बड़खेरा में है, 2 मीलें
1: अच्छा
0: लगी हुई हैं।
1: अच्छा 2 मील लगी हुई हैं तो वहाँ आसानी से गन्ना पड़ जाता है आपका?
0: बिल्कुल आसानी से पड़ जाता है।
1: अच्छा तो आप जो हमारे जो युवा साथी किसान साथी आपकी बात को सुन रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे कि डेयरी फार्मिंग और खेती साथ साथ करने में क्या क्या फायदे हैं?
0: उसे यही कहना चाहता हूँ, आप दोनों काम कर सकते हो। अगर आपके पास मजदूर है प्लस घर में अगर आदमी है ज्यादा, तो आप खेती भी कर सकते हो प्लस डेयरी काम भी कर सकते हो।
1: चलो सही है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारे किसान साथियों की जानकारी सुनकर लाभान्वित होंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भाई बहनों, अभी आपने श्री केशव कुमार कृषक पशुपालक थे उनसे हमारे भैया दीपक कुमार ने बातचीत करी। हमें उम्मीद है साथियों आपको जो बातचीत पसंद आई होगी। साथियों हम आपको बता दें श्री केशव कुमार ग्राम जगीपुर जैतपुर ब्लॉक बरखेड़ा जिला पीलीभीत से थे। और साथियों हम अपने कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं तो हम आपको बता दें कि इन दिनों जून को महीना वो चालू होने वालों है,
1: हाँ
2: और जब जून को महीना चालू ही जाता है तो अनेक औषधीय फसलों भी लगान को समाया जाता है।
1: हाँ भैया, इस समय कुछ फसलें लगाई जाएं और औषधीय जो फसलें होती हैं जो हमारी परंपरागत खेती कर रहे हैं जो हम, उनसे जो अधिक लाभ प्राप्त होता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों देखो औषधीय फसलों से अधिक आय
1: जी
2: इस विषय पर हम आपसे बातचीत करेंगे कि इस समय हम कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं और इसके अलावा हम जाड़े के मौसम में कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं, कुल मिलाकर औषधीय फसलों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो साथियों देखो अगर इस समय की बात करी जाए तो तुलसी
1: हाँ
2: इस समय बहुत ही अच्छी औषधीय फसल है और बड़ी आसानी से इसे कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है दीपक भैया ना, जो तुलसी की खेती है इसको आप जो हमारे बाकी खेत हैं उसके पॉपुलर के उसमें भी कर सकते हैं,
1: हाँ
2: और लेमन ग्रास भी हमारे किसान साथी इस समय कर सकते हैं।
1: और उसके
2: और
1: साथ साथ जैसे सर्फगंधा की खेती है और अश्वगंधा की खेती, इनको लगा सकते हैं।
2: बिल्कुल भैया,
1: और भैया कुछ किसान साथी ने हमारी सतावर की बेल उड़ा रही है।
2: अच्छा पौध डाल रही
1: हाँ
2: है।
1: पौध डल गई है और बहु लगाएंगे कुछ किसान
2: बिल्कुल
1: साथी।
2: बिल्कुल। देखो कुल मिला के देखो ऐसो है साथियों कि अगर हम एक ही चीज़ में हिल गिरांगे तो कहते वैसे वो कहते हैं कि दो चार काम करते रहना चाहिए, और हमें जो हम खेती पहले से कर चले आ रहे हैं अगर हम उससे कुछ हटके खेती करेंगे तो उस समय हमें नव अनुभव मिलाए और धीरे धीरे करके हमें उस अधिक आय मिलाई। और हमारे बहुत से किसान साथी ऐसी औषधीय फसलें करके और बड़े अच्छे पैसा कमा रहे हैं और कमा भी चुके हैं।
1: देखो भैया, औषधीय जो फसलें होती हैं अगर हम जैविक तौर पर जाके लेकर लें तो भैया हमारे बाजार में जो है आपको मूल्य बहुत अधिक मिलता है।
2: बिल्कुल भैया, देखो औषधीय फसलों की जो जैविक होती है ना उनकी तो
1: हाँ
2: बहुत ही अधिक मांग है।
1: हाँ बिल्कुल। देखो जो भैया हर्बल जैसे भाई कुछ वैसे प्रोडक्ट
2: हाँ
1: बनना
2: हाँ
1: है,
2: हाँ हाँ
1: कुछ कंपनियां जो है बहुत जो जैविक तौर पर करी गई खेती है बाकी ले लेती हैं।
2: जी भैया, देखो इस बार ना ब्लू कॉर्न फ्लोवर की जो खेती है
1: हाँ
2: बड़े जोर शोरों पर चली और हमारे बड़े जो हमारे किसान साथी ने करी बड़े अच्छे पैमाने पर करी और उससे मुनाफा भी अच्छा
1: हम
2: हुआ।
1: किसान साथियों से एक बात और कहेंगे, जैसे ज्यादा स्तर पर न कर पाओ तो 1 से 2 बीघा में करके देखो
2: बिल्कुल
1: और
2: बिल्कुल
1: फिर उनसे देखो कैसे अगर लाभ प्राप्त हो तो आगे के लिए करो।
2: बिल्कुल भैया, यहाँ पर एक बात और आ जाता है कि कुछ किसान साथी कहता है अरे हमने फला की खेती कर ली, फला चीज की खेती कर ली, हमें नुकसान ही होगा। हाँ। बागो कारण का होता है, जैसे आपने अकेले कर ली कोई खेती तो उसको बेचने में बड़ी दिक्कत आती है।
3: बिल्कुल।
2: तो आप अगर दो चार किसान मिलकर अगर कोई खेती करोगे जो गांव में ना हेरी, आस पड़ोसी गांव में ना हेरी, तो बड़े आसानी से उसको जो है बाजार में ले जा सकते हो और अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अगर अकेले कर ले तो ना तो पता चलेगी उसको किराऊ ढंग से ना निकल।
3: कुछ भैया हमारी भी बड़ी बड़ी मंडी है औषधि वर्गीय वाली, अगर चार छह लोग ना कर ले तो भैया वहां तक पहुंचाई सकते।
2: बिल्कुल, और अकेले होंगे तो कुछ
3: ना कर सकते।
2: तो इसलिए किसान साथियों आप औषधीय फसलों को भी अपने खेतों में उगाए और अच्छी आमदनी प्राप्त करें। तो भैया बहनों अब आपको बता दें कि कल के कृषि जगत के पिटारे में हम आपको का सुनवाएंगे। तो साथियों कल धान की नर्सरी पर चर्चा करी जाएगी और सफल कृषि स्टार्टअप से जुड़ी किसान से आप तक करेगी बातचीत पहुंचाई जाएगी, मनोरंजन लोकगीत से कराया जाएगा और धान की सीधी बुवाई कृषि संकेत के तहत आपसे इस पर भी बातचीत करी जाएगी और मौसम बाजार भाव भी आप तक पहुँचाया जाएगा और कार्यक्रम पहुँचाएंगे हमारे हरदेव आर्य और पंकज भैया।
3: बिल्कुल भैया, अब कार्यक्रम इजाजत ना दे रहा है जो, और हम अपने किसान साथी इनसे बातचीत करते।
2: भैया देखो कार्यक्रम तो इजाजत ना दे रहा हूँ लेकिन इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है। हाँ। तो ऐसी गर्मी में क्यों ना अपने किसान साथी इनके लिए कल को मौसम को हाल बता दो।
3: बिल्कुल बता दो भैया।
2: तो साथियों कल देखो हल्के फुल्के बादल रहने की संभावना है और लेकिन साथियों बारिश होने की संभावना ना है और साथियों अगर बात करें उच्चतम तापमान की तो 41 डिग्री सेंटीग्रेड उच्चतम तापमान और 27 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है और हवा 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह सकता है। और साथियों वायुमंडलीय नमी 38% से 49% तक रहने को अनुमान है। तो दीपक भैया जो तो हो कल को मौसम को हाल।
3: बिल्कुल, हमारे किसान साथी मौसम के अनुसार अपनी खेती बाड़ी के काम कर सकते हैं।
2: और बिल्कुल भैया, क्योंकि इस समय का देखो यार हो ना हमारे किसान साथी जय बादल को देख कर सिंचाई ना कर रहे हैं तो भैया देखो इस समय इंतजार बिल्कुल ना करें, जो समय सिंचाई करने को बहुत ही अच्छा समय आप सुबह के समय और शाम के समय ही अपने फसलों की सिंचाई करें, अपनी फसलों से अधिक उत्पादन लें।
3: देखो अगर भैया सिंचाई ना कर पाएंगे, अगर एक दिन लेट कर दी सिंचाई तो बस हमारे फसल को उत्पादन घट जाएगा।
2: अब दीपक भैया अपने साथियों से कार्यक्रम से विदा ले लो।
3: हाँ बिल्कुल,
2: तो दोनों भैया कर लेते हैं
3: राम राम, राम।

0: अभी किसान साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। अब सुनिए कानून और हम, ये कार्यक्रम। विषय है मोटर दुर्घटना, दावे और उपचार। इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अजय पाठक। कानून और हम इस कार्यक्रम की प्रस्तुति है अवधेश कुमार गौतम की।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम कानून और हम में आपका स्वागत है। और जैसे कि हम कार्यक्रम के हर अंक में किसी न किसी लीगल विषय पर बात करते हैं, और उसी क्रम में आज भी हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी विषय है, मोटर दुर्घटना दावे और उपचार, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियोज में हाजिर हैं अजय कुमार पाठक जी, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सर, स्टूडियोज में मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा।
2: प्रणाम।
1: उचित यातायात के बिना कोई भी देश विकसित एवं समृद्ध नहीं हो सकता। विगत वर्षों में भारत का सड़कों का जाल अत्यधिक तीव्रता से विकसित हुआ और यहाँ की सड़कें अत्यधिक आधुनिक स्तर की हो गई हैं। वर्ष 2024-25 में भारत में यात्री वाहनों की बिक्री 4.3 मिलियन यूनिट के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत वर्ष में 9,56,671 वाणिज्य वाहन बेचे गए। अनुमान कीजिए कि इसके 8 से 10 गुना वाहन भारतीय सड़कों पर चलते हैं। ऐसे में दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष में लगभग 4.5 लाख से अधिक दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1.6 लाख मौतें थी। आज हम मोटर दुर्घटना दावे और उपचार विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हालांकि मेरे साथ सभी श्रोता भी ये जानना चाहेंगे कि मोटर दुर्घटनाओं से संबंधित दावे और उपचार

0: के जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में कुछ बताएं।
1: देखिए, मोटर यान अधिनियम 1988 के अनुसार प्रत्येक जिले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का प्रयोजन किया गया है, और जिसका पीठासीन अधिकारी जिला जज स्तर का अधिकारी होता है। उस अधिकरण में कोई चोटिल व्यक्ति अथवा मृतक के विधिक उत्तराधिकारी घटना के 6 माह के अंदर आवेदन कर सकते हैं। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण किसी भी प्रकार के थर्ड पार्टी जोखिम के निस्तारण की समुचित इंक्वायरी करके करता है। यह भी चर्चा करना उचित होगा कि दावा अधिकरण की धारा सेक्शन 159 के अंतर्गत पुलिस द्वारा दुर्घटनाओं की किसी भी रिपोर्ट को प्रति करके आवेदन के रूप में दावा अधिकरण मानेगा और उस आधार पर भी अपना निर्णय देगा।
0: जी
1: देखिए, वाणिज्यिक वाहन पर कार्यरत चालक अथवा हेल्पर कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के अधीन प्रतिकर हेतु दावा कर सकते हैं। वो एक अलग फोरम है और वो ELC यानी कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर के यहाँ होता है। दावा अधिकरण को दावे के निस्तारण हेतु सिविल न्यायालय की शक्तियों को प्राप्त होती हैं। प्रतिकर दावे के किसी भी निर्णय करने हेतु जांच के सुसंगत विषय का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति एक या अधिक व्यक्तियों से परामर्श करके अपना निर्णय दे सकता है। दुर्घटना प्रतिकर याचिका हेतु व्यवहारों की जांच के उपरांत अपना निर्णय न्याय संगत प्रतिकर तय करता है। इसके अतिरिक्त यह भी तय करता है कि प्रतिकर बीमाकर्ता, उसका वाहन स्वामी अथवा एवं उनमें से किसके द्वारा दिलाया जाएगा। उक्त प्रतिकर की राशि पर दावा अधिकरण ब्याज भी दिला सकता है और दिलाता ही है। अधिकरण में निश्चित प्रतिकर यदि समय से जमा नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में प्रतिकर अधिकरण भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने हेतु कलेक्टर को रिकवरी सर्टिफिकेट भेज सकता है।
0: मोटर यान दुर्घटना अधिकरण किस आधार पर प्रतिकर निश्चित करता है?
1: जी, बहुत अच्छी बात है आपने पूछी। प्रतिकर निर्धारण हेतु दुर्घटना में आई मृत्यु के मामलों में मृत्यु होने वाले व्यक्ति की आयु एवं आय के आधार पर प्रतिकर निर्धारित होता है। चोटिल व्यक्ति के संदर्भ में उस चोटिल व्यक्ति के इलाज में जो खर्चा हुआ है वो, प्लस उसको यदि दिव्यांगता आई है तो उसके प्रतिशत और उसकी आय एवं आयु के आधार पर प्रतिकर तय किया जाता है। मोटर यान अधिनियम में 2019 से पूर्व एक शेड्यूल दिया गया था। उस शेड्यूल में आयु के अनुसार गुणांक निश्चित किए गए थे।
0: जी
1: 2009 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्रीमती सरला वर्मा के मामले में गुणांतों का अब निर्धारण किया है एवं उसका अधिनियम के शेड्यूल को पुनः परिभाषित किया गया है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति की आयु 24 वर्ष है और वह अपनी स्थायी नौकरी से 30,000 रुपये प्रतिमाह अर्जित करता है, उसकी मृत्यु के दशा में उसका एक पत्नी, एक बच्चा, एक विधवा माँ है, उसकी आय पर आश्रित होते हैं, तो ऐसी दशा में आय में 40% फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के रूप में जोड़कर 1/3 की कटौती कर, अर्थात 28,000 रुपये में 12×18 अर्थात 60,48,000 रुपये का प्रतिकर, प्लस यदि उसकी चिकित्सा में तत्समय कुछ व्यय हुआ है जोड़कर, और संपदा की हानि, प्रेम व स्नेह की क्षति और अंत्येष्टि का व्यय जोड़कर प्रतिकर लाया जाता है।
0: सर, एक सवाल मन में आता है कि दुर्घटना में चोटिल व्यक्ति को प्रतिकर किस प्रकार दिलाया जाता है?
1: जी देखिए, चोटिल व्यक्ति की यदि कोई चिकित्सा में व्यय हुआ है और यदि वह व्यक्ति दिव्यांग हो गया है तो उसकी दिव्यांगता का प्रतिशत क्या है, उसकी आयु एवं आय कितनी है, और क्या वो अपने भविष्य जीवन में कुछ कार्य करके अपना कुछ अर्जित कर सकता है, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति को दुर्घटना में आई चोटों के कारण चिकित्सा व्यय 5 लाख रुपये हुआ है, वह राजकीय मेडिकल बोर्ड द्वारा उसकी दिव्यांगता 50% आंकी गई है, वह उसकी आयु 24 वर्ष है, उसकी आय 30,000 रुपये प्रतिमाह है, वह उसका एक पत्नी, बच्चा व विधवा माँ है, ऐसी दशा में चिकित्सा व्यय 5 लाख रुपया, उसकी आय में भविष्य में होने वाली आय अर्थात 40% को जोड़कर अर्थात 42,000 रुपया 12×18 18 का 50% व चिकित्सा व्यय 5 लाख रुपए व भविष्य में यदि कोई चिकित्सा ऑपरेशन आवश्यक हो उसका उतना प्रतिकर दिलाया जाता है।
0: सर, ऐसे मामलों में जिनमें दुर्घटना करने वाले वाहन का पता न चल पाए, ऐसी अवस्था में प्रतिकर कौन और कैसे दिलाया जाता है?
1: जी, बहुत सारे मामलों में ऐसा भी होता है कि भारतवर्ष की सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं,
0: हिट एंड रन मामले,
1: और हिट जो उसका वाहन स्वामी है या ड्राइवर है वो डर के मारे या अदरवाइज तुरंत भाग जाता है, तो ऐसे मामलों को हिट एंड रन मामला कहते हैं, जिसमें FIR होने के बावजूद वो वाहन नहीं पकड़ा जा सकता। हिट एंड रन की भी स्कीम एक्ट में है। केंद्र सरकार द्वारा नामित अधिकारी जो कि जिलाधिकारी अथवा उसके अधीन अधिकारी होते हैं, मृत्यु की दशा में उसके विधिक अधिकार उत्तराधिकारियों को 2 लाख रुपया एवं चोटिल होने की दशा में 50,000 रुपया दिलाता।
0: ऐसी दशा में जहां बिना किसी गलती के दुर्घटना होती है वहां किस तरह प्रतिकर निर्धारित किया जाता है?
1: जी, नो फॉल्ट लायबिलिटी में मृत्यु पर 5 लाख रुपया व गंभीर चोटिल होने पर 2.5 लाख रुपए मोटर वाहन के स्वामी अथवा उसकी बीमा कंपनी से दिलाए जाने का प्रावधान है।
0: सर, ये जो नो फॉल्ट लायबिलिटी जिसका जिक्र अभी आपने किया, इसके अंतर्गत किस प्रकार की परिस्थितियां आएंगी?
1: नो फॉल्ट लायबिलिटी इस तरीके की है कि जैसे कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा है, अचानक कोई कुत्ता या गाय या सुअर वगैरह आ जाता है या कोई भी जानवर आ जाता है और वो उसको बचाने के चक्कर में स्वयं किसी से टकरा जाता है, किसी थर्ड पर्सन से टकरा जाता है, तो वो व्यक्ति इस तरीके से नो फॉल्ट लायबिलिटी में पेमेंट ले सकता है।
0: मोटर वाहन चालकों या स्वामियों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि किसी दुर्घटना की अवस्था में उनको सही प्रकार से दावा और उपचार मिल सके?
1: जी देखिए, ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी मोटर वाहन का स्वामी उसे अपने आप को इंश्योर्ड रखे अपने वाहन को, प्लस जो भी ड्राइवर है या वो वाहन स्वामी स्वयं चलाता है उसका DL वैलिड और इफेक्टिव होना चाहिए। दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट है, और इवन जो एक्ट है वो भी मैंडेट करता है इस बात को, कि तुरंत उसको अगर ऐसे उसके वाहन से कोई चोटिल हो जाता है या गंभीर चोटिल हो जाता है तो उसे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए या स्वयं अपनी वाहन में डाल करके नजदीकी चिकित्सक के पास या अस्पताल में ले जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसी दशा में इंश्योरेंस कंपनी को एवं पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म करना चाहिए।
0: सर, किन परिस्थितियों में बीमा कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी?
1: देखिए, बीमा कंपनी अमूमन ये सोशल रजिस्ट्रेशन है, लगभग सारी ही परिस्थितियों में होती है, किंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की गलती से चोटिल होता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर या ड्राइवर को इंटॉक्सिकेटेड होने पर, शराब पीने पर या और कोई इंटॉक्सिकेंट लेने की दशा में बीमा कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती है। इसके अतिरिक्त जितने भी और सारे एक्सीडेंट्स होते हैं नॉर्मली बीमा कंपनी जिम्मेदार होती है। हाँ, एक चीज़ और हो जाती है कई बार कि दो वाहन अगर आपस में लड़ते हैं तो दोनों वाहनों की उत्तरदायित्व साक्ष्य के आधार पर तय किया जाता है और उतनी ही बीमा कंपनी की फिर जिम्मेदारी होती है जितना कि अधिनिर्णय में दिया जाता है।
0: सर, ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है?
1: देखिए, इंश्योरेंस मैं इत्तेफाक से 11 इंश्योरेंस कंपनी का वकील हूँ तो मैंने इनको बड़ी गहनता से अध्ययन किया है। इंश्योरेंस दो तरीके के होते हैं, एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है और एक कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ये है कि मेरे वाहन से यदि किसी अन्य व्यक्ति की चोटें लगती हैं तो उस दशा में बीमा कंपनी जिम्मेदार होगी। जो कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्लस ओन डैमेज, यानी कि मेरी गाड़ी में भी अगर कोई डैमेज होता है या मेरी गाड़ी में कोई कमी आती है तो ऐसी दशा में बीमा कंपनी मेरी गाड़ी को भी ठीक कराने के लिए अथवा नई पूर्ण रूप से खराब होने पर नई गाड़ी देने के लिए बाध्य है।
0: सर, जब गाड़ी का या किसी मोटर वाहन का इंश्योरेंस किया जाता है, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव हो या फिर थर्ड पार्टी हो, क्या उसमें पर्सनल एक्सीडेंट कवर की भी आवश्यकता होती है?
1: जी, पर्सनल एक्सीडेंट कवर हालांकि जो नॉर्मल व्हीकल है यानी कि वाणिज्यिक नहीं है उसमें ऑप्शनल होता है और वो भी मेरी राय ये है कि करा लेना चाहिए। हाँ, जो वाणिज्यिक वाहन है उसमें पर्सनल एक्सीडेंट मैंडेटरी है लगभग, और ऐसी दशा में

0: ड्राइवर व हेल्पर वगैरह कवर किए जाते हैं।
1: श्रोताओं, आज हमने मोटर दुर्घटना दावे और उपचार विषय पर बात की, जिस पर सार्थक चर्चा कर रहे थे अजय कुमार पाठक जी, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सर, आप हमारे स्टूडियोज में आए, इतनी अच्छी जानकारी इस विषय पर आपने दी, हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम कानून और हमको संपन्न करने की अवधेश कुमार गौतम को दीजिए अनुमति।
2: मोटर दुर्घटना दावे और उपचार, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानून और हम। जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे वरिष्ठ अधिवक्ता अजय पाठक। कानून और हम, इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी अवधेश कुमार गौतम की।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:15 हुए हैं। श्रोताओं, ये समय है हमारे केंद्र से आज व कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के एक संक्षिप्त विवरण का। सुनिए जानकारी। अब से थोड़े ही देर में यानी 7:31 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। ये कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे जगजीत सिंह व अहमद हुसैन व साथियों के स्वर में गजलें। गीत गाता चल इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी रात्रि 8:00। कवि गोष्ठी आप सुन सकेंगे 9:30 पर। कवि गोष्ठी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कवि होंगे डॉक्टर दुर्गा तिवारी, दीक्षा यादव, दिया आर्य और जनकपाल सिंह। 10:30 पर हम आप तक पहुंचाएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि। श्रोताओं, ये थी एक जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। अब सुनिए हमारे केंद्र से कल प्रथम सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। कल प्रातःकाल 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। पर हम आप तक पहुंचाएंगे आज का चिंतन। 6:35 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य संदेश। ये कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी विषय होगा कैंसर एक सामान्य जानकारी आप तक पहुंचाएंगे डॉक्टर के आर चितलागारिया। 6:45 पर आप तक पहुंचेगा श्री रामचरितमानस गान। ये कार्यक्रम 7:00 आप सुनेंगे अमृत कलश। ये कार्यक्रम के अंतर्गत विषय होगा अल्पसंख्यक कल्याण, वाचन तरन्नुम का व अमृत कलश। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी विक्रांत चौधरी की। 7:31 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का इंफरटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे। 8:45 पर नए फिल्मी गीत 102.9 मॉर्निंग हिट्स। 9:15 पर आप तक पहुंचेगी जिले की हलचल आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। 9:25 पर आप सुनेंगे प्रेरक प्रसंग। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसंग जीवन से होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। 9:30 पर उर्दू प्रोग्राम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। 9:50 पर आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत राग होगा सिंधु भैरवी। 10:05 पर आपके अनुरोध पर आप सुनेंगे ये फरमाइशी गीत। श्रोताओं, ये थी एक सामान्य जानकारी हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 7:19 होने वाले हैं। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के।

0: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है दौर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त। अगले 6 महीने तक मौजूदा प्रधान ही बने रहेंगे प्रशासक। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों को माना परिवार। और प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया दुर्घटना पर शोक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2014 में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसे सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष बताया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदला और जन भागीदारी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की त्रिवेणी विकसित भारत 2047 की दिशा को नई गति दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि 26 मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और एक नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
1: प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान कल से पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 साल का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने नगर निगम में महापौर के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का पैसा जनहित में ही खर्च होगा, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, प्रेरणा है। श्री योगी ने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम को देश में 3रा स्थान मिला, इसे पहले स्थान पर लाना है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेश

0: पक्षवासियों और नगर निगम ने पूरे क्षेत्र को अपना परिवार माना।
1: 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। आज उसका लाभ मिल रहा है, हर स्तर पर मिल रहा है। जब अच्छा करते हैं लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, विकास का लाभ हर स्तर पर चलता हुआ दिखाई देता है और आज हम सबको ये सारी चीजें देखने को मिलती है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में नगर निगम में आयोजित मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम के नए सदन हॉल का लोकार्पण किया, साथ ही नगर निगम के नए लोगों का अनावरण और पिछले 3 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित विशेष पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का लाभ सीधे आम आदमी को मिलना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज गोंडा से नकहा जंगल गोंडा डालीगंज पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन नकहा जंगल से डालीगंज लखनऊ तक चलेगी। वहीं पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद के मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन का विस्तार शाहजहांपुर तक कर दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज चौथे बड़े मंगल के अवसर पर हनुमान मंदिरों में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। कई जगहों पर भंडारों का आयोजन भी किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बड़े मंगलवार के अवसर पर लखनऊ स्थित हजरतगंज के प्राचीन दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के निकट आयोजित भंडारे में पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित श्रीराम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आज विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। इस अवसर पर भगवान श्रीराम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार करने के साथ ही 56 भोग लगाए गए। प्रदेश में आगामी बकरीद पर्व को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी क्रम में मेरठ में पर्व को लेकर प्रशासन ने व्यापक कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी वीके सिंह ने सभी से अपील की है कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए।
3: लोग जो परंपरा विगत वर्ष थी उसी का अनुपालन करेंगे और शांति समिति की बैठक में हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। बाकी जो नागरिक सुविधाएं हैं, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, सफाई की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, फायर की व्यवस्था हो, ये सब व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। विद्युत की आपूर्ति भी हमने विद्युत विभाग को कहा है कि प्रातः सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक अनुरत विद्युत की सप्लाई हो। और
0: प्रदेश में आज लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे पर शोक व्यक्त किया है। वहीं एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से राहत नहीं है। कई जगहों पर तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में है। बांदा में 47.4 डिग्री सेल्सियस

0: तापमान दर्ज किया गया, जो प्रदेश के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में आ रही गर्म और शुष्क पछुआ हवाओं के कारण प्रदेश में आज और कल लू की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बताया है कि इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के चलते 28 मई से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है दौर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त। अगले 6 महीने तक मौजूदा प्रधान ही बने रहेंगे प्रशासक। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों को माना परिवार। और प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया दुर्घटना पर शोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत जगजीत सिंह की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं पहली गजल।

आकाशवाणी रामपुर से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की स्वर में गजल।

इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, ये कार्यक्रम श्रोताओं अब आपको सुनवा रहे हैं अहमद हुसैन और साथियों के स्वर में ये गजल।

जगजीत सिंह और अहमद हुसैन और साथियों की आवाजों के साथ सुगम संगीत, ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुनी जगजीत सिंह और अहमद हुसैन व साथियों के स्वर में गजलें। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है व्हाट्सएप फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गाता चल।

गीत गाता चल कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को आकांक्षा की ओर से बहुत प्यारा सा नमस्कार। श्रोताओं, ये कार्यक्रम है हमारा व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित। आप भेज सकते हैं अपना नाम और अपनी फरमाइश का गाना, हम आप तक पहुंचाएंगे आपका पसंदीदा गीत। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876। इस नंबर पर कीजिए आप हमें अपना नाम और एड्रेस सेंड और साथ ही कीजिए अपनी फरमाइश। फिलहाल आपको सुनवाते हैं ये गीत।

परदेश। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में। इस गीत के शब्द लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत था नदीम श्रवण का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाएंगे आपको, पर उससे पहले बताते हैं आपको किन किन श्रोता साथियों ने इस गीत की फरमाइश की है।

फाजली का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडली खेड़ा, शालिनी, ट्वानिश, वाणी और आरबी खेड़ा। रेशमी नगर मुबारकपुर आजमगढ़ से हमारे श्रोता हैं जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तूबा आफरीन और शमीम अखरत अंसारी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हमारे श्रोता हैं मुन्ना भाई।

स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। वारसी क्लब सिंधौरी मीरगंज बरेली से हमारे श्रोता हैं जीशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख। करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान। रायगढ़ बिहार से हमारे सुनने वाले श्रोता हैं उमा राज, पवन उमा, संजय उमा, दीपक उमा और कमल उमा। खांडवा से राधिका, अनीता, सपना और राकेश ताई। जेल रोड रायगढ़ से निशा डोमीन, उमा डोमीन और जानवी डोमीन। चंद्रनगर सहारनपुर से देवशंकर यादव, प्रभा रानी यादव, सुरेश यादव और नरेंद्र यादव। एयरपोर्ट रोड वंदनागर इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं ललिता नारायण खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे और परी खर्चे के साथ आराध्य खर्चे, वैष्णवी और इनके परिवार के सभी साथी। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, ये श्रोता हैं हमारे नूर महल महसौर सीतामढ़ी बिहार से। गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, दीपक सक्सेना, संदीप सक्सेना, शहनाज बाबू अंसारी, हबीब अहमद इदरीसी और इरफान खान। विनोद मूलत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूलत, चेतन नहाटा, दीक्षा कुश मूलत, ये श्रोता है हमारे बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से कार्यक्रम का गीत सुनना चाहा है मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, पिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर ने। गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। मास्टर राधेश्याम शाक्या कासगंज से हमारे ये श्रोता हैं। आइए सुनते हैं आप सभी के लिए कार्यक्रम का ये अगला गीत, क्या दिल ने कहा। इस फिल्म से आवाज होगी उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत लिखा है संजय चहल ने और संगीत है हिमेश रेशमिया का।

क्या दिल ने कहा इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीत गाता चल कार्यक्रम में अब आपको सुनवाएंगे डुप्लीकेट। इस फिल्म का गीत आवाज होगी उदित नारायण अलका याग्निक की और इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने। कार्यक्रम के इस गीत की फरमाइश की है आप सभी श्रोताओं ने। नथाना पंजाब से हरिजीत सिंह छिंदर, जसवीर जस्सी और सीता गीता। बागपत उत्तर प्रदेश से हमारी श्रोता हैं ममता डिंगिया और कुणाल डिंगिया। हिंगोली महाराष्ट्र से रामचंद्र इंगोले। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और सुजाता पोहरकार। राजद्वारा कोठी अफसराला से रूमा खान, बॉबी खान, मदीहा खान, सुभान खान, शमसन अब्बासी, गुलफशा जीनत अमान और शमा परवीन। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और इनके साथ हैं आदित्य कसाना। ये श्रोता हैं हमारे लदावली मुरादाबाद से। जिला अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा से बाहरुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, मोहम्मद सीफान सिद्दीकी, बेटी अलीशा सिद्दीकी, नविया सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। अनारकली बाजार जगराओं से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मनोत्रा, गवैया मनोत्रा, भाई सुच्चा पाठक, विनोद पुरी और जयपाल पुरी। वाराणा शहरपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान, तेजस्वी चौहान, माई इंदुरकर, बेबी शौर्य, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान। मेहरनगर उमरखेर महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर। बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाड़कर, श्वेता सुमित गवाड़कर और ध्वनि गवाड़कर। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान और माहिना नूर, ये हमारे श्रोता हैं जसपुर उत्तराखंड से। आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी सौरभ, शाइना और निवान शर्मा। सरो चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान। आदर्श नगर आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमारे श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। गरीब नवाज इंदौर से रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, नंदिनी, आराध्या, वैष्णवी, ललित और इनके बहुत सारे साथी। पंडित नगला बाईपास कोहिनूर तिराहा के पास से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहरुन्निशा असलम हुसैन, डॉक्टर महमूद हसन। बीबीपुर से हैं हमारे श्रोता मकसूद हुसैन और नाजिम अली। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश रॉय, प्रीति रॉय और नवनीत रॉय। कार्यक्रम का अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं हम, ये डुप्लीकेट इस फिल्म से।

आकाशवाणी रामपुर से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाता चल आकांक्षा के साथ। हम अपने सभी श्रोताओं को बता दें, जो श्रोता साथी हमारे साथ कार्यक्रम में बिल्कुल अभी अभी जुड़े हैं, यदि आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हम तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर है 9410087876। इस नंबर पर कीजिए कॉल, आप हमें माफ कीजिएगा व्हाट्सएप मैसेज, और फिर सुनवाएंगे हम आपको आपकी पसंद का गीत। फिलहाल अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कहो ना प्यार है। इस फिल्म से आवाज होगी अलका याग्निक और उदित नारायण की। गीत को लिखा है इब्राहिम अश्क ने और संगीत है राजेश रोशन का। कार्यक्रम का ये गीत सुनना चाहा है आप सभी ने बागपत उत्तर प्रदेश से ममता डिंगिया और कुणाल डिंगिया, हरिजिंदर सिंह छिद्दा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, ये श्रोता हैं हमारे नाथान पंजाब से। देव शंकर तामुरिया, अजय तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी, इनके साथ हैं इनके परिवार के सभी सदस्य। ये श्रोता हैं हमारे बालोद छत्तीसगढ़ से। जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदनी नाज। तखतपुर छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार साहू, मीरा देवी, गंगा देवी और मिश्री देवी साहू। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख। करुला मुरादाबाद से अयुब खान, इरम गुड़िया और श्वेब खान। सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और इनकी बेबी गर्वी। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से हमारे श्रोता हैं सुधाकर, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली और इनके परिवार।

के सभी सदस्य। जिला मुरादाबाद संभल रोड बस्तौर से अतर सिंह सैनी, मुन्नी पवित्रा, अजय आंचल, विकी छवि, आकांक्षा, आकाश, आयुषी और इनके परिवार के सभी साथी। पंजू सलाए संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी। बेरीडी से हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री टामड़े, वैष्णवी टामड़े, चंचल, अर्जुन और धीरज। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गढ़ और मोहम्मद शादाब खत्री। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मनहोत्रा, ऋतिक मनहोत्रा, प्रतीक मनहोत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, अनिल शर्मा और कालका से हमारे श्रोता हैं शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। करणवीर हाउस भुजो कैचिया बटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनदीप कौर जोड़ा, करमवीर करण, दीपेंद्र वीरेंद्र, कुलदीप सीमू और दमन के साथ अभिजोत। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी, शिवन्या और अनु गोस्वामी। आइए सुनते हैं आप सभी के लिए कहो ना प्यार है इस फिल्म का गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

फिल्म से। आवाज होगी अलका याग्निक और कुमार सानो की। शब्द लिखे हैं समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का। कार्यक्रम का ये गीत है आप सभी श्रोताओं के लिए। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदीप मीका, बलविंदर बैर्ग, जयतेग बिर्ग और मीका बैर्ग। ईदगाह गेट से मुरादाबाद से हमारे श्रोता हैं शफी अहमद अंसारी और रईस दुल्हा अंसारी। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरिजीन सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरहान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया और दिशानी के साथ हैं निमित आहूजा। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लदावली, साथ में हैं लवली, इन्हीं के साथ हैं आरती अरोड़ा। अफजलपुर पट्टी तहसील सदर जिला रामपुर से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलाल मिस्त्री, रूमा, मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, बबिता और अंश गौतम। गांधी चौक रूपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बैर्ग, जयतेग बिर्ग और मीका बैर्ग। मोताला महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं विजय सुलरकर, रतनमाला सुलरकर और गौरी। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बबलू निषाद और तरुणा यादव। आइए सुनते हैं आप सभी के लिए दिल है तुम्हारा इस फिल्म का गीत।

0: गीत गाता चल, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचो सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी। परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: Economic resilience should be promoted.
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: Undertake more exchanges as we intend to do.
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
6: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्रमोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9.

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 9:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कवि गोष्ठी। कवि गोष्ठी प्रतिभागी कवि हैं डॉक्टर दुर्गा तिवारी, दीक्षा यादव, दिया आर्या और जनकपाल सिंह। सुनिए कवि गोष्ठी।
1: नमस्कार साथियों, आज हम उपस्थित हैं आकाशवाणी रामपुर में, जिसमें मेरे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर दुर्गा भट्ट तिवारी मैम जो हैं सितारगंज से, जनकपाल सिंह जी हैं सितारगंज से और दीक्षा यादव ये भी हैं सितारगंज से, मैं दिया रुद्रपुर से। आज मैं आप सभी को काव्य सम्मेलन से जोड़ती हूँ, जिसके लिए मैं सबसे पहले आदरणीय दुर्गा भट्ट तिवारी मैम को आमंत्रित करती हूँ।
2: प्रिय श्रोताओं, सादर नमन। प्रस्तुत है मेरी कविता जिसका शीर्षक है लौकिक प्रश्न। सच सच कहना मेरे भोले, सच सच कहना मेरे भोले, गरल पान के वक्त तुम्हारा मन भी तो घबराया होगा, तन तनय अंबिका का ध्यान जरा तो आया होगा, चिंतन था कि चिंता बड़ी थी मन में जो ये आया होगा, गरल पान करूं इस धरणी का मन भी तो घबराया होगा, मन भी तो घबराया होगा। सच सच कहना मेरे भोले, गरल पान के वक्त तुम्हारा मन भी तो घबराया होगा, तन तनय अंबिका का ध्यान जरा तो आया होगा, चिंतन था कि चिंता बड़ी थी मन में जो ये आया होगा, गरल पान करूं इस धरणी का मन भी तो घबराया होगा, मन भी तो घबराया होगा। हाथों में ले विष का प्याला, तमस बिंब तो छाया होगा, गरल पान के वक्त तुम्हारा मन भी तो घबराया होगा। हाथों में ले विष का प्याला, तमस बिंब तो छाया होगा, गरल पान के वक्त तुम्हारा मन भी तो घबराया होगा। हे अविनाशी सच बतलाना, गरल पान से अमर अभिष्ट क्या तुमने कुछ पाया होगा, अमूर्त अरिष्ट अकत्य विषाद अवश्य ही तुमने पाया होगा। हे अविनाशी सच बतलाना, गरल पान से अमर अभिष्ट क्या तुमने कुछ पाया होगा, अमूर्त अरिष्ट अकत्य विषाद अवश्य ही तुमने पाया होगा। आसक्ति बड़ी थी या आस्था बड़ी थी आह्वान ने जो तुम्हें दौड़ाया, गरल पान के वक्त तुम्हारा मन भी तो घबराया होगा, गरल पान के वक्त तुम्हारा मन भी तो घबराया होगा। हे नीलकंठ अब सच बतलाना, क्या पूरा विषपान किया था, अवशिष्ट अवश्य बचाया होगा, स्वेच्छाचारी मानव का उत्कीर्ण बिंब तो पाया होगा, अबोध अनात्म सृष्टि शंका से खुद को दुविधा में पाया होगा, गरल पान के वक्त तुम्हारा मन भी तो घबराया होगा, गरल पान के वक्त तुम्हारा मन भी तो घबराया होगा। सच सच कहना मेरे शंभो, सच सच कहना मेरे शंभो, प्रकृति से विकृति मिटा दूं मन में ये आया तो होगा, अंतर मन के द्वंद्व जाल में खुद को फंसता पाया होगा, खुद को फंसता पाया होगा।

स्वामै खोए अचेष्ट मानव को, क्यों कर मैंने बचाया होगा, क्यों कर मैंने बचाया होगा। हाय मानव के हृदय में इतना विष क्यों कहाँ से आया होगा। हाय मानव के हृदय में इतना विष क्यों कहाँ से आया होगा। गरल पान के वक्त तुम्हारा मन भी तो घबराया होगा। त्रिनेत्रधारी सच बतलाना, त्रिनेत्रधारी सच बतलाना, अतृप्त और दम्भी मानव का दृश्य तत्क्षण तुमने नहीं पाया होगा। धवल धरा का रूप लौटाने क्या तुम्हें फिर नहीं आना होगा। धवल धरा का रूप लौटाने क्या तुम फिर नहीं आना होगा। कालकूट का पुनः पान करूं मन में कई बार आया होगा, कालकूट का पान करूं मन में कई बार आया होगा। या अवचेतन पर पड़े मानव को कदाचित फिर तर्राना होगा, अवचेतन में पड़े मानव को कदाचित फिर तर्राना होगा। नश्वर इस सृष्टि का निर्मल प्रकृष्ट अभिनव रूप कुछ तो तुमने सजाया होगा। नश्वर इस सृष्टि का निर्मल प्रकृष्ट अभिनव रूप कुछ तो तुमने सजाया होगा। गरल पान के वक्त तुम्हारा मन भी तो घबराया होगा, गरल पान के वक्त तुम्हारा मन भी तो घबराया होगा। साथी इसके बाद मेरी दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है अभिलाषा। खिलती थी जहां कोमल कलियां, मुझको वो आंगन तो दिखा दो। खिलती थी जहां कोमल कलियां, मुझको वो आंगन तो दिखा दो। बहती थी जहां शीर की नदियां, मुझको वो धरणी तो दिखा दो। बहती थी जहां शीर की नदियां, मुझको वो धरणी तो दिखा दो। खिलती थी जहां कोमल कलियां, मुझको वो आंगन तो दिखा दो। खिलती थी जहां कोमल कलियां, मुझको वो आंगन तो दिखा दो। बहती थी जहां शीर की नदियां, मुझको वो धरणी तो दिखा दो। बहती थी जहां शीर की नदियां, मुझको वो धरणी तो दिखा दो। जन जन की वाणी से गुंजित ऐसा कोई गीत सुना दो। पीड़ा हिंसा दुख विषाद से छूटा कोई अखबार पढ़ा दो। पीड़ा हिंसा दुख विषाद से छूटा कोई अखबार पढ़ा दो। जन जन की वाणी से गुंजित ऐसा कोई गीत सुना दो। पीड़ा हिंसा दुख विषाद से छूटा कोई अखबार पढ़ा दो। पीड़ा हिंसा दुख विषाद से छूटा कोई अखबार पढ़ा दो। जलते सपने बिन जख्मों के कोई ऐसा व्यक्ति मिला दो। जलते सपने बिन जख्मों के कोई ऐसा व्यक्ति मिला दो। हर मोड़ पे घटती घटनाओं से मुक्ति दिला दो, मुक्ति दिला दो। तेरा मेरा भेद मिटाकर आगन आगन दीप जला दो। तेरा मेरा भेद मिटाकर आगन आगन दीप जला दो। ज्ञान मूल्य और देश प्रेम में, ज्ञान मूल्य और देश प्रेम में माँ धरणी को आज सजा दो, माँ धरणी को आज सजा दो। अक्षत रोली और चंदन से थाल सजा दो, थाल सजा दो। अक्षत रोली और चंदन से थाल सजा दो, थाल सजा दो। भूल चुके जो बलिदानों को, भूल चुके जो बलिदानों को, उनको गाथा आज सुना दो, उनको गाथा आज सुना दो। मातृभूमि के श्री चरणों में, मातृभूमि के श्री चरणों में शीश नवा दो, शीश नवा दो। प्रेम जगा दो, प्रेम जगा दो। मुक्ति दिला दो, मुक्ति दिला दो। देखिए काव्य गोष्ठी हो रही है तो फिर कैसे पीछे रहा जाए। मैं कुछ क्षणिकाएं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं और मेरी पहली क्षणिका है। जब भी जी चाहता है तुझ तक पहुंच जाती हूं मैं, जब भी जी चाहता है तुझ तक पहुंच जाती हूं मैं, परंतु टटोलती हूं अपनी उंगलियों से जब तुझे, परंतु टटोलती हूं अपनी उंगलियों से जब तुझे। अंगार से झुलसी उन्हें मैं पाती हूँ, अंगार से झुलसी उन्हें मैं पाती हूँ। फिर समेट लेती हूँ खुद पे ही खुद को, फिर समेट लेती हूँ खुद पे ही खुद को। हर बार शीशे के उस पार तुझे पाती हूँ, हर बार शीशे के उस पार तुझे पाती हूँ। अगली क्षणिका है। मैंने अपने अंदर शीशे का महल बना रखा है, मैंने अपने अंदर शीशे का महल बना रखा है। खुद को अधिकार विहीन रानी, खुद को अधिकार विहीन रानी तुझे राजा बना रखा है। खुद को अधिकार विहीन रानी और तुझे राजा बना रखा है। इसके बागों को मैं अपने आंसुओं से सींचती हूँ, इसके बागों को मैं अपने आंसुओं से सींचती हूँ। और यही

लाखों अवशेष माँ, पर माँ पे मैं क्या लिखूं? आज लिखूं या कल लिखूं, लफ्ज लिखूं या पल लिखूं, धरती या आकाश लिखूं या सूरज सा प्रकाश लिखूं, दर्द लिखूं, संघर्ष लिखूं, माँ के आंचल में बीता जो स्नेह भरा स्पर्श लिखूं, जब जन्म हुआ धरती पे मेरा, माँ के चेहरे का हर्ष लिखूं, उपकार करा जो मुझ पे है, माँ के दूध का कर्ज लिखूं, गर्व करेगी माँ मेरी, बेटा होने का फर्ज लिखूं, माँ से प्यारा शब्द कहाँ, माँ के कदमों में स्वर्ग लिखूं, खुद को माँ के साथ लिखूं, सर पे माँ का हाथ लिखूं, 9 माह गर्भ में रखा जो मुझको, उनका मैं एहसान लिखूं, मेरे जन्म समय जो दर्द सहा, उस पीड़ा का वृतांत लिखूं, बात बात पे बोले जो माँ की प्यारी सी डांट लिखूं, अब सबका माँ से प्यार लिखूं, बिन माँ सूना संसार लिखूं, बचपन की लोरी याद करूं, अब नींद नहीं आती मुझको, माँ की थपकी से नींद भरूं, माँ की गोद में सर रखे अपना बचपन याद करूं, क्या माँ हर पल साथ रहेगी, ईश्वर से फरियाद करूं, उसकी ममता के आंचल में नवजीवन का अरमान लिखूं, जब चोट मुझे लग जाए उसकी फूक और पुचकान लिखूं, जो करा ध्यान मैंने पाया माँ के चरणों में ध्यान लिखूं, बचपन में ज्ञान सिखाया जो संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान लिखूं, मेरे अंतर मन में झांक ले जो मेरी माँ को मैं भगवान लिखूं, जो माँ से आज तक बोल सका ना, लव यू माँ 100 बार लिखूं, लव यू माँ 100 बार लिखूं। इसी के साथ एक मुक्तक के टाइप में है कि

पूछता नाम रखा जनक और घर को चल दिए, नाम रखा जनक और घर को चल दिए। इसी के साथ मेरी गजल है, जीवन की दशा कुछ ऐसी है, जीवन की दशा कुछ ऐसी

0: कीजिए। धन्यवाद।
1: बहुत सुंदर रचना आपकी जनक जी। आपने माँ के लिए जो रचना कही सच में हृदय स्पर्शी थी। दो लाइनें मैं भी माँ के लिए कहना चाहूँगी। चलती फिरती आँखों से मैंने अजा देखी है, कि चलती फिरती आँखों से मैंने अजा देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर अपनी माँ देखी है। इसी के साथ मैं

0: हमारी छोटी बहन को आमंत्रित करती हूँ, जो सितारगंज से हैं, दीक्षा यादव जी।
1: राधे राधे, मैं आपके समक्ष अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैं और मेरा अस्तित्व। मैं जब अपने मन की सुनती हूँ तो अकत्य कहलाती हूँ, और जब सबके मन को रखती हूँ तो कर्तव्य निभाती हूँ। मैं जब अपने मन की सुनती हूँ तो अकत्य कहलाती हूँ, और जब सबके मन को रखती हूँ तो कर्तव्य निभाती हूँ। भीतर ही भीतर उलझी हूँ मैं, खुद से ही कहीं बिखरती हूँ। भीतर ही भीतर उलझी हूँ मैं, खुद से ही कहीं बिखरती हूँ। सबकी राहों पर चलती चलती अपनी राह से मुकरती हूँ। सबकी राहों पर चलती चलती अपनी राह से मुकरती हूँ। भीतर ही भीतर उलझी हूँ मैं, खुद से ही कहीं बिखरती हूँ। सबकी राहों पर चलती चलती अपनी राह से मुकरती हूँ। जीती तो हूँ हर रोज़ मगर जीवन सा कुछ लगता नहीं, सांसें चलती रहती हैं बस पर दिल कहीं धड़कता नहीं। जीती तो हूँ हर रोज़ मगर जीवन सा कुछ लगता नहीं, सांसें चलती रहती हैं बस पर दिल कहीं धड़कता नहीं। कह दूँ जो दिल की बात कभी तो दोष मुझी पर आता है, चरित्रहीन के शब्दों से मेरा अस्तित्व दब जाता है। कह दूँ जो दिल की बात कभी तो दोष मुझी पर आता है, चरित्रहीन के शब्दों से मेरा अस्तित्व दब जाता है। धन्यवाद। मैं दूसरी कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी जिसका शीर्षक है जिंदगी का सफ़र।

0: है। मैं अपनी तीसरी कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है मैं फिर मुस्कुराऊंगी। जब राहों में कांटे होंगे मैं फूल बनकर बिखर जाऊंगी, दर्द अगर दरवाजा खटखटाए मैं हंसकर उसे भुलाऊंगी। जब राहों में कांटे होंगे मैं फूल बनकर बिखर जाऊंगी, दर्द अगर दरवाजा खटखटाए मैं हंसकर उसे भुलाऊंगी। आंखों में चाहे नमी रहे दिल में दीप जलाऊंगी, हार अगर सामने आएगी मैं जीत नहीं बन जाऊंगी। लोग कहेंगे मुश्किल है मैं खुद को फिर समझाऊंगी, टूटे सपनों की किरचों से नई दुनिया सजाऊंगी। जो खोया उसका गम कैसा, जो पाया उसे अपनाऊंगी, हर अंधेरी रात के बाद मैं फिर मुस्कुराऊंगी, मैं फिर मुस्कुराऊंगी। तब प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है नारी अस्तित्व। नारी हूँ मैं नाच भी हूँ, अंदर जलती आग भी हूँ, खामोशी में गीत छुपे हैं, आंखों का एक राज भी हूँ। टूटूं तो फिर जुड़ जाती हूँ, हर दर्द में मुस्कान भी हूँ, दुनिया चाहे ठुकरा दे फिर भी अपनी पहचान भी हूँ। अपने सपनों को सजाकर सबके लिए कुर्बान करती, खुद की चाहत भूल के अक्सर अपनों पर एहसान करती। पर अब जागी हूँ, समझी हूँ, अपनी कीमत जानती हूँ, अबला नहीं मैं सकती हूँ, अपने हक को पहचानती हूँ। मैं आपके समक्ष एक और कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है मेरी खुशी। मेरी खुशी मेरे संग रहे, मेरी खुशी मेरे संग रहे, हर पल जैसे रंग रहे, हर पल जैसे रंग रहे, हंसी की हल्की धूप बने, मन में मीठी उमंग रहे, छोटी छोटी बातों में भी खुशियों का संसार मिले, हर सुबह नई किरणों जैसा जीने का उपहार मिले, हर सुबह नई किरणों जैसा जीने का उपहार मिले, ना गम मुझको रोक सके, ना डर मन को तोड़ सके, मेरी हंसी की प्यारी धुन हर मुश्किल को मोड़ सके, मेरी हंसी की प्यारी धुन हर मुश्किल को मोड़ सके। धन्यवाद।
1: बहुत सुंदर रचना है आपकी। आपने प्रत्येक रचना में हमारी वास्तविकता को दर्शाया है। इसी के साथ मैं दिया दो पंक्तियों से अपनी कविताओं की ओर आती हूँ। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली कि जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। अब सुनिएगा कविता जी, ये कविता मैंने खुद के जीवन पर लिखी थी। सही करो फिर भी ये दुनिया क्यों देती मुझको इल्जाम, नजरिया गलत तो दुनिया का है, मैं क्यों छोड़ दूँ अपना काम। अफवाहें ताने सुनते हुए भी मैं नहीं रुकी चलते चलते, अफवाहों से जन्मी ये अब तो आग भी थक गई ना जलते जलते। बाधा डालना दुनिया का काम कि बाधा डालना दुनिया का काम, मैं करूँगी वो जो मन चाहे, ऐ दुनिया वालों कि ऐ दुनिया वालों, ये मेरी किस्मत ले जाएगी वहाँ जहाँ है राहें। जिंदगी सबकी अपनी अपनी कि जिंदगी सबकी अपनी अपनी, जैसा समा बुझेगी जलते जलते, अफवाहों से जन्मे ये अब तो आग भी थक गई ना जलते जलते। कितना मजाक उड़ाओगी तुम, एक पल का जरा धैर्य धरो, दूसरों का घर झांकते हो कभी अपना घर भी देखा करो, कि कभी अपना घर भी देखा करो। मुझे मतलब नहीं दुनिया से, मेरी माँ ही मेरा संसार है। झूठ फरेब से कोसो दूर कि झूठ फरेब से कोसो दूर, माँ खुशियों का भंडार है, माँ खुशियों का भंडार है। अब तो सारी अफवाहें भी मिट गई ना सूरज के साथ ढलते ढलते, अफवाहों से जन्मी ये अब तो आग भी थक गई ना जलते जलते। इसी के साथ आपको अपनी दूसरी रचना से जोड़ती हूँ। लिखे तो बहुत नज्म तेरी हर एक याद में, मगर वो ना लिख सके जो पल बिताए तेरे साथ में। कैसे मैं कह दूँ तेरी बातों में सफाई नहीं, कि कैसे मैं कह दूँ तेरी बातों में सफाई नहीं। तुम मुझसे झूठ बोल और बदले में तेरे लिए मैं जान दूँ, एक पल के लिए मैं तुझे भुला भी लूँ। फिर सोचती हूँ तुझे भूलने की मैं खुद को क्या सजा दूँ, कि मैं खुद को क्या सजा दूँ। जो तेरे प्यार में कल सबको प्यारा था, कि जो कल तेरे प्यार में सबको प्यारा था, तेरे जाने के बाद सबको लगता आवारा है, कि तेरे जाने के बाद सबको लगता आवारा है। यूँ तो होता नहीं कि याद तेरी आती नहीं, बीते हैं पूरा दिन मगर बात तेरी जाती नहीं। जो तेरे जाने से मैं हो गया आवारा हूँ, मैं तुझ पर ही मिटूंगा कि मैं तुझ पर ही मिटूंगा, ये भी तेरे लिए काफ़ी नहीं, कि ये भी तेरे लिए काफ़ी नहीं। इसी के साथ एक छोटी सी रचना और प्रेषित करूँगी। शोर शराबे इस हलचल से दूर शांत जीवन जीना चाहती हूँ, जीती रही आज तक सबके लिए, कुछ पल खुद के लिए जीना चाहती हूँ। उन्मुक्त सरिता की तरह मेरा मन, कि उन्मुक्त सरिता की तरह मेरा मन बहता रहे जीवन कप के भीतर। फैला था चारों ओर मरुस्थल, धरा तले बहता था निर्जल। समंदर में आते आते लहरों के भंवर में खो गए, कि समंदर में आते आते लहरों के भंवर में खो गए। संसार चक्र की धुरी बनी, ममता ने जो ली अंगड़ाई, ममता ने जो ली अंगड़ाई। शोर शराबे इस हलचल से दूर, शांत जीवन जीना चाहती हूँ। जीती रही अब तक सबके लिए, कुछ पल खुद के लिए जीना चाहती हूँ, कुछ पल खुद के लिए जीना चाहती हूँ। इसी के साथ आप सभी के बीच एक और कविता रखूँगी, जो लिखी हुई है आजकल की जो नन्ही किशोरियाँ हैं अपने सपनों को रोक देती है आजीविका के चलते, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उनके लिए एक प्रेरणादायक कविता लिखने का प्रयास किया था, सुनिएगा जरा। सपने देखा करो लड़कियों, सपने पूरे होते हैं, और जब वो पूरे होते हैं तो बेइंतहा खुशियाँ लाते हैं। तुम सफ़र शुरू करो अपना अकेले, कि तुम सफ़र शुरू करो अपना अकेले, आज नहीं तो कल दुनिया साथ चलेगी तुम्हारे। तुम बस सपने देखा करो, लगे रहो अपने पथ पर, तुम एक दिन जरूर सफल होगी, और सब तुम्हारे पुराने किस्से गुनगुनाया करेंगे। तुम याद रखना तुमने सफ़र एक से हजारों तक पहुंचने में कितना संघर्ष किया था। तुम याद रखना मर्यादाएं अपनी, तुम याद रखना वो सपने जो तुम बुना करती थी रातों को अकेले। चलो जो भी है तुम सपने देखा करना, सपने पूरे होते हैं। इसी के साथ मैं अपनी एक और कविता प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा जरा। अब पसंद नहीं है मुझे हर एक पहलू में झांकना, जो बात है नहीं उस बात को बार बार बांटना। कैसे मैं कह दूँ मेरे सामने सारे सच्चे हैं, ये अच्छे से जानते हैं पीठ पीछे चाकू मारना। जहाँ गलत नहीं था अब वहीं गलत हो गया हूँ, बुरा ही अच्छा था अब बुरा बन के मर रहा हूँ, कि बुरा ही अच्छा था अब बुरा बन के मर रहा हूँ। कैसे मैं कह दूँ मेरा दर्द सब पर भारी है, लोगों का दर्द देखता हूँ तो लगता जिंदा रहना काफ़ी है, कि लगता है जिंदा रहना काफ़ी है। अभी अकेला हूँ तो किस किस को मैं जवाब दूँ, मैं तुमसे रूठता नहीं करता तुम पर नाज हूँ, कि करता तुम पर नाज हूँ। जो बात सच है मैं वो तुमसे कैसे बता दूँ, मैं आवारा हूँ आवारापन को कैसे छोड़ दूँ, कि मैं आवारा हूँ आवारापन को कैसे छोड़ दूँ। लिखे तो बहुत नज़्म तेरी याद में, पर वो ना लिख पाए जो पल बिताए तेरे साथ में। इसी के साथ एक और रचना से आप सभी को जोड़ती हूँ, जो लिखी है महिलाओं के लिए। तुम्हें अहंकार है ना, तुम पुरुष हो, क्या कभी बन पाओगे एक नारी की तरह? बताओ ना कि बन पाओगे एक नारी की तरह? शौक सहेली आज़ादी का बचपन छोड़, खुश रह पाओगे एक नारी की तरह? माँ बाबा का घर छोड़, नई जगह रच बस पाओगे एक नारी की तरह? अगर कुछ बोलना चाहो तो बातें अटकी सी रह जाएंगी, अगर सर से पल्लू खट जाए तो सबको खटक सी जाएगी। तुम्हें अहंकार है ना, तुम पुरुष हो, क्या कभी बन पाओगे एक नारी की तरह? संभालते संभालते दो पक्षों को क्या खुद ही घिर पाओगे एक नारी की तरह? जहाँ तुम सही हो क्या वहाँ भी गलत बन पाओगे एक नारी की तरह? मन की बातें मन में रख के क्या तुम मुस्कुरा पाओगे एक नारी की तरह? तुम्हें अहंकार है ना, तुम पुरुष हो, क्या कभी बन पाओगे एक नारी की तरह? क्या कभी बन पाओगे एक नारी की तरह? इसी के साथ मैं अपनी एक और कविता प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा जरा। अब पसंद नहीं है मुझे हर एक पहलू में झांकना, जो बात है नहीं उस बात को बार बार बांटना। कैसे मैं कह दूँ मेरे सामने सारे सच्चे हैं, ये अच्छे से जानते हैं पीठ पीछे चाकू मारना। जहाँ गलत नहीं था अब वहीं गलत हो गया हूँ, बुरा ही अच्छा था अब बुरा बन के मर रहा हूँ, कि बुरा ही अच्छा था अब बुरा बन के मर रहा हूँ। तो मैं जवाब दूँ, मैं तुमसे रूठता नहीं करता तुम पर नाज हूँ, कि करता तुम पर नाज हूँ। आए तेरे साथ में अभी अकेला हूँ तो किस किस को मैं जवाब दूँ, मैं तुमसे रूठता नहीं करता तुम पर कैसे छोड़ दूँ। लिखे तो बहुत नज्म तेरी याद में, पर वो ना लिख पाए जो पल बिताए तेरे साथ में। धन्यवाद। हमारे साथ है डॉक्टर दुर्गा तिवारी जी, दीक्षा यादव जी एवं जनक जी, हम सभी की ओर से आप सभी को पुनः धन्यवाद।
2: कवि गोष्ठी, अभी आप सुन रहे थे, प्रतिभागी कवि थे डॉक्टर दुर्गा तिवारी, दीक्षा यादव, दिया आर्या और जनकपाल सिंह। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा।
3: प्रस्तुति आकाशवाणी प्रयागराज की है।
4: खेल दर्पण, खेल दर्पण, खेल दर्पण।
5: श्रोताओं नमस्कार, मैं अभय कांत तिवारी स्वागत करता हूं आपका कार्यक्रम खेल दर्पण में। आज के अंक में आप सुनेंगे अर्जुन पुरस्कार विजेता जिमनास्ट आशीष कुमार से सुंदरम तिवारी की भेंटवार्ता और हैमर थ्रो खेल चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह से भूपेंद्र मिश्र की बातचीत और अंत में सुनेंगे इस सप्ताह के खेल समाचार।
3: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं सुंदरम तिवारी और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने न केवल प्रयागराज बल्कि भारत को भी स्वयं पर गर्व करने के कई अवसर दिए हैं। प्रयागराज के जाने माने अर्जुन अवार्डी जिमनास्ट श्री आशीष कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में।
6: धन्यवाद।
3: आशीष जी, एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। एक जो आम माता पिता है वो अपने बच्चों से ये बात कहते हैं एक उम्र में, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपने इस कहावत को झुठला दिया। कितना मुश्किल था ये डिसाइड करना या कितना आसान था आपको अपने माता पिता को कन्विंस करना कि मैं एक खेल को अपने प्रोफेशन के तौर पे चुनूंगा? कैसे आपने कन्विंस किया था अपने माता पिता को?
6: देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर खेल का अपना अलग नेचर होता है, अपनी अलग प्रतिक्रिया होती है। जहाँ तक बात है जिम्नास्टिक की, तो जिम्नास्टिक्स में क्या है कि बच्चों की जो प्रशिक्षण है वो बहुत कम उम्र से स्टार्ट होती है। तो बच्चों का जो ट्रेनिंग है, जो एक्चुअल एज है जिम्नास्टिक में, वो 4 साल मानी गई है। अच्छा, उसके पीछे भी कारण है क्योंकि हमारे गेम में क्या है, स्ट्रेंथ के साथ साथ आपके शरीर का लचीलापन, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। 50% स्ट्रेंथ, 50% फ्लेक्सिबिलिटी, ये होना बहुत जरूरी है।
3: अच्छा,
6: तो जब बच्चा छोटा होता है, आप कभी भी ऑब्जर्व करिएगा, छोटे बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है क्योंकि अभी उनकी शरीर विकसित हो रही है, हड्डियां लचीली हैं। आपने देखा होगा कि मटका होता है जब बनता है, तो वो आपके हाथ में होता है, आप उसको जिस शेप में ढालेंगे वो ढल जाएगा। तो जिम्नास्टिक को मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स इसीलिए कहा जाता है कि जिम्नास्टिक्स में जो बच्चा ढल जाता है वो कोई भी गेम हो वो अच्छा ही करेगा। इसीलिए आप देखिए कई ऐसी कंट्रीज है, स्पेशली चाइना, जहाँ पे जिम्नास्टिक कंपलसरी है कि बच्चों को पहले 5 साल जिम्नास्टिक करानी ही करानी है।
3: आपके केस में किसने निर्णय लिया? आपने निर्णय लिया कि मुझे खेलना है, या आपके फादर मदर जो आपके पेरेंट्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजूंगा?
6: ऐसा था कि मैं 4 साल का था, मेरे फादर रेलवेज में थे, वो गाजियाबाद पोस्टेड थे।
3: अच्छा।
6: उनको तो पता भी नहीं था कि मेरा एडमिशन हुआ है। 1992 में नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी जिम्नास्टिक का सेंटर जो बॉयज के अंदर है वो खुला, तो वहां से ये शुरुआत हुई। मेरे भाई ने मेरा एडमिशन कराया जिम्नास्टिक हॉल में
3: जी,
6: और मेरे फादर को नहीं पता था। मेरे फादर को बहुत बाद में पता चला कि मैं जिम्नास्टिक जाता हूँ। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई जिम्नास्टिक की।
3: क्या बात है। जिम्नास्टिक में आपने जैसे बताया कि मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स कहा जाता है, लचीलापन फुर्ती जरूरी होती है। 2006 सूरत जो पहला पदक शायद आपको मिला
6: जी,
3: पहली सफलता जब किसी न्यूज़पेपर ने आपका नाम शायद पहली बार छापा, एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, थोड़ा सा उस मूवमेंट के बारे में हमें बताएं जब पहली बार आपको लगा कि आप आशीष कुमार से एक सेलिब्रिटी आशीष कुमार के रूप में परिवर्तित हो गए।
6: ये 2006 मेरा सीनियर का पहला कॉम्पिटिशन था।
3: अच्छा।
6: और बहुत लोगों को पता ही नहीं कि जो मैंने 2006 में खेला था, एक्चुअल में मेरी जो एज थी
3: जी
6: उस टाइम पे जूनियर की थी।
3: अच्छा।
6: बट मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बेटर थी, इम्प्रूव्ड थी, तो मुझे सीनियर खिलाया गया। और 2006 एशियन चैंपियनशिप से मेरा पहला सीनियर में जो कंपटीशन था वो कॉमनवेल्थ गेम्स का था।
3: अच्छा।
6: वहां से मुझे एक एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि क्या होता है जब आप खेलते हैं तो आपको पता चलता है अरे ये इतना बड़े लेवल का कंपटीशन है। फिर 2006 एशियाई चैंपियनशिप जो सूरत में हुई थी
3: जी,
6: भारत के पास इससे पहले सीनियर एशियन कैटेगरी में कोई भी मेडल नहीं था। हम वहां गए, ट्रेनिंग की, और आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि वहां पे फ्लोर एक्सरसाइज जिसपे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था 2006 में ये हुआ, और 2008 ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट भी आया हुआ था जिसने 2008 में गोल्ड लिया है फ्लोर पे।
3: अच्छा,
6: तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, बट सबसे अच्छी चीज नर्वस नहीं था, एक एंजाइटी थी, डर था। और जब मैं फाइनल में पहुंचा, इंडिया से अकेले मैं ही फाइनल में पहुंचा था
3: जी।
6: और फ्लोर इवेंट मेरा बेस्ट इवेंट है उस पे था। इंडिया क्राउड, मैंने पहली बार देखा कि इंडिया में जिम्नास्टिक का कंपटीशन हो रहा है, और मोर देन आई थिंक 3,000 to 4,000 पब्लिक उस स्टेडियम में थी, और बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट था इंडिया में। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था इंडिया में इतना बड़ा कंपटीशन खेलने का।
3: अच्छा।
6: जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की एंग्जाइटी को कंट्रोल करके, और जब मेरा मेडल आया तो वो मतलब बड़ा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मेरे लिए एक्सपीरियंस था। एज कम थी तो मुझे इन सब चीजों का मतलब नहीं पता था कि पहला मेडल जो जीतता है तो कैसा फील होता है। बस मेरे लिए था कि मैंने मेडल जीत लिया, मैं बहुत खुश था, क्योंकि कम एज में बच्चों का माइंड दूसरे तरीके से काम करता है।
3: बिल्कुल।
6: अब मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार, कंट्री का पहला मेडल एशियन चैंपियनशिप में सीनियर में एक बहुत बड़ी बात होती है।
3: निश्चित रूप से बड़ी बात होती है। 2010 राष्ट्रमंडल खेल, फिर 2010 का ही ज्वांग खेल, 2011 का ढाका दक्षिण मध्य एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, और फिर 2011 में एक भारत का जो सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जब मिला आपको, वो क्षण कैसा था?
6: देखिए, अर्जुन पुरस्कार जिस समय मिला, अब उसको मेरा बैड लक कह लीजिए, जिस टाइम पे अर्जुन पुरस्कार मिलना था उस समय हम लोग लंदन में कैंप कर रहे थे।
3: अच्छा।
6: क्योंकि उसी साल ओलंपिक से क्वालिफिकेशन होने थे जापान में, और सेम टाइम पे ही, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं, राष्ट्रपति भवन में मिलता है, तो मेरे लिए एक बड़ा ही चैलेंज उस समय आया, क्योंकि मेरी पूरी टिकट्स बुक थी इंडिया आने की। अब मेरे सामने दुविधा ये थी कि जिस डेट में ये पुरस्कार वितरण होने थे, उसी डेट के एक दो दिन गैप में वर्ल्ड कप होने थे।
3: अच्छा।
6: बेल्जियम में। मेरे लिए चैलेंज ये था कि अगर मैं इंडिया ट्रैवल करता हूँ तो देखिए, आप इतनी दूर से इंडिया ट्रैवल करेंगे, एक दिन आपको लेने में लगेगा, और फिर सेम डे आपको वहीं से डायरेक्ट बेल्जियम जाना पड़ता, तो मेरा बीच का जो ट्रेनिंग था वो छूटता।
3: अच्छा।
6: आपको वहां पर ट्रेनिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता
3: जी।
6: तो उस टाइम पे मैंने कंपटीशन को सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरे लिए उस समय वो जरूरी था, वो मेरा एक सैक्रिफाइस था जिसको मैं मिस करता, क्योंकि देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ऑनर लेना अपने आप में एक ऑनर की बात है।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
6: लेकिन जैसा मैंने बोला, उस टाइम पे मैं एज अ प्लेयर, तो मेरे लिए डिसीजन ये था कि ये कॉम्पिटिशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से जाके हमारा आगे के ओलंपिक्स के रास्ते खुलेंगे। तो वहां पे मैं उसमें नहीं गया था। फिर इंडिया आने के बाद उस समय जो आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अजय माकन, उनके थ्रू मैंने अपना अवार्ड लिया, बट उनसे भी वो अवार्ड लेना मेरे लिए बड़ा प्रेस्टीजियस था, क्योंकि जब छोटा था तो मैं सुनता था कॉमनवेल्थ मेडल, अर्जुन अवार्ड, मतलब लगता था कि ये वाकई बहुत बड़ी चीज है। क्या होता है, जब आपके पास कुछ नहीं और सामने वाले के पास बहुत उपलब्धियां हैं, तो आप जब उसको देखते ना, तो कई बार अगर आपको लगता है मैं कैपेबल हूं, तो आप उस चीज को फील कर पाते हैं कि जब वो चीज हमारे नाम से जुड़ती है तो आपको वो 100 करोड़ जनता से ना अलग कर देती है।
3: बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद जब आप प्रयागराज आए, जो मित्र थे, माता पिता, उनकी प्रक्रियाएं कैसी रहीं?
6: क्या होता है, नॉर्मली अपने जिम्नास्टिक में जब कोई मेडल लेता है तो लोग जाते हैं
3: जी,
6: एक नॉर्मल भीड़ होती है। हम ट्रेन से आ रहे थे, मैं थे, मेरे फादर, मदर और डॉक्टर यूके मिश्रा
3: जी,
6: हम सब साथ में ही ट्रेन से वापसी कर रहे थे, और मुझे लगा कि बड़ा मेडल है, लोग होंगे, बट लिटरली जब ट्रेन जंक्शन पे लगने लगी, आप सोचिए, मुझे 300 मीटर दूर से ही ना ढोल नगाड़े की आवाज आने लगे।
3: क्या बात।
6: तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हुआ, मुझे लग रहा लोग आए हैं, बट लिटरली जब मैंने इंटर किया, मुझे इतना क्राउड देखा, इतना क्राउड, मुझे लगा यार ये तो कुछ ज्यादा ही भीड़ है, मतलब एक्सेप्शनल क्राउड, पूरा स्टेशन भरा हुआ था। मैं अपना पैर स्टेशन पे रख ही नहीं पाया, निकलते ही गोदी में लेके मुझे मिश्रा सर को, जो मेरे कोच थे, डीके राठौर, माले पे माला, और कोई भीड़ से निकल के कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, यंग्स बच्चे जो नए ज्वाइन किए हुए थे, और स्टेशन पे बाकी लोग, क्योंकि बहुत से लोग ट्रेन पकड़ने आते हैं, उनको नहीं पता, लेकिन जब उनको भी पता चल रहा था तो वो भी क्राउड में सम्मिलित हो रहे थे
3: जी।
6: वो भी देखना चाह रहे थे कि भाई पहला मेडल जिसने लिया है कौन है। तो वो मेरे लिए मेरे लाइफ टाइम का एक बड़ा मेमोरेबल मोमेंट है।
3: आपकी इस अचीवमेंट से हटके अब आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एक खिलाड़ी होने के नाते आपका जो ज्यादातर समय होगा वो निश्चित रूप से आप अपनी प्रैक्टिस पे देते होंगे, एकेडमिक्स जो आपकी एजुकेशन थी वो कैसे आप उसमें एजुकेशन और अपनी प्रैक्टिस में बैलेंस बनाते थे?
6: जिम्नास्टिक्स में जैसे मैंने कहा, मैं नर्सरी में था जिस समय मैंने ज्वाइन किया, मैं 4 साल का था।
3: अच्छा।
6: तो क्या होता है, नर्सरी प्रेप ये फिर भी मैनेजेबल होती है स्टडी। जब 2013 में मैंने अपना पहला इंटरनेशनल खेला, ट्यूलिट पीटर कप हंगरी बुडापेस्ट में, उसको खेलने के बाद क्या होता है, अंडर 14 जब आप खेलने लगते हैं तो आपका ट्रेनिंग बर्डन बढ़ने लगता है। और जिम्नास्टिक्स में हम लोगों की सुबह की ट्रेनिंग 4 बजे से होती है।
3: अच्छा।
6: शाम को भी, मतलब एक दिन में 7 से 8 घंटे ट्रेनिंग होती थी। 2013 के बाद मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मैं कई बार ऐसा भी होता था कि हफ्ते में 2 दिन ही स्कूल जाता था।
3: अच्छा।
6: बट इंटरनेशनल खेलने के बाद, मैं आपको बताऊं, मैं नर्सरी से लेके 8 तक राजापुर में एक स्कूल है, वहां की प्रिंसिपल ने मुझे काफी सपोर्ट किया उस टाइम पे। और फिर देखिए 2013 अगर आप देखेंगे तो काफी बैक की बात है। फिर स्कूल्स को क्या रहता है ना, उनको एक्सपेक्टेशंस कम होती है कि स्कूल से कोई बच्चा निकल के यहां तक जा सकता है, वो भी जिम्नास्टिक जैसे स्पोर्ट्स में, क्योंकि जिम्नास्टिक्स को उस समय उतनी वो नाम नहीं मिला था,
3: उतनी पॉपुलरिटी नहीं थी,
6: पॉपुलरिटी नहीं थी। लेकिन जब मैं खेल के आया वहां से, मैंने लगभग 5 मेडल जीते थे, तो स्कूल्स वाले काफी सपोर्ट करते थे और
3: कुल मिला के तालमेल बन गया,
6: तालमेल बन गया।
3: आशीष जी, एक सीनियर प्लेयर के रूप में आप उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो बच्चे स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं,
6: जो यंग बच्चे हैं स्पेशली 4 से लेकर 10 साल 12 साल तक के बच्चे, उनको डेफिनेटली स्पोर्ट्स में आना चाहिए। क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है।
3: अच्छा।
6: अभी गवर्नमेंट ने, अब देखिए खेलो इंडिया स्कीम्स है।
3: जी, मैं ये बात पूछना ही चाह रहा था कि हाँ। जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए क्या संभावनाएं हैं, और सरकार की तरफ से जो छोटे शहर हैं, बड़े शहरों में तो जो व्यावसायिक तौर पे जो प्रोफेशनल स्टेडियम भी हैं, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहां पर तो संभवतः हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो गवर्नमेंट से ही होती है।
6: हाँ,
3: तो उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, ये भी मैं पूछना चाहता
6: हूं। मैं उनके लिए स्पेशली आपको बताना चाहूंगा, जो मेरा ऑब्जर्व रहा है, बड़े शहरों की उपेक्षा छोटे शहरों में टैलेंट बहुत ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है पेरेंट्स को अवेयर होने की।
3: अच्छा।
6: देखिए क्या होता है, बच्चा छोटा है, 4 साल का बच्चा, उसको क्या पता है क्या करना है। आपको पता है बच्चे को स्कूल भेजना है तो उसे वो पता है, लेकिन अब पेरेंट्स को भी अवेयर होना है कि नहीं, बच्चे को मुझे एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स में डालना है। जिम्नास्टिक में डाल दीजिए, बैडमिंटन में डाल दीजिए।
3: तो ये बेसिकली माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो डिसाइड करे कि बच्चे को किस दिशा में भेजना है।
6: जरूर।
3: चलते चलते बस एक सवाल ये कि सफलता के क्षण तो सभी शेयर करते हैं, सभी इंजॉय करते हैं, सफलता के क्षण शायद एक स्पोर्ट्समैन के जीवन में कम ही होते हैं, असफलताएं और दबाव ज्यादा होते हैं, उनसे कैसे आप निपटते थे? और एक सवाल और कि जो युवा इस समय स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें?
6: देखिए जहां तक सवाल है असफलता का, तो स्पोर्ट्स का शब्द ही यही है कि आपको गिरना, खड़े होना, ये स्पोर्ट्स सिखाता है, ये आपको कोई और नहीं सिखा सकता। और शायद यही एक कारण है कि एक स्पोर्ट्समैन जब गिरता है, सफलता है, तो वो उसको मेंटली टफ बनाता है, और जो प्लेयर उससे जूझ के आगे निकलता है तो वो या तो इतिहास रचता है या तो अपना एक नाम बनाता है और अच्छी जगह पे सेटल होता है। और युवाओं को मैं एक बड़ी छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ जो मेरे सीनियर्स डॉक्टर यूके मिश्रा जी ने मुझे बताया था, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं, लोगों की थिंकिंग है कि मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, जो मेन चीज है वो है समय। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 4 साल से लेकर 18 साल तक ये आपका समय है काम करने का, चाहे आप स्टडी में करिए चाहे स्पोर्ट्स में करिए। जिसने अपने आप को इन 18 साल में जी तोड़ मेहनत कर दी किसी भी फील्ड में, मैं स्पोर्ट्स की भी बात नहीं कर रहा, चाहे पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स में तो है ही है, अगर इस समय आपने अपने आप को मेहनत करके ढाल दिया तो ये आप मान के चलिए आपका आने वाला समय आरामदायक होगा। लेकिन अगर इस समय आपने आराम कर लिया तो आगे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा।
3: निश्चित रूप से आशीष जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण और रुचिकर बातें की हमसे, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
5: आइए अब सुनते हैं हैमर थ्रो खेल चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह से भूपेंद्र मिश्र की बातचीत।
7: खेल से शारीरिक व्यायाम तो होता ही है, मानसिक महत्व भी इसका कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जीवन में जो चुनौतियां आती हैं खेल के दौरान मैदान में आपको अक्सर देखने को मिलती है, तो चुनौतियों का सामना करने में खेल का कितना महत्व है उससे हमें कुछ सीख मिलती है। आज हम हैमर थ्रो एक खेल है उस पर बात करेंगे और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं हैं, भारत में इस खेल की लोकप्रियता क्या है और उसके समक्ष आने वाली जो चुनौतियां हैं उसके बारे में हम बातें करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह जी। चंद्रोदय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
8: बहुत बहुत धन्यवाद।
7: चंद्रोदय जी, आप हमारे श्रोताओं को अपने विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दें।
8: मेरा नाम चंद्रोदय नारायण सिंह है
7: जी।
8: मैं अंतर्राष्ट्रीय हेमथ्रोअर हूँ, प्रोफेशन से मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मौजूदा समय पर मैं इंडियन ऑयल में प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ, यहीं प्रयागराज में।
7: आपके कोच रुस्तम खान जी रहे हैं, आप लक्ष्मण अवार्ड 2012 के विजेता भी रहे हैं, और जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि आप 9 बार इस खेल के नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2014 के फाइनलिस्ट भी आप रहे हैं, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2013 जो कि पुणे में हुआ था उसके भी आप रजत पदक विजेता रहे हैं। तो आपका जो खेल यात्रा है उसको किस रूप में देखते हैं?
8: मैं अपने खेल यात्रा को ऐसे देखता हूं जैसे मैंने अपने लाइफ को बहुत कुछ सैक्रिफाइस करके आज जो मैं पाया हूँ वो एक हर आदमी चाहता है कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए
7: जी। हैमर थ्रो जो खेल है इसको आपने करियर के रूप में चुना है, आपने कब चुना और इस खेल को चुनने के लिए जो प्रेरणा इसके पीछे होती है वो क्या है?
8: इस खेल को चुनने की प्रेरणा मुझे मेरे मदर फादर से मिली थी। मेरे फादर खुद इंटरनेशनल हैमर थ्रो और डिस्कस थ्रो थे
7: जी।
8: मेरी मदर भी नेशनल हॉकी टीम की खिलाड़ी रही हैं, तो मुझे अपने परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट था स्पोर्ट्स करने के लिए
7: जी।
8: और मेरे गुरु भी जिनका आप नाम ले रहे मोहम्मद रुस्तम खान साहब, ये इंडिया के सबसे बढ़िया हैमर थ्रोअर कोच कहे जाते हैं।
7: अगर भारत की बात करें तो

0: क्रिकेट महत्वपूर्ण खेल है, लोकप्रिय भी है। उसके बाद बैडमिंटन वगैरह का नाम आता है। आजकल जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, जो चल रही हैं, उसमें जो स्थानीय लोकल जो खिलाड़ी हैं उनको भी बढ़ावा मिल रहा है। इससे कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हैमर थ्रो जो खेल है, चूंकि ये भारत में इतना लोकप्रिय नहीं है अन्य देशों की तुलना में, इसको आप किस रूप में देखते हैं? भारत में इसकी क्या संभावनाएं हैं या इसकी चुनौतियां क्या हैं?
1: हैमर थ्रो जो है ये यूरोपियन गेम्स है।
0: जी
1: एथलेटिक्स में एक गेम होता है थ्रो में, जैसे चार थ्रो होते हैं, जेवलिन, डिस्कस, हैमर, शॉटपुट। तो उस थ्रो में एक कैटेगरी होती है हैमर थ्रो, ये यूरोप से आया था। इसको कहा जाता है वर्ल्ड का मोस्ट टेक्निकल गेम। टेक्निकल की बात करते हैं तो वर्ल्ड का मोस्ट टेक्निकल गेम दो होते हैं, एक पोल वॉल्ट होता है, एक हैमर थ्रो है, जिसको वर्ल्ड ने खुद सर्टिफाइड किया है कि मोस्ट टेक्निकल गेम। और इस गेम का सरकार ने जितना बढ़ावा दिया है समय कि मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चीज बहुत अच्छी है। हैमर थ्रो एक ऐसा खेल है कि गांव से जो बच्चे आते हैं वो इसको ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, वो इसको
0: जी
1: ज्यादा महत्व समझते हैं शहर के मुकाबले, क्योंकि उनको मालूम है कि हैमर में समय देना पड़ता है, आपको 8 साल की प्रैक्टिस देनी पड़ेगी तब आपकी परफॉर्मेंस आएगी। तो ज़रा टाइम टेकिंग है ये, मतलब आपकी स्टार्टिंग में तो आपको 5 साल, 7 साल, 8 साल तो प्रैक्टिस करेंगे जब आप, तब आप उसमें परफेक्ट होंगे। एक कहावत कही जाती है ना, प्रैक्टिस में मेक परफेक्शन।
0: जी
1: तो हम हैमर को इस रूप में देखते हैं।
0: आपने जो हैमर थ्रो खेल चुना, उसकी भारत में जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि लोकप्रियता कम है, तो इसको अगर कोई एक जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का खिलाड़ी है या शहरी पृष्ठभूमि का है, वो अगर इसका चुनाव करता है तो उसके लिए क्या क्या कठिनाइयां सामने आती हैं, और साथ ही साथ भारत में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं सरकार द्वारा या निजी प्रयासों के द्वारा?
1: हैमर एक ऐसा गेम है जो इस टाइम हमारे गांव में बहुत ज्यादा एडवांस है। गांव के बच्चों को उसको खेलने में मजा आता है, उनको देखने में भी उतना अच्छा लगता है कि वो सोचते हैं कि इसको करने के लिए। इसके साथ कठिनाई ये है कि ये आपको देखिए, नॉर्मल खिलाड़ियों के लिए तो ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनल हैमर थ्रो बनने के लिए आपको डाइट, उसके बाद रेस्ट आपकी कितनी है, कितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसके साथ मेहनत कर सकते हैं।
0: आपने मेहनत की बात की, लेकिन मेहनत के साथ साथ जब सुविधाएं मिलती हैं, यानी तकनीक, जिसे आज के समय में हम कह सकते हैं, तकनीक का इस खेल में कितना योगदान है?
1: तकनीक का तो इसमें इस खेल में इतना योगदान है कि ये वर्ल्ड का, विश्व का सबसे कठिन गेम कहा गया है। जो इसकी टेक्निक कही जाती है, जिस तरीके से इसको फेंका जाता है, वो एक तरह से मतलब कि बहुत चैलेंजिंग होता है एक आदमी के लिए। एक आदमी जब स्पोर्ट्स करने आता है तो हैमर जब उठाता है तो स्टार्टिंग मतलब देखने में तो अच्छा लगेगा कि ऐसे टर्न कर सकते हैं हम, लेकिन जब आप 7.5 किलो का हैमर उठाते हैं, उसको स्विंग करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि इस गेम में हम जितनी टेक्निक, जितना हम नेचर से, जितना हम फिजिक्स से, बायोलॉजी जो हम जान रहे हैं उसका यूज करते हैं तो उसका हमको रिजल्ट मिलता है। अगर हम उसका रिजल्ट, उसका यूज नहीं करेंगे तो उसके डिसएडवांटेज भी हैं कि परफॉर्मेंस नहीं बढ़ना, मीटर चेज नहीं होना, जो टारगेट मिला वो टारगेट चेज नहीं हो पाते हैं।
0: आज भी ये खेल, जैसा कि आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव के पृष्ठभूमि के लड़के हैं या खिलाड़ी हैं, वो इसको सहज रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात करें तो इस खेल में भारत के जो खिलाड़ी हैं उतना प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, क्या कारण है इसका?
1: थोड़ा सा भारत में थोड़ा टेम्परेचर की बात होती है, क्योंकि ये यूरोप से आया है तो यूरोप आप जान रहे हैं कि ठंडा राज्य रहा है।
0: जी
1: भारत में आप गर्मी का तो उससे थोड़ी सी दिक्कत होती है खिलाड़ियों को, लेकिन आप हैमर का जहां तक हम देख रहे हैं कि ये 8-10 साल बाद, जैसे आज हमारे देश में नीरज चोपड़ा जी हैं जिन्होंने जेवलिन में नाम रोशन किया, नहीं अभी तक कोई जेवलिन भी नहीं जानता था।
0: जी जी जी
1: लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे ने ऐसा करके दिखाया कि लोग आज एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो को यूज कर रहे हैं। तो वैसे ही एक समय आएगा, जैसे डिस्कस थ्रो था, विकास गौड़ा जी थे हमारे, कई ऐसे खिलाड़ी थे, अनिल कुमार जी थे, जिन्होंने उस खेल को बढ़ावा दिया और जिससे लोकप्रिय खेल हुआ। तो ऐसे अब हैमर का भी समय आएगा, हैमर को 7-8 साल लगेगा ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत को।
0: किसी भी खेल के पीछे प्रशिक्षण की, ट्रेनिंग की एक महती भूमिका होती है।
1: जी
0: तो इस खेल के लिए भारत में जो ट्रेनिंग की स्थिति है और उसकी क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: चुनौतियां तो बहुत हैं
0: जी।
1: पहली चीज तो स्पोर्ट्स पर्सन डिसिप्लिन में होना चाहिए, ज्यादातर उसको कोशिश करना चाहिए कि वो नॉर्मल आम जनता में नहीं समझे अपने आप को, क्योंकि वो एक खास चीज करने जा रहा है तो उसको अपने आप को खास मानना पड़ेगा इस स्पोर्ट्स को करने के लिए।
0: जी चंद्रोदय जी, आपका एक लंबा खेल अनुभव रहा है, एक लंबा करियर रहा है, वर्तमान में आप सरकारी जॉब में हैं, तो कोई ऐसा यादगार अनुभव हो जिसे आप श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें?
1: मेरा यादगार लम्हा रहा है जब मैंने विश्व के सबसे बड़े हैमर थ्रो से मुलाकात की थी, जिन्होंने 1986 में 86 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिनको शायद ही लोग नाम सुने होंगे, यूरी सैदिक नाम था उनका,
0: जी
1: यूरोपियन थ्रोअर थे। वो एक ऐसे खिलाड़ी थे, जब मैं उनके पास ट्रेनिंग कर रहा था तो उन्होंने मुझसे बताया कि

0: साल उन्होंने ओलंपिक मेडल लिया था। उनके जो कोच थे बंदर चुक साहब
1: जी,
0: वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे ओलंपिक में, कोच भी और उनके ट्रेनी भी। कोच थर्ड था और उनके ट्रेनी फर्स्ट सेकंड थे। तो ये ऐसा यादगार पल था जिसको हमने कभी सुना था, जिनको मोबाइल पे और वीडियोस देख के सीखते थे, उनसे जाके सीखना का एक एक्सपीरियंस जो हमको सरकार ने मौका दिया, फेडरेशन ने, साई ने, ओलंपिक संघ ने हमको जो मौका दिया, वो जिंदगी में सबसे यादगार पल है हमारा।
1: और कोई अनुभव?
0: अनुभव तो बहुत अच्छे अच्छे रहे हैं, अच्छे भी रहे हैं, खराब भी रहे हैं।
1: जी जी,
0: अच्छे अनुभव ऐसे ऐसे रहे हैं कि जहां उम्मीद भी नहीं थी वहां पे हम अपना बेस्ट करके गए। कई खिलाड़ियों ने मतलब कि उम्मीद नहीं की थी कि हम बेस्ट हो सकता, वहां बेस्ट हुए। कई जगह अनुभव ऐसे भी थे कि जहां हम पहले से तैयार थे कि ये क्वालिफाई भी करेंगे हम और हम खेलने भी जाएंगे, लेकिन वहां पे कहते ना कि खिलाड़ी का दिन होता है, वो दिन हमारे नहीं थे, हम नहीं क्वालिफाई कर पाए। कई बार अफसोस भी हुआ, दिल भी टूटा, बहुत कुछ होते हैं। खिलाड़ी की जिंदगी बड़ी ऊपर नीचे चलती है।
1: जी चंद्रोदय जी, जब कोई खिलाड़ी एक मैदान पर प्रैक्टिस करता है और जब कंपटीशन के मैदान पर प्रैक्टिस करता है या नेतृत्व करता है देश का, तो उस वक्त कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयास करते हैं, असफल हो जाते हैं और कई बार हम सफल भी हो जाते हैं। तो सफल और असफल होने के बीच की किन किन चीजों की भूमिका होती है, क्या क्या चुनौतियां आती हैं जब हम नेतृत्व करते हैं और उसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं?
0: देखिए, खिलाड़ी के लिए सफल असफल तो ये आम बात है
1: जी,
0: क्योंकि जितनी वो मेहनत करता है कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन सफल असफलता खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है
1: जी।
0: आज सफल हुए हैं, कल नकद सफल होंगे ही। हम प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं, कभी ना कभी तो हम सफल होंगे।
1: क्योंकि आप एक हैमर थ्रो खिलाड़ी भी रहे हैं और एक आपका लंबा अनुभव रहा है, तो एक सफल हैमर थ्रो खिलाड़ी बनने के लिए किस प्रकार की अनुशासन और दिनचर्या की आवश्यकता होती है?
0: एक हैमर थ्रो खिलाड़ी बनने के लिए आपको बहुत डेडिकेशन देना पड़ेगा
1: जी।
0: आगे ट्रेनिंग नॉर्मल रूटीन बताया जाए तो सवेरे 5 बजे उठना, 5 बजे से 10 बजे तक प्रैक्टिस करना, फिर अपने रिकवरी में चले जाना, फिर शाम में 2 बजे 3 बजे प्रैक्टिस पर उतरना, 9 बजे तक 8:30 बजे तक प्रैक्टिस करना। तो उसकी एक लाइफ बंधी हो जाती है कि दोस्त यार नहीं रहते हैं, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है नहीं, उस टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था
1: जी।
0: तो एक दिनचर्या ये हो गई थी मतलब कि हमको अपने आप को सफल बनाना है बस।
1: आपने डाइट की बात की कि एक अच्छी डाइट होनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए,
0: अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए,
1: अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए। जैसे डाइट की आपने बात की, तो डाइट में किस प्रकार की डाइट होनी चाहिए, इस पर थोड़ी सी बात करें।
0: देखिए, डाइट तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जितना चाहिए
1: जी,
0: वो उतनी पूर्ण करना चाहिए उस खिलाड़ी को
1: जी।
0: क्योंकि एक खिलाड़ी अपने शरीर का दिन भर में प्रैक्टिस के टाइम कम से कम 10 से 12 लीटर पसीना बहाता है
1: जी।
0: तो उस पसीने को रिकवरी करने के लिए आप पानी से तो कर नहीं पाएंगे, तो आपके लिए उसको हिसाब से डाइट देनी पड़ेगी
1: जी। भारत में इस खेल की संभावनाओं और जो युवा इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: भारत में इस खेल की संभावना मुझे बहुत अच्छी दिखती है
1: जी।
0: मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप मोबाइल छोड़िए, आप रियल वर्ल्ड में आइए, आप चुनौतियों से देखिए, तब आपको बहुत मजा आएगा।
1: चंद्रोदय जी, आप स्टूडियो में आए और इतना महत्वपूर्ण समय आपने दिया, हमें उम्मीद है कि जो हमारे श्रोता हैं उनको लाभ अवश्य मिलेगा।
2: अब सुनते हैं इस सप्ताह के खेल समाचार। आईपीएल 2026 के प्ले ऑफ राउंड में सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स ने बनाई अपनी जगह। एथलेटिक्स में पोल वाल्टर, देव मीना और कुलदीप कुमार ने एक ही दिन में 2 बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर सुर्खियां बटोरी। और गुरिंदर वीर सिंह ने रांची में आयोजित फेडरेशन कप में 10.09 सेकंड समय के साथ 100 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसके साथ ही 10.10 सेकंड से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले वो पहले भारतीय बन गए। आज के अंक में इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
3: खेल दर्पण।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी प्रयागराज की प्रस्तुति था, जिसे आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित किया गया।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 होने को हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि।

गीतांजलि कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को आकांक्षा की ओर से नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत सुनवाएंगे आपको इज्जत। इस फिल्म से आवाज होगी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और शब्द लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने। कार्यक्रम का ये गीत सुनना चाहा है आप सभी ने। मेन रोड तेल्हारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, साहिल पोहरकार और सुजाता पोहरकार, लक्ष्मी अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्ची, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्ची, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति प्रयाग चौधरी। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। मेहरनगर उमरखेर महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर, प्रणता गवाड़कर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर, सुमित श्वेता गवाड़कर, ध्वनि गवाड़कर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा। आई सुनते हैं आप सभी के लिए इज्जत इस फिल्म का गीत।

गीतांजलि कार्यक्रम में अब आपको सुनवाएंगे आप आए बाहर आई इस फिल्म का गीत। आवाज़ होगी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। ये गीत सुनना चाहा है आप सभी ने। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। सेक्टर 67 चंडीगढ़ से टीडी मनोत्रा, ऋतिक मनोत्रा, प्रतीक मनोत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से हमारे श्रोता हैं शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। चांडोर विश्वा तालुका नाद दुरा जिला बुलडाणा। महाराष्ट्र से नारायण भाऊ खड़से, रक्षादाई खड़से, ललिता, संजय खड़से, गणेश और कार्तिक खड़से, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी। बेरेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री टामले, वैष्णवी टामले, चंचल टामले, अर्जुन और धीरज। गांधी चौक रोबड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलबिंदर बैर्क, जयतेक बैर्क और मीका बैर्क। एंड्रोम थाना लक्ष्मी नगर, अनाज मंडी रोड वंदना नगर, इंदौर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति प्रयाग चौधरी और कुमारी देविका चौधरी। जरडू वर्डू से हमारे श्रोता हैं बाबा साहब वड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी और कार्तिक के साथ युवराज। सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम और कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा बेलदार और उल्हा आसमा बेलदार। डबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा। भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा और ललिता नारायण खर्चे। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा। आइए सुनते हैं आप सभी के लिए आनंद बख्शी का लिखा गीत और फिल्म का नाम है आप आए बाहर आई। गीत में संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ನೈಂಟಿ
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज
2: आकाशवाणी रामपुर से आप सुन रहे हैं गीतांजलि। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अब सफर इस फिल्म का गीत। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, शब्द लिखे हैं इंदीवर ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

सफ़र इस फिल्म का गीतअप है। आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। कार्यक्रम का अगला गीत होगा आपके लिए कटी पतंग इस फिल्म से। कार्यक्रम के ये दोनों गीत हैं आप सभी श्रोताओं के नाम। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत रॉय। जिला मुरादाबाद संभल रोड बस्तौर से अतर सिंह सैनी, मुन्नी पवित्रा, अजय सैनी, आंचल विक्की सैनी, छवि आकांक्षा, आकाश आयुषी और इनके परिवार के सभी सदस्य। आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरव, शाइना और निवान शर्मा। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराही और महराज जहां। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा, सालिया शोएब खान, सायमा खान, मुस्तबा खान, आफिया खान, राउफ भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रैनी वैद, महिमा और नीतू वैद। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर। मेहरनगर उमरखेर महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाड़कर, श्वेता सुमित गवाड़कर और ध्वनि गवाड़कर। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गढ़ और मोहम्मद शादाब खत्री। पंजूसराय संभल से हमारे श्रोता हैं छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। बाटिंडन रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। मोहल्ला हलवाई एंड शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर। पंडित नगला पाई पाइस कोहिनूर तिराहा के पास से अख्तर हुसैन, बैरोनी शाह, असलम हुसैन, महमूद हसन, बीबीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली। अफजरपुर पट्टी तहसील सदर जिला रामपुर से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलाल, रूमा, मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, बबीता और अंशु गौतम। आइए सुनते हैं आप सभी के लिए कटी पतंग। इस फिल्म का गीत आवाज़ है मुकेश की और शब्द लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत है आर डी बर्मन का।

0: अभी आप सुन रहे थे गीतांजलि, फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी रामपुर है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये बात कही।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी

0: नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ. मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The Centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti

आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी दूसरी सभा के प्रसारण अब समाप्त होते हैं। कल सवेरे 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि।